ओम शांति। बाबा स्वयं इस धरा पर अवतरित हुए हैं इस संसार को बदलने के लिए, और उसने हमें अपना साथी बना लिया है। कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान के दिव्य कार्य में हम भी उसके साथी हैं, सहयोगी हैं। कोई तन से सहयोग करता है, कोई मन से, कोई धन से, कोई अपनी योग्यताओं के द्वारा, कोई अपना समय देकर। तो हमें बाबा के कार्यों में बहुत सहयोग करते चलना है। जितना हम सहयोग करते हैं उतनी ही प्राप्तियां ज्यादा होंगी। कोई ये बिल्कुल न सोचे यहाँ हम आराम से रहेंगे तो सतयुग में भी आराम से रहेंगे, नहीं। जो यहाँ सेवाओं में बहुत मेहनत करेंगे वो वहाँ राजगद्दी पर बैठेंगे, और जो यहाँ आराम पसंद होंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वो उनको वहाँ सब काम करने पड़ेंगे। भले ही वहाँ कोई कष्ट नहीं है, लेकिन कार्य तो वहाँ सभी होते ही हैं, अर्थात पद छोटा हो जाएगा। तो हम बाबा के इस महान कार्य में बहुत अच्छी तरह सच्चे मन से सहयोगी बने। जो तन का सहयोग करते हैं उनका तन स्वस्थ रहता है, जो मन से सहयोग करते हैं उनको मन की शांति, सुख और सुंदर विचार प्राप्त होते हैं, जो धन से सहयोग करते हैं उनके धन में वृद्धि होती है, जो योग्यताओं से सहयोग करते हैं उनकी योग्यताएं बहुत श्रेष्ठ हो जाती हैं। तो ये हमारा भाग्य भी है और भाग्य बनाने का सुंदर अवसर भी है, सुंदर विधि भी है कि हम स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करें। परिवार में रहते या संगठन में रहते हुए हमें कभी भी अंगुली दूसरों की ओर नहीं उठानी चाहिए। ये पहले बदलें तब हम बदलें। जब हम एक अंगुली दूसरों की ओर करते हैं तो तीन अंगुली हमारी ओर इशारा करती हैं कि तुम दूसरों को बदलना चाहते हो, पर पहले तीन गुना शक्ति से स्वयं को बदलो। हम तैयार करें स्वयं को बदलने के लिए। घर में यदि आप पति पत्नी हैं, बाप बच्चों का संबंध है, सास ससुर का संबंध है, आप सदा ही दूसरों को दोष देते हैं, ये व्यक्ति मुझे बहुत तंग करता है, ये कभी नहीं बदलेगा, तो आप जीवन भर दुखी रहेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच लेते हैं कि ठीक है, वो कटु वचन बोलता है, मुझे उसके वचनों को माइंड नहीं करना है, मुझे उसके बोल को सहज भाव से लेना है, वो निंदा करता है, मुझे अपनी स्थिति निंदा स्तुति में एक रस बना लेनी है, अचल अडोल बना देनी है, तो दूसरों के द्वारा की गई ऐसी बातें आपको महान और मजबूत बनाने वाली बन जाएंगी। तो बाबा का भी बहुत सुंदर महावाक्य है, जो मनुष्य परिवर्तन करता है विजयमाला तो उसी के गले में पड़ती है। तो हमें यदि विजयी रतन बनना है, पूज्य बनना है, महान पद को प्राप्त करना है, विजयमाला का अर्थ ये नहीं कि हमारी माला स्मरण की जाएगी, लेकिन 108 रत्नों का अर्थ है कि 108 रत्न सतयुग में राज करेंगे। कभी वो विश्व महाराजन होंगे, कभी स्टेट के राजा रानी होंगे। तो ऐसा उच्च पद पाने के लिए हमें स्वयं को परिवर्तन अवश्य करना है। स्वयं को परिवर्तन करने की दृढ़ इच्छा हो और ये भी पता हो कि किस बात में हम स्वयं को बदलना चाहते हैं। ऐसे नहीं हम कहते तो रहें कि हमें खुद को बदलना है, लेकिन हमें ये पता ही ना हो कि किस बात में हमें स्वयं को बदलना है। तो बदलने की प्रक्रिया तेज करेंगे, हम बदलेंगे तो दूसरे भी बदलते जाएंगे। आप करके देख लें, कोई बहुत बोलता है, आप नो रिएक्शन, चुप रहना सीख लें, साथ साथ अपने स्वमान में भी रहें, उसके शब्दों पर ध्यान दें ही नहीं, और देखें आपके इस परिवर्तन से दूसरे व्यक्ति में क्या परिवर्तन आता है। तो आज सारा दिन
बहुत अच्छी तरह अभ्यास करेंगे। मैं विश्व परिवर्तक हूँ, मास्टर क्रिएटर हूँ। बाबा ने मुझे अपना साथी बनाया है इस विश्व परिवर्तन के महान कार्य में, और सारा दिन अपने को मस्तक के बीच मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ ऐसी तेजस्वी आत्मा देखेंगे, और मुझसे चारों ओर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। इसका अभ्यास बार बार करेंगे, सारा दिन बहुत अच्छी अनुभूति रहेगी। ओम शांति।

क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत। रेडियो मधुबन पर फ्लाइट पकड़ने के दो तरीके हैं। यदि आप अक्सर हवाई यात्रा करते हैं तो संभव है कि आप इस पहले वाले सामान्य वर्ग में आते हों। सुस्त ट्रैफिक पर तनावग्रस्त होते रहना, ड्राइवर को गाड़ी और तेज चलाने के लिए टोकते रहना, लाल बत्ती को पार कर लेने की सोचना, बार बार घड़ी देखना और फिर दौड़ते हुए हवाई अड्डे में प्रवेश करना, सामान की जांच वाली कतार हो या चेक इन में सुरक्षा जांच वाली कतार, हर जगह कतार में आगे घुसने की कोशिश करना और हर एक को जताना कि आपको अपनी फ्लाइट पकड़ने में देरी हो रही है, तेज कदमों से चलना और कभी कभी तो दौड़ते हुए भी, चेहरा तनावग्रस्त होते हुए भी हर कर्मचारी और अधिकारी की ओर इस आशय से मुस्कुराते हुए देखना कि वह आपको आगे निकलने दे और इस तरह अपनी छूटती फ्लाइट को अंतिम पलों में पकड़ ही लेना। दूसरा तरीका है हवाई अड्डे के लिए 10 मिनट पहले निकलना। हर घर में शुरू होने वाली सुबह के दो तरीके हैं। पहला है तीसरे विश्व युद्ध का नाट्य रूपांतरण। हर कोई इधर उधर भाग रहा है, हर कोई किसी दूसरे को कोई काम सौंप दे रहा है, फोन की घंटी घनघना रही है और हर कोई इस उम्मीद में है कि कोई दूसरा उसे उठा लेगा। कोई बाहर दरवाजे पर आया है लेकिन हर कोई ऐसे जता रहा है जैसे दरवाजे की घंटी उसे सुनाई ही नहीं दी। स्कूल बस नुक्कड़ तक आ पहुंची है लेकिन अरे टिफिन कहाँ है, लो ये रहा, पानी की बोतल तो ले लो, स्कूल बैग ठीक से बंद नहीं हुआ है, अरे बस में बैठो और जूतों के फीते वहीं पर बांध लेना। लग रहा है जैसे कोई रॉकेट लॉन्च होने वाला हो। 10, 9, 8, ओह। दूसरा तरीका है 10 मिनट पहले उठ जाना। आपाधापी की आदत सबसे खतरनाक होती है। यह ऐसे ऐसे निर्णय लेने के लिए बाध्य कर देती है जो हम सामान्य स्थिति में लेना शायद ही पसंद करें। हमें यह विश्वास दिलाकर कि गलती परिस्थिति की है, हमारी नहीं, यह हमारे साथ बहुत छलावा करती है। आपाधापी हमारे फूहड़पन और बेतुके निर्णयों पर पर्दा डालने का अच्छा बहाना बनी रहती है। यह एक ऐसा माहौल बना देती है जिसमें हम जो भी कर रहे हैं उसे ही सही ठहराना हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। कतार में आगे घुसने से लेकर फ्लाइट पकड़ने के लिए पागलों की तरह दौड़ने तक, कठिन निर्णय आम तौर पर अच्छे निर्णय होते हैं। शुरू करने के लिए 10 मिनट पहले वाला सूत्र अटपटा लग सकता है लेकिन आज के भागम भाग वाले पागलपन के लिए यह समझदारी भरा निर्णय है। तनाव से जुड़े जिन अधिकांश मुद्दों से आज का आदमी जूझ रहा है उसका एक बहुत अच्छा निदान है 10 मिनट पहले। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपको संकटकालीन स्थिति का सामना करना नहीं पड़ेगा। 10 मिनट पहले का अर्थ है कि मेरे हृदय को प्रति मिनट 10 बार कम धड़कना पड़ेगा, यानी मैं 10 वर्ष

मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

हमें यह चीज स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए कि हर व्यक्ति के पास अपनी हर बात के लिए कोई न कोई दलील होती है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वह अपने निष्कर्ष पर अटल रहना चाहता है। नाथूराम गौड़से के पास महात्मा गांधी की हत्या करने की अपनी दलील थी। ओसामा बिन लादेन के पास अपनी दलील है कि उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला क्यों कराया। फिल्मी अभिनेताओं के पास अपनी दलील है कि उनके विचार से स्क्रीन पर सिगरेट पीना गलत क्यों नहीं है। हर किसी के पास अपनी अपनी बात के लिए दलील होती है और वह खुद को ही सही मानता है। सच कहें तो यह समझ आ जाने पर कि अपनी हर बात के लिए अपनी दलीलें देते देते और अपने निष्कर्ष पर अड़े रहते रहते ही हमने अपना सारा जीवन बिता दिया, मन ही मन बड़ी ग्लानि अनुभव होती है। जीवन के महत्वहीन मुद्दों पर दूसरे व्यक्ति को हम उसके निष्कर्ष पर रहने दें, इस प्रकार हम अपनी मेहनत, समय और ऊर्जा काफी हद तक बचा लेंगे और दबाव में आने से भी बचे रहेंगे। दलीलें देने की अपनी सहज वृत्ति को संक्षिप्त कर देने और दूसरे को उसके निष्कर्ष पर बने रहने देने से आप खुद को बहुत खुला खुला और स्वतंत्र अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसा केवल महत्वहीन मुद्दों पर ही करना चाहिए, और बढ़िया बात यह है कि हमारे सारे मुद्दों में से 90% से भी अधिक मुद्दे महत्वहीन ही होते हैं। क्या इस बारे में आपकी राय कुछ और है? कोई बात नहीं, आप अपनी राय पर बने रह सकते हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप अपने निष्कर्ष पर

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट। वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

लूथर किंग जूनियर का वह ऐतिहासिक भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था, मेरा सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र अपने इस सिद्धांत को सही अर्थ में जिएगा। हम इस तथ्य को मानते हैं कि ऊपर वाले ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। मेरा सपना है कि एक दिन जॉर्जिया की पहाड़ियों पर भूतपूर्व गुलामों की संतानें और भूतपूर्व गुलाम मालिकों की संतानें भाईचारे की मेज पर एक साथ बैठे होंगे। मेरा सपना है कि मेरे चारों छोटे छोटे बच्चे एक ऐसे राष्ट्र में रह रहे होंगे जहां उन्हें उनकी बाहरी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके भीतरी चरित्र से जाना जाएगा। आज मेरा यह सपना है, इसी विश्वास के साथ हम साथ साथ काम करने का, साथ साथ प्रार्थना करने का, साथ साथ संघर्ष करने का, साथ साथ जेल जाने का, स्वतंत्रता के लिए साथ साथ खड़े होने का प्रयास करेंगे। इसी विश्वास के साथ कि हम एक दिन कामयाब होंगे। और अमेरिका को यदि एक महान राष्ट्र बनना है तो इस सपने को सच होना होगा। इसके चार दशक बाद अमेरिका ने अपने प्रथम अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में बराक ओबामा को चुनकर इतिहास रच दिया। यहाँ जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि सामाजिक चेतना में यह स्वप्न तब नहीं बोया गया था जब इसके लिए समय बहुत अच्छा था, बल्कि यह उस समय बोया गया था जब समय बहुत बुरा चल रहा था, जबकि अश्वेत लोगों को मतदान का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। धीरूभाई अंबानी ने भारत के डिजिटल होने का सपना देखा था, जहां आम आदमी सूचना और

उपचार के ऐसे सस्ते साधनों को हासिल कर सके जिससे वह अपनी अशिक्षा और जड़ता की समस्या सुलझा सके। भारत में यह सपना साकार हो चुका है। यहाँ जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि रिलायंस के प्रबुद्ध वर्ग के मन में सपने का यह पौधा सन 1999 में रोपा गया था, जब भारत में आधारभूत संचार माध्यम एक निराशापूर्ण अवस्था में थे। इसी तरह जब हर उत्पाद, सेवा और मद दिनों दिन महंगे होते जा रहे थे, तब रतन टाटा ने 1,00,000 रुपये की कार का सपना देखा था और नैनो को सामने लाकर उन्होंने इस सपने को साकार भी कर दिया।

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत का सपना तब देखा था जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और 3 शताब्दियों से विदेशी शासकों के चंगुल में फंसा हुआ था। भारत जब विश्व स्तरीय वायुयान बनाने की स्थिति में भी नहीं था, तब भारत के मिसाइल पुरुष के नाम से विख्यात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सपना देखा, अपने 3000 वर्षों के इतिहास में भारत पर गत 600 वर्षों से विदेशियों का शासन रहा है। आपको विकास चाहिए तो देश में शांति होनी चाहिए और शांति को केवल शक्ति द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है। देश को सशक्त बनाने के लिए मिसाइलों का निर्माण किया गया। भारत ने अंतरिक्ष और चंद्रमा दोनों पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। हमें सपने देखने चाहिए, यह तो हम सभी जानते हैं। यहाँ जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि इन सभी महान स्वप्नदृष्टाओं ने इन सपनों को सर्वोत्तम काल और परिस्थितियों में नहीं बल्कि बड़े कठिन समय में, सच कहें तो सबसे कठिन समय में देखा। उस काल में भी जबकि सामूहिक सामाजिक चेतना आशावादी नहीं थी, उन्होंने सपना देखा और उनके सपने के बल पर ही तमाम संगठन, राष्ट्र और मानवता सभी उठ खड़े हुए। आप कठिन दिनों का सामना कर सकते हैं, आप कठिन दिनों से दो दो हाथ भी कर सकते हैं, लेकिन सपने जरूर देखें। जो आप हैं और जो आप होंगे, सपने उसका अंतराल है। क्या मैं कर पाऊंगा या क्या मैं बन पाऊंगा, कभी कोई प्रश्न नहीं रहा है। महान स्वप्न दृष्टाओं के महान सपने हमेशा पूरे होंगे। मानव मन जो कल्पना कर सकता है, वह जो विश्वास कर सकता है, उसे प्राप्त भी कर सकता है। आपको कुछ करने की शक्ति दिए बिना ईश्वर आपको उसे करने का विचार भी नहीं देता। एक स्वप्न दृष्टा के लिए प्रश्न केवल इतना रहता है, मैं इसे कब तक कर लूंगा। जो काम पानी कर सकता है वह पेट्रोल नहीं कर सकता, जो काम तांबा कर सकता है वह सोना नहीं कर सकता। चींटी का हल्कापन उसे चलायमान रखता है, वृक्ष का भारीपन उसे जड़ों से जोड़े रखता है। हर चीज और हर व्यक्ति किसी प्रयोजन को पूरा करने के अनुसार विशेष रूप से रचे गए हैं। भले ही मुझमें कुछ कमियां क्यों न हो, मैं अपने खुद के बजाय कुछ और कैसे हो सकती हूँ या कैसे हो सकता हूँ। भले ही किसी और की सशक्तता मुझे लुभाते क्यों न हो, मैं कुछ और बनने के लिए जूझता या जूझते क्यों रहूं। मैं यहाँ अपने ही स्वरूप में रहने के लिए हूँ। तो आप जो हैं, भाव यही है कि आप जो हैं जैसे हैं, अपने आप को स्वीकार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए और अपने जीवन में हमेशा ऊंचे सपनों को देखते हुए उसे साकार करने का प्रयास कीजिए। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूँ आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, सहज स्वास्थ्य की इस कड़ी में हम फिर वही बात लेकर आए हैं कि अपने आप को स्वस्थ कैसे रखा जाए। अक्सर ये जो बात हम सोचते हैं कि हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी डॉक्टर्स पर है, चिकित्सकों पर है, अस्पतालों पर है, नर्सेस पर है, दवाई की दुकान वाले पर है या दवाइयों पर है, ये सही धारणा नहीं है। आज हम ये सोचते हैं कि दवाइयां खाकर या दवाखानों के चक्कर लगाकर या दवाई लिखने वाले हमारे चिकित्सकों के पास जाकर ही हमें स्वास्थ्य मिल सकता है, अपितु इसके विपरीत जब हम स्वास्थ्य के सही डेफिनेशन को खोजने का प्रयास करते हैं तो ये बात कही जाती है कि बीमारियों का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य को एक संपूर्ण सर्वांगीण स्वास्थ्य के रूप में डिफाइन किया गया है। आज हम सिर्फ शरीर या मन में व्याधि का न होना ही स्वास्थ्य न समझें, हमारे वेल बीइंग के लिए भी कुछ चीजें आवश्यक हैं। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में रेडियो मधुबन छोटे छोटे कदम ले रहा है और आप सबके साथ मिलकर हम एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ भारत, एक स्वस्थ विश्व को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए दोस्तों, आज की बातचीत में भी हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में कुछ और जानकारियां हासिल करें। आज हमारे साथ स्वास्थ्य जगत के ही विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर राहुल मोदी जी हैं स्टूडियो में, जो भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लाखों लोगों को शफा दी है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो मैं इस बात पर आपकी राय जानना चाहूंगा कि हम स्वास्थ्य को कैसे देखते हैं। प्रायः हम ये चीज सुनते हैं कि बीमारी का ना होना या शरीर में या मन में व्याधि का ना होना मात्र ही स्वास्थ्य नहीं है, ये बात हम अक्सर सुनते हैं। आप एक चिकित्सक होने के नाते स्वास्थ्य को कैसे देखते हैं?
1: श्री भैया, स्वास्थ्य जो है वो सिर्फ तन तक नहीं है, आपके शरीर तक नहीं है, वो तन और मन दोनों पे असर करता है और उसका अच्छा रहना आपको फिजिकल, मेंटल और सोशल, मतलब आप दिमाग से, शरीर से और समाज में तीनों रूप से अच्छी तरह रह रहे हैं। हम लोग बहुत सारे बस ये कहते हैं कि अरे तुम एकदम ठीक हो, तुम्हारा बीपी ठीक है, तुम्हारा शुगर ठीक है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ठीक है, तुम सांस ठीक से ले पा रहे हो, तो तुम स्वस्थ हो। मगर अगर हमारा दिमाग उस समय परेशान चल रहा है, अगर हमारा दिमाग संतुलित नहीं है, एक और बात हम करते हैं कि हम एग्जाम की डेट जैसे आ गई है, 3-4 दिन बाद परीक्षा होने वाली है और उस समय हम खेलने लगे, कूदने लगे, जो पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब करने लगे, तो हमारे जो अगल बगल के जो छात्र हैं वो कहेंगे यार तुम पागल हो, तुम स्वस्थ नहीं हो क्या, तुम्हारा शरीर ठीक है पर तुम जो काम कर रहे हो, जो तुम एक्शंस कर रहे हो, वो इस समय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल ले लें कि हम किसी शादी में जा रहे हैं, वहां लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हम लगे रोने कि अरे क्या हो रहा है, तो फिर हमको अगल बगल वाले कहेंगे कि अरे आप गलत कर रहे हैं, तो आप मानसिक रूप से या आप सामाजिक रूप से उस समय स्वस्थ नहीं माने जाएंगे। शारीरिक रूप से क्या कहा जाए कि मैं आपसे कहूं कि मेरा घर दूसरी मंजिल पे है, चलिए चला जाए, आप कहे ठीक है चलते हैं और आप दूसरी मंजिल तक आराम से आ गए, ठीक है। पहली मंजिल चढ़ने के बाद आप थोड़ा धीरे हो गए, मगर आप उस जो बिल्डिंग है उसको आप चढ़ गए और दूसरे माले तक पहुंच गए। अब आप ये कहिए कि मैं पहले माले के बाद तो चढ़ ही नहीं सकता, मेरा शरीर मेरा साथ दे ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि आप स्वस्थ नहीं है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोगों के घर में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, स्पेशली जो 70+ या 80+ हैं, आप उनको अगर देखेंगे तो वो बड़े संतुलित भोजन करते हैं, वो कुछ ना कुछ व्यायाम जरूर करते हैं। आप मेरे घर में मेरी दादी, मेरी नानी, ये लोग किचन में कुछ रोटी जरूर बनाती थी, आटा जरूर सानती थी, वो सब्जी जरूर बनाती थी। ग्रैंडफादर जो भी थे वो न्यूज़पेपर जब भी पढ़ते थे तो वो अपने लिए दूध लेने रोज सवेरे वॉक करके जाते थे, उन्होंने एक उसको अपनी दिनचर्या बना दी थी। मैं मॉडर्न सोसाइटी के लिए यही बात बोलता हूँ कि ओल्डर टाइम्स में मेन यूज टू बाय एंड ब्रिंग फूड, पुरुष घर में अनाज, सब्जी, फल, तरकारी, सामान लेके आता था और महिलाएं उसको बनाती थी, धोती थी, घर की साफ सफाई करती थी। नोइंगली अनोइंगली हम लोग अपने शरीर का ध्यान रख रहे थे। एक अच्छी बात और थी हमारे साथ कि हमारा पर्यावरण उस समय कीटनाशक दवाइयों से कम प्रदूषित था, हमारी हवा उस समय कम प्रदूषित थी, तो हम लोगों को अच्छा लग रहा, हम अपने शरीर के साथ कोई भी दुराचार नहीं कर रहे थे। आपने भैया मुझे माउंट आबू बुलाया था एक कार्यक्रम में, और मैं इसके पहले करीब आई थिंक 18 साल पहले माउंट आबू आया था। दोनों समय में कितना बदल गया आबू, कितने नए नए होटल खुल गए, कितने कंस्ट्रक्शन हो गए, और जो माउंट आबू जो ब्रह्म कुमारी ने एक शांति के लिए, मेडिटेशन के लिए, एक शांत दिनचर्या कैसे जी जाए, कैसे जीवन की भाग दौड़ से आप अपने आप को थोड़ा सा स्लो करके आके वापस आए, उसका पूरा का पूरा जो वातावरण है वो बदल दिया गया। अब सिर्फ हा हा ही करिए, शॉपिंग करिए और वीकेंड में घूमने आइए। तो आप खुद देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने शरीर के लिए ना अच्छा भोजन इस समय ला पा रहे, हम स्वाद भरा भोजन ला रहे हैं, हम ज्यादा स्वादिष्ट भोजन ला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा पहले जो भोजन 2 दिन नहीं टिक पाता था, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन टिक रहा है। जो शेल्फ लाइफ जिसे कहा जाता है कि एक भोजन की कितने दिन रहती थी, उसको हम लोग कितना लंबा खींच पाते थे। मुझे आज भी अच्छे से याद है, जिन्होंने अचार देखा होगा तो उसके ऊपर एक बड़ी मोटी जो परत थी वो तेल की रहती थी, कि इसको वातावरण के कॉन्टेक्ट में नहीं लाना है। बारिश के समय हमको हमेशा याद है कि माए बहने ये कहती थी एकदम चम्मच को ठीक से पोंछ के उसके अंदर डालना, और उस बड़ी वाले मर्तबान में नहीं चम्मच बार बार डालनी, उसको छोटे से बर्तन में डालो, कहीं फंगस ना लग जाए, कहीं वो खराब ना हो जाए। आज के दिन में आप उसको जैसे चाहे वैसे रख दीजिए, कोई फंगस नहीं लगनी है। भैया नमक गीला होना छूट गया बारिश में, आप देखिए क्या प्रोसेस हो गया। तो हम ये बात को जाने कि हमने अपने भोजन को लॉन्गर शेल्फ लाइफ में कर दिया, जो कि और हमने अपने शरीर में एक्सरसाइज नाम की चीज को कम कर दिया। गर्मी ठीक है 3-4-5 डिग्री जरूर बढ़ी, पर उस 3-4-5 डिग्री गर्मी के बढ़ने के साथ हमारे यहाँ सबके घर में एसी लग गया, सबके घर में कूलर लग गया। पहले हम लोग सुना करते थे कभी कभार पानी बरस गया, अरे बाढ़ आ गई, पानी बरस गया, अब तो हर साल सुन रहे हैं। हमने अपने पर्यावरण को चौपट कर दिया, हमने अपनी दिनचर्या को चौपट कर दिया, हमने अपने भोजन को चौपट कर दिया। तो अगर हम अपने आप को ठीक कर लें, अपने भोजन को ठीक कर लें, थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, तो हम पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। और मैं फिर सबको बोलता हूँ, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। और एक स्वस्थ देश से कोई भी दुश्मनी लेना नहीं चाहता। हम अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, अगर हम स्वस्थ रहें तो हम अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है ये कि हम ये सोचते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा हमारे जवान करते हैं। बिल्कुल करते हैं, हमारे सरहदों के सेनानी हैं, वो हमारे सरहदों के निगहबान हैं, वो हमारे रक्षक तो हैं ही, मगर एक मजबूत राष्ट्र, एक स्वस्थ राष्ट्र ही बन सकता है। अगर हम स्वस्थ हैं, अंदर से मजबूत हैं, तो हम वास्तविकता में देश की रक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ये बात समझ में आती है। पिछले दिनों से हम अलग अलग विषयों पर बातचीत कर रहे थे, और पिछले दिनों हम बीपी के विषय पर चर्चा कर रहे थे। अक्सर करके बीपी के विषय पर जब हम इतनी गहराई से चिंतन करते हैं तो बहुत सारे लोगों को नई नई चीजें समझ में आती हैं। मैं कुछ मोटी चीजें आज आपसे पूछना चाहता हूँ। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि भाई बीपी होता क्यों है, ये हो क्यों रहा है, ये एक प्रश्न उठता है। और खासकर क्योंकि हम आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं, और अगर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी ये बीमारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कई लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, या उनको इन चीजों पर, स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर जानकारी ना हो, तो ये सामान्य प्रश्न के रूप में पूछ लेते हैं, आखिर ये होता क्यों है, बचपन से तो हम नमक खा रहे हैं, बचपन से तो हम सब कुछ कर रहे हैं।
1: सबसे बेसिक चीज हम लोग ये जाने कि हम सबको, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर है, सबके में है, और उसको हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब ये, जिसको अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए तो करीब 100 से लेके 120 तक ऊपरी पार्ट को मानते हैं, और ये 70 से लेके 90 तक को हम निचला पार्ट मानते हैं, पर एक डेफिनेशन में 120 बटे 80 मिलीग्राम मर्क्यूरी को हम इसको एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं। सबसे कॉमन कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने का, और जब भी हम बीपी की बात करते हैं तो वो आम बोलचाल की भाषा में उसको हाई बीपी माना जाता है या उच्च रक्तचाप समझा जाता है। सबसे कॉमन कारण है कि अगर आपके परिवार में लोगों को ये समस्या है तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये आपको भी हो सकता है। इसको जेनेटिक बोला जाता है, या आपके ये परिवार में ये बीमारी चली आ रही है तो आपको हो सकती है। और दूसरा जो सबसे कॉमन इसका कारण है, मोटापा। अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपके हृदय को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, इसीलिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। आपने कहा ही नमक की बात करी, जहां नमक ज्यादा खाया जाता है वहां भी ये कहा जाता है कि आपको बीपी हो सकता है। आप अगर शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तो भी आपके हृदय के लिए ये अच्छी चीज नहीं है। और अगर आप मादक चीजों का, जैसे सिगरेट हुआ, शराब हुआ, तंबाकू हुआ, इसका सेवन करते हैं तो भी आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। और इसीलिए डॉक्टर्स पहली बात जब भी आप जाइए तो वो आपसे बोलते हैं कि जो आप नमक खा रहे हैं उसको आधा करिए, और आप जितने भी मादक पदार्थ हैं जैसे सिगरेट हुआ, शराब हुआ, इसको तुरंत बंद करिए और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी शुरू करिए। ये कुछ नॉर्मल सी बातें हो गई। कभी कभार ब्लड प्रेशर दूसरी बीमारियों की वजह से भी आपको हो सकता है, जैसे आपको थायराइड हो जाए, एड्रेनल ग्लैंड का आपको कोई ट्यूमर हो जाए, आपको किडनी की कोई समस्या हो जाए, तो आपको उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। आप कुछ दवाइयां खा रहे हो, दर्द की दवाइयां रेगुलरली आप खाए चले जा रहे हो, उसकी वजह से भी आपको परेशानी हो सकती है। और आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो, बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, बहुत अग्रेसिव नेचर के हो, तो भी माना जाता है कि आपको इन कारणों से ब्लड प्रेशर हो सकता है। बढ़ती उम्र के साथ ये बोला जाता है कि जो आपकी धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, उनका लचीलापन जो है वो कम होता चला जाता है, तो इससे भी आपको बीमारी इसकी हो सकती है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आपको हो सकता है। डायबिटीज हुआ कि आपके शुगर बहुत बढ़ी हुई है, वो आपकी पूरी के पूरे सिस्टम को गड़बड़ कर दे रही है, तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपको बार बार आप जगते हैं, आपकी नींद खराब है, तो भी आपको हो सकता है। और ये बेसिक कारण है जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है।
0: अब जब समस्या को हम समझते हैं कि ये कई कारणों से हो सकता है, कई चीजें तो इसमें हमारे कंट्रोल में है और कई हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे आप कह रहे थे कि कई चीजें आनुवंशिक हैं, जैसे हमारे परिवार में बीमारी चली आ रही है तो लोग सोचते हैं कि ठीक है हमारे पिताजी को था, हमको भी है, या हमारी मम्मी को था इसलिए, हमारी माँ को था इसलिए हमारे को है, अनेक ऐसी चीजें हम देखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब बीपी डिटेक्ट हो गया है, जब पता चल गया है आपको बीपी की बीमारी है, तो प्रकृति चिकित्सा के उपचार में हम इसके लिए क्या समाधान देखते हैं कि क्या करें जिससे बीपी को हम कंट्रोल में रखें या बीपी से निजात पा सकें?
1: सबसे पहली बात जो एक प्राकृतिक चिकित्सालय में आपसे की जाती है वो आपको आपके भोजन में बिना तला, बिना भुना हुआ भोजन को हटा देते हैं और एक उबला सादा सुपाच्य भोजन आपको वो प्रदान करते हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात जो वो आपके साथ करते हैं कि वो आपके नमक का इंटेक, जो नमक आप लेते हैं, उसको तुरंत बंद कर देते हैं। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा सबसे अच्छा काम ये करती है कि वो आपको आपके भोजन में जो चीज आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है उसको तुरंत वो बंद करते हैं। इसका चमत्कारिक लाभ मिलता है। अगर आपको तुरंत आपका बीपी जो है वो आपको मतलब डायग्नोस हुआ है तो तुरंत आप अगर प्राकृतिक चिकित्सालय में जाएं या किसी अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले से बात करें तो वो सबसे पहले एक काम ये करेगा कि वो आपके भोजन को ठीक करेगा। तो जो भी रिफाइंड भोजन है, जो भी तला है, भुना है, प्रोसेस्ड है, भारतीय भोजन में हमेशा कहते हैं जिसमें भयंकर नमक है, जैसे चूरन, चटनी, अचार, पापड़, जिसको जीभ पे रखते आह कितना अच्छा स्वाद आ रहा है इसको तुरंत, या नमकीन स्नैक्स हो गया जैसे चिप्स हुआ, बहुत तरह के, किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मगर हम लोग उसको खा रहे हैं, पैकेट के चिप्स हैं, उनको तुरंत बंद किया जाता है क्योंकि इनमें नमक और केमिकल इतने ज्यादा है जो आपकी ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तुरंत आपका कोल्ड ड्रिंक, जो पैक्ड जूसेस हुए, तो ये तक बोला गया है कि जितनी एनर्जी ड्रिंक्स आ रही हैं वो सबसे खतरनाक हैं। अभी भारतीय सरकार ने बात की है कि स्कूल के आसपास कोई भी एनर्जी ड्रिंक नहीं बिकेगी क्योंकि उसमें सिर्फ कैफीन और सिर्फ शुगर है, और ये बहुत हाई डोज में कैफीन है, बहुत हाई डोज में शुगर है, तो एकाएक ऐसा लगता है कि आप जग गए हैं, आप बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं, आप एकदम थके हुए, आप एकदम एनर्जाइज्ड हो गए, आप चार्ज्ड हो गए। सरकार भी अब जागी है, उसने भी इसको बंद किया है, तो उसको बंद किया जाता है। आपकी प्रकृति चिकित्सालय में आपको चाय नहीं मिलती है, आपको कॉफी नहीं मिलता है, तो ये दोनों कैफीन जो है वो आपको, मतलब आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, जो बोलते हैं ना चाय पीते ही तरोताजा हो गए या कॉफी पीते, उसके इनटेक को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अल्कोहल, टोबैको, एनर्जी ड्रिंक, ये तीनों चीज को बंद किया जाता है। तो सबसे अच्छी बात, प्राकृतिक चिकित्सालय में जाते ही आपको संयम सिखाया जाता है कि आप अपने भोजन को क्या करें जिससे आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े। एक बहुत फेमस कहा, बिना मेक दाय फूड दाय मेडिसिन, मतलब अपने भोजन को ही अपनी दवा बनाइए। फिर आपको योगा या एक्सरसाइज शुरू कराई जाती है, इससे दो फायदा होता है, एक आपके शरीर से आलस्य कम होता है, दूसरा आपके शरीर में जो तनाव है वो कम होता है, आपका शरीर स्ट्रेचिंग होने लगती है और आपका वजन कम होने लगता है। तो एक्सरसाइज करते ही मॉडरेट हल्की एक्सरसाइज, स्विमिंग, योगा, या अतुब जो अच्छे नए सेंटर्स हैं उनके पास जिम्स भी हैं, योगा भी है, एक्सरसाइज भी है, पिलाटेस भी है, और अब नया जो है वो जुम्बा या इस तरह के डांस क्लासेस भी हैं, वो सब भी हैं। ये सारी चीजें बहुत आपके शरीर को लचीला बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं और आपके ओवरऑल फिटनेस को ठीक करती हैं। मेडिटेशन ये भी कराया जाता है कि शारीरिक सुदृढ़ता के साथ मानसिक सुदृढ़ता भी रहे, मतलब मेंटल जो मन है वो भी मजबूत रहे, इससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। आप एक चीज नोटिस करेंगे भैया, आप विश्व में कहीं भी मेडिटेशन करने जाइए, किसी भी इंटरनेशनल होटल में, प्रॉपर्टी में, वहां आपको एक बुद्ध भगवान की प्रतिमा जरूर मिलेगी, वो पद्मासन में बैठे हुए हैं, एक और आंखें उनकी बंद हैं और दोनों हाथ उनके नीचे हैं, और वो एक मेडिटेशन का पर्यायवाची बन चुका है पूरे विश्व में, और इससे हम लोग अपने मन को कंट्रोल करना सीखते हैं। अपने ब्रह्म कुमारी में भी मेडिटेशन कराया जाता है, और उस मेडिटेशन का फायदा ये होता है कि आप जब मानसिक रूप से शांत होते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा अच्छे से सोच पाता है, और जहां आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं आपके शरीर से, आपके मन से एक चीज जो सबसे तेज कम होती है वो अग्रेशन, और जहां अग्रेशन कम होता है वहां एंगर कम होता है। तो मेडिटेशन helps you to decrease your aggression and in turn it decreases your anger. तो जहां आप रिलैक्स हुए वहां आपका ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो गया है। प्रैक्टिकली देखिए, आप गुस्सा है, आप सबसे, आप सड़क पे किसी से आपकी गाड़ी टच हो गई, आप उतर गए लड़ने के लिए उससे, सबसे पहले आपकी आवाज तेज होगी, आपका चेहरा लाल होगा, आपका पसीना आपको आने लगेगा, आपके हाथ और मुट्ठियां बंद हो जाएंगी, आपको ऐसा, और आपके शरीर में हल्का कंपन शुरू होगा, और यही आप तुरंत कोई दो लोग आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे, रुको रुको रुको रुको, यही आप, पहली बात तो गुस्सा ही नहीं है, और गुस्सा हुए तो रुक कर दो गहरी सांस लीजिए, अपने आप आपका अग्रेशन कम हो जाएगा, और जहां अग्रेशन कम हुआ आपका एंगर कम हो जाएगा, और जहां एंगर कम हुआ आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो मेडिटेशन की सबसे पॉजिटिव चीज यही है कि वो आपके अग्रेशन को और एंगर को, और एक और चीज जितना क्लियर माइंड होगा उतना आप क्लियर सोच पाएंगे। मैं श्रोताओं को एक बात बताना चाहूंगा कि मेरा नाम डॉक्टर राहुल मोदी और मेरे सामने श्री भैया बैठे हैं। श्री भैया मल्टीपल रोल्स में काम कर रहे हैं और मैंने श्री भैया को हमेशा मुस्कुराते हुए और शांत देखा है। जितने लोगों ने श्री भैया को नहीं देखा है वो किसी भी एक व्यक्ति को मुस्कुराते हुए देख लीजिए, श्री भैया एकदम वैसे ही हैं और थोड़े पतले दुबले हैं, तो ये देख के ही उनको आप बोल सकते हैं कि ये हेल्दी फिट और हैप्पी व्यक्ति हैं।
0: जब आप ये उदाहरण देते हैं तो मैं अपने आप के बारे में भी सोचता हूँ कि मैं कैसे ऐसे बन पाया हूँ, ऐसे कैसे संभव है कि मैं ये चीजें कर पाता हूँ। और मैं समझता हूँ ये सब कुछ ऐसे लोगों के राय मशवरे के कारण है जिन्होंने जीवन में अनेक चीजों के लिए मुझे गाइडेंस दी है। आज डॉक्टर साहब आप स्वास्थ्य के विषय पर हमें गाइडेंस दे रहे हैं। मैं अपने अनुभव में ये चीज अक्सर कहता हूँ कि जब तक मेरा ध्यान इस विषय पर गया नहीं था कि मैं ये सोचता था कि मैं तो जवान हूँ, मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और जब धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, शरीर का ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी है और शरीर जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा ऐसा नहीं है, अगर मैं कुछ गलत करूंगा, शरीर के अंदर कुछ गलत डालूंगा, गलत खाऊंगा, गलत देखूंगा या गलत व्यवहार होगा तो इसका असर मुझ पर होगा, मेरे मन का असर मेरे शरीर पर और मेरे शरीर का असर मेरे मन पर, दोनों होंगे। ये बात समझ में आई और आप जैसे अनेक लोगों ने जो मार्गदर्शन दिया है उसके कारण जीवन में परिवर्तन ला पाना संभव हुआ है, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। डॉक्टर साहब आज आपने बीपी के बारे में चीजें बताई, ये क्यों होता है ये समझा और इससे ठीक होने के लिए क्या करने की जरूरत है ये भी चीज समझ में आई है। समय को देखते हुए हम रुकते हैं। आज आप कार्यक्रम में आए और हमारे श्रोता मित्रों को मार्गदर्शन दिया ताकि वो एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार। ओम शांति।
0: दोस्तों आज सहज स्वास्थ्य में हमने ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी हासिल की। अब ये जानकारी अगर हम इस्तेमाल न करें तो इस जानकारी का कोई फायदा नहीं होगा। आप सबके समक्ष रेडियो मधुबन ये कार्यक्रम इसीलिए लाता है ताकि हम अपने को स्वस्थ बनाने में, अपने प्रियजनों को स्वस्थ बनाने में, अपने देश को, समाज को स्वस्थ समाज बनाने में एक कदम आगे बढ़ाएं, कुछ न कुछ हम अच्छा करने की कोशिश करने लगें। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के कल्याण के बारे में सोचें, बिल्कुल हमें सोचना चाहिए, सर्व मंगल की, लोक मंगल की हम कामना करते हैं, मगर साथ साथ स्वयं के स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में भी जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हम दुनिया और देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं। आज सहज स्वास्थ्य में ये रुकते हैं, अगले एपिसोड में कुछ और विषयों को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इस श्रृंखला में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत, नमस्कार। जागरूकता किसके प्रति होनी है? जागरूक हमें अपने प्रति होना है कि हु एम आई, आई द सोल, आई द बॉडी, आई द माइंड। इसके बारे में हम कई बातें कर चुके हैं और ये बात हमारे सामने आती है कि आई द सोल इज सुप्रीम, और उसके बाद जागरूकता अपने पूरे इस सफ़र में खुद को पहचानने की और किस तरह से जिंदगी जीते हुए एक अच्छी जिंदगी, एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। याद होगा कि पिछली कड़ी में हमने बात की थी डिप्रेशन की, क्यों है इतना प्रेवलेंट आज डिप्रेशन, क्यों आज हर आम आदमी डिप्रेस्ड फील करता है। किसी ना किसी मोड़ पर ज़रूर हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं या हम डिप्रेस्ड हैं। हमने ये जाना था कि डिप्रेशन जो है वो एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा आस्पेक्ट है जिससे हमें दो चार होना पड़ सकता है, एक ऐसी सच्चाई है, लेकिन उससे हम अपनी माइंड पावर से यानी कि अपने विचारों से भी बदल सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। आज

0: नहीं, किसी को दबाना, नीचा करना, तो ऐसे ही जब व्यक्ति अपने आप को नीचा समझता है, जीवन में इंटरेस्ट खो बैठता है, इस प्रकार की जो स्टेज होती है तब उसको कहेंगे डिप्रेशन। बल्कि कई सिम्टम्स भी है। आज अमेरिकन साइकेट्रिक सोसाइटी ने हर बीमारी के वास्तव में लिस्ट ऑफ सिम्टम्स उन्होंने तैयार किए हैं, और उसमें से कुछ 60-70% अगर सिम्टम्स फिट होते हैं तब उस व्यक्ति को कहेंगे कि ये सचमुच डिप्रेस्ड है।
1: जी बिल्कुल। और सिस्टर शिवानी, अगर हम बात याद करें तो सेल्फ एस्टीम की बात की थी, आज अभी डॉक्टर पटेल ये कह रहे हैं कि खुद को ही सप्रेस करने लग जाए, खुद को ही कहे कि मुझ में तो कुछ रह ही नहीं गया, मैं तो कर ही नहीं सकता, या पूरा ये डिप्रेशन का आस्पेक्ट आ जाता है। सेल्फ एस्टीम ऐसे में कितनी हेल्प करती है, और कहाँ हम अपनी सेल्फ एस्टीम खो बैठते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं?
2: क्योंकि अपने असली स्वरूप को नहीं पहचाना, अपने आप को नहीं समझा, अपनी शक्तियों को नहीं पहचाना, अपनी विशेषताओं को नहीं जाना, तो एक खालीपन है कि नहीं, मेरे से नहीं हो सकता, या मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कोई ना कोई ऐसी थॉट इसको ट्रिगर कर देती है, या मैं कितना भी ट्राई करूं मुझे सक्सेस नहीं मिलती है, मेरे से कोई अच्छी तरह से बात नहीं करता, या जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं है, यू नो, कंपैरिजन, सो ऑल दैट पब्लिक ओपिनियन, लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, दिस कैन लीड टू सप्रेसिंग माय एक्चुअल क्वालिटीज एंड इनेट इंटरनल, यू नो, द ब्यूटी दैट इज देयर, आई स्टार्ट सप्रेसिंग इट।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक पूरी तरह से हमें नज़र आता है कि डिप्रेशन क्या है बेसिकली, खुद को सप्रेस करने का एक आस्पेक्ट। अगर हम देखें तो आपने बात की थी कि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं लाइफ की, वो लाइफ स्टेट की जो बात की जाती है कि यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ से चढ़ते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं, या वहाँ से नीचे कहाँ तक आते हैं, एक बार फिर से उनसे दोबारा दो चार हो लेते हैं कि कौन सी हैं वो स्टेजेस।
0: सबसे पहले तो जो हाईएस्ट स्टेज है वह है कि हमें जीवन में पूरी लाइवलीनेस है, हर क्षण का आप पूरा पूरा आनंद उठा रहे हैं। वो भले कह सकते हैं कि भी करोड़ों में एक व्यक्ति को ही आएगी, परंतु वो एक आइडियल लक्ष्य हो। सेकंड जो स्टेज है कि सचमुच जीवन में हैप्पीनेस है, हाँ, और वो सदा के लिए, वो हैप्पीनेस कम ज़्यादा नहीं हो रही है। फिर भी थर्ड स्टेज है कि भी कभी खुशी कभी गम वाली स्टेज है, कि भी थोड़ा समय एक दो घंटा अच्छा लगता है, फिर से दो घंटा में निराश हो रहा हूँ, या तो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। बाद की स्टेज है कि भाई वह जो अच्छा नहीं लगना या दुख का अनुभव करना, कुछ मुझे जीवन में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी स्टेज वो लंबी चलती है कि दिन में देखो 8 घंटा भी इसी स्टेज चली, 3-4 घंटे आपको अच्छा लगा, और फिर है कि सचमुच व्यक्ति डिप्रेस्ड फील करता है सदा के लिए, अच्छा नहीं लगता। जो जहाँ पर हम कहेंगे क्लिनिकली आइडेंटिफाइबल, यहाँ होता है साइकेट्रिस्ट के पास भी आप तब ही जाते हो, नहीं तो जो आगे की स्टेजेस है उसके तो आज हमने जीवन का एक समझ लिया है कि हमारे जीवन का हिस्सा है।
2: लेकिन जो मेरे को लगता है जो केमिकल इम्बैलेंस की उस दिन बात हुई, ठीक है, तो वो इसमें से कौन सी स्टेज पर हो रहा होगा, या शुरू से है?
0: नहीं, शुरू से नहीं, थर्ड स्टेज कहेंगे कि भी थर्ड स्टेज,
1: कभी खुशी कभी गम वाली
0: स्टेज, तब शुरुआत हो गई आपके केमिकल इंबैलेंस।
2: तो मेजॉरिटी इसका मतलब देन
1: दिस इज अगेन अ मिथ ना, जो हम रॉन्ग बिलीफ पर जीते आ रहे हैं कि हम उस स्टेज पर तो पहुंच ही नहीं सकते कि हर क्षण हमें खुशी मिलेगी, हर क्षण हम सुखी हैं, ये स्टेज तो हमारे कभी हो ही नहीं सकती, ये हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं।
0: सचमुच हो सकती है, आज राजयोग भी यही सिखा।
1: नहीं बिल्कुल, ये एक इतनी बड़ी गलत फहमी है जिसे हम आज बाहर निकल सकते हैं कि हर क्षण हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो क्या ये स्थित प्रज्ञ की जो बात की जाती है, टोटली अनअफेक्टेड है हमारे आसपास क्या हो रहा है, ये है वो स्टेज, या फिर ये कोई और स्टेज है?
0: नहीं, वो ही स्टेज नहीं, बोले स्थित प्रज्ञ होना अच्छा है कि उससे वह स्टेज बन सकती है, परंतु यह स्टेज एक नेचुरली भी आएगी। अगर हम एसेंस समझ ले कि मेरे में एक दिव्य चेतना है और उसका नेचर ही है सुख, मैं जो आत्मा हूं वह आत्मा ही सुख स्वरूप है, मैं आत्मा ही सच्चित आनंद स्वरूप हूं, नहीं वो एक मेरी पर्सनालिटी है, नहीं मेरा एक स्वभाव है,
2: इनहेरेंट कुछ चीज है जो इनहेरेंट है। अब सपोज डॉक्टर साहब एक डॉक्टर है, अब आप कहें बाहर चाहे कुछ भी हो जाए डॉक्टर तो डॉक्टर ही रहेंगे।
0: हाँ जी,
2: अगर सारी दुनिया भी कहे कि नहीं ये डॉक्टर नहीं है, इवन देन ही विल नॉट से कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बिकॉज अंदर ये पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, सो इट इज इनहेरेंट, वो है ऑलरेडी। अब ये एक एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन है जो धारण की और इसलिए याद रहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनहेरेंट है, वो तो और भी अच्छी याद रहनी चाहिए, लेकिन वो भूल गई है। जैसे ही वो वापस जागृत होगी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मैं हूँ ही सुख स्वरूप, तो अब बाहर कुछ भी हो जाए,
1: Now, how does it really
2: my matter? Natural

0: नेचर कैन नॉट गेट अफेक्टेड. इसका मतलब ये नहीं है कि यू नो आई एम इम्यून या आई डोंट कंसर्न फॉर पीपल, लेकिन वो उस स्टेज को डिस्टर्ब करे बिना भी हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं,
1: मदद कर सकते हैं और पूरा उन चीज़ों को अपना इंजॉय भी कर सकते हैं. हमने उस दिन इंजॉयमेंट और सुख की बात की, एक्साइटमेंट की बात की थी और कहीं ना कहीं यू नो इनर्ट जो है
0: और हर्ट और कंपैशन,
1: या
0: दोनों एक है हम दूसरे के दुख में हम भी दुखी हो जाते हैं और एक है हम अपनी सुख की स्टेज को अगर मेंटेन करें तो देन हम दूसरे को सहयोग दे सकते हैं
1: उसके ज्यादा बेहतर, ज्यादा लॉजिकल
0: और ज्यादा अच्छे तरह से.
2: एक बात बहुत अच्छी याद है, जब कई महिलाएं मेरे पास आती है, जैसे हम देखते हैं सास और बहू का प्रॉब्लम है, तो नहीं कंप्लेन मेरी सास ऐसी ये कर रही है, तो मैं उनको सब हमेशा ये कहता हूँ दो काम करो, देखो एक तो आप अपने नजरिए को बदलो, एटीट्यूड को बदलो, एंड सेकंड इज एंजॉय द म्यूजिक.
0: इसका मतलब हम रॉन्ग थिंकिंग करते हैं तब वो केमिकल इम्बैलेंस होता है, या केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है इसलिए हम रॉन्ग थिंकिंग कर रहे हैं?
2: दोनों सही है.
1: Okay.
2: अधिकतर तो ये कहेंगे कि वे रॉन्ग थिंकिंग कर रहे हैं इसलिए केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है. अभी दूसरा ये भी है कि जहाँ पर जीन्स प्रीडोमिनेंट है तो भी परिस्थिति भी ऐसी नहीं, व्यक्ति भी कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहा है फिर भी अचानक डाउन फील करता है, अचानक डिप्रेस्ड हो जाता है, तो वहाँ कहेंगे कि प्रीडोमिनेंट केमिकल इम्बैलेंस का रोल है.
1: ओके.
0: और फिर क्या उससे नेचुरली नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे?
2: या तो उसके लिए मुश्किल होगा भी उस स्टेज में पॉजिटिव सोचने लेके ज्यादा मेहनत करना. जैसे भी प्लेन पर चलना इजी है, पहाड़ी पर ऊपर चलने के लिए आपको फोर्स लगाना.
1: तो अब हम उन्हीं सिम्टम्स पर आते हैं, यू नो द नेक्स्ट स्टेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, हमने लाइफ स्टेज पे तो देख लिया वो जब कभी खुशी कभी गम है, कभी कभी खुश हो जाता हूँ कभी कभी दुखी हो जाता हूँ कुछ कुछ घंटे के गैप के बाद. उसके बाद सिम्टम्स क्या नजर आए कि हमें सोचना चाहिए कि डिप्रेशन सीपन कर गया है?
2: हाँ जी, नहीं बहुत सारे डिप्रेशन है, काफी जितना संभव होगा आपको मैं बताता हूँ. कि एक तो बात यह है कि भी व्यक्ति को ये होगा कि चलो जो ऑफिस नहीं जाना है, हाँ, घर में ही पड़ा रहूं, कोई बीमारी नहीं है. और एक जो बात देखी गई कि भी अच्छे से स्नान करने की दिल नहीं होगी, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा, हाँ, कैसे भी कपड़े पहन लेगा, हाँ, शेविंग करने का अच्छा नहीं लगेगा, नेल्स कट नहीं करेगा. ऐसी जो सिंपल चीजें हम आमतौर पर करते हैं, भले जीवन में समस्याएं हैं फिर भी एक सामान्य व्यक्ति करता है,
1: लेकिन एक दिन करे तो चलेगा ना? अगर ज्यादा दिन चेक करेंगे तब. एक दिन तो मैंने कई लोगों को देखा ये करते हुए कि एक दिन वो कहते हैं कि संडे को हर चीज की छुट्टी,
2: एक दिन ठीक ये वो तो भी इसलिए ये नहीं कि आपको इच्छा नहीं है, परंतु संडे के दिन आप फ्रीडम लेना चाहते हैं आराम से भले 9:30 बजे
0: ब्रेक करने के.
1: कितने दिन तक अगर वो करते रहे तो डिप्रेशन का शिकार?
2: वो तो 5-6 दिन भी कहेंगे. एक दिन जो संडे को आप कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आप रिलैक्स होना चाहते हैं, नो यू वॉन्ट टू जस्ट लेट गो थिंग्स. परंतु ऐसा अगर 2-3 भी रहे और आपको दिल नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि भी वो डिप्रेशन की सचमुच शुरुआत है, हो गई है. और कुछ इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है कि भी खाने का दिल नहीं होता, नहीं अच्छी अच्छी चीजें घर में बनाई है फिर भी आपको लगता है कि भी नहीं खाऊं तो अच्छा है, आज भूख ही नहीं है, तो वह भी एक डिप्रेशन की निशानी हो सकती है.
1: कहीं ना कहीं सोना भी जुड़ा हुआ होता है. नींद
2: है ना पिक्यूलियर है डिप्रेशन में, जो नींद की पिक्यूलियरिटी है कि एक तो सारी रात भी नींद नहीं आएगी, वो भी पॉसिबल है. बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, सारी रात व्यक्ति को नींद नहीं आएगी. और कई लोग ऐसे हैं कि जिनको एक बार नींद आ जाएगी, 4-5 घंटे नींद आ गई, लेकिन फिर सवेरे 3-4, 4:30 बजे नींद उड़ गई, फिर लाख कोशिश करने से भी नींद आ नहीं रही है, तो वह एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है डिप्रेशन का. और एक सिम्टम है लॉस ऑफ वेट, कि उसका वजन है वह देखो हर मास कम होता जा रहा है. और साथ में और भी सिम्टम्स है, हाँ, कुछ फिजिकल डिजीज में भी लॉस ऑफ वेट हो, जैसे डायबिटीज वाले भी वेट को लूज करते हैं, दैट इज डिफरेंट. और यहाँ और सिम्टम्स के साथ उसको जोड़ना होगा तो सचमुच पता चलेगा. और एक पिक्यूलियर सिम्टम्स है कि जो कई बार फैमिली फिजिशियन भी मिस कर जाते हैं, वह है एक्सेसिव स्लीप.
1: अच्छा, ज्यादा सोना
2: भी कहते भी बच्चा सोता ही जा रहा है, 11 बजे उठता है सवेरे, बड़े भी है उनको लगता है सवेरे 9 बजे अभी भी थकावट है अभी भी सो जाऊं, दैट एक्सेस ऑफ स्लीप आल्सो कैन बी अ सिम्टम ऑफ. और एक पावरफुल जो सिम्टम है वह है कि जीवन जीने की इच्छा खो देना. कभी एक शुरुआत में होता है कि भी मर जाऊं तो अच्छा है, पहले खुद बोलेगा नहीं परंतु कोई पूछेगा तो कहेंगे हाँ जीवन अच्छा नहीं है. दूसरा एक है व्यक्ति खुद बोलेगा कि अभी भगवान ले ले तो अच्छी बात है. उसके आगे की स्टेज है कि व्यक्ति प्लान करने लगता है कि भी कैसे मरूं, ट्रेन के नीचे गिर के मरूं, जहर पी के मरूं, क्या करूं तो मैं मर जाऊं. अगर प्लानिंग की शुरुआत होगी तो देन स्टिल यू आर इन अ डीपर डिप्रेशन. एंड दोज हु हैव कमिटेड सुसाइड दे आर रियली एक्यूटली डिप्रेस्ड.
1: यहां ये एक बहुत क्लियर बात हमें ये सामने नजर आ रही है कि जो सिम्टम्स हैं इन्हें पकड़ लेना चाहिए हमें खुद भी. और अगर हम खुद नहीं पकड़ पा रहे तो हमारे अपने क्या समझ सकते हैं इस बात को.
2: बिल्कुल है ना, वो अपनों फैमिली मेंबर्स को ही देखना चाहिए. कई बार फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं उसको ब्लेम करते हैं कि भी आलसी हो गया.
1: एक ईमेल भी हमारे पास आया है सिस्टर शिवानी एंड डॉक्टर साहब की, ये अल्पना जी ने अपनी बेटी के लिए भेजा है कि ये 16 इयर्स की इनकी बेटी है, 12th में पढ़ रही है और 10th में भी रिजल्ट बहुत अच्छे थे, 10th में टॉपर थी, लेकिन 11th में आते आते सडनली शी सेज कि शी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन हर स्टडीज और अब वो टोटली रिबेल भी हो गई है, लेकिन म्यूजिक में चली जाती है, कभी कभी अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है और इतना हम प्रेशर नहीं भी डाल रहे लेकिन उसके बावजूद भी वो पढ़ने में इंटरेस्ट खोती जा रही है. और कई बार ये कह रही है कि मैंने उसे देखा है कि वो, मैंने बात करने की कोशिश भी की है कि किसी से प्यार तो नहीं हो गया या कुछ ऐसी बात तो नहीं होगी, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, तो कहीं मेरी बेटी डिप्रेशन में तो नहीं चली गई है. तो क्या ये कोई ऐसी बात पता चलती है?
2: काफी है वो इसी प्रकार की, और भी थोड़ा अच्छे से उसको केस को स्टडी करना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी सिम्टम्स है यहाँ.
1: एक सडनली जो है पढ़ाई से इंटरेस्ट लूज हो जाना,
2: अगर ये सडन हुआ और अगर यही बात एग्जाम के दौरान हुई है, समझो एग्जाम के 15 दिन एक मास पहले, तो फिर एग्जामिनेशन फोबिया भी कॉज
1: नहीं. शी सेज कि 10th में शी वाज अ टॉपर बट 11th तक आते हैं तो शी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट.
2: एंड फॉर इफ इट हैज हैपेंड फ्रॉम द स्टार्टिंग, नो From the starting of the year, कि जब भी कोई examination phobia का सवाल ही नहीं है, तो फिर वो depression की संभावना है.
1: तो ऐसे में फिर
2: थोड़ा study करना चाहिए.
1: कैसे कैसे वो help कर सकती हैं अपनी बेटी की?
2: तो अभी बहुत अच्छा है कि उन्होंने इसको observe किया. कई माता पिता इस चीज को observe ही नहीं करते, उल्टा blame करते कहीं बार कि भी बच्चा आलसी हो गया है, हाँ उसने जैसे और कहीं उसका मूड लग गया है, कई बार तो सोच भी ड्रग्स लेने लगे, नहीं सचमुच वो डिप्रेस्ड हो सकते. तो ये जो आइडेंटिफाई किया वो बहुत ही अच्छा है. अब यहाँ पर आवश्यकता है कि भी प्रोफेशनल को भी कंसल्ट करे एक बार, तब है ना एग्जैक्ट वो बात को समझ में आएगी और एक्सपर्ट सचमुच बता सकते हैं. कई टेस्ट भी आती है इसके.
1: स्कूल काउंसलर जैसे में कितना हेल्प कर सकते हैं? स्कूल काउंसलर से बातचीत अगर की जाए, बच्चा अगर बातचीत करने की हिम्मत रख पाए, तो कितना कहाँ तक उनकी मदद हो सकती है?
0: आई थिंक काउंसलर बहुत अच्छी मदद कर सकेंगे, लेकिन उससे अच्छा भी अगर ये मदर, मदर अगर बात करती है. एंड इसीलिए वो एक रिलेशनशिप पहले से कैसे बना हुआ था, अगर वो डॉटर उतनी कंफर्टेबल है कि वो जिस दौर से गुजर रही है अगर वो शेयर कर पाए, देन द मदर विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट
1: रोल. एक्चुअली पर जिस एज की बात कर रही है उसमें रिबेल भी हो चुका होता है बच्चा, तो कहीं ना कहीं मदर और डॉटर के बीच में भी कई बार वो कोल्डनेस आ चुकी होती है. मतलब देखा ये गया बिकॉज शी इज अ रिबेल, द वे शी इज कमिंग आउट ऑल्सो कि वो अब इग्नोर करती है चीजों को, तो मदर भी अप्रोच नहीं कर पा रही. तो वो
2: प्रोफेशनल काउंसलर कैन डेफिनेटली, एंड दे शुड बी रियली प्रोफेशनल. इनफैक्ट ना आज है ना काउंसलर, एनीबॉडी कैन बी अ काउंसलर.
1: अंडरलाइंड हमने बात की थी, आपने एक बार कहा था कि अंडरलाइंड कुछ वो बातें होती हैं, तो अंडरलाइंड वजहें क्या हो सकती हैं
2: इस प्रकार की स्टेज की? हाँ हाँ, अभी ये जो यूथ में अगर हम इस बात को स्टडी करते हैं तो यूथ में तो एक नो लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम कैन बी अ कॉज, क्योंकि ये एक स्टेज है कि जिसमें बॉडी ग्रो हो रही है, वो बच्चे भी नहीं है शायद एडल्ट भी नहीं है, तो जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ऑर्गन्स आर आल्सो गेटिंग ट्रांसफॉर्म, तो तब कई यूथ कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कंफ्यूजन में उनको सही आंसर नहीं मिले तो भी डिप्रेशन होने की एक बहुत बड़ी संभावना.
1: और आज के वक्त में जबकि इतनी अवेयरनेस है, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है, कहीं ना कहीं नॉलेज नहीं है.
0: एंड आई थिंक यही वो फेज है जहां हम वो आइडेंटिटी क्राइसिस से भी गुजरते हैं. यूथ ये वाले एडोलेसेंट पीरियड में फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, लेकिन वो इंटरनल जो चेंजेस हैं, फिर से कॉलेज स्कूल लाइफ तक फिर भी एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट था, लेकिन कॉलेज में आने के बाद कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, दूसरों की तरह बनने की कोशिश, किसी फिल्म स्टार की तरह यू नो, और फिजिकल ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा अटेंशन.
1: तो ये भी रॉन्ग मिथ हो सकती है क्या कि एडोलेसेंस में ऐसा होता ही है कि बच्चे रिबेल होते ही हैं या आइडेंटिटी क्राइसिस होता ही है, क्या ये भी एक रॉन्ग मिथ है या
0: होता ही है? नहीं है, बट उनके लिए सिचुएशंस वैसी बनती जा रही हैं. यू नो, एक तो वो पेरेंट्स से थोड़ा सा विड्रॉ कर जाते हैं क्योंकि लगता है ये वो पीरियड है जहाँ हम अपने डिसीशंस खुद ले सकते हैं, या कुछ एक पर्सनल रिलेशनशिप्स में इस तरह से फंस जाते हैं जो अभी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर पाते. ये वो भी पीरियड है जब पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होने लग जाते हैं, इंटरफियरिंग ज़्यादा लगने लगते हैं, करने तो नहीं लेकिन शायद वो लगने बहुत लगते हैं. दिस इज़ दैट पीरियड जहाँ आप अपनी फ्रीडम शायद बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं. तो बहुत सारे फैक्टर्स जब इकट्ठे प्ले करते हैं और उस टाइम पर अगर आपने वो इंटरनल ब्यूटी पर नहीं ध्यान दिया तो देन दीज फैक्टर्स कैन यू नो जस्ट स्वे यू अवे एंड आपको वो दूसरी तरफ फिर ले जाता है.
2: और ना शिवानी बहन, मैं के बहुत समझता हूँ कि आज पेरेंट्स में जो सबसे बड़ी गलती हुई है कि वे सब कुछ दे देते हैं, पैसा दे दिया,
0: बहुत ज्यादा
2: टाइम,
1: और एक्चुअली उनके पास कुछ बचता ही नहीं कि खुद अचीव करने के लिए. बच्चों के पास भी कुछ नहीं बचता कि वो अचीव करें. दे कांट इवन लुक अप टू कि अगर मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा तो मुझे ये मिलेगा. उनके कहते ही तो मिल जाती है चीज़.
2: हाँ, वो चीजें मिल जाती है.
0: लेकिन जो डॉक्टर साहब ने
2: बता रहा हूँ, और मेरी एक सचमुच एक राय भी है कि भले आप कम कमाओ कोई बात नहीं है, कम लग्जरीज लो, आपका फ्लैट छोटा होगा कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए कम से कम एक घंटा रोज दो.
0: और अपने लिए भी.
2: अपने लिए तो देना ही है, अपने लिए देना है, लेकिन बच्चों के लिए भी कम से कहीं से भी निकालना है.
1: एक्चुअली ये पूरा सफर जो हम तय कर रहे हैं उसमें एक बात सामने ये आती है कि अभी तक तो हम ये जानते आए थे कि हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन एक बात जो मुझे क्लियर लगती जा रही है वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ. You know, I has to be the most important person, क्योंकि उसके ऊपर काम नहीं किया गया है. सबसे कम काम हमने अपने ऊपर किया है और बाहर काम हमने सबसे ज्यादा.
0: क्योंकि जैसे इस केस में भी अगर वो मदर अपनी बेटी को हेल्प करना चाहते हैं तो वो खुद एक बहुत अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में होने चाहिए. यू नो, बच्चे को डिप्रेशन से निकालना, पेरेंट खुद स्टेट ऑफ माइंड में, तो वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे उनके लिए.
2: जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो अपने लिए भी, लेकिन हम शरीर के लिए समय निकालते हैं, आत्मा के लिए नहीं निकालते. इनर डेवलपमेंट ठीक है ना, आंतरिक जो उन्नति की जरूरत है कि सदा काल के लिए चलेगी.
1: अच्छा, आज अभी जब हम बात ही कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आज के यूथ की बात कर रहे हैं तो बहुत कुछ अवेयरनेस की बात करी. वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस इतने ज्यादा हैं आज की, वो बच्चा जो है वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है कि क्या सच्चाई है और क्या बाहर से मैंने लिया है. तो ऐसे में जहां हम ये देख रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, अगर हम पश्चिम की तरफ देखते हैं तो वहाँ भारतीय जो पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस है या पूरी हमारी फिलॉसफी है उसे अपनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी कहीं इतना सब कुछ होने के बाद खोखलापन है. तो ये जो टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है कि वहाँ का सब कुछ है, जो नेगेटिविटी है हम ले रहे हैं, हमारी जो पुरानी पॉजिटिविटी है वहाँ जा रही है, तो इसका क्या आगे आस्पेक्ट नजर आ रहा है?
2: आपने कहा तो ये बात मुझे याद आई कि कहीं अखबार में पढ़ा था कि भूटान के किंग को किसी ने पूछा कि आपके वहां पर जो पर कैपिटा इनकम है वो कम है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी ज्यादा फिक्र नहीं है कि भले पर कैपिटा इनकम कम हो, लेकिन मुझे इंटरेस्ट है कि पर कैपिटा हैप्पीनेस कितनी है.
1: बहुत इम्पोर्टेंट
2: तो है. सभी को यह देखना चाहिए. हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज में भी अगर जो रूलर्स है वही यह सोचे कि भी पर कैपिटा हैप्पीनेस को मुझे सचमुच बढ़ाना.
1: लेकिन अगर हम वहां देखें तो वहां अब अध्यात्म को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाने लग गई है. द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी या इस तरह का पूरा का पूरा आस्पेक्ट जो है इतने ज्यादा पैमाने पर नजर आ रहा है. क्यों?
2: नो, पर फिर भी है ना, वो इतना ज्यादा नहीं है. सच देखेंगे ना तो जो ऐसी किताबें पढ़ते हैं, ऐसे प्रोग्राम, दे आर लिमिटेड पीपल. ये मे बी 1%, 2%, और उसी से भले वो तो बेस्ट सेलर किताब भी बन जाती है अगर 1% भी पढ़ने लगे तो. परंतु ओवरऑल अगर हम अवेयरनेस देखें तो और लाने की जरूरत है. लोगों को ये सचमुच बताया जाए कि आप अपनी जो अंदर की खुशी है उसको प्रायोरिटी दीजिए.
1: तो हम डिप्रेशन पे हैं डॉक्टर साहब, की डिप्रेशन के उस एस्पेक्ट पे बात कर रहे थे हम जब बच्चों पे आ गए थे.
2: हाँ जी.
1: हर वर्ग में, हर उम्र में डिप्रेशन नजर आ रहा है. केमिकल चेंजेस तब हो रहे थे जब कभी खुशी कभी गम वाले स्टेज पर थे, कि थोड़ा थोड़ा वक्त हम खुश थे, थोड़ा थोड़ा हम सुखी थे. लेकिन वो स्टेज वो है जहां हम डॉक्टर के पास जाने की अभी जरूरत नहीं है. स्कूल के काउंसलर से बात चल जाएगी या अपने ही किसी परिवार वालों से बात चल जाएगी. आज उस सिवियरिटी की बात करते हैं जब डिप्रेशन इतना बढ़ जाए कि हमारे अपने हाथ में ना रहे, जब पूरा कंट्रोल खो दें हम. अब कितने सीवियर केसेस हमने देखे हैं, चाहे वो वेस्ट में हो, कई बार भारत में भी देखने को आ रहे हैं, जो डिप्रेशन का शिकार होके वायलेंस पे उतर आते हैं. सो ऐसे में पहले ही कैसे रोका जा सकता है?
2: ये भी बात बहुत ही अच्छी है कि भी क्या सीवियर चीज होती है वो हमें कई बार देखना चाहिए। हाँ, अभी सूरत में ही हुआ था कि भी थोड़ा सा डिप्रेस था, सब बच्चों को भी नींद की गोलियां दे दी, खुद सुसाइड कर दिया, सारा परिवार खत्म हो गया।
1: मतलब क्या हमने जिंदगी को इतना छोटा बना लिया है, पूरी तरह से बात
0: होपलेसनेस आ गई है ना। तो जैसे कहा, जीवन जीने का उत्साह नहीं रह गया और जीवन जीने की शक्ति जो चाहिए, पावर टू फेस द वर्ल्ड, वो भी नहीं है
2: इसमें। तो नहीं, हमारे दर्शकों को ये समझने की आवश्यकता है सचमुच कि भी इस चीज से क्या भयानक परिणाम हो सकता है शुरू में। जैसे नहीं बर्ड आगे बढ़ रहा है उसको हम रोक सकते हैं, तो डिप्रेशन की जो स्टेज शुरुआत हुई उसको रोको। नहीं, अमेरिका में कुछ समय पहले मैं देखा था कि जो यूथ ने गन लेके आया और कहीं 25-30 को खत्म कर दिया, देवर डिप्रेस्ड। हम समझते नहीं, कई बार हमें ना उसको कहीं और कॉजेज ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन बहुत सारी चीजों में कॉज है वो डिप्रेशन। कई बार ऐसा भी हुआ कि माँ ने बच्चों को मार दिया, वो डिप्रेशन की स्टेज थी एक्चुअली।
1: अगेन होपलेसनेस भी था ना, बिल्कुल कुछ नहीं नजर आ रहा था, रोशनी नहीं नजर आ रही थी। तो वो रोशनी जो है वो हमें कहाँ से मिल सकती है, ये हम आपसे जानते हैं इस वक्त
0: उसी में। अगर हम पहले से ही, ये तो एक बहुत सिवियर स्टेज पर पहुंच गए, तो आई थिंक इस समय तो मेडिकल हेल्प की जरूरत है, वो ट्रीटमेंट और मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत है, कि उसके बिना, क्योंकि शायद इस टाइम सेल्फ काउंसलिंग पॉसिबल भी नहीं है, हमें शायद अवेयरनेस भी नहीं है कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे समय की बात की, थोड़ा समय अगर हम अपने लिए निकालना शुरू करें, थोड़ा अपने प्रायोरिटीज को देखना शुरू करें। अब ये डॉक्टर साहब ने कहा कि भले छोटा फ्लैट हो, बट हाउ मेनी पीपल विल अग्री कि भले छोटा फ्लैट हो लेकिन अपने लिए समय निकालें। एवरीबडी वॉन्ट्स द बिगेस्ट, बिगेस्ट घर, बिगेस्ट गाड़ी, बिगेस्ट एवरीथिंग, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी,
1: और ये भी कि दूसरों का भी हम ले लें।
0: हाँ, तो वो कंपैरिजन, कंपटीशन, तो वो अगर जीवन की यात्रा के दौरान हम इतना जोर से भाग रहे हैं इस यात्रा में कि हमें रुक कर चेक करने के लिए भी टाइम नहीं है कि हम सही दिशा पर हैं कि नहीं, बिकॉज वी जस्ट वॉन्ट टू रन। आई थिंक स्टॉप एंड पॉज, एम आई, दिस इज वॉट आई वॉन्ट, क्या मेरे जीवन का सिर्फ यही उद्देश्य रह गया है कि मुझे पैसे से खरीदी जाने वाली हर चीज चाहिए, तो वो हो जाएगा, लेकिन वो सब चीज भी खुशी के लिए चाहिए थी। तो क्या वो खुशी भी उतनी ही मात्रा में आ रही है? आई थिंक बीच में अगर एक बार भी रुक कर ये चेक किया जाए, और अगर हम पाते हैं कि नहीं ये थोड़ा कम हो रहा है, वील बी एबल टू चेंज इट, वील डेफिनेटली।
1: यू सेड स्टॉप एंड पॉज, लेकिन वो स्टॉप एंड पॉज भी हम तभी करेंगे जब अंदर से कहीं उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे हम। एक्चुअली हम अभी तक तो अपने तरीके ढूंढ लेते हैं, हम में से हर कोई, जैसे आपने भी लाइफ की कई स्टेजेस बताई, उसमें हम अभी तक अपनी उस खुशी को, कि 4 घंटे अगर मैं खुश हूँ तो 4 घंटे दुखी हो भी जाता हूँ, तो मैं कोई ना कोई बहाना भी ढूंढ लेता हूँ, तरीका ढूंढ लेता हूँ,
0: क्योंकि तब हमने बहाना बाहर को दिया हुआ है ना, तो हम जस्टिफाई कर लेते हैं अपने दुख को। लेकिन जहाँ वो बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया कि बाहर मेरा दुख का कारण नहीं है, मेरे अपने अंदर है, तो अगर वो 4 घंटे नहीं, 4 मिनट के लिए भी आता है, आई विल हैव टू स्टॉप एंड चेंज। अगर वो बाहर तक था तो वो 4 घंटे आ जाएगा, कल 8 घंटे आएगा। When it's inside, then I can change faster.
1: बिल्कुल। और अब डॉक्टर साहब ये बात करते हैं कि ये तो पूरे एस्पेक्ट हुए कि हमें किस तरह से अपने मेंटली अपने आप को, अगर हम समझ लें, इस बात तक आ जाएं कि दुख भी आ रहा है, वो 4 घंटे जो दुख आ रहा है वो बाहर से अगर आ रहा है, तो हमें इंटरनली अपने आप को रियलाइज करवाना है कि वॉट आई वॉन्ट, यू नो, एंड विल आई गिव द राइट टू समबडी एल्स टू ब्रिंग अनहैप्पीनेस टू मी। एक वो स्टेज जब डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है,
2: हाँ,
1: जब कोई सेल्फ काउंसलिंग, कोई किसी की बात, आवाज ही नहीं पहुंच रही, क्या करना पड़ता
2: तो
1: है?
2: दो चीजें जो शिवानी बेन ने दवाइयों की बात की, उतना ही इक्वली इफेक्टिव है साइकोथेरेपी, पर भारत में शायद इतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास धर्म की आदि बातें भी है, लेकिन विदेशों में सचमुच रिसर्च स्टडीज भी हुई। कई बार साइकेट्रिस्ट भी यही कहते हैं कि भाई दवाइयां ही लो बस, पर दवाइयों से डेफिनेटली फायदा होता है, लेनी भी चाहिए, परंतु अब स्टडीज में उतनी ही इफेक्टिव है साइकोथेरेपी। इसको कहा गया है बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी।
1: साइकोथेरेपी में बेसिकली क्या किया जाता है?
2: ऐसे बहुत प्रकार की साइकोथेरेपी है, जैसे फ्रॉइड से इसकी शुरुआत हुई वास्तव में, सेगमेंट फ्रॉइड ने सारी सिस्टम डेवलप की साइको एनालिसिस की, उसके बाद उनके ही शिष्य कहेंगे युंग थे कि जिन्होंने एनालिटिक साइकोलॉजी बनाई। ऐसे ही दूसरी एक है बिहेवियर थेरेपी, परंतु वर्तमान समय में कि जो बहुत प्रैक्टिकल भी है, व्यक्ति अपने आप भी बहुत कुछ कर सकता है, वह है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निशन मतलब कि जो आप फील करते हैं, जो आप सोचते हैं, उसके द्वारा अपनी बिहेवियर में परिवर्तन लाओ। और इस पर अमेरिका में तो लाखों डॉलर खर्चे किए गए ये देखने के लिए कि वो कित,

0: इफेक्टिव है। और ये देखा गया कि एमिप्रामाइन नाम की एक मेडिसिन है कि जो बेसिक मेडिसिन है डिप्रेशन के लिए, एमिप्रामाइन जितना मदद करती है उतना ही ये बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी हेल्प करती है।
1: ओके,
0: एंड दैट्स एन पावरफुल रिसर्च।
1: तो बिल्कुल, अब ये जो पूरी थेरेपीज हैं जो कि काउंसलिंग का भी एक हिस्सा हो सकती है और पूरे रिसर्च पे बेस्ड है, इसके ऊपर बातचीत हम डिटेल में अगली कड़ी में ज़रूर करेंगे कि डिप्रेशन को कौन कौन से सीवियर डिप्रेशंस में ये मदद कर सकती है और किस तरह से बिना दवाई के भी। हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ड्रगलेस थेरेपीज के बारे में बात करें, तो उन इन थेरेपीज को अपना के हम जो सीवियर डिप्रेशन के केसेस हैं उनको भी लाभ दिलवा सकते हैं। और उसके अलावा जो आम जिंदगी में जो है, किस तरह से इस तरह का जो पूरा दिनचर्या जीने का हम अपना एक एस्पेक्ट ले रहे हैं, उससे हम डिप्रेशन से ही दूर रह सकते हैं। तो फिलहाल आज आपके साथ बातचीत रही डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपको भी बता दें कि आज हमने जिन छोटे छोटे मुद्दों पर बातचीत की है वो क्या एस्पेक्ट्स हैं, उनको एक बार फिर नटशेल में ले लेते हैं कि कई स्टेजेस में हम जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जब ये लगने लगे कि कभी खुशी है कभी गम है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन हमारे आसपास आ चुका है, सीप इन कर रहा है। और जब उस स्टेज पर पहुंच जाए कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हम वो तरीके तलाशने लगते हैं कि किस तरह से हम सुसाइड करें या किस तरह से जीवन को ख़त्म कर सकते हैं, ये वो स्टेज है जहाँ हमें अब कोई भी इंतज़ार नहीं करना है, प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं जो डिप्रेशन से जुड़ी हैं, जो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, कई ईमेल्स भी हमारे पास आ रहे हैं, अगली कड़ी में हम उन्हें ज़रूर शामिल करेंगे। इस वक्त अगर आपके पास कोई

मीठे बच्चे, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। जी हाँ, आ गए हम भूल जाओ गम। साथियों, 5 अगस्त 2026 आज का तारीख है और लेकर आए हैं हम आपके लिए नई किरण। जी हाँ साथियों, बताया जाए कि आज का जो पंचांग है वो कहता है राष्ट्रीय शिक्षा 1948 14 20 श्रावण बुधवार आज है। विक्रम संवत 2083 श्रावण कृष्ण पक्ष सप्तमी बुधवार अश्विनी आज है। इस्लामी जरी 1448 21 सफर बुध सुरतेन नथा आज है। इसके साथ ही आज द्वारका प्रसाद मिश्रा, शिव मंगल सिन्हा, सुमन, इनसे ऐसे बहुत सारे विशेष व्यक्तियों का जन्मदिन भी है जिनकी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और आइए आज के दिन को यादगार बनाते हैं और कुछ पलों के लिए अपने आप से कनेक्ट हो जाइए। अपने ऊपर कृपा कीजिए, शांति से कुछ पल अपने साथ बिताइए। ये सबसे पहला काम आप कीजिए और शांति के पल को आपके पास पहुंचाने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर गीत का सहारा देने वाला हूँ। हेलो जी नमस्कार।
1: हेलो जी नमस्कार भाई जी, नमस्कार।
0: नमस्कार गुड़ीलाल जी, बोलिए कैसे हैं आप?
1: हमारी खुशियाँ बढ़ जाती है। खुशियाँ बढ़ाने के लिए एक मेरा भजन है, वो बोलने लगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना पड़ेगा, गोरीलाल गजानन को लाना पड़ेगा। ये गजानन जी का भजन है, आज बुधवार है तो उसका गाना भी हो जाना चाहिए। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे वो अब क्या नाम, सुरेश भाई है, बुलाराम जी है, मदन भाई है, दयाराम जी है, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपको भी मेरा पावा दो हो। नमस्कार सर। हमारी खुशियाँ तो बढ़ते रहे, आप हमारे खुशियाँ बन जाएगी और सावन पे नहीं
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: खुल जाएंगे।
0: चलिए गुरीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। साथियों, अब जो है समय चल रहा है कावड़ का, शिव का और सभी जो भक्त हैं उनका, तो डमरू की धान जो है सब जगह ताल जो है बज रहा है और आप भी उस बहुत ही सुंदर कावड़ यात्रा में शामिल हो और शिव का आनंद उठाएं, शिव के साथ नृत्य करते हुए भक्ति भाव से रम जाएं, ऐसे शुभ आशा के साथ चलिए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ डमरू वाले बाबा तुमको आना पड़ेगा। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे पास रेडियो मधुबन के स्टूडियो में मौजूद है विशेष कलाकार सेतु जी, हमारे साथ उपस्थित हैं। आप प्रोफेशनल सिंगर हैं और कई अलग अलग जो है भक्ति संगीत अलग अलग चैनलों पर आपने गाया है और बहुत सारे स्टेज शोज आपने किए हैं। तो आज आप हमारे इस स्टूडियो के माध्यम से हमारे श्रोताओं से आप रूबरू होने वाले हैं। तो सेतु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: कैसे हैं आप?
1: मैं प्रभु की कृपा से बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ मैं।
0: जी जी जी। और मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका प्रोफेशन और फिर आप किस तरह से इस प्रोफेशन में आपका आना हुआ। जी
1: जी बिल्कुल बताना चाहूँगी मैं। पहले तो मैं जहाँ पर हूँ और जिनके माध्यम से मुझे यहाँ पर बुलाया गया, उन सभी को मेरा तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया परमात्मा को सबसे पहले
0: जी, जी,
1: जिनके माध्यम से आप सभी तक मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, और रेडियो मधुबन स्टूडियो का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ, और आप सभी का, पूरे टीम का, कि यहाँ पर मुझे आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जहाँ तक गाने की बात है तो मैं बचपन से ही मैंने संगीत सीखा है। अपने माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से मैं संगीत में एमए हूँ।
0: बहुत बढ़िया
1: जी। और बच्चों को घर पे ट्यूशंस वगैरह, पहले जहाँ मेरा घर है, जहाँ से मैं हूँ, बिहार की हूँ मैं, पटना, वहाँ पे मेरे बच्चों का क्लासेस वगैरह घर पे मैं लेती थी। और काफ़ी स्कूल्स वगैरह में भी मैंने म्यूज़िक टीचर, एज अ म्यूज़िक टीचर वर्क किया है।
0: बहुत बढ़िया
1: जी। और हमेशा से फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और अभी मेरी शादी हो गई है, मैं शादी करके मुंबई आई हूँ, तो मेरे हस्बैंड का भी और ससुराल वालों का भी पूरा पूरा सपोर्ट है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी। इसी वजह से मैं प्रभु की कृपा से थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ, गा लेती हूँ।
0: जी जी।
1: और
0: सेतु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए। अच्छा, जो आपने बचपन से ही गाने का जो है, घर से ही आपको सहयोग मिला, आपने शुरू किया, तो शुरू शुरू में आपको क्या, किन से ज़्यादा प्रभावित रहे
1: संगीत में?
0: जी
1: जी, शुरू से जैसे कभी भी मैंने गुरुजनों को सुना है, बड़े बड़े लोगों को, जैसे लता माँ, लता मंगेशकर जी, और कई बड़े बड़े महारथियों का जब इंटरव्यू मैंने सुना बचपन में, तो उन लोगों का हमेशा ये कहना था कि क्लासिकल म्यूज़िक इज़ अ बेस्ट। अगर आपका क्लासिकल बेस है
0: बिल्कुल,
1: तभी आप म्यूज़िक कर सकते हो, गा सकते हो अच्छे से। अगर आपको म्यूज़िक में उतरना है तो आप क्लासिकल आपका सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
0: जी।
1: और तो

0: उन सभी बातों को मैंने अब्सॉर्ब किया अपने अंदर और मैंने संगीत सीखना शुरू किया।
1: जी सेतु सिंह जी, शुरुआत में जैसे कि हम लोग क्लासिकल या शास्त्रीय संगीत सीखते हैं तो उसमें सुर पकड़ने का और राग वगैरह और फिर राग रिलेटेड जो भजन होते हैं, अभ्यास गीत जिसको कहते हैं, तो आपने कैसे उसको मना वो समय का कुछ चीजें बताइए ना, उस समय कैसे आप करते थे
0: सीखने का
1: या टीचर या गुरुजी के साथ आपको कैसे चीजें आपने सीखा?
0: बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा और मैं बहुत, जब म्यूजिक की बात आती है तो मतलब मैं बहुत ही मेरा मन बहुत गदगद हो जाता है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ इसके हर आंसर देने में। म्यूजिक से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन जब पूछता है, कोई भी पूछते हैं मुझसे, तो मैं बहुत खुशी से उसका आंसर देना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि मैं एक गायिका हूँ और मैंने सीखा भी है, तो इसी नाते मेरा आंसर देना, उत्तर देना वाजिब भी है, देना भी चाहिए अच्छे से मुझे, ताकि आगे की जो जनरेशन है उनको ये समझ में आए और पता चले कि हाँ क्लासिकल म्यूजिक इज़ द बेस्ट, और आपको आगे संगीत में नाम करना है, कुछ करना है अच्छे तरीके से, तो क्लासिकल आपका सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैं आती हूँ आपके प्रश्नों के तरफ
1: जी,
0: तो मैं ये कहना चाहूँगी कि शुरू में जब मेरे फादर, जो अभी 2 साल उनका हो जाएगा, अभी वो नहीं है, बस नहीं कहने के लिए हमारे अंदर, हमारे बीच हैं वो, उनका आशीर्वाद है हमारे साथ और उनकी कृपा से मैं गुरुजन के पास गई, उनकी ही चॉइस थी, चॉइस के गुरु थे, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि तुम यहाँ पर सीखो, चूँकि उनका बहुत नाम था, तो मेरे को जब ले गए वहाँ पर पापा, तो वो मुझसे पहला इंट्रोडक्शन मुझसे कुछ गाने वाने गवाए कि गले में बहुत ऐसे आते हैं कि कुछ भी सुर वगैरह नहीं है गले में, तो इनको सिखाने में उतनी मतलब हेल्प नहीं मिलती है, ऐसा मुझे फर्स्ट क्लास में महसूस हुआ। तो जब मैं गाई तो उन्होंने कहा, मेरे गुरुजी ने कहा कि नहीं, आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी सीख जाओगे, चूँकि माता सरस्वती की कृपा है आपके ऊपर और आपके गले में ऑटोमेटिक अभी ऑलरेडी सुर है, मेरे गुरुजन ने कहा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ तो मेरा इससे कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया और शुरुआत वो अलंकारों से और श्वास की जो हमारे सांस की जो पकड़ होती है वो लंबी कैसे करनी होती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और स्वरों पे कितना ठहराव होना ज़रूरी है, सा में हम माउथ को कितना ओपन करें, उसके बाद रे आता है तो उसको कितना ओपन करें, ये सब सारी चीज़ें स्टार्टिंग में सिखाई जाती थी, तो एज भी कम था तो थोड़ी सी बोरिंग तो होती थी जो फ्रैंकली स्पीकिंग, तो बाद में सब सर ने कहा कि 45 मिनट्स का क्लास होगा आपका, तो मैंने बोला बस, मैंने मन में सोचा, हिम्मत अच्छा। तो नहीं थी बोलने की गुरुजी से मैंने सोचा बस 45 मिनट्स, मन में सोचा, फिर बोला चलो देखते हैं, जब गुरुजन देखे कि नहीं ये अच्छे से सीख रही है, तब वो 1.5 घंटे का क्लास कर दिए मेरा।
1: क्या बात।
0: तो जब मैं एकदम से ये हो जाती थी, गुरुजी मैं थोड़ा पानी पी के आऊँ, मैं थोड़ा वॉशरूम से आऊँ, ऐसा करती थी लेकिन जो उन्होंने सिखाया वो कमाल सिखाया, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने और भी गुरु के सानिध्य में मैं आती गई और मैंने सभी के सहयोग से मैंने एमए किया म्यूजिक में।
1: जी एक वो बोरियत से फिर जो हमारे पास जब ये कलाम समझ लेते हैं तो हमें खुशी होती है
0: जी।
1: तो फ्रॉम द बोरियत माना जहाँ पर आपको लग रहा था कि यही चीजें सीखनी है, और एकदम से फिर आपको खुशी कब हुई, वो जो फेस है
0: जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये खुशी देखिए कभी भी हम किसी भी प्रोफेशन में हो सर
1: जी, जी, जी।
0: सिर्फ संगीत की बात ना करें, ऐसा तो संगीत की ही चर्चा हो रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगी जब हमारा स्ट्रगल पीरियड होता है, जब हम किसी चीज़ को किसी भी प्रोफेशन में जब हों, कोई भी हो, उसको सीखता है तो वो उसका स्ट्रगल पीरियड होता है, और स्ट्रगल पीरियड को समझने के लिए बड़ी समझदारी की ज़रूरत होती है, तभी इंसान बोर नहीं होता है, जब वो नैया को पार करके पहुँच जाता है मंजिल तक, उस समय स्ट्रगल पीरियड को याद करके उसको लगता है वो कितना इंटरेस्टिंग पीरियड था, लेकिन दैट टाइम उस टाइम वो उसको वो समझ नहीं पाता है कि स्ट्रगल पीरियड कितना इंटरेस्टिंग होता है, और जब वो स्ट्रगल करके जब मैं अब मेरी बात करें तो मैं उस पर आती हूँ काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ी सी इसमें डूब गई थी
1: जी।
0: तो जब आपने पूछा ना कि कब लगता है कि हाँ
1: यहाँ भी हैप्पीनेस का टाइम आ
0: हैप्पीनेस का, जब मैं सीख रही थी उस समय रियाज वगैरह करना पड़ता था सुबह उठ के, अभी भी करती हूँ और आजीवन करना ही है हम लोग को
1: बिल्कुल।
0: तो उसके बाद लगता था कि ये करना है वो करना है, अभी गुरुजी ने ये भी बोला है वो भी करना है, थोड़ा रिलैक्स होती थी फिर बैठ जाती थी। उसके बाद जब गाने का कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह आते थे तो मेरे फादर को बहुत खुशी होती थी कि तुम पार्टिसिपेट करो, ताकि उनको देखना होता था, मुझे तो उतनी नॉलेज नहीं थी कि क्यों बोलते हैं पार्टिसिपेट करने को, बट वो ये देखना चाहते थे कि इसका ग्रो कितना ये इसने किया है। जब मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने कंपटीशन दिया था भारतीय नृत्य कला मंदिर में पटना का बहुत फेमस है वो, तो वहाँ पर मुझे सेकंड प्राइज मिला था फर्स्ट, तो मैं मेरे पापा इतने खुश हुए और खूब मिठाई लाए, हम लोग को मिठाई भी खिलाए मुझे भी खिलाए। मैं सोची सेकंड प्राइज में इतना खुश क्यों हो रहे हैं,
1: फर्स्ट में क्या होगा।
0: फिर जब पेरेंट्स का इतना सपोर्ट मिलता है ना किसी भी बच्चों को किसी भी चीज़ में, आप कोई भी रैंक लाओ और अगर वो खुशी से कहते हैं कि बेटा बहुत अच्छा, अब तुम अभी इतना कम सीखने के बाद तुमने जब सेकंड पोजीशन लाए तो तुम्हारा फर्स्ट भी आ जाओ। और रियली सबके आशीर्वाद से मैं जितने भी कॉम्पिटिशन्स देते गई ऑलमोस्ट 98% में मैंने फर्स्ट प्राइज ही जीता।
1: चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग जो है जो सब्जेक्ट हमें बोर लगता है धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करते जाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा अचीवमेंट हमारी होती जाती है तो हमें अच्छा भी लगता
0: खुशी
1: है
0: का, तब समझ में आता है कि अच्छा हमने स्ट्रगल किया, उसको हम महसूस करते हैं खुशी को
1: और वो स्ट्रगल पीरियड जैसे ही ख़त्म हो जाता है आप परफॉर्म करने लगते हैं, लोगों की तालियां सुनते हैं तो आपको लगता है कि सचमुच हमने कुछ पा लिया।
0: जी जी।
1: तो मैं चाहूँगा कि अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और मैं चाहूँगा कि ब्रेक में हम सेतु जी को भी कहेंगे कि आपका पसंदीदा कोई भक्ति गीत सुनाइए हमें।
0: ज़रूर। मैं तो परमात्मा के शरण में हूँ
1: जी
0: और यहाँ पर आकर ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी खुशी को बयां नहीं कर सकती।
1: बिल्कुल।
0: ऐसा लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ कि मैं मधुबन के स्टूडियो में बैठी हुई हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है ये। तो मैं ऐसे तो पसंद के गीत बहुत सारे हैं मेरे,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं इस स्टूडियो में आई हूँ तो एक भक्ति गीत
1: बिल्कुल
0: होना बहुत ज़रूरी है।

0: थैंक यू।
1: चलिए, बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनाया और ये हमें कहीं ना कहीं अध्यात्म से जोड़ने वाला गीत है और बाबा अर्थार्थ उस निराकार निरंजन के लिए संबोधन था। बाबा अर्थार्थ एक परमात्मा के लिए संबोधन था और जब हमारी अंतर आत्मा परमात्मा से या ईश्वर से जुड़ जाती है तो हम हर जगह हर समय उन्हें याद करते हैं और इसीलिए ये भाव सामने आ जाता है कि कहीं भी मन की आँखों से हम उस परमात्मा को फील कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा रहते हैं ऊपर में परमधाम में, लेकिन आप अपनी भावनाओं से, अपने प्रेम से, अपने मन की आंखों से उन्हें जब चाहे जहां भी याद कर सकते हैं और हर जगह उनका दीदार आप करते रहते हैं क्योंकि आपका उनके साथ कनेक्शन हो जाता है, आपको परिचय मिल जाता है। तो निश्चित तौर पे जब हम परमात्मा को समझ लेते हैं तो उन्हें याद करना इतना आसान हो जाता है कि हमारा मन और दिल कहते हैं तुम तो मेरे पास ही हो, मेरे आसपास हो। तो आपके आसपास का ऑरेंज इतना पॉजिटिव हो जाता है, आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुशी से भर जाता है। तो इस तरह की भावनाएं उठना स्वाभाविक है और ऐसे में कहा जाता है कि भाई हम लोग अगर पूर्व में थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो

0: जी ज़रूर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि संगीत से रिलेटेड है. एक्चुअली जब मैं, मेरी शादी जब नहीं हुई थी, बिहार से हूँ मैं, मैंने बताया पटना में, तो मुझे स्टेज शो नहीं करने दिया जाता था.
1: अच्छा अच्छा.
0: चूँकि मेरे फादर बोलते थे कि, बोलते हैं कि मतलब बिहार में ऐसा, और हम लोग राजपूत हैं, तो पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि शादी कोई नहीं करेगा, अगर मंच पे गाता हुआ देख लिया तो अच्छे घर का लड़का इसको पसंद नहीं करेगा. चूँकि फिर भी, लेकिन मेरी मदर हमेशा देखती थी कि मेरी आंखों में, कि नहीं मुझे अच्छा लगता है. तो बोला उन्होंने, क्या मतलब इसको नहीं रोकिए आप, चूँकि ये आकाशवाणी रेडियो वगैरह में गा ही रही है, अच्छे अच्छे सांस्कृतिक स्टेज भी इसने कवर कर लिया, और म्यूज़िक टीचर, एज अ म्यूज़िक टीचर सब कुछ कर रही है ये जैसा हम चाहते थे. तो अब ये जैसा चाहती है इसको भी थोड़ा सा जी लेने दीजिए, स्टेज शो भी इसके, इसकी इच्छा है. तो मेरे फादर इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े बहुत गिने चुने स्टेज शो मैंने बिहार में किया. लेकिन मैं पूर्णतः यहाँ जब मुंबई आई शादी के बाद, तो मैंने मतलब कि जिसको कहते हैं जी खोल के काम करना,
1: बिल्कुल.
0: तो फिर मैंने स्टेज प्रोग्राम वगैरह, स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स बहुत अच्छे से मैंने शुरू कर दिया.
1: अच्छा, जी जी. तो पहला स्टूडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बताइए.
0: जी बिल्कुल. ऐसा था, पटना से ही है शुरुआत. मेरे को भजन गाने के लिए बुलाया गया था संस्कार चैनल पर.
1: अच्छा अच्छा.
0: वहाँ मैं गई तो मुझे माइक वगैरह पे गाने की उतनी मतलब आइडिया नहीं थी फर्स्ट टाइम. तो मैंने वैसे, जैसे होता है कि स्कूल वगैरह में बच्चों को जैसे बताते हैं ये करो वो करो, तो मेरा वोकल पूरा ओपन था. तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा पीछे जाकर गाइए, और जैसे वायर रहेगा ये सबको टच नहीं करना है, ऐसे पकड़ना नहीं है, वो माइक नहीं है मैम स्टेज का. बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल्स भी उन्होंने बताई, सांस के बारे में बताया कि वोकल को बहुत ज़्यादा ओपन करके स्टूडियो में नहीं गाया जाता है, वो टेक्निक समझाया. तो स्टूडियो से भी काफ़ी कुछ मैंने सीखा.
1: अच्छा
0: जी. तो बहुत अच्छा अनुभव रहा.
1: तो फिर धीरे कौन सा गीत रिकॉर्ड हुआ आपका संस्कार?
0: धीरे धीरे मेरा आली रे मेरी नैना बान पड़ी.
1: थोड़ा सुनाइए उसको.
0: जरूर. मीरा बाई का भजन है
1: जी.

0: चलिए, बहुत ही सुंदर मेरा भजन आपने सुनाया। आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को आपकी आवाज़ सुनकर अच्छा लग रहा है। बड़ा मीठा आवाज है आपका और बड़ा प्लीजेंट लग रहा था, सुनते रहे ऐसे लग रहा है। तो हमारी ओर से बहुत बहुत खुशियाँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह आपकी आवाज़ बनी रहे और लोग आपको सुनते रहें, अन्य और भी अच्छे अच्छे जगह पे आपको गाने का मौका मिले। तो एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं और स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आप अलग फील करते हैं?
1: दोनों में सर ज़मीन और आसमान का डिफरेंस है जी। चूँकि स्टेज पर जो हम गाने रेडी करते हैं, जो हमें ऑर्गेनाइजर्स बुलाते हैं कि आपको आना है, तो कुछ शोज़ ऐसे होते हैं कि उनके हिसाब के गाने, कुछ लिस्ट

0: हो, तो उस हिसाब से हमको रेडी करके जाना होता है. और कुछ ऐसे भी शोज होते हैं जहाँ पे शोज के पैटर्न बता दिए जाते हैं कि कुछ फोक चलेंगे सेतु जी, कुछ हिंदी ओल्ड सॉन्ग चलेंगे, कुछ नए लेटेस्ट चलेंगे, ऐसा हर शो का पैटर्न होता है. तो उस हिसाब से हमारा माइंड मेकअप रहता है सिर्फ गाने के लिए कि हम गाने को रिदम के साथ अच्छे से परफॉर्म करें, और पब्लिक के सामने हमको नर्वसनेस वो चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए. स्टेज का मेन सर वही होता है. अगर सुर आपका इधर उधर भी हो जाए तो वो कोई मायने नहीं रखता, बस आपका लुकआउट जो स्टेज पर है वो बहुत फ्रैंक और स्मार्टली होना चाहिए. पब्लिक के साथ आप बहुत अच्छे से, मतलब आपका वो दिखना चाहिए कोऑर्डिनेशन, आई कॉन्टैक्ट पब्लिक के साथ बहुत अच्छा हो आपका. वो चीज़ें होती है स्टेज परफॉर्मेंस, चूँकि सुर के बारे में उतना कोई ध्यान नहीं देता है. अगर सिंगर पब्लिक के साथ बातें कर रही हैं, लगातार दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसको कहेंगे गुड परफॉर्मर. अगर सुर इधर उधर थोड़ा बहुत गाने का चला भी गया तो इट्स ओके, कोई उतना ध्यान भी नहीं देता है. पब्लिक के साथ आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा चल रहा है सिंगर का, तो यू आर अ गुड परफॉर्मर. और स्टूडियो में क्या होती है सर कि एक एक बारीकियाँ, एक एक सुर इधर उधर अगर हिला तो फिर गाना का कोई मतलब नहीं है. प्रॉपर मतलब आपका गाने पर ही वो चीज़ें होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी श्वास, एवरीथिंग. मतलब वहाँ तो लोग आपको देख नहीं रहे, सिर्फ आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आवाज़ में ही सारी क्वालिटी चाहिए म्यूजिक डायरेक्टर को.
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, ये डिफरेंसेस है सर.
1: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे स्टेज और स्टूडियो में अंतर है, और स्टेज परफॉर्मेंस में जब आप जाते हैं तो किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है, और स्टूडियो में किस तरह की तैयारी के लिए करके जाते हैं.
0: स्टूडियो में जैसा कि सर मैंने बताया कि सुर का बिल्कुल भी प्रॉपर, जैसे गाने आपको म्यूजिक डायरेक्टर बताते हैं उस हिसाब से अपना भी कुछ, अगर आपको लगे कि इस गाने में मैं दे सकती हूँ तो बताने में कोई शर्म नहीं, हम बताते हैं.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: कहीं भी जाते हैं कि सर इस चीज़ को अगर एक बार ऐसे गाकर देखते हैं, अगर आपको पसंद आए तो, अपनी भी हम रखते हैं उसमें बातें, तो फिर ये होता है. और स्टेज परफॉर्मेंस में आपने सर क्या पूछा, स्टेज परफॉर्मेंस का भी,
1: स्टेज में और तैयारी कैसे करके जाते हैं, किस तरह
0: जी तैयारी की बात कर रहे हैं आप, तो वो जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें प्रॉपर जो हमको गाना है बस उस पर हमारा फोकस है. एक गाने को मतलब इतने अच्छे से गाओ कि मतलब वो पूरी लाइफ टाइम आपका, आपके लिए लगे कि हाँ उसने कुछ गाया, वो चीज़ें होती है. वो एक गाने के लिए मतलब पूरा एफर्ट लगाना पड़ता है, एक गाने के पीछे सुर लय एवरीथिंग
1: सब चीज़ें सही चाहिए
0: जी. और स्टेज पे है कि हमारा लुक भी थोड़ा
1: इम्पॉर्टेंट,
0: जैसा बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा ड्रेसअप, पब्लिक के साथ हम स्मार्टली कैसे डील कर रहे हैं, या फिर पब्लिक का डिमांड भी आता है हमको ये गाना सुनना है सिंगर से, तो कई बार हमको वो भी गाना पड़ता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो ऐसी भी चीजें होती हैं सर.
1: मतलब तैयारी तो दोनों तरफ पूरी अच्छी चाहिए.
0: बिल्कुल सर, अगर तैयारी में थोड़ी भी कमी हुई तो पब्लिक खिंचाई करेंगे आपकी.
1: सही बात है. चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने बताया, और मैं चाहूँगा कि एक आध फिल्मी गीत जो आपको पसंद है वो सुनाइए हमारे श्रोताओं को.
0: जरूर जरूर, लता जी का गाया हुआ, अभी सावन का महीना भी चल रहा है.
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो एक गीत है मेरा बहुत ही पसंद का. ऐसे तो लता जी के सारे गाने मेरे फेवरेट ही हैं, लेकिन एक गाना मैं, मेरी कोशिश है. ओ सजना.

0: सजना। थैंक यू।
1: चलिए सेतु जी, काफ़ी अच्छा गीत आपने सुनाया लता मंगेशकर का, और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपका ये गीत सुनकर।
0: थैंक यू सर।
1: और आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि अब जिन जिन चीज़ों पे आपने परफॉर्म किया, अलग अलग जगह पे आपने स्टेज परफॉर्म किया, स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी आपने किया, तो सबसे ज़्यादा आपको जो खुशी है कहाँ परफॉर्म करके हुआ?
0: स्टूडियो की बात कर रहे हैं सर या स्टेज की?
1: दोनों में से कहीं भी जो ज़्यादा आपको सुख मिला हो
0: जाए। जी, मैं एक बार नागपुर में गई थी बप्पी लहरी जी के साथ।
1: अच्छा अच्छा।
0: अब तो वो नहीं है, बट ये बोलना अच्छा नहीं लगता, बहुत ही महान म्यूजिक डायरेक्टर है वो, और उनके म्यूजिक की क्या बात है। तो उनके साथ मैं परफॉर्म कर रही थी, तो वो मैं डरी हुई थी चूंकि वो बहुत बड़े हस्ती हैं, और मैं मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि फीमेल सिंगर में मैं अकेली हूँ, कोई कोरस भी नहीं था सर।
1: अच्छा अच्छा।
0: और बप्पी दा के साथ एकदम से मुझे खड़े कर दिए, और मैं उस समय, मुझे लगता है मैं नहीं, एक साल हुआ था मुंबई आए हुए, बहुत ज़्यादा मैं मतलब मुंबई में नहीं गाई थी उस समय, मुझे लगता है 8-10 ही शोज मैंने किए थे उस समय, लेकिन उतने बड़े कलाकार के साथ एक होती है कि हाँ, मैं फिर भी मैंने हिम्मत रखी जो जितना मैंने सीखा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत आराम से गा, जब मैं गाने के लिए माइक ली तो मेरा हाथ सर कांप रहा था, क्योंकि बप्पी दा मेरे बगल में खड़े थे, और जब वो गाना शुरू किए तो उनकी तो कुछ तो बात ही मतलब अलग है, वो अपना गा रहे हैं धुन में, फिर मैं चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि वो बोलेंगे सीनियर है मेरे से, तब तो मैं गाऊंगी, मैं चुपचाप माइक लेके खड़ी थी। फिर अपना सोलो गाने के बाद उन्होंने डुएट गाना शुरू किया उन्होंने, तो फिर मेरे को इशारा करके बोलते हैं सेतु चलो अगला तुम शुरू करो लाइन। सर उतने बड़ी हस्ती होकर मेरे को इतना आराम से उन्होंने कहा सेतु ये दूसरा लाइन तू ले ले, मुझे इतना सर अच्छा लगा कि मतलब एक होता लगा ही नहीं सर कि उनके साथ मैं पहली बार मतलब मिली मैं, और मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया, जब ऐसे लोग आपको बहुत ईजिली बहुत प्यार से बात करते हैं आपके साथ, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मैंने फिर फाड़ के गाया, अच्छे से गाया, तो वो मेरा एक्सपीरियंस सर बहुत अच्छा था, और बपीदा के साथ मैंने काम किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। उनका आशीर्वाद मिला, उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, बहुत आगे जाओगी, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मेरे लिए, बहुत अच्छा था सर।
1: चलिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया बप्पीदा का, और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बप्पीदा के गाने हम लोग रेडियो पे चलाते रहते हैं, तो उन्हें उनकी आवाज़ से उनको वाकिफ है वो। तो चलिए, मैं चाहूंगा कि कौन सा गीत था जो आपने बप्पीदा के साथ परफॉर्म किया?
0: उनके फिल्म के बहुत सारे गाने हैं, ये प्रियंका चोपड़ा जी थी जो, वो गाना था उनका, बहुत सारे गाने हैं सर, उलाला से लेकर याराना के गाने, याद आ रहा है, यार बिना चैन कहाँ रे, जितने भी उनके अच्छे अच्छे गाने हैं, झुमका गिरा दे ये भी गाना है उनका ही है, तो इस तरह के गई गाने, वो बैंड था पूरा।
1: अच्छा,
0: म्यूजिक
1: पूरा
0: बैंड
1: के साथ में।
0: और जब मेरा आ रहा था तो मैं उनके इजाजत के बगैर, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे गाऊं,
1: परफॉर्म करूं,
0: जब उन्होंने कहा कि सेतु तू इसके बाद फीमेल का है, तू गान उठाना, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं उनके साथ पहली बार सर मिली हूँ। एक होता है कि ग्रीन रूम में हम लोग बात कर लेते तो थोड़ी मैं हल्की हो जाती, डायरेक्ट स्टेज पे मुझे उनके साथ चढ़ाया गया, तो फिर भी उन्होंने इतना कंफर्टेबली बिहेव किया मेरे साथ। कहते हैं कि जब पेड़ में फल होता है वो उतना ही झुका रहता, तो ये बात सच है सर, उनके अंदर इतनी क्वालिटी थी और उन्होंने इतने आराम से मेरे से बात की,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उनको नमन है सर।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, और जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को सेतु जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं?
0: जी, लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि लाइफ में सबसे पहली बात है कि हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सिर्फ प्रोफेशन की ही बात नहीं है, मैंने भी बहुत खुद को गले को बहुत
1: तराशा है,
0: डांट भी सुनी है गुरुजी से, मैडम लोग से भी डांट सुनी हूँ, बट उन लोगों ने इसलिए मुझे डांटा क्योंकि वो लोग बोलते थे कि तुम्हारे में क्वालिटी है और जितना तुमको करना चाहिए वो क्यों नहीं कर रही हो तुम, क्योंकि मेरा सर स्पोर्ट्स में भी थोड़ी मेरी रुचि थी, मैं खेलने चली जाती थी बैडमिंटन कॉलेज में, तो बोलते थे कि इसमें रियाज कम लग रहा है वैसा, क्योंकि मैंने मैम बहुत रियाज किया है, मैंने अभी खेलने गई थी क्या तुम, बोले मैम मुझे बैडमिंटन पसंद है, या तो तुम बैडमिंटन ही खेल लो या तुम गाना ही गा लो, तो ऐसे ऐसे करके ये बहुत खुशी की बात है कि अगर ऐसे लोग, अगर आपको अच्छी डांट देने वाले लोग अगर लाइफ में हैं तो ये बड़े मुझे लगता है खुशकिस्मती की बात है सर। तो मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी, आपने मुझसे पूछा है तो मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि उस लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मुझे बोलना है कि कभी भी जल्दबाजी ना करें, कभी भी ना करें लाइफ में, धैर्यता रखें, बड़े बुजुर्गों का और गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहें, परमात्मा को याद करते रहें और मेहनत करते रहें। मेहनत से कभी भी हार नहीं मानना चाहिए कि हम एक बार नहीं मिली सफलता तो बैठ गए, दो बार नहीं मिली। आज ही मुरली में मैं सुन रही थी कि 20 बार उनका वो किसी एग्जांपल दे रही थी किसी प्लेयर्स का, रेस में वो 20 बार सफल नहीं हुए, 21वीं बार उन्होंने
1: सफलता हासिल,
0: मतलब भारत रत्न मिला उनको। तो ये सब चीज़ें सुनकर बहुत सर हम लोग को मोटिवेट होना चाहिए, सीखना चाहिए
1: जी।
0: तो ये सब चीज़ें हैं सर।
1: चलिए सेतु जी, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया। हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आप मेहनत करते जाएं, मेहनत करते जाएं और पेशेंट रखें, थोड़ा धैर्य रखें, धीरज रखें, ताकि आपका जो है सुख भरे दिन आते हैं। धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के दिन आएंगे, इसीलिए कहा गया। तो बहुत ही खूबसूरत संदेश आपने दिया है। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने सेतु जी को सुना, और आशा करूँगा उनके गाने और उनकी अनुभव को सुनकर आपको भी मोटिवेशन मिल रहा होगा कि हमें भी किसी तरह इस तरह के परफॉर्मेंस को करने के लिए हमें किस तरह से मेहनत करनी है। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से एक बार सेतु जी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं इन चंद तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, बातें मुलाकातें। चलिए मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ ढेर सारी खुशियों के साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए, सेतु जी की कहानी आपने सुनी है और आशा करूंगा आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा और बहुत ही अच्छे सिंगर है और कल्याण में रहते हैं। तो अभी भी वो मधुबन जो है यहाँ शांतिवन उनका आना जाना लगा रहता है और जो गॉडलीवुड स्टूडियो बना वहाँ पर भी उनका रिकॉर्डिंग्स बीच बीच में करते रहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज विशेष दिन है, 8:53 हो रहे हैं, आप हो मेरे साथ। चलिए बात करते हैं सुमंगल सिंह सुमन जी के बारे में और इसके साथ ही हमारे गुमान सिंह जी याद कर रहे थे आप सभी को, वो नवोदय स्कूल से है, वहाँ पर पढ़ाते हैं बच्चों को। अभी उनकी ट्रांसफ़र जो है शायद साउथ में हो गई, वहाँ पर भी नवोदय विद्यालय में ही सेवा दे रहे हैं और बड़ा आनंद के साथ सेवा देते हैं। तो आप सभी को याद कर रहे थे, यहाँ की बातें भी याद कर रहे थे और मैं चाहूँगा कि अब आज नवोदय स्थापना दिवस है तो जितने भी नवोदय स्कूल हैं माउंट आबू और अलग अलग जगह पे, तो उन सभी टीचर्स को और बच्चों को नवोदय स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो सुनते रहो, मस्करा रहो।

0: हाँ जी
1: हाँ जी सर, मैं थोड़ा रुक गया बोलने में। और आज बुधवार है, सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं। सभी मित्रों को, आप छो हमारे सभी राम राम करते हैं, हमारे बुरा राम जी को, बोरीलाल जी को, और सभी हमारे संतन भाई को नमस्ते सर। और सर बुधवार है, गणपति जी के याद कर रहे हैं, तो सभी गाना आपकी पसंद का सुना देना सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, नमस्ते सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और बुधवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए, वक्त हो गया है समाचारों का, सीधे दिल्ली चलते हैं और समाचार सुनते हैं। अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
2: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
3: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
4: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय, मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि RBI प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग CID की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। JPSC परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन तो बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति NEET UG काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
5: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को MCC पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
6: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी, हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में पांचवी वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, DGCA ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। NEET UG काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने भीतर के अंधकार को समझिए, क्योंकि वहीं से प्रकाश निकलेगा। और जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है, वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद से सच्चा संवाद करें, क्योंकि दुनिया के सभी उत्तर आपके भीतर ही छिपे हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। अब आपको बहुत ही सुंदर विचार आज का सुनाऊंगी कि हमारे ऊपर विपत्तियां आती है तो हम अक्सर अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं, परंतु वो भी मजबूर होकर के सहायता नहीं कर सकते तो लास्ट में हम किसको याद करते हैं? भगवान को। कैसे? तो जरा विचार करेंगे और चाय की पत्ती को उबाल करके क्या करेंगे? चाय की पत्ती को उबाल करके आगे क्या? भाई वो तो आप आशियाना सुनिए जरूर जान जाएंगे। और कहते हैं कि इस दुनिया में वो इंसान ही ठीक है जो हमेशा कहता है मैं ठीक हूँ। तो इस विषय पर चर्चा जरूर करेंगे और आज बनाएंगे मठिया, गुजराती डिश। सीखने के लिए तैयार रहिएगा और प्रश्न भी पूछने वाली हूँ। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड्स से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार ध्यान से सुनेंगे। पहले आपको सुना चुकी हूँ, फिर भी हमारे ऊपर विपत्तियाँ आती है तो हम अक्सर अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं, परंतु वो भी मजबूर होकर के सहायता नहीं कर सकते, तो लास्ट में हम किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार बहुत ही सुंदर है, एक दृष्टांत के साथ समझाना चाहूँगी कि बहुत समय पहले त्रिकुट नामक पर्वत के पास एक गज माने हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। वहाँ का वातावरण बड़ा सुंदर था, मीठी नदियाँ, बगीचे, रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से वह स्थान अति सुंदर लगता था। एक दिन गज अपने परिवार के साथ सरोवर में नहाने के लिए निकला। सरोवर में बहुत आनंद से और स्वच्छंदता पूर्वक तैर रहा गज माने हाथी आने वाले संकट को पहचान न सका। उसी सरोवर में एक ग्राह माने मगरमच्छ भी रहता था। ग्राह ने गज के पैर को पकड़ करके अंदर खींचना शुरू किया और दोनों ने अपनी अपनी शारीरिक शक्ति को आजमाना शुरू किया। गज अच्छे ढील ढोल वाला विशाल काय शक्तिशाली प्राणी था, परंतु उसकी शक्ति सफल नहीं हुई। ग्राह खींचता ही गया, गज जल में धंसता चला गया। गज के प्राण संकट में पड़ गए, पुकारने लगा अपने रिश्तेदारों को। किनारे पर खड़े गज के साथी परिवार वाले सदस्य देखते ही रह गए, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर सके, गज की कोई मदद नहीं कर पाए। आखिर गज ने सोचा कि संकट से बचाने वाला एक ही ईश्वर है। ऐसा निश्चय करके, सभी को भूल करके, एक ही परमात्मा को अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगा। दयालु ईश्वर ने तुरंत प्रत्यक्ष होकर के सुदर्शन चक्र से ग्राह का संहार कर दिया और गज को बचा लिया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कि हमारे ऊपर विपत्तियां आती है तो हम अक्सर क्या करते, पहले अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं। जब रिश्तेदार मदद नहीं करते ना, तो फिर भगवान याद आते हैं। लेकिन हमें कौन याद आने चाहिए? अगर कोई विपत्तियां आती है तो ईश्वर को याद करे, न कि अपने रिश्तेदारों को। रिश्तेदार क्या कर पाएंगे? भगवान जो कर सकेगा वो रिश्तेदार नहीं कर पाएंगे। तो यह है आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बड़े सुंदर नुस्खे, बहुत ही अच्छे सुंदर नुस्खे दूंगी कि भाई चाय की पत्ती को उबाल करके क्या करेंगे। तो चाय की पत्ती को उबाल करके उस पानी से बाल धोइए, इससे बाल कम झड़ेंगे। ठीक है, तो चाय की पत्ती उबाल दीजिए पानी में डाल करके, फिर उस पानी को छान दीजिए, उससे सिर धोइएगा, इससे बाल कम गिरेंगे। बहुत बाल गिरते हो तो क्या करें, कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा ना, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। अब आपको अगला नुस्खा दे रही हूँ, बैंगन के भरते में शहद मिला करके खाइए, इससे अनिद्रा रोग का नाश होता है। ऐसा शाम को भोजन में भरता बनाते समय करें, सुबह नहीं। ठीक है, बैंगन के भरते में शहद मिलाकर खाइए, इससे अनिद्रा रोग का नाश होगा, परंतु शाम के समय। अगर शाम को आप भरता बना रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो। और भी सुनेंगे आप अगला नुस्खा कि संतरे के रस में थोड़ा सा शहद मिला दीजिए और दिन में 3 बार 1-1 कप पीजिए। गर्भवती माताओं के लिए है ये, तो गर्भवती माताओं को जब ये दस्त की शिकायत होती ना तो दूर हो जाएगी। संतरे के रस में थोड़ा सा शहद मिला करके दिन में 3 बार 1-1 कप पीना है गर्भवती माताओं को, इससे उनके दस्त की शिकायत होगी, वो ठीक हो जाएगी। और भी सुनेंगे आपके गले में खराश होने पर सुबह सुबह सौंफ चबाइए, इससे बंद गला खुल जाएगा। गले में खराश हो रही हो तो सुबह ही सुबह आप सौंफ चबाइए, इससे बंद गला खुल जाएगा। और लास्ट नुस्खा है कि सवेरे भूखे पेट 3-4 अखरोट की गिरिया निकाल करके कुछ दिन खाइए, इससे घुटनों का दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। सवेरे भूखे पेट 3-4 अखरोट की गिरिया निकाल करके कुछ दिनों तक लगातार आपको खाना है, इससे घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये सारे ही नुस्खे लाजवाब है, आप चाहो तो आजमा सकते हो, और जो भी ये समस्या कही है वो आप ठीक कर सकते हो। और हाँ, ज़्यादा है तो देखिए डॉक्टर को भी बताइए, कम है तो हम खुद ही घर पर करने की कोशिश करते हैं, पर ज़्यादा है तो लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, और अब आज का प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए वो समझाए। कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए और वो समझ जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है, अब आप जवाब देंगे, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस इतना सही कहूंगी कि भाई बेटी को समझाते हैं लेकिन वो समझ जाते हैं, अब वो कौन है जो समझ जाते हैं? जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अभी सुनेंगे गीत, उसके बाद में पुनः लौट करके आ रही हूँ खुशनुमा जीवन में अच्छे विषय पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए वो समझाए। आज का ये प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना है। हमारे नंबर है 94-14-15-14-15। तो आज का प्रश्न बड़ा सुंदर है, आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ, फिर भी आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और आज का विषय है कि इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे हैं, फिर भी कहते कैसे हो आप, तो वो बोलेंगे हम ठीक है। ये आज का विषय है। क्या कहेंगे आप इस विषय पर, आप अपने राय जरूर व्यक्त करिएगा और प्रश्न का जवाब भी जरूर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर विषय है। देखते हैं आप चर्चा में कौन कौन भाग लेते हैं। नंबर हमारे हैं 94-14-15-14-15। प्रश्न भी बड़ा सुंदर है, विषय भी बड़ा सुंदर है कि इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे हैं, फिर भी वो कहते हैं मैं ठीक हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जिसका अपना सब कुछ लुट गया हो, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, फिर भी उनको कहते हैं कि कैसे हैं जी आप, मिलते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं ना, सबसे पहले नमस्कार या राम राम करते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, कैसे हो आप, तो क्या कहते हैं। अगर उदासीन व्यक्ति होगा तो मुंह लटका करके बोलेगा ठीक हूँ। खुश मिजाज व्यक्ति होगा तो क्या कहेगा, हाँ जी बिल्कुल, हम तो ओके है, बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए आप कैसे हो। और ज़्यादा ही उमंग उत्साह वाला होगा तो क्या कहेगा, अरे ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर, हम तो एकदम ओके है, आप सुनाइए आप कैसे हो। तो बोलने का लहजा अलग अलग होता है।

0: सारे देखे, आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग अपनों से ही रूठे रहते हैं, परायों से बड़े खुश रहते हैं। वो कहते हैं कि अपने ही काम आते हैं और अपने ही काम बिगाड़ते हैं, दोनों ही बातें हैं यहाँ पर। हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो आप?
1: बस बिल्कुल अच्छे हैं, और काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी जी जी
1: काम भी चलता है, बात भी चलती, सुनते भी है, क्योंकि हर साथ में काम होता है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: तो सुविधा है रेडियो की कि हम आराम से सब कुछ कर सकते हैं रेडियो सुनते।
0: जी जी जी क्या बात है,
1: तो बहुत अच्छा। दोनों ही आपने प्रश्न भी अच्छा पूछा, विषय भी अच्छा है कि आज आप बताए थे, बिल्कुल सही है कि आज चाहे लोग के पास कुछ ना हो, फिर भी कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। कई लोग हमने देखा है, कई लोग को भी हमने सुना है कि चाहे कितने प्रॉब्लम हो, चाहे कितनी परेशानी हो, पैसा ना हो, पैसे की दिक्कत हो, फिर भी कहते हैं कि हम अच्छे हैं।
0: जी
1: वही तो सही है दीदी, क्योंकि कई बार क्या होता है, पैसा वाला होता है, पैसा बहुत ज्यादा होता है, तो सब अच्छा होता है, फिर भी बोलता है कि ठीक है।
0: जी
1: तो
0: जी जी,
1: ठीक का मतलब तो ठीक ही होता है, लेकिन कहते हैं कि भाई हम बहुत अच्छे हैं।
0: जी
1: तो वही तो एक कहते हैं कि हमारे हम चाहे 600 रोटी खा के बाहर निकले, लेकिन जब हमें ऐसा किया कि चलो हम सब कुछ 32,000 का भोजन खा के बाहर निकले।
0: जी जी,
1: तो ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हम ऐसे कहेंगे चलो भाई हमको ठीक नहीं है, ऐसा नहीं तो कोई कुछ देता तो नहीं है, कुछ कोई देने वाला नहीं है।
0: जी,
1: लेकिन हम हमारे सोच से दूसरे अच्छे हैं तो अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि आज कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है।
0: जी,
1: तो हम भी चाहे कुछ भी हो, देरी आज तक चाहे कितनी दिक्कत आई हो, लेकिन हमने कहा है कि हम बिल्कुल ठीक है, अच्छे हैं।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि अब तो क्या दीदी, पहले तो हमारी परिस्थिति बहुत नाजुक थी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं।
0: जी जी जी,
1: तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं, आज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आगे।
0: क्या बात है, वो कहते हैं हम पॉजिटिव रहते हैं ना, तो पॉजिटिव एनर्जी आती ही है, मिलती ही है, और हम अच्छे हो जाते हैं।
1: ऐसे मोह लटका के बैठे रहेंगे हमारे, तुझको कहेंगे नहीं हमको अच्छा नहीं है यार, अच्छा तो कोई देने वाला तो नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, उल्टा हम ऐसे कहेंगे तो सामने वाला भी उदास हो जाएगा,
1: जो आपके ऊपर हट्टी उड़ाएंगे और आपका फायदा उठाएंगे, ऐसे करके नाम से बहुत बहुत अच्छे। आज हमारे को कितने लोग पूछते हैं, ठीक है, हमारा एक ही जवाब होता है, बहुत अच्छे हैं।
0: जी,
1: बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे ही रहेंगे जब तक हमें हम कह सकते।
0: जी जी जी, बहुत सुंदर। अच्छा, और आज के प्रश्न का जवाब आप ऑफ एयर देंगे?
1: हाँ, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत तो है कि थोड़ा सा सुनने में समझने में दिक्कत है, तो अब थोड़ा सा जरूर बात ऐसा थी कि आपका कहना क्या है, हम नहीं समझ पा रहे हैं।
0: बिल्कुल, हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही अच्छा, सरल प्रश्न है, अगर नहीं आएगा तो हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, बाकी बहुत ही सरल है।
1: लेकिन थोड़ा वो तो सही है, लेकिन थोड़ा सा
0: जरूर
1: हो जाए तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं।
0: हाँ जी हाँ जी, जरूर हम थोड़ा सा हिंट देंगे, ठीक है। जी जी नमस्कार। तो देखिए प्रश्न बड़ा सुंदर है, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए और वो समझ जाए। बहुत ही सरल और सुंदर प्रश्न है, थोड़ा सा सोचिए, आप दिमाग जरूर लड़ाइएगा। हेलो,
2: राम राम दीदी।
0: राम राम जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
2: हम हनुमान जी बोल रहे हैं।
0: हाँ जी हनुमान जी, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
2: बढ़िया है दीदी, एकदम बढ़िया।
0: क्या बात है, हमेशा अच्छे ही रहिए, हम तो यही चाहते हैं। और आज का विषय आपने सुना?
2: विषय वो हाथी वाला, गज और ग्रह वाला
0: नहीं, वो तो हमारा विचार था, जो विचार को एक्सप्लेन किया। आज का विषय है कि इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे हैं, फिर भी वो कहते हैं मैं ठीक हूँ। क्या कहेंगे आप?
2: दीदी वैसे देखा जाए तो इस दुनिया में एक ये चलन सा हो गया है, जो मर्जी जैसे मर्जी बंदा हो उसके ऊपर कितनी भी विपत्ति हो, पर जब एक दूसरे से हाल चाल पूछते तो हर कोई सही ही बताता है, पर वो वास्तव में सही जब होगा तो सही बताते समय भगवान पे ध्यान रखे, उस पर विश्वास करे, और वैसे हर कोई सही ही बताता है। और जब हम सामने वाले को अपना अगर दुख भी सुना देंगे ना तो क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे अच्छा हम अगर दुख सुनाए तो भगवान को सुनाए और लोगों से खुद मिजाज के बीच में रहे, अपनी उसकी प्रॉब्लम को सलूशन ढूंढने में लगे। और क्या
0: क्या बात है, बहुत अच्छा है। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे।

0: क्या?
1: हाँ, उसी लिए तो मैंने फोन किया था।
0: हाँ जी, बता दीजिए।
1: ये जो पर्सन है, ये पर्सन इशारा कर रहा है हमें बहू को समझाने को।
0: अच्छा,
1: तो बेटी को कहेंगे ना तो बहू समझ जाएगी, और डायरेक्ट हम बहू को नहीं कह पाएंगे कुछ।
0: देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत। आप आशियाना सुनते रहिए, ठीक है? हम जवाब जरूर देंगे आपका। और हनुमान जी, आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कौन से गाँव के रहने वाले हैं?
1: हम उत्तर प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से हैं, इधर नेपाल से सटा हुआ है जी।
0: अच्छा, बलरामपुर।
1: हाँ, और ये एप्लीकेशन के माध्यम से सुनते हैं, कई बार हमें दिक्कत भी होती है नेटवर्क से, एप्लीकेशन में टूट जाते हैं, फिर कनेक्ट करते हैं टूट जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सारे दिन पकड़े ही रहता है
0: जी,
1: तो मौसम के हिसाब से होता है जी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, कभी कभी मौसम ऐसा होता है तो वो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है।
1: हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, कई बार तो सही रहता है मौसम, तो सही पकड़े रहता है कई बार, तो वैसे इस समय तो चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बीच में बहुत दिक्कत हुआ करता था
0: जी जी जी,
1: तो हम कई बार सुनते भी नहीं थे, क्या करें जब नहीं पकड़ते तो क्या करें
0: जी जी जी।
1: हाँ,
0: चलिए, आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार आपका, रेडियो से जुड़े आप इसके लिए, और ज़रूर जुड़ते रहिए। हम तो यही कहेंगे हमारे जो नए नए श्रोता बंधु सुन रहे हैं, जो बात नहीं कर पाते हैं वो भी ज़रूर एक बार तो ज़रूर बात करें, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन रेडियो मधुबन सुनते हैं। इसलिए देखिए, गुप्त मत रहिए, गुप्त रहने से कोई पहचान नहीं पाएंगे, आप सामने आइएगा। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई देख रहे हैं, आपकी आवाज़ पहुंच रही है ना, तो अच्छा है, हमें भी अच्छा लगेगा कि कौन कौन रेडियो मधुबन सुनते हैं। और आज का प्रश्न और विषय दोनों ही अच्छा है। प्रश्न है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए और वो समझ जाए, तो जवाब जरूर दीजिएगा। नंबर हमारे है रेडियो मधुबन के 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए यहाँ पर एक गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट करके आ रही हूँ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए और वो समझ जाए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब जरूर दीजिएगा। नंबर हमारे है 94-14-15-14-15। और आज का विषय भी बड़ा सुंदर है कि कोई भी विकट परिस्थिति में घिरे हुए हो, चाहे सभी साथ छोड़ दे, लेकिन कोई पूछे कि कैसे हो आप, तो क्या कहेंगे हम? ठीक है, अब वो सभी के बस में नहीं है ऐसा कहना। हर कोई नहीं कह सकता विपरीत परिस्थितियों में कि हम ठीक है। कोई कोई तो क्या कहते हैं कि अरे अरे बात मत पूछो भाई, अभी हमारे बात करने का मूड नहीं है, हम कैसे, हम ही जानते हैं, हमको हमारे हाल पर छोड़ दो। अब ये कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आती है तो वो इतने निराश, इतने हताश, इतने उदास हो जाते हैं कि वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं और अंदर अंदर घुटते जाते हैं, घुटते जाते हैं। परिवार में अगर बच्चा कुछ कहता है तो उस पर भन्नाएंगे, ऐसे चिल्ला कर बात करेंगे। पत्नी कुछ कहती है तो उसको भी डांट देंगे। परिवार के अन्य सदस्य भी बात करना चाहते हैं तो उनको भी ऐसे खराब मूड से बात करेंगे, चिड़चिड़ेपन से बात करेंगे। तो इससे तो कोई समस्या का समाधान निकलने वाला नहीं है भाई। समस्या किसके जीवन में नहीं आती है, हर कोई। अगर मैं अभी पूछूं कि अच्छा किस किस के जीवन में समस्याएं आई, तो हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु जुड़ जाएंगे कि हाँ बहन जी हमारे जीवन में आई थी। सभी के जीवन में आती है ना, और समस्या आती है तो अच्छा है कि हमें उस समय पता चलता है कि कौन अपने कौन पर आए। दूसरी बात यह है कि हमें इस परिस्थिति में कैसे हम अपने आप को स्टेबल बना करके रख सकते हैं वो भी पता चलता है। फिर तीसरी बात यह है कि हम दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और चौथी बात यह कि दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि परिस्थितियां आती है ना तो अपने ही दामन छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो अपने ही साथ छोड़ेंगे, अपने भाई, अपने काका, चाचा, मामा, जो भी है कुटुंब के, वो साथ छोड़ेंगे कि अरे ये तो दिवालिया हो गया, ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, अभी बात करेंगे तो पैसा मांगेगा या कुछ मदद मांगेगा। तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ते हैं, और अपने साथ छोड़ देते हैं तो फिर इंसान को ऐसा लगता है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। फिर कोई कोई व्यक्ति तो गलत काम भी कर लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। कोरोना काल में आपने सुना होगा, कोरोना इतना भयंकर रूप से पहला कोरोना आया था, तब बहुत समय तक रहा और बहुत समय तक ये बाज़ार बंद रहे, दुकानें सब बंद रही। उसके बाद व्यापारी बहुत जनों के व्यापार ठप हो गया, किसी के देना हो गया और बहुत कुछ हो गया। तो बहुत लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि उस समय उन लोगों ने सुसाइड कर ली। तो ये कोई समस्या का समाधान नहीं है कि हम अपने आप को ख़त्म कर देवे। अरे जिएंगे तो समस्याओं से लड़ेंगे, मरने के बाद क्या सुखी रह पाएंगे? मरने के बाद की बात अलग है, लेकिन कहते हैं ना कि जो हम करते हैं वैसा हमें भरना पड़ता है। मरने के बाद भी कहीं हम जाने वाले नहीं, फिर से जन्म लेकर इसी दुनिया में आने वाले हैं, तो फिर और ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज समेत भुगतना पड़ेगा। अभी तो क्या है कि ठीक है जो समस्या आई है उसका ही सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम उससे छूटने की कोशिश करेंगे तो समस्याएं ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा जटिल हो जाएगी। इसलिए जो भी समस्याएं आती है, लेकिन कोई भी पूछे, कोई भी मिले, कैसे हो आप, तो जी हम ठीक है, तो कोई भी आपसे बात करने की इच्छा करेगा और उदास होकर के ठीक हूँ, कैसा वो हूँ, आपको क्या लेना देना। बहुत जने ऐसे होते हैं जो ऐसे फटकारते हैं सामने कि हम कैसे भी हैं, आपको क्या लेना देना। अरे भाई लेना देना तो किसी को नहीं है, लेकिन जब परिस्थितियाँ आती हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हर कोई हमको टोंट से बात करता है, जबकि सामने वाला स्वाभाविक रीत से पूछता है कि कैसे हो भाई साहब या कैसे हो बहन जी। लेकिन परिस्थिति में घिरे रहने के बाद वो कहते हैं ना कि हमारी बुद्धि भी काम करना बंद हो जाती, ऐसा लगता है कि अरे इन्होंने टोंट पास किया कैसे है, क्योंकि हम दुखी है ना तो इनको भी मजा आ रहा है, जबकि उनको पता ही नहीं कि हम कैसे हैं या हमारे अंदर से दुखी है या नहीं है, तो हमें क्यों बताना, बिल्कुल अच्छे हैं। अगर आप हंस करके अच्छे मूड से बोलेंगे हाँ जी हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, तो सामने वाला अगर थोड़ा सा उदासीन होगा ना तो वो भी खुश हो जाएगा कि देखो जब भी इनसे बात करते हैं बड़े मुस्कुराहट के साथ आते हैं कि हाँ जी हम अच्छे हैं। और ऐसे लोगों के साथ लोग बात करना पसंद करते हैं, अपनी समस्याएं व्यक्त करते हैं कि देखो आज मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि पता है कि इतने एनर्जी के साथ कहा है कि मैं हाँ जी हम खुश हैं, तो एक दिन नहीं जब रोज इसी तरह कहते हैं तो लोग यही सोचते हैं कि अपने कुछ अंदर की बातें हैं जिनके साथ शेयर कर सकते हैं, ये हमेशा खुश मिजाज रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ दुख सुख की बातें भी करते हैं और उसका समाधान भी मिलता है, भले हम अंदर से दुखी हैं वो हम जानते हैं और ईश्वर जानता है, लेकिन हमें अच्छी सलाह देनी है लोगों को, उनको यह नहीं जताना है कि हम अंदर से टूट चुके हैं या दुखी है। अरे भाई इधर उधर भटकने के बजाय हम एक ही लगन से कार्य करें, एकाग्रता से कार्य करें और एक ईश्वर के याद में कार्य करें कि हे भगवान जो भी हुआ है ये सब शायद पहले से ही लिखा हुआ था, हो गया, लेकिन मैं अच्छा करने का प्रयत्न करूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा। हम ईश्वर को याद करें, देहधारियों को क्यों याद करें, क्यों हम अपने रिश्तेदारों से मदद मांगे। वो सही है कि देखिए रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि हम भी कभी उनके काम आए होते हैं तो अपेक्षाएं रहती है कि हमारे भी वो काम आए, लेकिन ये भूल जाइएगा कि हमने मदद की तो वो भी करेगा हमारी, ये बिल्कुल आप भूल जाइएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाइएगा कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है। करने वाले होंगे वो सामने आकर के कहेंगे कोई तकलीफ तो नहीं है, अगर तकलीफ हो तो ज़रूर बताना, हम तैयार हैं आपके लिए। करने वाले होंगे वो सामने कहेंगे, नहीं करने वाले आपसे 10 फुट दूर हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि ये। और सबसे पहले पता किससे चलता है, किसको चलता है, जब समस्या आती है तो अपनों को ही पता चलता है कि अब इसके ऊपर ये विपत्तियां आई है, भाई खिसक लो साइड में हो जाओ, और फिर आपसे अच्छी तरह बात नहीं करेंगे। आप बोलेंगे बात करने जाएंगे तो कहेंगे अरे समय नहीं है अभी, वहाँ जाना ही वहाँ जाना, ऐसे अपने आप को व्यस्त बताएंगे कि जैसे कि वो बहुत ही राजा भोज हो, बहुत ही व्यस्त रहने वाले हो, जबकि भले उनके पास समय ही समय है लेकिन वो आपको समय नहीं देंगे, ऐसा जताएंगे कि हमें बहुत सारा काम है, जानते हैं कि अगर उसको समय दिया तो वो कुछ मांग लेगा, इसलिए पहले से किनारा कर लेते हैं। और ये मैंने तो अच्छी तरह देखा है, बहुत जनों की कहानियां मैंने अपने आंखों से देखी है, वो सारे रिश्तेदारों की आज भी फ़ोन कॉल्स आते हैं तो कहते हैं कि बहन जी जब ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे मीठे मीठे बोलते हैं अपने ही देवर जेठ, इतने मीठे मीठे बोलेंगे और अरे भाई तुम ये कर लो वो कर लो, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा किनारा करते हैं कि बात करना भी बंद कर देते हैं। मतलब कैसे इस नेचर को बना सकते हैं कि आप घर के समय तो गधे को भी बाप बना लेते हो और फिर आप दूर हट जाते हो जब आपका स्वार्थ पूरा हो जाता है, तो फिर आपके तकलीफ आई तो आप आ जाते हो और फिर आप दूर हट जाते हो, लेकिन कोई कोई लोग क्या है ऐसे मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसे मतलब रहते हैं कि जैसे सामने वाला यही समझता है कि नहीं ये तो हमारे है, भले उनके साथ बार बार छल कपट करते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि फिर से आएंगे और इतने प्यार से चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे कि बंदा फंस ही जाएगा, अरे नहीं नहीं मेरा भाई है ना, अरे नहीं नहीं मेरा रिश्तेदार है, ऐसा नहीं हो सकता है। हेलो
3: हेलो, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, नमस्कार।
2: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत आपका कंचन भाई, कैसे हो आप?
3: बस बहन जी, सस्ता अनाज की दुकान में आज जो मिलता है तो चोखा तो लेने के लिए आए हैं।
2: जी जी जी, बहुत अच्छी बात है।
3: जेब में है, सुनता हूँ घड़ी मोबाइल।
2: जी जी,
3: बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं आप, हम भी सुन रहे थे।
2: जी
3: तो हाँ, जीवन में सही बात है बहन जी, हमने किसी का काम किया है तो वो भूलेगा नहीं, वो तो सही बात, जरूर हमारा काम मदद में आएगा।
2: हमने
3: भी कई अनुभव किए हैं जीवन, तो हमें ये करना चाहिए। तो आज का सवाल क्या,
2: आज का सवाल है कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए वो समझ जाए।
3: बिल्कुल सही बात है, इसमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा। और ये क्या है आज का
2: जी, आज का विषय अब पूरा हो गया, समय समाप्त हो गया।
3: और
2: आप बहुत लेट जुड़े।
3: हाँ जी, थोड़ा बाइक पे था तो।
2: अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप प्रश्न सोच करके जवाब जरूर दीजिएगा, फिर से आप फोन कॉल्स कर सकते हो, ठीक है
3: जी, जी
2: जी, बहुत बहुत आभार आपका। और अब प्यारे श्रोता बंधु, आप समझ गए होंगे कि कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें अपना रोना किसी के सामने नहीं रोना है, अपने दुख को किसी के सामने जताना नहीं है, अंदर अंदर उसको समझ करके परिवार के साथ, अपने ही परिवार, बीवी बच्चे जो भी है उनके साथ मिल करके, अपने बातचीत करके फिर कैसे आगे बढ़ा जाए और उस समस्या से कैसे सुलझा जाए, ठीक है। बाकी कोई भी आपको कहे कैसे हो तो एकदम ठीक है, हम बहुत ही एनर्जी के साथ कहिए ताकि सामने वाला भी फुल एनर्जी में आ जाए, ठीक है। इससे क्या है कि सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है, दुआएं मिलती है, यही खुशनुमा जीवन का राज है। और आइए बढ़ते हैं एक गीत की ओर, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का. तो भाई हम जरूर नए व्यंजन सिखाएंगे जिसमें आपको बता चुके हैं कि मठिया पे गुजराती रेसिपी आपको सिखा रहे हैं क्योंकि अभी दीपावली के दिनों में आप देखेंगे कि घर घर में सुवारी मठिया चोराफली घोघरा ये तो लगभग आपको खाने को मिलेंगे ही. घर घर में बनाए जाते हैं और सुवारी मठिया चोराफली ये घोघरा ऐसी चीज़ है कि आप 15-20 दिन तक रखो ना बना करके इकट्ठा तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा. आराम से फिर आप नाश्ता कर सकते हो भाई क्योंकि त्यौहार वार पर हम एक दूसरे के घर पर जाते हैं क्योंकि नए दिन कहलाते हैं ना. दीपावली के बाद के सारे दिन कहते हैं भाई नया दिन है. अब नए दिन में सब एक दूसरे से मिलते हैं तो स्वाभाविक है भोजन बनाने में लेट हो जाते हैं. तो इस तरह आप घर पर नाश्ता कर सकते हो. ये चीज़ें बना करके रखोगे तो आप आराम से खा सकोगे ताकि इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी भोजन की. कभी कभी त्यौहार वार पर वो कहते हैं ना कि इन चीज़ों से काम चलाना पड़ता है. हमारे घर इतने मेहमान आते हैं कि उनको सभी को यही नाश्ता वगैरह रखना पड़ता है और हमको समय भी देना पड़ता है तो भोजन हम नहीं बना पाते नहीं खा पाते. ऐसी परिस्थितियां बहुत जनों के सामने क्रिएट होती है. इसलिए कोई टेंशन नहीं, इन चीज़ों से भी पेट भर जाता है और कभी कभार खाने में कोई तकलीफ भी नहीं. तो मठिया की सामग्री आप सभी को लिखवा रही हूँ कि आप ले लीजिए मटकी दाल. मटकी दाल लीजिएगा आप. अगर 1 किलो ले रहे हैं तो आप लीजिए 700 ग्राम मटकी दाल, ठीक है. और इसमें 300 ग्राम उड़द की दाल लीजिएगा और आटा बनवा दीजिए इसका, ठीक है. पिसवा करके आटा तैयार कर लीजिए और छान दीजिए आटे को. और अब सामग्री में लेना है आपको एक तो नमक, खाने वाला मीठा सोडा, अजवाइन, तीखी वाली हरी मिर्च और हींग. हींग तो आपको विशेष लेनी ही है, ठीक है. और शक्कर, ठीक है. यही सामग्री है. फिर से दोहरा रही हूँ, मटका आटा मतलब मटकी दाल का आटा, उड़द की दाल का आटा. इसमें आप मोगर ले सकते हो. बस दोनों ही दाल को धुलाई करके सूखा दीजिए, सूखा करके आप पिसवा लीजिए, ठीक है. तो ये आटा और फिर नमक, खाने का सोडा, मिर्ची हरी मिर्च तीखी वाली. अगर आप सफ़ेद मिर्च लेना चाहो तो सफ़ेद मिर्च भी ले सकते हो स्वाद के अनुसार, ठीक है. और बाकी हरी मिर्च ले सकते हो. और फिर लेना है शक्कर, स्वाद के अनुसार शक्कर भी लेनी है, ठीक है. और फिर आप ले लीजिए अजवाइन थोड़ी सी और थोड़ी सी हींग. तो ये हो गई सामग्री. तेल तो लेना ही है तलने के लिए. बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि आप ऐसा करेंगे कि इसमें भी देखिए बनाने की अलग अलग विधि है. कोई किस तरह से बनाते हैं, कोई किस तरह से, कोई क्या करते हैं कच्चे मसाले ही इसमें डाल देते हैं. जैसे हरी मिर्च की अच्छी पेस्ट करके डाल देते हैं. हरी मिर्च नहीं डालते तो सफ़ेद मिर्च का पाउडर आता है वो मठे में डाल देते हैं. नमक डाल देते हैं, दोनों आटों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है. उड़द की दाल का और मठ की दाल का आटा छान करके मिक्स करके इसमें सारे ही मसाले कच्चे ही डाल देते हैं. और फिर हींग भी ऐसे डाल करके फिर 9 सेके पानी से इसको बांध लेते हैं फिट. बांधने के बाद इसको अच्छी तरह कूटते पीटते हैं, शक्कर वगैरह सब डाल देते हैं, ठीक है. तो इसका क्या है कि एक तो कूटने की मेहनत है और एक इसको तुंबने की मेहनत है. तुंबने के बोले तो दोनों हाथों में जब ये अच्छी तरह कूट करके मिक्स कर दो आप, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइट चाहिए, ठीक है, आटा जो हम गूंद रहे हैं वो. फिर उसको मूसल से कूटो या फिर बहुत जने गुजरात में क्या करते हैं कि प्लास्टिक का कट्टा ले लेते हैं और प्लास्टिक के कट्टे के थोड़ा सा तेल लगा करके इस आटे को मतलब थोड़ा सा इसको पानी डाल करके गूंद दिया है, फिर उस कट्टे में रख करके कट्टे को फोल्ड करते हैं. फिर माताएं बहनें क्या करती, पैरों से उसको कुचलती है क्योंकि आटे के डायरेक्ट पैर नहीं लग रहे हैं, वो प्लास्टिक के कट्टे के बीच में है और ऊपर कट्टा आ गया है. फिर ऊपर माताएं बहनें पैरों से कुचलती है क्योंकि अब हाथ से तो इतनी मेहनत नहीं होती ना, हाथ ही दर्द करने लग जाते हैं. तो इस तरह किल्ला किल्ला दो दो किल्ला का आटा होता है तो पैर से अच्छी तरह तुम करके मतलब अच्छी तरह उसको कुचल करके फिर उस कट्टे को ऊपर का भाग हटा करके उसको लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा तोड़ करके फिर दोनों हाथों से उसको खींचते हैं। इससे क्या है, जितना तुंबते हैं ना उतने ही मठिया सॉफ्ट बनते हैं। तो बहुत इसको खींचना पड़ता है, और खींचने के बाद फिर लास्ट में लुए बनाते हैं, लंबी सी बेल, जैसे पापड़ की बेल कैसे बनाते हैं ऐसी लंबी सी गोल गोल करके एक बेलन की तरह इसकी बेल बनाई जाती है। फिर अंगूठे में धागे को फंसा करके एक हाथ से उसके लुए काटे जाते हैं और फिर उसको बेल करके तले जाते हैं। पापड़ तो यह है कि बस सुखा करके हम भर देते हैं डिब्बे में, जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। मठिया क्या है, आजकल तो वैसे मठिया रेडीमेड भी मिलने लगे हैं, पहले नहीं मिलते थे, पहले हाथों से ही बनाते थे। तो बनाने के बाद बस सारा बेल करके इकट्ठा, पहले वाले सूखते जाते थे थोड़ा थोड़ा, तो उनको इकट्ठा करते जाते थे, दूसरे बेलते जाते थे, क्योंकि ज़्यादा सूख जाएगा तो भी मज़ा नहीं आएगा, वो फूलेंगे नहीं, सॉफ्ट नहीं बनेंगे, है ना, तो उसको टूट जाएंगे मतलब। तो ज़्यादा नहीं सुखाना है, इस तरह झेट बना करके फिर इनको तलना है। और आजकल तो ऐसा है कि मठिया आप बना करके जब इच्छा हो तब तल सकते हो, कि ताज़ा ताज़ा तल के खाना है तो इकट्ठी थप्पी करके एक अच्छे से एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दीजिए, और जब मूड हो, जब इच्छा हो तब आप तलिए। ऐसा हो गया, पहले नहीं रखे जाते थे, पहले तो आटा रात को रात नहीं रखते थे, कोई भी प्रकार का गूंदा हुआ आटा रात नहीं रखते थे। अब आज समय के साथ परिवर्तन हुआ है तो रात भी रखते हैं और जब चाहे तब बनाते हैं, लुए बना करके भी रख देते हैं, दूसरे दिन भी बेलते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो ठीक है, ये मठिया की आपको विधि सिखाई है, ज़रूर आप बना करके खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट है। और ये मठिया की दूसरी विधि भी आपको मैं सिखाने वाली हूँ, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ठीक है, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: Hello, I'm Alexander, diplomat from Russia, and you are listening to FM Radio Madubar. Keep listening and keep smiling. You can also tune radiomaduban.in on internet, even Russia, even everywhere.
1: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे मठिया, और मठिया की दूसरी विधि अब फिर से आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि मठिया अच्छी तरह बना लीजिए, सुवारी अच्छी तरह बना लीजिए, कुछ एक दो रेसिपी और भी सिखाएंगे दीपावली से पहले, वो अच्छी तरह बन जाए ना तो बस और क्या चाहिए, फिर तो आप दूसरी चीज़ें बना सको ना बना सको तो भी आपके गुणगान हो ही जाएंगे कि अरे वाह क्या आपने स्वादिष्ट बनाया। अभी तो देखिए समय के साथ इतना चेंज आ रहा है कि मठिया रेडीमेड लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि माताओं बहनों को इतना समय नहीं होता है, अक्सर कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, और दीपावली के दिन ऐसे होते हैं कमाने के दिन होते हैं, इस समय ज़्यादा बिजनेस चलता है और जॉब वाले भी छुट्टी नहीं देते हैं कि नहीं नहीं भाई अभी तो आपको आना ही है, दीपावली के एक आध दिन पहले भले छुट्टी देंगे लेकिन ये सारी चीज़ें एकदम तो नहीं बना सकते ना, दीपावली के दिन या एक दिन पहले तो नहीं बना सकते हैं भाई, धनतेरस के बाद तो ये सब कुछ बनाना बंद कर देते हैं, फिर तो त्यौहार की खुशियां मनाते हैं ना, दीपक जलाए जाते हैं और घर की सजावट में ही हम लग जाते हैं, पहले हाँ थोड़े से घर की साफ सफाई पहले शुरू होती है, कुछ खाना बनाना ये सब ग्यारस से शुरू हो जाता है एकादशी से, ताकि क्या है कि एकादशी से पहले भी बनाते हैं, जैसे कि सातम आठम से ये करवा चौथ चली गई ना, करवा चौथ के बाद माताएं बहनें सफाई अच्छी तरह पहले से कर लेती है, उसके बाद ये खाना खजाना ही बनाती है, क्योंकि जिनको शौक है वो तो अपने हाथ से ही बनाते हैं और हाथ से बनाते हैं उसमें समय लगता है, तो फिर वो शुरू कर देती है करवा चौथ के बाद, ताकि दीपावली पर कुछ करना ना पड़े, आराम से सब्जी रोटी बनाई और ये सारी मिठाइयाँ पहले से ही तैयार है, नमकीन आइटम पहले से तैयार है, तो सब्जी और पूरी बना देते हैं, बाकी ये मिठाइयाँ वगैरह रख देते हैं और रिलैक्स रहते हैं, ताकि हल्के रहते हैं कि कहीं जाना हो, घर पर कोई आवे, देव दर्शन मंदिर जाए तो भी सरल रहता है, तो इसलिए मैं आपको अब मठिया सिखा रही हूँ, ताकि आप बना करके आराम से रख दीजिए, 20-25 दिन कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। महीने भर के बाद थोड़ा सा तेल चढ़ना शुरू हो जाता है, बाकी कच्चा पक्का महीना आप निकाल सकते हो ऐसी चीज़ें बना कर रखने से, ठीक है, हाथ से बनाते हैं तो क्योंकि जैसे कि आपको बताया कि मठिया बना करके रख दो, जब चाहो तब तल सकते हो, तलने में कोई समय नहीं लगता, चीज़ बनी हुई तैयार है तो तलने में समय नहीं लगता, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी विधि बता रही हूँ, आप क्या करेंगे, देखिए भोजन क्या करते हैं, नमक को सेकते हैं और नमक को सेक करके दूसरे मसाले कच्चे डालते हैं और फिर सिका हुआ नमक डालते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी विधि बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा पानी लीजिए, ठीक है, हरी मिर्च की पेस्ट भी आप तैयार कर लीजिए और उस पानी में आप शक्कर, नमक, पापड़ खारा, हरी मिर्च ये डाल करके थोड़ा सा गर्म करिए, ठीक है। अजवाइन भी इसमें डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, हींग मत डालना, ठीक है, अजवाइन भी इसमें डाल दो और इसको अच्छी तरह गर्म कर दो, गर्म करने के बाद इस पानी को छान दो, ठीक है, छानने के बाद थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, हाँ आप इसमें थोड़ा सा घी डाल दो, गर्म गर्म में थोड़ा सा घी डाल दो, एक किलो है तो एक छोटा चम्मच घी डाल दो, ठीक है, और जब ये पानी गर्म हो जाए तो इसको छान दो, छान करके जब ये ठंडा हो जाए तो नवसेका रहे तो भी चलेगा, फिर आप मठिये के लोट को इसी तरह बांध दो, ठीक है, पानी आवश्यकता के अनुसार ही लेना है, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि भाई उसमें सारे मसाले पड़े हुए हैं, ज़्यादा पानी डाल दिया तो मठिया का टेस्ट बिगड़ गया और वो पानी आपका वेस्ट चला गया, ऐसा नहीं करना है। ऊपर से आप पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन मसाला वाला पानी ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे आप, वो तो काम नहीं आएगा ना, फिर मठिया का टेस्ट बिगड़ेगा, इसलिए आप आवश्यकता के अनुसार थोड़ा सा ही पानी लो, ज़रूरत पड़े तो ऊपर नवसे का पानी करके आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इस पानी को छान करके इससे आप बांध दीजिए, तिखास मिठास जैसा आप पसंद करें वैसा डालिएगा और अच्छी तरह इसको, वही प्रोसेस है फिर उसके बाद कि पानी से इसको अच्छी तरह मिक्स कर दो, सारे आटे को सूखा नहीं रहना चाहिए, फिट भी होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए, अगर आप प्लास्टिक के कट्टे में रख करके पैरों से कुचलना नहीं चाहते हैं तो फिर आप लोखन वाला हमाम दस्ता का मूसला लीजिए, ठीक है, और पत्थर होना चाहिए, टाइल्स पर मत आप पीटिएगा नहीं तो टाइल्स टूट जाती है, मजबूत पत्थर हो वहाँ पर आप एकदम तेल लगा करके, मतलब पहले तो उसको पोछा लगाइए अच्छी तरह, फिर वहाँ पर पोछा लगाने के बाद सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लीजिए, फिर तेल लगा दीजिए और फिर मठिया के लोट को वहाँ डाल करके अच्छी तरह आप उसको कूटिए, ठीक है, जितना हो सके आप में दम है उतना आप कूटिए, और कूट पीट करके ऐसा उसको बना देना है कि एकदम वो खींचो ना तो वो टूटे नहीं, एकदम खींचा जाए रबड़ की तरह खींच जाए, ऐसा सॉफ्ट आपको बना देना है। इतनी देर आपको इसमें क्या है, मेहनत ही कूटने पीटने की है भाई। मठिया ऐसे ही नहीं बनता है, सुवारी मठिया चोराफली ऐसे ही नहीं बनते, इसमें बहुत मेहनत लगती है। फिर हाँ, तलने में कोई मेहनत नहीं है, तो बस इस तरह आपको अच्छी तरह कूटने में तुमने में मेहनत लगती है, तो कूट लिया आपने अच्छी तरह, फिर उसके बाद छोटे छोटे लोहे बना करके उसको अच्छी तरह तुंबिए, जितना हो सके आप खींचिए, फिर लोहे को मिक्स करिए, फिर खींचिए, फिर लोहे को मिक्स करिए, लास्ट में जब आपको लगे कि बहुत अच्छी लोच आ रही है, आप खींचने से भी आटा टूट नहीं रहा है, वो खींचा जा रहा है रबड़ की तरह, वो खींचा जा रहा है, तो फिर आप उसको अच्छी तरह गोल गोल करके फिर इसका बेलन की तरह वही बेल बना दीजिए, और वही धागे से अंगूठे में धागे को पलटिए, फिर एक हाथ में उस धागे को पकड़ करके एक हाथ में उस बेल को लीजिए, और ऐसे जो भी साइज आप पसंद करते हो गोल गोल काट लीजिए। काटने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा आपको रखना है, ठीक है, थोड़े से आटे में तेल डालना है, ठीक है, और तेल डाल करके फिर ये जो लुए तैयार हो गए हैं ना, इनको उस आटे वाले तेल वाले आटे में इनको पलटना है। जैसे हम चपाती बनाते हैं तो बीच बीच में आटा लगाते जाते हैं ना, इसमें बीच बीच में आटा नहीं लगाना है, तेल आटा मिक्स करके इसमें अच्छी तरह इन सारे लुए को आपको ऐसे तरह हिलाना है कि सभी के वो तेल वाला आटा लग जाए, फिर आपको क्या बनाते समय कुछ भी लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बेलते समय। तो ये लुए आप रख दीजिए और जब चाहो तब आप बेलिए, जो साइज आप पसंद करना चाहते हो उस साइज के ही लुए काटिए, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, और उसके बाद फिर आप बेल करके फिर आप तलिए। तलने का भी बड़ा ध्यान रखना है, एकदम लाल नहीं होना चाहिए, आप एक बार तेल को गर्म कर दीजिए, फिर उसको मध्यम आंच पर कर दीजिए, ज़रूरत पड़े तो बीच में स्लो कर दीजिए, फिर ज़रूरत पड़े तो गैस को तेज कर दीजिए, तलने की भी कला होती है, ठीक है। और फिर आप डालिए और चिमटे से ही निकालना है, ठीक है। हींग आपको बताई ना कि हींग हमको गर्म पानी में नहीं डालना है, फिर वो लोट बांधते समय ही उसमें हींग का पाउडर डाल देना है, हींग से अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। अजवाइन तो आपने डाल ही दिया है, तो फिर इस तरह तलिए, हल्का हल्का सा रेड होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे आप तलेंगे ना तो उसके वो फूलेंगे, एक वो क्या कहते हैं, बूंदी की तरह फूलेंगे, फूले हुए मठे ही अच्छे लगते हैं, बैठे हुए तो फिर पापड़ हो जाएंगे, पापड़ की तरह हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, फूलने चाहिए बीच बीच में से, ठीक है, टिपके टिपके फुली हुई होनी चाहिए, तो सही मायने में प्रॉपर मठिया उसे ही कहते हैं। फिर अब आप तल करके डिब्बा भर दो, और उसके बाद जब चाहो तब खा सकते हो, तो चलिए जब चाहे तब क्यों, अभी ही भोग लगा देते हैं। तो लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप सुवारी रखिए, मठिया रखिए, सब्जी चपाती जो भी बनाई है रखिए, और तुलसी पत्र जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा मठिया का, साथ ही साथ एक गीत का। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं, बहुत ही सुंदर आपको विचार दिया है, जरूर उस पर गौर करिएगा और नुस्खे भी बड़े अच्छे हैं, जरूर आप आजमा सकते हो। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत अच्छी हुई है कि कोई भी हमें कहे कैसे हो तो बड़े खुशी से एनर्जी के साथ बोलना है, हम ठीक है, हम अच्छे हैं, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बड़ा सुंदर था, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए वो समझ जाए। तो कौन समझ जाए भाई? हमारे भाई जो हनुमान जी है उत्तर प्रदेश बलरामपुर से, इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि भाई आजकल क्या है, बहुओं को डायरेक्ट नहीं कह सकते हो आप, बेटी को सुनाएंगे तो बहुत समझ जाएगी। पहले के समय में लोग क्या करते थे कि कोई भी बात होती, पहले क्या है कि जल्दी शादियां हो जाती थी, बहुएं भी बेचारी कम उम्र की आती थी तो वो समझ नहीं पाती थी। तो माँ अक्सर माता पिता घर में तो पहले संयुक्त परिवार होते थे, तो माताएं ऐसे मिल करके अपनी बेटियों को समझाते थे, देखो बेटा तुम ससुराल में जाओ तो ऐसे रहना, ऐसे करना, वैसे करना। अब बहू भी सुन रही है सब, तो फिर बहू भी फॉलो करती है कि अरे मुझे ऐसे रहना है, मुझे वैसे चलना है। तो और आज का समय भी ऐसा है, पहले तो फिर भी बहुओं को आप दो बात सुना देते थे, लेकिन आज सुना के देखो, दो सुनाओगे तो दस सुनने को नहीं मिले तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। सभी के लिए नहीं कह रही हूँ लेकिन अक्सर, ठीक है। तो आज भी माताएं बहनें यही करती है कि अगर घर में बहू भी है बेटी भी है, बहू कहना नहीं मानती या फिर कहना मानती है लेकिन डायरेक्ट तो उनको शिक्षा नहीं दे सकते ना, तो बेटियों को ही समझाती है। कुछ भी बात होती है तो बेटियों को ही डांटती है ताकि बहू सुने और वो भी समझे। तो हनुमान जी ने सबसे पहले जवाब दिया, उसके बाद तो खैर सभी ने दिया है, सुरेश भाई चोटाना से और कंचन भाई मंडाली से, आप सभी का जवाब सही है। सुरेश भाई ने कहा है कि बेटी को समझाएंगे तो बेटा समझ जाएगा, मतलब सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। तो देखो बेटा और बेटी तो माता पिता का अधिकार है, वो बच्चों को डायरेक्ट ही डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन बहू को डायरेक्ट नहीं कह सकते, एक मर्यादा रहती है। और कहीं बहू को बुरा ना लग जाए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए बहू को कोई डायरेक्ट नहीं कहते, मतलब कह सकते हैं। तो सबसे पहले तालियां बजेगी हनुमान जी के लिए जिन्होंने सही जवाब दिया सबसे पहले, और उसके बाद सुरेश भाई चौटाना से, कंचन भाई मंडाली से, आपने भी सही जवाब दिया, इसके लिए तालियां। और बाकी सभी ने कोशिश अच्छी की, सुरेश भाई ने भी बहुत अच्छी कोशिश की है। और अब आज का सुविचार आपको सुना रही हूँ कि फूल है जीवन तो सुगंध है दोस्ती, तन है मंदिर तो आत्मा है दोस्ती। अब मैं आपको एक प्यारा सा हनुमान जी पर भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। ये भजन इस तरह का है कि जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ के द्वारा जब बाण लगता है और वो अचेत हो जाते हैं, तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। अब जाते हैं लेकिन आने में विलम्ब होता है, तो इधर सभी घबरा जाते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर भजन है, सुनेंगे।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाशमणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए।

0: किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार बनती है। साथियों, महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि बेटे की चाहत में गर्भपात करवा देते हैं, बेटी के स्कूल जाते वक्त लड़के ने सीटी बजाई तो लड़की का स्कूल छूट गया, तुम पराए घर से आई हो तो जायदाद में तुम्हारा नाम नहीं आ सकता, थोड़ी पढ़ाई क्या कर ली, घूंघट निकालना ही छोड़ दिया। तो इस तरह बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है। आज के इस नाटक के द्वारा हम जानेंगे कि महिलाएं किन किन कारणों से हिंसा का शिकार बनती है।
1: आज आपको ले चलते हैं राजस्थान सिरोही जिले के एक ऐसे गांव में जहां रहता है जगदीश। जगदीश के परिवार में उनकी माँ रमा, पिता सीताराम के साथ कुल 10 सदस्य रहते हैं। जगदीश अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा है और उसका विवाह पड़ोस के जिले की पुष्पा से हुआ है। बहू पुष्पा पहली बार गर्भवती हुई है और उसका 9वां महीना चल रहा है। पुष्पा की माँ बीमार होने के कारण पुष्पा को डिलीवरी के लिए पियर लेकर नहीं जा पाती है। इस वजह से सास रमा बहू को ताने कसती है और साथ साथ बार बार पुष्पा को पोता चाहिए कहकर परेशान करती रहती है। चलिए चलते हैं पुष्पा के घर और देखते हैं अभी वहाँ क्या चल रहा है।
2: बीनणी, ए बीनणी, कटे परी की मारा पगणा दुख है, थोड़ा दबा तो।
3: माँ जी, मने घना चक्कर आ रहा है माँ जी, मारी तबियत ठीक कोनी, सुबह 4 बजा की उठोड़ी हूँ, रात की 10 बजा तक काम कर रही हूँ, अबे मारी ताकत कोनी, मैं सोवा जा रही हूँ।
2: चक्कर आ रहा तो काई करूँ मैं, आनी दुनिया में तू ही एकली महिला कोनी जो माँ बनवा जा रही। अरे मैं तो 60 टाबरा ने जन्म दी दो पर घर रो सारो काम करती, समझी।
3: माँ जी, आपको समय अलग हो।
2: सामने बोल रही थू, ए जग्या थारी लुगाई ने समझा दे, गणिया में बोले।
4: थारी ही हिम्मत क्या न हुई मारी माँ के सामने बोलवा की।
3: थाने खबर है मैं गर्भवती हूँ, पूरा टाइम चल रो, फिर भी तुम्हारा मैं हाथ उठा ही रहा हूँ।
4: देख पुष्पा, तू मने मारवा पे मजबूर मत करया कर, घर का काम तो थाने ही करना पड़ी।
3: थाने खबर है कि मारो पूरा टाइम चल रो, मारो सु काम कोनी हो रहो, क्या समझाऊं थाने, आ आ मारो पेट दुख रहो। आ
4: पुष्पा, पुष्पा कई होयो थारे, माँ माँ जल्दी आ, थारी बिंदड़ी ने कई होयो।
2: अरे कई नहीं होयो, जा दाई माँ ने बुला ला, बालक ने जन्म दिवारी पीड़ा है। बिंदड़ी सुन, मारे तो पोतो ही चाहिए।
5: बधाई हो काकी सा, जलेबी खावा वो लक्ष्मी जी आया है।
2: बाटो आयो, मारे तो छोरा रो खर्चो बढ़ गयो।
5: काकी सा, छोरा छोरी अपना हाथ में कोनी, बीनणी और बालक दोई घना कमजोर है, यहाँ को ध्यान रख जो, मैं जाऊं। राम राम।
2: पोतो तो दीदो कोनी और ध्यान रखो।
3: सुनो पिंकी रा पापा, अपनी पिंकी रा मालिश करानी है, घनी कमजोर है, ताकि माँ ने कौन
2: काई जरूरत कोनी मालिश वालिश करवा की, वेजा ही पड़ता धरता मूर्ति, छोरिया ने घने माथा पर नहीं बिठानी।
3: सो जाए।

0: पुष्पा का सास रहे और पुष्पा ने कहजो जब थारी माँ की तबीयत अच्छी हो जाए पचे घर ना आवा।
1: राम राम वे जी सा, राम राम वेण जी सा, खूब बधाई आपने दादा दादी बन गया इन वास्ते।
2: नाना जी ने भी खूब खूब बधाई।
3: राम राम व्याई जी सा, भोजन रोगो सा।
1: व्याण जी सा, पुष्पा और मारी द्वैती सु मने मिलवा दो, पछे मैं मारा घरे जाऊं। आप ही जानो अपनो रिवाज, बेटी का घर को कौन नहीं खावा।
3: देखो ब्याई जी, मारे माता जी की मानता है, इन वास्ते बिनन्नी सु सवा महीना पहला को नहीं मिल सको नी बालकी सु।
1: एड़ी मानता कि एक बाप बेटी सु मल को नहीं सके।
3: हाँ एड़ी मानता है।
1: ठीक है ब्याई जी सा, जेड़ी आपकी मर्जी, मैं चालू। राम राम।
3: राम राम। ए जग्या अटे आओ, थारा उरा जी आया या बाथू बिनणी ने मत बताई जे, और कपड़ा लगता मिठाई जो भी लाया काई मत कही जे, समझो।
4: पर विना था पड़ गई तो मैं कही क्यों।
3: कीजे, मारा उनसे बात करे।
4: ठीक है माँ।
5: पिंकी रा पापा, मने ढा पड़ी के मारा बापू आया हा मलबा का वास्ते।
4: हाँ तो?
5: तो मने मलबा क्यों नहीं दीदी?
4: उन्हें ठा को नहीं, मारी माँ ने पूछे।
6: बेटी को जन्म देने के कारण पुष्पा के पिता को पुष्पा से मिलने नहीं दिया गया।
0: पुष्पा रा बापू आ गया थे? आपने पुष्पा और द्वैती क्या ने थे, उदास क्यों लाग रहा? काई बात, सब ठीक है ना?
1: पुष्पा और बच्ची सु तो मन्ने कोई मलवा ही नहीं दीदा।
0: केड़ी बात करो, बेटी सु कोनी मलवा दीदा?
1: हाँ, पुष्पा री माँ व्याण जी सा केवे के मारे तो मानता है माता जी री।
0: एड़ी मानता तो मैं कदी भी कोनी सुनी के बेटी बाप सु कोनी मल सके। ब्याई जी ब्याण जी रो व्यवहार क्यान लाग्यो?
1: मने तो लाग्यो छोरी होबा सु वे दोई खुश कोनी।
0: पुष्पा रा बापू, थे मारी छोरी ने कटे खाड़ा में नाग दीदी।
1: पुष्पा री माँ, पुष्पा अपनी एका एक औलाद है, मैं तो यो ही छाव तो के मारी छोरी खूब सुखी रहे। जद मैं संबंध नक्की करवा गयो तो सारी बात मैंने बताई के पुष्पा मारी एका एक छोरी है और पुष्पा की माँ बीमार रहे, तो वे बोलिया कि पुष्पा आपकी नहीं आज सु माणी है, आप काई चिंता मत करो, मैं बेटे की न्यान रखा। पर लोग एड़ा दोगला वेवे मने खबर कोनी।
6: पुष्पा का जीवन ऐसे ही चुनौतियों के साथ आगे बढ़ता जाता है और समय के साथ उसने और एक बेटी और दो बेटों को जन्म दिया। पुष्पा के माता पिता पिंकी की अच्छी पालना और बेहतर शिक्षा के लिए पिंकी को अपने पास ले जाते हैं। वहीं पुष्पा के पति और सास नहीं चाहते हैं कि पिंकी आगे बढ़े, अच्छी पढ़ाई करे, इसलिए बार बार पुष्पा के साथ झगड़ा करते हैं। लेकिन पुष्पा अब स्ट्रांग बन चुकी है और पिंकी को नाना नानी के पास ही रुककर पढ़ाई जारी रखने की पूरी छूट देती है। समय के साथ पिंकी बड़ी हो जाती है और फिर उसके 12वीं का रिजल्ट आता है। आइए सुनते हैं इस नाटिका में आगे क्या होता है।
1: अरे पुष्पा की माँ, पिंकी कटे होते हैं सब। अरे भाई, पिंकी को रिजल्ट आ गयो।
0: अरे काई व्यो पुष्पा का बापू, थे तो घना खुश लाग रहा।
1: बात ही एड़ी है, पिंकी कटे
7: काई वो नाना जी, मैं यारी।
1: अरे अपनी पिंकी को रिजल्ट आ गयो और पिंकी को मेरिट लिस्ट में नाम आयो। गांव वाला सब ढोल बजान पिंकी को स्वागत करवा रहा है, नाश्ता पानी की तैयारी करो।
0: अरे वाह वाह वाह, या तो घनी खुशी री बात है, मारी लाडो तो मारो नाम कर दी दो।
6: देखा आपने, पुष्पा ने परिवार के विरोध के बावजूद पिंकी को अच्छी शिक्षा दिलवाई। पिंकी ने भी मेहनत कर पढ़ाई की और आगे चलकर नामी वकील बन गई। पिंकी ने अपनी बहन को भी अच्छी शिक्षा दिलवाई है। अब वह अपने परिवार के साथ साथ समाज की अन्य बालिकाओं और महिलाओं के साथ खड़ी होती है। इस बात से पिंकी के दादा दादी, परिवार वाले सभी बहुत खुश हैं और पुष्पा की तारीफ करते कहते हैं कि बहू हो तो ऐसी जिसने बेटी को इतना काबिल बनाया।
8: श्रोताओं, सुना आपने कैसे हमारे समाज में एक महिला को जन्म से लेकर हर पड़ाव में आगे बढ़ने के लिए न सिर्फ समाज बल्कि अपने परिवार के अंदर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर इन बातों को नजरअंदाज करते हैं तो छोटी बातें बड़ा रूप धारण कर देती है। महिलाओं के व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है, वो आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित नहीं कर पाती है। कभी कभी महिला सुसाइड भी कर लेती है या फिर तलाक ले लेती है। फिर भी अगर हम हिंसा को बढ़ावा देते हैं तो उसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आज आप सभी देखते व सुनते भी होंगे कि अधिकांश समाज में बेटों की संख्या ज्यादा है और बेटियों की कम। दलालों को पैसे दे करके दूसरे समाज की बेटियों को बहू बना रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जब नारी ठान लेती है तो हम यही कह सकते हैं, नारी तू ना हारी। पुष्पा ने अपने दृढ़ संकल्प के बल पर अपने पति सास ससुर के विरोध के बावजूद भी अपनी बेटी पिंकी को उच्च शिक्षा दिलाई। इस नाटक से हमने ये जाना कि महिलाएं किस किस प्रकार से हिंसा का शिकार बनती है। हम भी अगर अपने आसपास देखें तो हमारे परिवार तथा समाज के अंदर जाने अनजाने में महिलाओं को इस प्रकार के हिंसा का सामना करना पड़ता है। तो आशा करते हैं कि आज के इस नाटक से आपने जो सुना इसे अपने जीवन में डालने का प्रयास करेंगे और आप किसी महिला के जीवन में होने वाली हिंसा का कारण नहीं बनेंगे तथा अपने समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित माहौल देने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही प्रेरणादायक कार्यक्रमों के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन और कहिए सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। आइए आरजे उषा के द्वारा सुनते हैं इस एपिसोड के मर्म को प्रस्तुत करता हुआ एक दिल को छू लेने वाला गीत।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता, करें स्वीकार संदीप कुमार त्रिवेदी का नमस्कार। श्रोताओं, आज हाजिर हूं आप सबके लिए आप सबका ही पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। ये सिलसिला श्रोताओं हमारा लगातार चल रहा है और ये सब संभव हो पाता है हमारे मेहमानों की बदौलत और आप सबकी प्रतिक्रियाओं की बदौलत। अब इनमें से कुछ भी कम होगा तो फिर आगे इस सिलसिले को बढ़ाने में हमें बड़ी दिक्कत आ सकती है, तो ऐसे में ये जरूरी है दोनों ही तरफ से मामला जो है वो बराबरी का रहे। तो चलिए आज भी कोशिश करते हैं ऐसे ही हमारे दो मेहमानों से जुड़ने का, मिलने का और उनकी कहानी को जानने समझने का प्रयास करेंगे आज। और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, श्रोताओं, जब कई साथी जब ये बोलते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न स्थानों के, विभिन्न जगहों के, विभिन्न प्रदेशों के ग्रामीण परिवेश का माहौल होता है, उसको समझने का बड़ा अच्छा एक मौका होता है, ऐसे में हमारे लिए काम आसान हो जाता है कि हम इस कार्यक्रम में और नए नए आयामों को भी जोड़ सकते हैं। वैसे आप सब जानते ही हैं, हमराही कार्यक्रम जो है वो दिव्यांग साथियों का जो संघर्ष होता है, खासकर विवाह के क्षेत्र में, क्योंकि वो अपनी जॉब में आ जाते हैं, उसके बाद में वो चाहते हैं कि अपना परिवार बढ़ाएं और समाज में अपना एक अलग स्थान हासिल करें, तो ऐसे में जब वो अपने जीवन साथी की, वो अपने हमराही की जब तलाश करते हैं तो फिर उन्हें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और कई बार ऐसे में हमारे दिव्यांग साथी इस मुख्य धारा को या समाज को एक संदेश दे करके चले जाते हैं। अब उस संदेश लोग समझते कितना है, ये सोचने वाली बात है। प्रोग्राम शुरू करते हैं और स्वागत है भीलवाड़ा राजस्थान से ओम प्रकाश बुनकर जी एवं उनकी श्रीमती प्रेम देवी जी का। ओम भाई, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार सर, धन्यवाद
0: जी। और प्रेम देवी जी, आपका भी स्वागत है।
2: नमस्ते सर संदीप जी।
0: जी जी जी, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और कार्यक्रम के ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहो। ओम भाई, हम कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को अपने बारे में बताएं।
1: जी सर, मैं ओम प्रकाश बुनकर, भीलवाड़ा राजस्थान से। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भीलवाड़ा से हुई और उच्च माध्यमिक स्तर की पढ़ाई अजमेर से हुई
0: जी।
1: और सर कॉलेज एजुकेशन सारा ही बीए, बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन सारा जोधपुर से हुआ। और वर्तमान में मैं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के तौर पे पोस्टेड हूँ।
0: क्या बात है जी
1: जी।
0: तो आपको कौन सी शारीरिक समस्या है ओम भाई?
1: मुझे सर दृष्टिहीनता की प्रॉब्लम है सर।
0: कब से है?
1: मैं जब 2.5 वर्ष का था तब दृष्टि चली गई थी सर।
0: अच्छा, तो कुछ पता है कि कैसे दृष्टि गई थी, कोई क्या वजह रही थी, ऐसा कुछ है मालूम?
1: ऐसा विशेष कोई जानकारी नहीं मिल पाई सर, लेकिन घर वाले कहते हैं कि अचानक की खुजली चली और 3 दिन लगे रोशनी को जाने में, और 3 दिनों के अंदर जितनी उनकी दौड़ थी वो उन्होंने करी। पहले क्या कि हॉस्पिटल की ज्यादा व्यवस्था नहीं थी तो देवी देवताओं के गए, और देवी देवताओं ने भी उसमें भरोसे नहीं रखा, उन्होंने भी कहा हमारा कुछ भी नहीं है, आप हॉस्पिटल जाइए
0: जी।
1: और उस समय फिर हॉस्पिटल भीलवाड़ा पड़ता था तो वहाँ गए
0: जी।
1: वहाँ जाकर के दिखाया, उन्होंने मेडिसिन भी दी, पुनः आने को कहा, लेकिन वो मेडिसिन भी काम नहीं करी, खराब हो गई।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो ये देवी देवताओं से याद आया कि आपके वहाँ मतलब ये इस तरह की मान्यताएं उस इलाके में कुछ ज्यादा हैं जहाँ के आप हैं?
1: जी सर।
0: अच्छा, तो उसके बाद में भी फिर प्रयास हुए होंगे?
1: उसके बाद में भी सर हर तरह से, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि देवी देवता का, तो ये सिलसिला अभी तक भी चल रहा था जब मेरी सर्विस लग चुकी थी।
0: अच्छा
1: जी। और आसपास की जिसने कहा कि हमारे वहाँ पे ऐसे संत हैं या हमारे वहाँ ऐसे देवता है, वहाँ से ही हो जाता है, तो वहाँ तक भी। फिर मेरे पिताजी ने तो मना कर दिया कि अब कोई मतलब नहीं है, ये सारा कुछ ढोंग है, अगर होना होता तो पहले ही हो जाता।
0: बिल्कुल।
1: फिर भी रिश्तेदारों के आगे झुक करके सर्विस के बाद भी दौड़ भाग करी और हॉस्पिटल भी गए, SMS हॉस्पिटल जो जयपुर में है
0: जी,
1: और चित्तौड़ के पास जो आगे वो नीमच है उसमें भी गए हम आगे
0: जी,
1: पर सफलता नहीं मिली सर। और इसके बारे में मैं जब आठवीं पढ़ रहा था सर, तो भीलवाड़ा में संस्था के स्तर पर भी उन्होंने ऑपरेशन करवाया पर सक्सेस नहीं हो पाया सर।
0: अच्छा
1: जी,
0: तो ओम भाई अब जो है हम चाहेंगे कि आपकी श्रीमती जी से भी जरा हम जाने उनके बारे में।
1: जी सर।
2: हाँ सर।
0: जी प्रेम देवी जी, आप भी थोड़ा सा अपने बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए, आपने कोई शिक्षा वगैरह कहाँ तक ली है और आपको तो किसी तरह की शारीरिक कोई दिक्कत है या नहीं है, थोड़ा सा ये बताएं।
2: जी उनमें तो हमारे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई और पढ़ाई तो हमने 10th तक की है।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
2: 10th तक की है और शादी के मामले में हमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: अच्छा अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और आप तो मतलब देख सकते हैं पूरी तरह से ना?
2: हाँ पूरी तरह से देख।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
2: हम तो ये चाहते हैं कि हमारे को तो अगले जन्म में भी ऐसा ही पति मिले।
0: अरे वाह क्या बात है,
2: हम तो ऐसे ही चाहते हैं क्योंकि ऐसे नहीं है कि ब्लाइंड है उनमें, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि ये ब्लाइंड है मेरे लिए।
0: जी जी जी,
2: क्योंकि हर काम में मेरा साथ देते हैं।
0: अच्छा कितने साल हो गए आपको प्रेम जी शादी किए हुए?
2: 2015 में की थी।
0: 2015 में।
2: हाँ।
0: अच्छा बहुत बढ़िया।
2: बाकी सब परिवार इतने खुश रहते हैं मेरे साथ, उनसे रहते हुए भी इतना अच्छा लगता है, बहुत ऐसा ही रहे साथ।
0: आपके घर परिवार में कौन कौन है?
2: ससुर जी है और दो जेठ जी है और परिवार बहुत अच्छे, बच्चा गरा सब अच्छे।
0: और आपके अपने परिवार में, आप जहाँ की रहने वाली है वहाँ की बात कर रहा हूँ?
2: पापा तो एक्सपायर हो गए और मम्मी और छोटा भाई है दो।
0: अच्छा उनकी शादियाँ हो गई छोटे भाई वगैरह की?
2: सिर्फ एक ही है और शादी हो गई उनकी।
0: अच्छा
2: हाँ।
0: तो आपका जो गांव है वो क्या कहलाता है, उसका नाम क्या है?
2: सुराज।
0: सुराज।
2: हाँ।
0: ये भी भीलवाड़ा जिले में ही आता होगा?
2: हाँ भीलवाड़ा जिले में ही।
0: तो दसवीं के बाद प्रेम जी क्या कारण रहा कि आपने आगे पढ़ाई नहीं की?
2: वो पढ़ाई में दिमाग ही नहीं लग पा रहा था और मैं आगे करना ही नहीं, फिर कोशिश भी की लेकिन मेरा दिमाग ही हट गया। तो
0: अच्छा अच्छा,
2: पढ़ाई में कमजोर थी इसीलिए।
0: नहीं नहीं वो तो कोई बात नहीं, लेकिन मतलब कई बार ऐसा भी होता है ना कि गांव में घर परिवार की जिम्मेदारी भी आ जाती है।
2: नहीं नहीं परिवार से तो कोई समस्या नहीं थी, पापा और बहुत प्यार करता था, पापा ने बहुत भी झगड़ा भी किया था, पढ़ाई छोड़ दी थी तब।
0: अच्छा ओके,
2: हाँ, ओके। पापा की तरफ से कोई मना नहीं थी।
0: बहुत बढ़िया। चलो तो ओम भाई
1: जी, सर
0: कैसे मिलने का सिलसिला हुआ प्रेम जी से आपका, क्या कहानी रही जरा शुरू करते हैं आपका हमराही का सफर।
1: जी सर।
0: जी
1: सर, उससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा।
0: निश्चित रूप से आप खुल करके बताएंगे तो हमारे भी सुनने वालों को जो है बहुत सारी बातें समझने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी मुझे लगता है।
1: जी सर।
0: जी
1: उससे पहले यहाँ तक पहुंचू उससे पहले सर क्या कि इस फील्ड में जो समस्याएं आती सर वो मेरे साथ
0: सर उसी पे प्रकाश डालिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी जी जी। उसमें क्या सर, सर्विस लगने से पहले भी मेरे रिश्ते आए सर।
0: अच्छा।
1: हाँ और उसमें उसमें मैं तैयार नहीं था सर,
0: कारण की नौकरी नहीं थी आपकी?
1: हाँ मैंने कहा मैं पांव पे खड़ा नहीं हूँ
0: जी,
1: फिर मैं मान लो खिलाऊंगा क्या।
0: सही बात है।
1: और ये समस्या होने के कारण फिर मैंने वो रिश्ते नकारता रहा, लेकिन उन रिश्तों में भी थोड़ी सी खटास थी सर की किसी बहुत ही ज्यादा विकलांगता थी, जैसे बिल्कुल डिपेंडम है या बिल्कुल जैसे पाँव को नहीं चला पाते है वैसी समस्या थी। मतलब यूं विकलांगता भी ज्यादा आड़े नहीं आती सर, लेकिन ज्यादा समस्या हो रही थी सर। और दूसरा मेन मकसद तो यही था सर कि कुछ पाँव पे खड़े हो जाएं, चाहे छोटी मोटी हो कुछ।
0: जी।
1: और उसके बाद जब सर्विस लगी सर 2012 में
0: जी,
1: उसके बाद जब रिश्ते देखने लगे, हो सकता है कि इसमें हकीकत में और इसमें थोड़ा फर्क लगने लगा, जब पहले बिना सर्विस के लोग आ रहे थे तो अब सर्विस लगने के बाद क्यों नहीं आ रहे
0: जी,
1: इसमें मुझे काफी यूं लगने लगा कि दोहरापन हो रहा है ये
0: जी।
1: फिर इधर उधर रिश्ते देखने शुरू किए, मौसा जी रिश्तेदारों ने, भैया ने, पापा ने भी दौड़ भाग करी
0: जी।
1: और यहाँ आकर के अटकती है कि ब्लाइंड होकर के नौकरी कर रहा है ये तो संभव ही नहीं है।
0: अच्छा कहानी यही आकर के अटकती थी हर जगह।
1: हाँ और जब उनको ये कहते हैं ना कि आप वहाँ स्कूल में जाके देख लो, तो कहते हैं कि पागल बनाते हैं तो वहाँ कहानियां वानियां सुनाते हैं और पागल बना रहे हैं कोई प्राइवेट हो रहा है ऐसे ही रख रखा होगा वहाँ मनोरंजन करने के लिए बच्चों का।
0: अरे बाप बताइए ये मतलब आपके गांव की स्थिति आप बता रहे हैं?
1: बिल्कुल सर।
0: क्या नाम है आपके गाँव का?
1: मरेवड़ा।
0: बरेवड़ा, अच्छा
1: जी, तो गांव के पास की बात है, जैसे आसपास की जो बता रहा हूँ मैं।
0: जी जी जी,
1: तो वो कहते कि तो मनोरंजन के लिए रख रखा होगा यूं, गांव में तो सब जान गए थे, गांव वालों को कोई समस्या नहीं हुई
0: जी,
1: पर आसपास के कई लोगों को यूं नहीं लग रहा था कि सर्विस ब्लाइंड कर सकता है क्या।
0: अच्छा
1: हाँ, और एक दो बार भी लड़कियों से मिले भी सर, लेकिन उनको उनकी सहेलियों ने, एक बार मेरे साथ यूं हुआ कि मिलने गए शाम को और मुझे बिठा रखा था, लड़की आई अंदर देखने और उसने तो बाहर जाके पापा को हाँ कर दी, और थोड़ी देर में उसकी जब सहेली आई वो अंदर देखने आई, तो उसने पता नहीं मेरी दिव्यांगता देखी और उसने कानाफूसी करी, थोड़ा सा मेरा शब्द सुनाई पड़ा के पागल हो रही है क्या। जी सर। तो फिर उन्होंने उस समय फिर टाल मटोल कर दी कि चलो हमारे देवता की पाती उतरेगी, देवता अनुमति देंगे तो करेंगे। फिर वो संदेश तो वही मिल गया था कि थोड़ा सा कमी है इशारा। इस तरह से दो चार रिश्ते सर हुए, और फिर बाद में सर एक हमारे मौसा जी, बड़े मौसा जी है, उन्होंने और उनके और साझा परिवार से एक कोशिश हुई जो हमारे श्रीमती जी तक पहुंचने का जरिया बने। और उस दिन सर जल जुलनी 11 थी 2015 में, और उस दिन मैं तो तैयार ही नहीं था, गांव गया हुआ था, कुछ चार दिन की छुट्टी हुई थी सर, कोई संडे और सैटरडे और पता नहीं क्या क्या मिल करके।
0: अच्छा
1: हाँ, तो मैं भी घर पे बैठा था आराम से, और अचानक भाई साहब का फोन आता है कि तू जिस भी हालत में तुरंत प्रभाव से अपनी दुकान पे पहुंच। भाई साहब गांव से 9 किलोमीटर दूर काम करते हैं वहाँ पे। मैंने कहा मेरे तो दाढ़ी नहीं बनी हुई है ना, मैंने कुछ किया तो आज जाके जैसे है जैसे।
2: ये सब दाढ़ी की प्रॉब्लम की वजह से, उसने दाढ़ी बनाया, इतने हैंडसम लग रहा था आज सुबह।
0: आज भी कार्यक्रम में दाढ़ी बना के ही बैठे हैं।
1: फिर सर आनंद फानन में दुकान पे जाया गया, फिर वहाँ मेरी दाढ़ी वाड़ी बनवाई गई, और फिर वहाँ इनके गांव पहुंचे, फिर इन्होंने भी देखा मुझे, और मेरी तो सर इन्होंने बात भी नहीं कराई किसी ने, और लोग कहते हैं बात कराते दोनों को मत, न तो इनसे बात कराई न मेरी कराई, और कुल मिला के यूं समझे कि अरेंज टाइप हो गया वो, कि भाई घर वालों को भी पसंद आ गया और इनको भी पसंद आ गया। मैं तो इनको पसंद आना था सर, अपने लिए तो एक विशेष व्यक्ति चाहिए था कि भाई अपनी देखभाल कर सके।
0: ओम, आपको प्रेम जी से प्रेम होने से पहले कितने रिश्ते आए होंगे आपको?
1: हाँ सर, प्रेम जी से पहले रिश्ते तो मैंने बताया सर कि रिश्ते आने में तो 5-7
0: तो आए होंगे।
1: हाँ, 5-7
0: दोनों ही तरफ से थे। आपके घर की तरफ से भी प्रयास किए गए या सारे सामने से ही आए थे?
1: घर की तरफ से भी प्रयास हुए सर, और उधर से भी थे।
0: अच्छा, उधर से भी थे।
1: हाँ,
0: और उसमें दोनों ही तरह के थे, विकलांग भी थे और साइटेड भी, मतलब सब तरह के थे
1: जी।
0: लेकिन ज्यादातर जगहों पर आपकी जो नौकरी और दृष्टिबाधिता और ये सब जो है, इन पर भरोसा लोग नहीं कर पा रहे थे।
1: जी जी जी।
0: तो जब प्रेम जी से मुलाकात हुई आपकी?
1: जी सर।
0: फिर उसी दिन सब कुछ तय हो गया था या
1: उसी दिन नहीं हुआ?
0: अड़चन आई
1: जी। हाँ, उसी दिन तो इनको बात कर ली थी इनके, भाई एक दो दिन में जैसा भी आपको मिले, जैसा भी आप उत्तर दे देना। पर उसमें क्या कि मेरे मौसा जी और इनके मामा जी, इन्होंने इतना जबरदस्त प्रयास किया, इनको भी कन्विंस किया, और इनकी तरफ से उधर समस्या आ रही थी सर, घर परिवार में पापा मम्मी तो मान रहे थे, लेकिन आसपास के जो कह रहे थे, कह रहे कि दृष्टिबाधित के साथ कहाँ कर रहे हो और क्या समस्या करोगे रे सर वैसे, तो उन्होंने थोड़ा साझा प्रयास करके समझाया कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो फिर रिश्ता बन गया, और फिर 5 दिन के अंदर फिर इनकी तरफ से संदेशा मिला कि भाई हमें कोई समस्या नहीं है। ये सर।
0: और फिर इस दिन से शादी होने में कितने महीने लग गए?
1: देख लीजिए सर के जैसे सितंबर 1 के बाद जैसे नवंबर में कर दी सर, 27 नवंबर को।
0: 2-3 महीनों में सब कार्रवाई हो गई।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: बहुत बढ़िया। तो उस दौरान फिर मतलब जब 5 दिन बाद जब फैसला आया
1: जी,
0: फिर तब तो बातचीत शुरू हुई इनसे कि नहीं हुई? तभी भी बातचीत सीधा शादी में मुलाकात हुई, क्या हुआ?
1: नहीं नहीं सर, उसके बाद क्या हुआ
3: जी,
1: इनकी जो भाभी जी थे ना, तो इनके गांव गए ये, तो वहाँ इनकी भाभी जी ने अचानक से मेरे कॉल किया और मेरे से बात करते करते कहते हैं कि बात कराऊं क्या। मैंने कहा भाई बात तो कौन नहीं करना चाहेगा।
3: सही है, सही है, जी जी जी।
1: तो फिर इनके भाभी जी ने मुझे बात कराई, फिर वहाँ उस दिन से हमारे बातचीत शुरू हो गई थी सर।
3: अच्छा, उस दिन से जो है फिर कोई,
1: हाँ लगभग देख लो सर 15 दिन तो लग गए थे बीच में। ये जब उनके गांव के भाभी जी के गांव, तब उन्होंने बात करवाई।
3: तो फिर शादी से पहले आमतौर पर मतलब क्या चर्चाएं रही कि भाई आपने भी ये सब, तो आपके दिमाग में भी होगा ही, शंकाएं तो होंगी कि आप दृष्टिबाधित हैं और कैसे मतलब जो है वो समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
1: हाँ, इस तरह की प्रॉब्लम तो मेरे दिमाग में ज्यादा नहीं आई सर। उनका भी आगे लाइफ पार्टनर को अगर दिख रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समस्या आएगी, और मेरे को ज्यादा यूं फील तो नहीं हुआ सर कि भाई कोई अपन को अनकंफर्टेबल महसूस होगा, ऐसा तो नहीं लगा मुझे। इनकी सर क्या फोन पे सारी बातें पता हो गई थी कि भाई ऐसा सब कुछ ठीक है, और आस पड़ोस वालों ने भी बता दिया था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ऐसा तो कुछ मन में डर नहीं था।
3: अच्छा
1: जी,
3: किसी तरह का कोई डर नहीं था।
1: हाँ,
3: आपने कुछ पूछा हो कि भाई ये सब कैसे करोगे, या कुछ चीजें होती है ना जो आपने भी पूछा होगा आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, इस तरह की भी कोई बातचीत रही होगी?
1: नहीं, इनको मैं ऐसे नॉर्मली तो खैर पूछा ही कि भाई देख लो मेरे साथ ऐसी दृष्टिबाधिता है तो हर तरह से आपको ट्रीट करना पड़ेगा भाई। ये अपने गांव की एक परंपरा है कि भाई आप हाथ पकड़ के नहीं चलना है, वैसा नहीं चलना है, तो आपको देख लो भाई थोड़ी सी इस चीज को इग्नोर करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि मुझे पहले ही पता कोई समस्या नहीं है, जब दिखाई नहीं देता दिया तो स्वाभाविक है, फिर कौन पकड़ने आएगा फिर रास्ते में।
3: अच्छा, ये भी मतलब है आपके यहाँ परंपरा कि भाई वो जो गांव में आमतौर पर पुराने जमाने में माना जाता था
1: कि
3: पति पत्नी हाथ पकड़ करके नहीं चल सकते, मतलब?
1: हाँ, ये है तर, ये रखा जाता है इस तरह से थोड़ा।
3: चलिए, बहुत बढ़िया ओम। तो हमें लग रहा है आप तो थोड़ा सा मतलब, क्योंकि हम तो परिचित भी है आपसे, तो थोड़ा शर्मीले स्वभाव के है, और प्रेम देवी जी जो है काफी हसमुख लग रही है हमको। तो अब बातचीत तो करते हैं उनसे भी, पूछते हैं जरा कि किस तरह उन्होंने जो है वो आपके साथ आगे बढ़ाया रिश्ता। जी
1: सर, इनके साथ भी बहुत सारी परेशानी आई, ये बताएंगे आपको।
3: वही वही वही, ताकि एक समाज में एक अच्छा संदेश जाए। जी प्रेम जी।
2: हाँ जी सर।
3: तो ओम जी ने तो बताया कि आपसे मिलना हुआ, लेकिन ओम जी से मिलने के पहले की क्या कहानी रही आपके जीवन में?
2: पहले मेरे एक बार शादी हो चुकी थी।
3: अच्छा,
2: पहले शादी हो गई थी, लेकिन क्या वो शराब की वजह से मैंने छोड़ दिया उसे।
3: तो आपकी जब शादी हुई तो आपकी उम्र क्या रही होगी प्रेम जी?
2: 3-4 साल थी।
3: अच्छा, मतलब बाल विवाह जिसे कहते हैं।
2: बाल विवाह में हो गई थी।
3: ओके ओके। तो और वो गाँव में हुई थी या गाँव से कहीं दूर हुई थी?
2: नहीं, गाँव में हुई थी।
3: गाँव में हुई थी। अच्छा, तो उसकी कोई फिर बाद में जब जैसे अपने तो एक रस्म होती है गोने वगैरह की, तो वो फिर कब आपका मतलब आप गए कब अपने ससुराल, कब गए आप?
2: नहीं, ससुराल इतना जाना ना हुआ ही नहीं था, क्यों थोड़ा दूर भी पड़ता है इसलिए कम जाती थी।
3: नहीं, आप तो कह रहे थे गांव में ही है ससुराल।
2: नहीं, थोड़ा दूर है उनसे।
3: अच्छा, थोड़ा दूर था। तो फिर लेकिन आपने 10वीं तक पढ़ाई की, तो कभी तो गए होंगे ससुराल?
2: वैसे तो पहले तो नहीं गई थी, सिर्फ एक बार जसा माता में मेला था तो एक रात रह के आई थी सिर्फ
3: 10वीं के बाद।
2: हाँ हाँ।
3: तो फिर आपको ये बिना गए ये सब पता चल गया कि भाई वो शराबी है या सही नहीं है?
2: क्या करता था जैसे कि मेरे परिवार वाले बोलते थे कि छोटी है हम भेजेंगे नहीं, तो वो बार बार घर पे लेने के लिए आ जाता था।
3: अच्छा,
2: तो बहुत परेशान करता था वो, बहुत बार बार रोज परेशान करता था।
3: तो आपके और उनके उम्र में कितना अंतर था मतलब?
2: वो थोड़ा हाइट में ज्यादा था और हम छोटे थे।
3: अच्छा, आप छोटे थे। उसकी कोई नौकरी वगैरह भी नहीं होगी?
2: नहीं नहीं, उनकी कोई नौकरी वोकरी नहीं है, वो टेलर है।
3: अच्छा, टेलर है। अच्छा, तो जब घर वालों ने आपको, तो फिर बहुत बाद में पता चला होगा कि आपका बचपन में ही विवाह हो गया है।
2: हाँ वो यहाँ मैं जैसे कि पहले मेरा जन्म भी अहमदाबाद में हुआ था।
3: जी जी जी।
2: मैं यहाँ लेट आई थी तो यहाँ आने के बाद में धीरे धीरे पता चला कि मेरी शादी हो चुकी है।
3: जब आप कौन सी क्लास में थे तब पता चला आपको?
2: जैसे कि देख लो ना कि पांचवी छठी में आने के बाद।
3: छठी में तो जब समझदार हुए कभी इच्छा नहीं हुई पिताजी से प्रश्न पूछने की कि भाई ये क्या किया आपने, बचपन में ही शादी कैसे करा दी?
2: वो क्या है कि पहले के टाइम तो ऐसे थे कि जैसे कि बहुत दादाजी वगैरह एक्सपायर हो गए थे।
3: जी जी जी।
2: तो उनके कार्यक्रम में ही उनकी शादी करवा दी। पापा ने कहा कि मेरे पास में इतनी सैलरी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा।
3: ये भी एक पहले की, जी
2: पहले की स्थिति की वजह से शादी करवा दी।
3: तो फिर आपने वहाँ से बच्चे को जब आपने तोड़ा तो पूरी कानूनी कार्रवाई हुई या क्या होता है, मतलब जैसे तलाक वलाक लेना ऐसा हुआ कि क्या हुआ?
2: कानूनी हुई ना, वो क्या हुआ कि वो पहले और तोड़ लेके आ गया।
3: अच्छा।
2: वो बार बार मुझे परेशान करता था तो फिर उसके एक दिन ऐसे जची जो और दूसरी लेके आया।
3: अच्छा।
2: तो भी मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला, मैं कहा तू लाया तो अपने कमा खा, मैंने उसे परेशान किया ही नहीं मैंने उसे।
3: अच्छा।
2: फिर भी वो और लाने के बाद भी मेरे को परेशान करता था।
3: अच्छा।
2: और बोलता है कि जो तूने पहना हुआ दागिना मुझे वापस दे। भाई मैंने कहा अगर तूने दागिने जो दिया मेरी गलती है तो तू ले जा सकता है, बल्कि मेरी गलती यही नहीं तो मैं तुझे क्यों दूं?
3: सही है।
2: छोड़ा तो तूने छोड़ा, तू और क्यों लेकर आया? तो फिर ऐसी थाने वगैरह का केस चला, फिर समाज की तोर से उसने लिखावट दे दी।
3: अच्छा, समाज से आपने लिखा तो वो मान्य है मतलब वहाँ पर?
2: हाँ, उसने आराम से कोई मतलब छेड़खानी कोई परेशानी नहीं की, उसने आराम से समाज की तोर से मुझे खुला कर दिया।
3: अच्छा, उसने स्वीकार कर लिया कि चलो हाँ, हम अलग हो गए।
2: हाँ, उसने कहा तू तेरे जा।
3: ये आपकी जब शादी हुई ओम जी से उससे कितने साल पहले आप अलग हो गए थे?
2: 2 साल में।
3: अच्छा, 2 साल यानी 2013 में लगभग आप अलग हो गए।
2: हाँ।
3: फिर उसके बाद और कहीं तलाश हुई शादी की या नहीं हुई कहीं और?
2: जैसे कि रिश्ते तो आते थे, खूब आए रिश्ते भी।
3: जी जी जी,
2: रिश्ते तो खूब आए, लेकिन नाम में प्रॉब्लम हो जाती तो किसी में हाइट में प्रॉब्लम हो जाती तो इसमें मेरे कंफ्यूज हो जाती।
3: मतलब प्रेम देवी जो है नाम लोगों को पसंद नहीं आता था?
2: नहीं, लड़कों को मतलब मेरा मुझे नाम पसंद नहीं आता।
3: अच्छा, आपको नहीं
2: आता? कोई नाम में प्रॉब्लम हो जाए मुझे लोग चिढ़ाते।
3: अच्छा, तो लड़कों के नाम आपको पसंद नहीं आते थे?
2: हाँ।
3: अच्छा, ये ओम प्रकाश नाम पसंद आ गया?
1: सर फटा हुआ बुशर्ट शर्ट पहन के गया फिर भी इनको पसंद आया।
3: पता ही है। हाँ, क्योंकि ओम वो तो भाई नाम ही पसंद आ गया था ना आपका। हाँ। तो फिर आप तो कुछ कैंसिल होने का तो फिर प्रश्न ही नहीं था।
2: हाँ।
3: प्रेम देवी जी, जब पहली बार आपने देखा ओम जी को, मतलब आपको पता था सारा कि भाई व्यक्ति देख नहीं पाता है आंखों से, ये सब बताया गया था आपको पहले से?
2: जी, उसके लिए पहले ही मेरे को पापा ने बता दिया था।
3: और फिर आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने कहा कोई बात नहीं?
2: पापा ने तो कहा था लेकिन फिर मैंने मानी नहीं, लेकिन पापा ने कहा तू एक बार देख तू ले जा।
3: अच्छा, आपने उस समय थोड़ा आनाकानी की थी कि यार कैसे होगा?
2: ऐसी कोई बात नहीं, फिर मन में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वो नहीं देख रहे हम तो देख सकते कम से कम।
3: अच्छा, इससे पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था आपने जो जिनको दिखाई नहीं देता था?
2: लेकिन देखा भी था, ऐसे एक दो लड़कों को देखा।
3: अच्छा,
2: ब्लाइंड को देखा, लेकिन ऐसे मतलब ऐसा नहीं था कि ब्लाइंड कभी टीचर बन सकता है।
3: अच्छा, ये आपको भी नहीं पता था?
2: हाँ, ये नहीं पता था कि ब्लाइंड कभी टीचर बन पाएगा।
3: अच्छा अच्छा,
2: ये तो पहली बार देखा था।
3: सारी बातें वही शिक्षा से जुड़ी हुई है प्रेम देवी। हाँ। जी, जितना हम पढ़ते हैं, समाज में उठते बैठते हैं, जितना लोगों से मिलते जुलते हैं ना,
2: हाँ,
3: उतना ही हमारा जो दायरा है वो बढ़ता जाता है सोच का।
2: क्योंकि भले बाहर रहने के बाद में ये पता चला कि भाई कोई ब्लाइंड भी टीचर हो सकता है, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार देखने से ही अच्छा रहेगा।
3: अच्छा, तो आपके यहाँ पर ऐसा था मतलब कि घर वालों को तो ये था कि एक बार मिलाएं आपसे?
2: हाँ।
3: कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत उलझन थी वो आपके ही दिमाग में थी?
2: हाँ।
3: पिताजी वगैरह को कुछ भी नहीं थी?
2: पापा तो पहले ही मान गए थे, लेकिन मम्मी और भाई नहीं मान रहे थे।
3: वो क्या, उनका क्या कहना था मम्मी और भाई का?
2: मम्मी आना बोलते थे कि नहीं, के लोग समाज वाले ये कहेंगे कि जो देखता था उसे छोड़ के अंधे को ले जाके दिया, क्या पहले पैसों का लालच था तुम लोगों का, लोग ये कहेंगे।
3: ओहो, अच्छा अच्छा, इस तरह की भी इस तरह की भी, वही मैं कह रहा था कि इस तरह की भी सोच कई बार देखिए गांव में हो जाती है।
2: अब लोगों के मन में तो यही है कि इन्होंने पैसों के लिए उनको माँ पे शादी करवा दी।
3: बताइए,
2: बल्कि हमारा इनसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे परिवार वाला आज भी कुछ नहीं।
3: आप अब कम से कम 6 साल हो गए हैं, 6 सालों से आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा है और लग रहा है कि आप दोनों राजी खुशी जो है अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं बावजूद इसके।
2: हाँ।
3: तो अच्छा चलो एक बार बात करते हैं कि आज मम्मी और भाई जो है वो समझते हैं सारी चीजों को कि अभी भी उनके दिमाग में वही सब है?
2: नहीं नहीं, धीरे धीरे आप देखो सब मेरे खिलाफ सब भड़क गए और इनकी तारीफ ज्यादा करते हैं वो लोग।
3: अच्छा उल्टा हो गया।
2: मेरे को तो बोलते तू पागल, हमारे लिए तो वही अच्छे है।
3: अच्छा चलो कुल्ला के आपके रिश्ते से खुश है मतलब आप?
2: बिल्कुल खुश है सब।
3: चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर जब आपने पहली बार देखा ओम को तो मतलब क्या लगा देख करके आपको?
2: मतलब थोड़ा डर तो था कि टीचर है मैं, कैसे इनको एडजस्ट कर पाऊंगी, लेकिन डर लगता था।
3: अच्छा क्या आपने सोचा कहीं मेरे को 10वीं के बाद 11वीं नहीं पढ़ाना शुरू कर दूं?
2: स्कूल में जाने के बाद में टीचरों से बहुत डर लगता था, लेकिन इनके बारे में सुना कि ब्लाइंड टीचर है, लेकिन मेरे को डर लगता था कि कहीं मारेंगे पीटेंगे पढ़ाई के बारे में।
3: यही ऐसे ही हंसी मजाक जो है आप लोगों के जीवन में चलती रहनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। फिर प्रेम देवी जी जब 4-5 दिन बाद आपने कहा कि भाई ठीक है सहमत हैं आप, तो उस दौरान आपको ही सोचना था कि क्या करना, कैसे वो नतीजा कैसे निकला, निर्णय कैसे निकला जबकि भाई ओम जी से अब शादी करनी है, ये कैसे तय हुआ फिर?
2: देखो लोगों ने भड़काने में भी बहुत भड़काया मुझे, लेकिन अपने दिल ने और दिमाग ने सोच लिया कि करनी तो करनी है बस।
3: जब पहली बार देखा आपने इनको तब?
2: हाँ।
3: अच्छा उसके बाद
2: देखते ही? हाँ बोल।
3: फिर जब बातचीत होती थी तो कभी कहीं किसी मोड़ पर लगा आपको कि यार कहीं मैं मतलब जो निर्णय लेने जा रही हूँ वो सही है या नहीं है, ऐसा कभी लगा?
2: नहीं नहीं, सिर्फ एक ही डर था कि वो टीचर है इसीलिए मैं कैसे एग्जाम करूंगी, ऐसा कोई डर नहीं था कि मैं क्या करूंगी कैसे करूंगी, ऐसा कुछ कोई डर नहीं था।
3: अब 6 सालों बाद तो नहीं लगता कुछ भी कि भाई टीचर मास्टर साहब जो है वो कुछ कहेंगे?
2: नहीं नहीं, ऐसा कुछ कहा भी नहीं और ऐसा कुछ लगा भी नहीं।
3: अच्छा कुछ लगा भी नहीं। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। ओम भाई
1: जी, सर
3: आपके परिवार में तो सबने स्वीकार कर लिया होगा आसानी से, या यहाँ पर भी कुछ दिक्कतें आई?
1: यहाँ तो कुछ नहीं आई सर, क्योंकि सामाजिक तौर पे हो रहा था, अदर कास्ट होती तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है।
3: जैसे ये जो पहला विवाह इनका हो गया था या उस बात को लेकर के?
1: हाँ उस बात को लेकर के तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई, कि कोई बात नहीं, कम से कम यूं दिमाग में था कि भाई दूसरे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, कम से कम वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। यूं कई बार अपने जो मैंने पूर्व में बताया कि कई लोग तो नौकरी को भी नकार रहे थे और दृष्टिबाधिता तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ही
3: जी।
1: कि भाई कुछ लड़कियां तो ऐसा कह रही थी कि हमें घुमा नहीं सकते कहीं पे, गाड़ी घोड़े पे बैठा के सैर सपाटा नहीं करा सकते, तो मतलब क्या है? तो इस तरह का दिमाग में इनके नहीं आया और सारा घर वालों ने भी इनको एक्सेप्ट कर लिया, कोई समस्या नहीं रही।
3: अच्छा किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रही मतलब? तो अब क्या स्थिति है, आजकल आपका जीवन जो है वो कैसा चल रहा है?
1: आजकल सर जीवन बेहद सुखद चल रहा है।
3: अच्छा
1: और बढ़िया कॉम्बिनेशन है सर, कोई समस्या नहीं आ रही अब तक तो जीवन को चलाने में, आज तक तो ऐसी कोई मतलब मुझे समस्या महसूस नहीं हुई कि भाई विवाह करके कोई गलती कर ली या इनसे जुड़ करके कुछ गलती होगी, ऐसा नहीं लगता है सर,
3: कभी कहीं ऐसा नहीं लगता।
1: हाँ जी जी सर।
3: तो ओम भाई आप जिस माहौल में आप रहते हैं
1: जी,
3: वहाँ पे आमतौर पर हमारे जो दृष्टिबाधित साथी हैं खासकर
1: जी,
3: उनके साथ यही सब होता है या अलग अलग परिस्थितियां हैं? वही जैसे मतलब नौकरी वाली जैसे आपने बताई, शादी ब्याह के मामले में क्या स्थितियां हैं आमतौर पर?
1: नहीं सर ऐसी तो फिर भी जैसे मैं जहाँ पोस्टेड हूँ यहाँ पे तो उनको बहुत अचंभा होता है और बहुत खुश है वो यहाँ पर, और इधर वालों ने खूब कोशिश की सर, जब मैंने ज्वाइन करी यहाँ आया तो भी यहाँ वालों ने भी बहुत कोशिश करी भाई रिश्ता इधर ही बन जाए।
3: नहीं आमतौर पे मैं पूछ रहा था कि जो बाकी साथी हैं आप,
1: हाँ,
3: उनकी
1: हाँ,
3: कैसी स्थिति है वहाँ पर उस इलाके
1: में? उनकी स्थिति में भी सर थोड़ा सा यही हो रहा, उनके कोई समाज में मिल नहीं रही उनको देने की।
3: समाज वाला मामला अभी भी है क्या वहाँ पर?
1: समाज तो मतलब वाला मामला है सर, अदर कास्ट नहीं करते हैं सर।
3: क्या होता है अगर कर लें तो?
1: फिर सर समाज से बाहर कर देते हैं। फिर
3: क्या होगा अगर समाज से, अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है सरकारी मान लीजिए,
1: उनके साथ
3: बाहर कर दिया तो क्या होगा उससे?
1: फिर उनके साथ कोई गांव वाले खाना पानी बैठना उठना सारा बंद कर देते हैं सर।
3: वो शहर में चला जाए, वो शहर में बस जाए जाकर के तो
1: फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
3: तो गांव में ऐसा है क्या?
1: यही है थोड़ा सा रिश्ते से जुड़ाव रखने का, और वो रहता है हर कोई रिश्ते को तोड़
3: ले, उम्र निकलती जाए अपनी कोई तो भी कोई बात नहीं है,
1: यही हो रहा है सर।
3: तो ये लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता इस पर विचार किया जाना चाहिए?
1: हाँ सर, किया तो जाना चाहिए, पर कई बार यूँ लगता है कि परिवार से दूर होकर के भी समस्या रहेगी, ऐसा भी कई बार फील होता है ना सर। कई बार घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते अदर कास्ट को। एक दो बार ऐसे इशारों में पूछने की कोशिश भी करी, पर वही उनकी तरफ से रिएक्शन मिल रहा था, अगर गांव में रहना है तो अपन को समाज में ही चलना पड़ेगा, बीच में थोड़ा
3: तो ये परिस्थिति तो कुल ना के आपके साथ भी रही कि आप समाज के बाहर कुछ सोच नहीं सकते थे, मतलब
1: है? जी।
3: ये बड़ी गंभीर स्थिति, आज भी 2021 में भी ये सब बातें सुनने को मिल रही हैं भाई।
1: मेरे आस पास में जो भी मित्र है उनके साथ ये समस्या हो रही सर।
3: तो इस हिसाब से आप अपने आप को काफी भाग्यशाली मानते होंगे?
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि भाई मुझे समाज में ही रिश्ता मिल गया।
3: चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब और कौन कौन है आपके, मतलब बच्चे वगैरह?
1: एक गुड़िया है सर जो 5वां वर्ष चल रहा है इनको।
3: जी बहुत बढ़िया। तो क्या नाम है गुड़िया का?
1: विद्या।
3: अरे वाह विद्या।
1: जी सर
3: बहुत बढ़िया। तो उनकी पढ़ाई वगैरह शुरू हो गई? आप तो पढ़ाते होंगे?
1: हाँ मैं, ये मेरे से भी ज्यादा ये YouTube से सीख लेती है।
3: अच्छा।
1: YouTube से कई चीजें सीख गई है, कलर वगैरह, फल फ्रूट का नाम, इस तरह से कई ABCD वगैरह ये YouTube से सीख लेती है। मेरे साथ तो फिर भी मैं टैकल करता हूँ तो मजाक करने लग जाती है, एक बोलता हूँ तो दो बोल जाती है।
3: हाँ बच्चों का यही तो एक मतलब माहौल है कि बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं हम लोग भी।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
3: क्या बात है। तो ओम भाई आपको भी ये सब किसी ने समझाया था कि भाई समाज वालों ने बुला करके आपके पिताजी को कि भाई आपका बेटा ब्लाइंड है, ये है, ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा, कुछ याद आता है ऐसा?
1: किस तरह से सर?
3: भाई जैसे आपकी जब नौकरी लग गई तो शादी ब्याह के बारे में जब बातचीत चल रही थी आपकी
1: जी,
3: तो मतलब साफ साफ शब्दों में किसी ने कह दिया होगा कि भाई समाज में ही करोगे तो ठीक है, नहीं तो उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है?
1: ये सर खुद पापा ही मानते हैं सर कि भाई समाज में ही करनी है।
3: अच्छा, तो कभी आप तो फिर ये तो कभी मन में आया ही नहीं होगा कि भाई मैं किसी ब्लाइंड से शादी करूं या कहीं दूर के जाऊं?
1: सर, तो कभी आया ही नहीं होगा मन? थोड़ा ख्याल कम ही आया सर, मैंने

0: ये थोड़ी सी मेरी भी जरूरत थी अंदर, थोड़ा सा
1: ये
0: दिखना चाहिए
1: थोड़ा सा
0: था।
1: आपको भी मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर था कि भाई हम
0: दोनों अगर
1: कौन।
0: दृष्टिवादी होंगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं घाटा उठाना पड़ सकता है, लेकिन कई बार सोचता हूँ सर दृष्टिबाधित भी परिवार, मैंने फिर बाद में देखा भी था, मैंने एक मेरे मित्र हैं सूरज गुरु बख्शाणी, और उनके भी मैंने देखा सर कि उनकी माता जी भी ब्लाइंड थे, और उन्होंने बढ़िया शानदार खाना पका के मुझे खिलाया, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये ब्लाइंड है सर।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो वो परिस्थितियां तो मतलब दोनों ही तरह की हैं ओम भाई, कि
0: जी जी सर,
1: एक्चुअली हमें निर्णय अपनी परिस्थितियों के अनुसार भी कई बार लेना पड़ जाता है।
0: देना पड़ जाता है सर।
1: अब आप जैसा बता रहे हैं आपको गांव में ही रहना था,
0: जी
1: आपके वहां तो शायद ही कोई स्वीकार करता, फिर आपको तो निकलना पड़ता वहां से।
0: ये बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप, अगर मैं ब्लाइंड के साथ भी कर लेता तो मुझे फिर गांव में मुश्किल ही होती सर, मुझे बाहर निकलना पड़ता। एक मेरे से मिले भी थे सर, उन्होंने कहा कर लो, लेकिन वही हमारे वही आके अटक गई सर, नौकरी का ही मामला अटक गया था, नौकरी का ही सबसे मेन अटक रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पांव पे खड़े हो जाए तभी देखेंगे आगे।
1: ओम भाई, जो आपके इलाके में दृष्टिबाधित लड़कियां हैं
0: जी
1: उनका क्या होगा?
0: हाँ सर, उनके उनके भी यही है सर, थोड़ी सी कंडीशन, कुछ एक की तो शादी हो गई सर, ऐसी बात नहीं है।
1: अच्छा, वही समाज में ही हुई?
0: हाँ उनकी
1: अच्छा।
0: समाज में हो गई, उनके जैन परिवार में, तो उनके जैन परिवार ने एक्सेप्ट कर ली, मेरी भी गत वर्ष मुलाकात हुई उनसे,
1: क्या नाम है?
0: सरोज सरोज जैन थी जो, वो उनकी भी उनके समाज में हो गई, और ज्यादा से तो टच में नहीं है सर।
1: लेकिन कुल ना के ओम भाई, अब समय आ गया है कि जैसे अब आप शिक्षक भी हैं,
0: जी
1: शिक्षक का काम है समाज में रोशनी फैलाना, समाज में जो व्याप्त मान्यताएं हैं, जो जो मान्यताएं ठीक नहीं है उन मान्यताओं पे थोड़ा सा लोगों को समझाना। तो
0: जी
1: कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अब ये समझाना चाहिए कि भाई अब जमाना बहुत बदल गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तकनीक ने बहुत कुछ आसान कर दिया है। आंखें होना नहीं होना ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, मतलब अब
0: बिल्कुल
1: व्यक्ति।
0: सर, अब लगता तो है, और मेरा भी यही प्रयास रहता है सर लोगों को समझाने का, और जो भी कुछ मित्र हैं उनके वो भी मैं थोड़ा काउंसलिंग करता हूँ, पर वही वहां पर अटक तो जाता है सर, समाज का अटक जाता है।
1: क्योंकि देखिए कहते हैं ना, वो शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ती है ओम भाई।
0: जी, ये
1: तो
0: बात सही कह रहे हो, लेकिन सर मेन बात तो हकीकत ये कहा जाए कि मैं इस मन से कहूंगा कि शिक्षा मुख्य है, शिक्षा की
1: बस
0: कमी है सर
1: शिक्षा की कमी है सबसे बड़ी बात
0: इस
1: ये।
0: फील्ड में, शिक्षा की बहुत कमी है, शिक्षा का होना जरूरी हो रहा सर,
1: ओम
0: ये
1: भाई
0: है।
1: आप तो संयुक्त परिवार में रहते हैं, इसलिए ये तो छोटी मोटी दिक्कतें तो कुछ आती नहीं होंगी, सामान लाना ये वो मतलब रोजमर्रा की
0: हाँ
1: दिक्कतें तो
0: हाँ
1: कुछ
0: ऐसी
1: होंगी
0: कोई
1: नहीं।
0: प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं आती
1: हाँ,
0: सर।
1: क्योंकि आप लोग तो वैसे ही मतलब वहां पर तो गांव में सब चीजें आसानी से उपलब्ध भी हो जाती हैं।
0: हाँ,
1: आपका
0: और जहाँ मैं
1: जो
0: पोस्टेड हूँ वहाँ पे भी सर कोई, जैसे टीचर आते हैं मार्केट से तो उनको लिस्ट दे देता हूँ, वो ले आते हैं, यहाँ पे भी इनको नहीं जाना पड़ता मैडम को।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो वही मैं पूछने वाला था कि जहाँ आप नौकरी करते हैं वहाँ आपकी कैसी स्थिति है, शिक्षक साथियों के बीच में कैसा व्यवहार है, आपसे उनका संबंध कैसा है?
0: अच्छा कोऑपरेशन है उनका भी, अच्छा कोऑपरेशन है, और जितना मुझसे बन पड़ता है मैं भी उनका सहयोग करता हूँ, जो कुल मिलाकर मुझसे संतुष्ट है वो लोग।
1: अच्छा, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
0: हाँ
1: और अब पिछले कुछ सालों में जब से आप नौकरी कर रहे हैं, लोगों में थोड़ा सोच बदली है कि भाई ब्लाइंड व्यक्ति भी पढ़ा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ माहौल बदला भी है सर, इस इलाके में बदला। एक बार मेरा इधर कोई कीर्तन में जाना हुआ सर, तो वहां पे भी प्रश्न खड़ा किया मेरे साथ में स्टाफ साथी, तो उनसे पूछा कि ये पढ़ाते हैं या ऐसे कहानियां सुना करके रखते हैं, तो उनको फिर उन टीचर ने समझाया कि भैया ये हमसे भी ज्यादा वर्क करते हैं, आप कभी आके देखना। तो उन फिर तब से उन्होंने भी एक दो बार ऐसे गांव वालों ने चुपके चुपके आकर के भी मैं देखा, और शुरू शुरू में प्रिंसिपल साहब ने भी मुझे देखा बाहर से कि देखे टेकल कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा।
1: अच्छा।
0: हाँ तो फिर वो विश्वस्त हो गए सर, गांव वाले भी विश्वस्त हो गए, और जब बच्चे जब जाकर के घर पे बताते कि भाई सर तो तरीके से समझाते हैं, पूरा गाइड करते हैं, कोई समस्या नहीं है, तो फिर अब उनको नॉलेज आ गया सर।
1: अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम थोड़ा परिवर्तन हुआ। तो प्रेम देवी जी, कोई अब आपको भी मतलब लगा कुछ कि भाई ब्लाइंड के साथ रहने से जीवन में कुछ कठिनाइयां बढ़ जाती हैं या ऐसा कुछ होता है?
0: नहीं, सर अभी तक तो कोई कठिनाई नहीं आई मेरे साथ,
1: कभी ऐसा नहीं लगा आपको?
0: नहीं बिल्कुल भी नहीं लगा।
1: तो कहीं बाहर किसी कार्यक्रम में जाना हुआ

0: भी ओम जी के साथ?
1: हम जाते हैं, बिल्कुल दोनों साथ जाते हैं।
0: अच्छा, नहीं भीलवाड़ा के बाहर या गांव के दूर कहीं बाहर?
1: हाँ, वैसे तो घूमने गए थे।
0: अच्छा, घूमने गए थे?
1: घूमने गए थे पूरा परिवार साथ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब जो है वो आपके ससुराल में, आपके पियर में ओम जी की काफी रेस्पेक्ट है, मतलब है काफी सम्मान। हाँ, है ओम जी का,
1: मतलब बहुत खुश है और बहुत उनको इज्जत देते हैं से।
0: तो क्या क्या सिखाया आपने ये बताओ ओम जी को शादी के बाद?
1: सर, जो भी इन्होंने सिखाया, मैंने तो इनको कुछ भी नहीं सिखाया। जो कुछ भी इन्होंने सिखाया, क्योंकि मैं तो अनसीखी थी।
0: तो क्या क्या सिखाया इन्होंने?
2: इन्होंने सर मुझे सिखाया बोलना।
0: अच्छा, बोलना सिखा दिया है।
2: मैं सर आपको पता ही है कि मैं थोड़ा कमी बोलता था पहले भी।
0: क्या बात है। श्रोताओं, मैं आपको बताऊं, ओम भाई जो है वो बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है। अभी इनकी बातों से आप सबको लग रहा होगा कि बहुत सादगीपूर्ण इंसान है, सीधे साधे, लेकिन इनके अंदर टैलेंट कूट कूट करके भरा हुआ है। कई तरह का अभिनय करते हैं अपने बुखार बिंद से। तो ओम भाई, चाहेंगे हम हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा आप अपनी कला का जो है नमूना पेश कर सकते हैं क्या आज रेडियो मधुबन के इस मंच पर?
2: बिल्कुल सर, इस मंच को मैं भी नहीं छोड़ना चाहूंगा सर।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल ओम भाई। तो आज एक एक करके आप अपनी कलाएं जो है वो प्रस्तुत करेंगे, तो हमारे सुनने वालों को भी एक अलग रंग नजर आएगा आज के इस कार्यक्रम का।
2: जी सर।
0: जी जी, बताइए।
2: तो सर, मैं सबसे पहले, अब मोबाइल की दुनिया है तो मैं पुराने समय को याद करता हुआ एक टेलीफोन की बेल सुनाना चाहूंगा सर।
0: हाँ, क्या बात है, सुनाइए। वाह, ये मुंह से आवाज हो रही है श्रोताओं, देखिए। जी
2: सर,
0: गजब का टेलीफोन बजाया भाई ओम आपने। दूसरी प्रस्तुति क्या है आपकी?
2: जी सर, दूसरी प्रस्तुति कोयल के रूप में सर।
0: हाँ बताइए। क्या खूब। वाह, गजब।
2: और सर, इसी के साथ में एक पक्षी और है सर, पपीहा।
0: हाँ,
2: उसको देखते हैं सर।
0: ये बताइए, पपीहे को भी ले आइए जरा। वाह, गजब। अब ये पपीहे को अब कोई भी पहचान जाएगा अगर सुनेंगे तो इसको।
2: जी सर।
0: जी ओम भाई, क्या बात।
2: क्या करें सर, आपने मुझे पुरानी यादें दिला दी, तो पता नहीं परत दर परत खुलती जा रही है कार्यक्रम में। हो सकता कि समय का भी हो रहा होगा, पर फिर भी थोड़ा समय लूंगा सर मैं।
0: नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल इस मौके को हाथ से जाने मत दो ओम भाई।
2: जी जी जी,
0: बताइए।
2: एक सर खटारा कार है सर, उसको स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ।
0: हाँ, पुरानी मतलब एम्बेसडर कार है कोई।
2: जी सर।
0: जी, शुरू कीजिए।

0: स्टार्ट हो गई कार। वाह वाह वाह वाह, बढ़िया। आपने तो बंद भी कर दी स्टार्ट करके।
1: जी सर, ज्यादा क्या पर काफी दिनों से चले, वापस रेस लगानी पड़ेगी ना बात।
0: हाँ, थोड़ा जोर ज्यादा लगाना पड़ा है।
1: जी सर।
0: चलिए आगे।
1: आगे सर, जब अपन कार लेके निकल जाते हैं तो बाहर रोड पे कुछ ट्रक्स और बसेस के हॉर्न की सुनाई पड़ती है सर।
0: जी जी,
1: वो भी इस मन से सुनाना चाहूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत।

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ओम भाई, बहुत जबरदस्त। ट्रैफिक लिया है आप तो, सड़क का ट्रैफिक लिया है पूरा। जी
1: जी सर, अब थोड़ा जो अपने भारत का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है सर यातायात का, उसकी तरफ चलते हैं अपन।
0: जी जी जी
1: मेरा इशारा सूरत अलगढ़ जो है समझ चुके होंगे,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: पुराना इंजन चलाने का प्रयास कर,
0: रेल का पुराना इंजन है। जी
1: जी सर, जी सर,
0: जी
1: जी सर।
0: जी, जी।

0: बहुत जबरदस्त ओम भाई, ये भाप का इंजन था मतलब पुराना।
1: जी सर जी सर।
0: आपके खजाने में कुछ और भी है कि हो गया पूरा?
1: और भी है सर।
0: अरे वाह,
1: अनुमति दे तो।
0: हाँ हाँ, पूरी अनुमति आप तो लाइए।
1: एक सर अब क्या कहे, थोड़ा जानवरों की दुनिया में आ जाऊं?
0: आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
1: एक और आवाज सुना रहा हूँ सर, जो आप आप उत्तर बता देना सर।
0: जी
1: ठीक साहब
0: जी।
1: ये रहा सर।
0: क्या बात है ओम भाई, ये आवाज तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन हम कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा। जी
2: सुअर।
0: सुअर जैसी। हाँ वही वही वही, क्या बात है, गजब। जी जी जी। प्रेम जी भी हंस रही हैं पीछे से।
1: ऐसा
0: उनको उनको ये सारी कलाएं पता है कि नहीं पता है?
1: सर हकीकत कहूँ क्या?
0: हाँ बिल्कुल कह ही दो।
1: इनको भी इतना नॉलेज नहीं था सर।
0: चलो भाई कुछ तो
1: पता था, कोयल का पता था इनको, वो भी एक दिन गलती से हो गया था सर।
0: आप जोश में आ गए होंगे किसी दिन।
1: हाँ जोश में आ गया सर, जो पता चल गया।
0: बहुत बढ़िया हो। और क्या है आपके पास?
1: और तो सर
0: फिलहाल मतलब जो है वो कुछ याद नहीं आ रहा और ज्यादा।
1: हाँ व्यवस्था से नहीं बैठ पा रहा।
0: जी जी जी समझ, क्योंकि वो अचानक हुआ ना ये सब, तो वैसे
1: अचानक,
0: भी
1: अचानक
0: पहले से आपको पता होता तो फिर तैयार कर सकते थे, लेकिन चलिए खैर। लेकिन मजा आ गया ओम भाई, आपने माहौल जो है बिल्कुल ही शानदार बना दिया इस कार्यक्रम का।
1: सर देखो रिकॉर्डिंग क्लब और रेडियो मधुबन का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर, हमें इस तरह से मंच देते हैं आप, और हमारी जो भी समस्याओं से आप रूबरू कराते हो, मैसेज दिलवाते हो, इसलिए पूरी टीम को सर हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे। इस तरह से हम चाहेंगे और अन्य मित्रों को भी अवसर मिलते रहे सर।
0: क्या बात है, बहुत खूब ओम भाई। अच्छा ये बताइए, आप हमारा ही कार्यक्रम सुनते हैं कि नहीं?
1: बिल्कुल सुनता हूँ सर।
0: सुनते हैं?
1: और मेरे यहाँ जहाँ पोस्टेड हूँ वहाँ पे नॉर्मल पर्सन भी तक सुनते हैं सर, उनको भी मैंने यूट्यूब लिंक दे रखे
0: हैं
1: और वो भी सुनते हैं। वो कह रहे हैं एक दिन सर आपका भी तो प्रस्तुत करवाओ, हम आपका भी सुनना चाहेंगे सर।
0: बस तो इस बार जो है उनको कहना आपकी मुराद पूरी होने वाली है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो प्रेम देवी जी, अब कार्यक्रम के तो अंत में हैं हम लोग, आज का कार्यक्रम तो समाप्त हुआ।
2: हाँ सर।
0: कैसा लगा आपको आज के इस प्रोग्राम में आकर के?
2: सर आज मैंने आपके साथ में जुड़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
0: अच्छा लगा।
2: हाँ।
0: प्रेम जी, गांव में जो लड़कियां या जो लोग आपको सुन रहे हैं आज इस कार्यक्रम हाँ। के माध्यम से उनको क्या कहना चाहेंगी आप?
2: जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी रिश्ते को आए तो ऐसा मत सोचो कि वो ब्लाइंड है, उसके बारे में ये भी सोचो कि आप तो कम से कम देख सकते हो।
0: जी जी जी जी।
2: ये मत सोचो कि वो ब्लाइंड है इसीलिए हम रिश्ते को मना करते हैं, ये नहीं, उनमें भी कुछ गुण है, कुछ अच्छाइयां है उनमें भी।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब।
2: ये नहीं सोचना चाहिए वो ब्लाइंड इसीलिए हम छोड़ दें, उनके लिए और भी हाथ बढ़ा उनके साथ था।
0: जी जी जी बहुत।
2: जो भी मेरी बहन है उनसे यही कहूंगी ब्लाइंड का साथ देने में अच्छा है आपको।
0: बहुत खूब बहुत खूब। तो अच्छा लगा आपसे बात करके प्रेम देवी जी, और
2: हाँ।
0: यूं ही ओम जी का साथ आप निभाती रहे और आपका साथ ओम जी निभाते रहे
2: हाँ।
0: और आप दोनों का जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और आप दोनों की विद्या जो है वो दिनों दिन निखरती जाए। जी जी जो, तो ओम भाई
1: जी सर,
0: आप से भी हम चाहेंगे कि आप कार्यक्रम के अंत में हमारे सभी साथियों को, सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने मन में उठ रहे विचारों को किस प्रकार सबके सामने रखना चाहेंगे?
1: मेन जो बात आती है कि बस शिक्षा।
0: जी
1: शिक्षा की बहुत कमी है, हर परिवार में शिक्षा की महती आवश्यकता है।
0: जी
1: शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए।
0: जी
1: मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा के बगैर कुछ हो नहीं सकता सर, न तो समाज का भला हो सकता है न राष्ट्र का भला हो सकता है सर।
0: ठीक बात।
1: और इस शिक्षा के कमी के कारण हम साथियों को, दृष्टिबाधितों को समस्या आती है लाइफ पार्टनर चुनने में, चाहे आगे बढ़ने में, इसलिए शिक्षा का प्रसार अधिक से अधिक हो ये मैं चाहूंगा सर।
0: बहुत बढ़िया ओम भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी और प्रेम देवी जी, आप दोनों को आज के हमारे कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और श्रोताओं तो आज का हमराही कार्यक्रम आप सबको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा 9414151415 पर, और ईमेल कर सकते हैं info@radiomadhuban.in पर। इसके अलावा आप चाहें तो हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर लें, गूगल प्ले स्टोर से रेडियो मधुबन के ही नाम से है। रेडियो मधुबन आप जानते हैं इंटरनेट पर लगभग 140 देशों में सुना जाता है। इसके अलावा हमारा ये कम्युनिटी रेडियो है जो कि यहाँ आबू रोड और माउंट आबू यहाँ पर आसपास में सब जगह सुना जाता है, और दिव्यांग साथियों को इस रेडियो मधुबन के माध्यम से जो मंच मिल रहा है वो आप सबके सहयोग से आगे भी मिलता रहेगा। और आप में से कोई भी साथी अगर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, यदि आप दिव्यांग हैं, आप विवाहित हैं और आपकी कहानी भी थोड़ी दिलचस्प है और आप चाहते हैं कि आप अपनी भावनाओं को सबके साथ व्यक्त करना चाहें, तो इस कार्यक्रम में हमेशा आपका स्वागत है। तो श्रोताओं, मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। दीजिए इजाजत आपके दोस्त संदीप त्रिवेदी को। नमस्कार,
3: नमस्कार। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ भूमि त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मैं हूँ वर्षा उसगांवकर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: मैं गायक कलाकार हाकम खान ढोलक पे साथ दे रहे हैं, मदन खान खरताल पे संगीतकार, शौकत खान मौनशिया। ये खरताल लकड़ी की बनी हुई होती है, शीशम की लकड़ी की चार खुली लकड़ी होती है और हाथों के अंदर ये खुले अंगूठे और अंगुलियों के सहयोग से ये बजाया जाता है। शौकत खान है राजस्थान, इन्होंने खरताल के माध्यम से अपना कुछ नाम कमाया है। हर स्टेज पे इनका कार्यक्रम होता है। हकीम लोक संगीत संस्थान केसुमला के अंदर ये बच्चों को संगीत की खरताल में सिखलाई देता है, खुद गाता है। इस संगीत संस्थान में हमारे कलाकारों खरताल ढोलक कमायचा सारंगी मोरचंग मुरली अलगोजा सहनाई ये सिखलाई दी जाती है। काफ़ी कलाकार हमारे इस संस्थान के माध्यम से संगीत को आगे बढ़ावा दे चुके हैं और विदेशों में भी काम कर रहे हैं। तो आपके सामने अभी पेश किया जा रहा है निम्बुड़ा। ये निम्बुड़ा हमारे मांगनिया लोगों का गाया हुआ है, प्रस्तुत करना जा रहा है हाकम खान।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग ने ये सीरीज शुरू किया है लाइट लेट्स इग्नाइट टुगेदर करके, और इसके अंतर्गत हम लोग अलग अलग सब टॉपिक्स पे बातें करते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक हमारा जो है एजुकेशन विद ह्यूमन टच, इस विषय को लेकर बातें करेंगे, जहाँ पर हमारा शिक्षा तो हो, शिक्षा के साथ में हमारी मानव मूल्य भी हमारे साथ हो, मानवता भी हमारे साथ हो, और एक संवेदना जो हमारे साथ होनी चाहिए वो हमेशा बनी रहे। कई बार होता है कि हम लोग बस एजुकेशन तो ले लेते हैं, नंबर आगे भी ले लेते हैं, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं वो संवेदना या ह्यूमन टच जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो शिक्षा ये नहीं कहता कि आप मानव होके मानवता के गुणों को भूल जाओ, है ना। शिक्षा का प्राथमिकता यही है कि पहला पेज जब आप पन्ना खोलते हो किसी भी टेक्स्ट बुक का, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये पहली लाइन हमारी प्रार्थना की होती है, जो 365 दिन हम 10 साल तक रटते हैं। लेकिन जब 10 साल पूरे हो जाते हैं या हमारी शिक्षा पूरी हो जाती है, उसके बाद शायद वो पहली लाइन ही हमें पूरी तरह से कार्यबंध करने में मुश्किल लगती है। तो कितनी बड़ी विडंबना है शायद। आज इसी विषय को लेकर ह्यूमन टच क्या है वो हम लोग जानेंगे। तो हमारे साथ विशेष आज के मेहमान हैं खास नवनीत अरोरा सर। आप IIT रुड़की से जुड़े हुए हैं और आपको यहाँ देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे अपना सौभाग्य समझता हूँ आपको इंट्रोड्यूस करने में। आप शिक्षाविद हैं, काफी समय से इस विषय को लेकर काम कर रहे हैं, एजुकेशन विद ह्यूमन टच इस विषय को लेकर आप बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बच्चों के अंदर जो इनबिल्ड संस्कार होनी चाहिए वो शायद आपको सुनने के बाद हर बच्चा जो है जरूर याद रखेगा कि हमारी शिक्षा जो है हमें क्या सिखाती है और हमारा जीवन कैसा होना। तो आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते नवनीत सर, बहुत बहुत स्वागत जी। अमित जी, मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने नवनीत सर को यहाँ पर जोड़ा है। और हमारे दर्शक मित्रों में से जलगांव से सुभाष जी ने ओम शांति और आप सभी का भी स्वागत भेजा है उन्होंने। सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम लोग चाहेंगे नवनीत सर आप थोड़ा सा अपने बारे में, वर्तमान में आप जिस खूबसूरत स्थान पर बैठे हैं ऋषिकेश, वहाँ का थोड़ा नजारा हमें बताइए और कैसे वहाँ पहुँचे आप।
1: अच्छा, चांस की बात देखिए, बड़ा हिस्टोरिक दिन है मेरे लिए अभी। हाँ, मैं भी यहाँ गुजरा तो सैकड़ों बार हूँ, यहाँ से आया भी बहुत बार हूँ, लेकिन क्योंकि रुड़की इज वेरी क्लोज टू ऋषिकेश, मैं कभी रुका नहीं हूँ यहाँ पर। पहली बार आज मैं अपनी श्रीमती जी के साथ रुकने के लिए आया हूँ, फर्स्ट टाइम। चलो ग्रेट,
0: बहुत जी जी।
1: सबसे ज्यादा खुशी और जैसे कहते हैं ना, किचकिची और लाड और प्यार आप सबके साथ आ रहा है कि आप इतने अच्छे विषयों को लेकर एकत्र हुए। आप में से कुछ बड़े होंगे से उम्र में और योग्यताओं में भी, और कुछ मेरे अजीज होंगे और बच्चों की उम्र के भी होंगे, मेरी बेटी की उम्र की लग रही है रोशनी मुझे, है ना। तो ऑल एज ग्रुप इज कमिंग टुगेदर फॉर ए गुड कॉज, इसके लिए मैं तो कहूंगा सबको प्रणाम करता हूँ बहुत बहुत दिल से। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद कि वी आर कमिंग टुगेदर फॉर ए गुड कॉज। बहुत सी बातें दिल में आ रही है। मैं अपने बात थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं, क्योंकि कहा है कि मैं थोड़ा दो लाइन बता दूं। मैं नवनीत अरोड़ा, मैंने बीटेक एजुकेशन मेरी अंबाला की है, लेकिन बीटेक मैंने NIT कुरुक्षेत्र से किया था, आज से 34 साल पहले पास आउट हुआ था 1988। फिर मैंने एमटेक किया रुड़की से, गोल्ड मेडलिस्ट था मैं एमटेक वेल्डिंग में, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से PhD किया, और मुझे लगभग 32 साल हो गए हैं टीचिंग में, जिसमें से 1.5 साल पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ पढ़ाया, 7 साल कुरुक्षेत्र NIT अल्मा मैटर में पढ़ाया, और यहाँ पर मुझे 24 वर्ष हो गए हैं IIT रुड़की में। तो हमारे यहाँ कई पोस्ट होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर। तो मैं पिछले लगभग 8-9 साल से प्रोफेसर के पद पर हूँ। ये थोड़ा सा परिचय है। इसके अलावा दो मैं रन कर रहा हूँ, NGO कह लीजिए, ट्रस्ट कह लीजिए, और उसमें काफी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे सेवाएं काम होते हैं, सेंटिमेंट, टेम्परामेंट, ह्यूमन वैल्यूज, और जो गरीब लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड, उनकी एजुकेशन में हेल्प करना, बहुत से काम हैं जो चल रहे हैं। तो कभी फिर नजदीकी और बढ़ेगी, किसी को इंटरेस्ट होगा तो बताया जा सकता। और फिलहाल मैं IIT रुड़की के अंदर एक गुंगे बहरों का स्कूल है, अनुश्रुति एकेडमी फॉर द डेफ, उसमें मैनेजर के पद पर एडिशनल काम भी कर रहा हूँ। ये छोटी बहुत बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है मैं खुश बहुत हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ। और अंदर से एक होता है दिखाने के लिए, एक होता है अंदर से खुशी है, उसके बहुत से कारण है, और उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि एजुकेशन का मतलब समझ में आया है कि एजुकेशन इज नॉट गैदरिंग नॉलेज और इन्फॉर्मेशन, डिग्रियां इकट्ठी करना या नॉलेज इकट्ठा करना, उसको रिप्रोड्यूस करना कागजों पर, वो नहीं है एजुकेशन। वो तमीज है, वो सेंस है, वो संवेदना है। अगर मैं उसको एक लाइन में कहूं कि हम नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, उसके सारे किंगडम्स के साथ कैसे मेल में रहें, पशुओं के साथ भी, पौधों के साथ भी, इंसानों के साथ भी, पर्यावरण के साथ भी। नेचर इज नॉट ओनली प्रकृति, ये नहीं कि पेड़ पौधे हैं, प्रकृति मीन्स ह्यूमन काइंड, प्लांट्स, एनिमल्स एंड इनएनिमेट वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड, सारे एस्पेक्ट्स कवर करके द टोटल नेचर। उसके साथ जितना हम हार्मनी में रहते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को उसके लिए ब्लिसफुल बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पढ़े लिखे हैं। और वो अनपढ़ भी पढ़ा लिखा हो सकता है, कबीर अनपढ़ थे लेकिन होश की बात करते थे, तो हम उनको पढ़ा लिखा मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं दिल से, तो उसके लिए डिग्रियां काफी नहीं है, डिग्रियां एडिशनल है। इसका मतलब नहीं अपनी डिग्रियां फाड़ दें या पढ़ाई लिखाई ना करें, वो भी जरूरी है कि करें, और लेकिन ये चीज है कि जितनी हमारी जिंदगी दूसरों के साथ मेल में है, उनके लिए फलदायक है, वरदान है, उतने हम पढ़े लिखे कहे जा सकते हैं। ये बेसिक चीज समझ में आई है, और ह्यूमन वैल्यूज का टच बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि बड़ों की बहुत इज्जत करता हूँ, बड़ा कोई भी सकता है जो गुणों से बड़ा है, छोटी बच्ची भी कोई है, बच्चा भी है, वो भी बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ों की इज्जत इसलिए करता हूँ, चाहे उम्र के लिहाज से हो, चाहे पद के लिहाज से हो, चाहे गुणों के लिहाज से हो, क्योंकि उनमें मेरे से गुण ज्यादा है और अच्छाइयां मेरे से ज्यादा है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, चाहे कभी हुए हैं, किसी धर्म में हुए, किसी जाति में हुए, किसी देश में हुए, पूरे विश्व में जो भी शख्स गुणों के कारण, वैल्यूज के कारण मेरे से श्रेष्ठ है, मेरे लिए नमन के काबिल है। और जो छोटे हैं, अजीज हैं, ठीक है उनको अभी खिलने का बढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि गुनाह मेरे से कम है, उन्हें गलतियां मेरे से कम की है, दे आर रिस्पेक्टफुल अगेन बिकॉज ऑफ दैट पार्ट। जो चीजें सीखी हैं मैं आपको बहुत थ्योरेटिकली नहीं बताऊंगा, मैं पीपीटी बना सकता था, बहुत सी चीजें दिखा सकता हूँ, क्योंकि हमारा स्टाइल ही होता है टेक्नोक्रेट्स का, चीजों को प्रोड्यूस करने का, डाटा चीजें बहुत जानते हैं। मैं सिर्फ आज के इसमें जो भी सुन रहे हैं, अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो कभी काम आएगी, वो चीजें बताना चाहूंगा जो मुझे समझ में आई। जानते हैं बहुत कुछ है, हम समझते बहुत कम है, जानना बहुत होता है, समझ कम होती है। और एक मैथमेटिक्स होता है सेट, सबसेट, देन सबसेट, ये सेट है, ये सबसेट, फिर छोटा होता है सबका सबसेट। होता क्या है कि हम जानते इतना है, और कई बार ज्यादा जानकारी से हमारे अंदर अहम आ जाता है कि हम इतना जानते हैं, मुझे इतने अध्याय याद हैं, इतने श्लोक याद हैं, जो भी जिस भी हम संस्था जुड़े हैं या किसी ग्रंथ से जुड़े हैं, तो उसको याद करना और उसका ज्ञान होना बहुत बड़ा पंडित और बड़ी बात समझी जाती है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि बहुत लोग, मैंने बहुत लोगों से पाला पड़ा है, एक लेवल के बाद जब ज्ञान ज्यादा हो जाता है वो अहंकार बढ़ा देता है और उसके काम का भी रह जाता। तो मेरा मानना है कि ज्ञान थोड़ा कम हो तो चलेगा, उसकी समझ ज्यादा जरूरी है। अगर समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो अहम नहीं आता। और उससे भी ज्यादा कहीं जरूरी है कि समझ तो है, मान लो मुझे ज्ञान है कि सिगरेट पीना नुकसानदायक है, एज ए डॉक्टर फॉर एग्जांपल, मैं डॉक्टर हूं तो मैं, मेरे साथ कौन जाने, एमबीबीएस हूं मैं बाय चांस, तो मैं बेस्ट बता सकता हूं कि कौन सी चीज क्या खाना हितकर है, क्या नुकसानदायक है, इफ स्मोकिंग की बात करें हार्मफुल है, लेकिन समझ नहीं रहा हूं, खुद पी रहा हूं क्या समझ रहा हूँ फिर मैं, ऐसा ज्ञान का क्या लाभ है। तो उससे बड़ी बात है कि समझ के बाद अगर आप जानते हैं उसको जीवन में धारण नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान वही काम की बात है, हमारे लिए वही चीज काम की है जो मेरे जीवन में उतर गई, जो ज्ञान जीवन में ढला नहीं, जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं, मैं कड़वा शब्द यूज करता हूँ, बोझ है आपके ऊपर। वो ज्ञान जरूरी है, लेकिन उसको ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो हम सुन रहे हैं इसको समझें और जीवन में धारण करें। तो मैं कुछ ऐसी बातें प्रैक्टिकली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, समझता भी हूं किसी हद तक, और जीने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं, और जीने से जो आनंद आ रहा है वो आपके साथ अपना आनंद ही शेयर कर रहा हूं।
0: जी,
1: पहली बात, एक लाइन पड़ी थी, ये आंधी है दरख्तों को चटक जाएगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। जब आंधियां आती हैं, दिखते हैं तकलीफें जिंदगी में आती हैं, हर एक की आती हैं, तो जो दरख्त हैं वो चटक जाएंगे, जो अकड़े हुए पेड़ हैं उखड़ जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं बड़े बड़े पेड़, और जो टहनियां, जो कोंपले, जो घास झुक जाती है वो जिंदगी में लचक के साथ कामयाब हो जाती है। ये बात बड़ी दिल से समझ में आई, मैंने बहुत लोगों के जीवनों को बहुत पास से देखा कि बहुत अकड़ के चक्कर में वो सच्चा सम्मान ही नहीं पा पाए, थोड़ी अकड़ कम होती तो ज्यादा इज्जत मिलती। तो झुकते हैं वही, एक लाइन और पड़ी थी, झुकते हैं वही जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। शायद हमें से कई बच्चों ने तो मुर्दा ढंग से देखा नहीं होगा, लेकिन आप मुर्दे को देखे ना तो उसको कफन पहनाना ही मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत नजदीक से अपने कई बुजुर्गों को देखा है कि कपड़े भी फाड़ के पहनाते हैं साथ में उसको, जो मेरे पापा मेरे दादा जो फ्लेक्सीबल थे, जब उनके अंदर से जान निकल गई ना तो ये शरीर मुड़ता नहीं है, अकड़ जाता है, मुर्दे की निशानी है अकड़ना। तो जिंदगी में प्रैक्टिकली मैं चलते हुए आपसे बात करते हुए, आपसे मिलते हुए, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ, अपने विद्यार्थियों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अगर अकड़ के चलता हूँ कहीं भी, किसी छोटे व्यक्ति के साथ, मान लो कोई रिक्शा वाला है, कोई गरीब है, मजदूर है, और मैं अकड़ के बात करता हूँ, तो समझो मेरे में जान नहीं है, मैं मुर्दा हूँ, ये बात समझ में आती है। और कहते हैं गरूर ना कर शाहे शरीर का, ये शाहे शरीर है, चमक दमक है चेहरे पर, अभी कायम है, ये इसकी अकड़ करने की जरूरत नहीं है। गरूर ना कर शाहे शरीर का, मेरा भी खाक होगा, ये दूसरे के लिए भी है, अमित जी आपके लिए भी, मेरे लिए भी सच है, मेरा भी खाक होगा, तेरा भी खाक होगा, हम सब समाप्त होने के लिए है शरीर रूप से, इसलिए अपने शरीर का, अपने धन का, अपनी चीजों का जो नाशवान है, उनका कभी भी अकड़ नहीं करना। जिंदगी में कितना भी ऊंचा उठो, रिमेन हम्बल, रूल नंबर वन। जिंदगी में हम कामयाब उसी को समझ सकते हैं सही मायनों में जो विनम्र रहता है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी को जो बहुत इफेक्ट करती है, दैट इज हम सोचते हैं कि बहुत पावरफुल आदमी वो है, पावर की आंकना ऐसी की जाती है कि वो कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है। मैं समझता हूँ कि सफलता का जो दूसरा पैमाना मेरे सामने है, सफल वो है जो स्वयं को कंट्रोल कर सकता है, और उसने खुद को कंट्रोल कर लिया, बस सब काम सही हो जाएगा फिर। और सबसे पहले जो सेल्फ कंट्रोल है उसमें है बोलना। आप सही बोलते हैं तभी लोग बुलाते हैं, वक्ता के रूप में भी, और दोबारा भी आपका नंबर तब लगेगा। नहीं तो आने देंगे अमित जी और रमेश जी मिलकर के, कैसे नलायक को बुला लिया, इसको बोलने की अकल नहीं। पहली चीज वही है कि जो आप बोल रहे हैं आपका कंट्रोल होना चाहिए। जिंदगी में सीखिए, आपकी जबान पर अगर आपको तमीज नहीं है, कंट्रोल नहीं है, आपका कैच नहीं है, पकड़ नहीं है, तो आपकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। आप कैसे इंसान में बाद में चलेगा, हृदय समय में आएगा, या आप कैसा बोलते हैं वो पहले समय में आएगा। तो सोचो वही जो बोला जा सके, सोचो वही जो बोला जा सके। आपको पता है कि जो बोला नहीं जा सकता वो सोचते रहोगे तो किसी दिन स्लिप ऑफ टंग हो जाए। हम कहते भी हैं यार मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो स्लिप ऑफ टंग इसलिए हुआ कि हम वो चीज सोचते रहे जो बोलने नहीं थी चाहिए थी। तो अगर आपको पता है जो मैं बोल नहीं सकता बिकॉज ऑफ माई पर्सनैलिटी, माई स्टेटस, मैं एक प्रोफेसर हूँ या पढ़ा लिखा हूँ या पिता हूँ या एक मेरा एक स्टेटस है, मैं वो बात नहीं कह सकता ना आपको। जब मैं कह नहीं सकता तो मेरा मानना ये है, जो मैंने थंब रूल बनाया कि अपना दिमाग खराब क्यों करना सोच सोच के, फिर वो जो मुझे कहना नहीं है वो मुझे सोचना भी नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: अब बोलना क्या है, बोलने के भी चेक पॉइंट है एक बड़ा मजेदार, कहते बोलो वही जिसके नीचे हस्ताक्षर कर सको। मान लो मैं अपने किसी अजीज को, अपने किसी कुली को कहूं तेरा दिमाग ठीक नहीं है, कह तो नहीं दिया और वो लिख के ले आया कि ये मैंने लिखा है मेरा आपका दिमाग ठीक नहीं है, अब साइन कर दीजिए। मैं साइन करूंगा? साइन नहीं करूंगा। जब इसका मतलब जिस चीज पे मैं साइन नहीं कर सकता, जिसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, मुझे बोलना भी नहीं। दो बैरियर है मेरे माइंड में जो मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है। एक बार डिसिप्लिन में अपने आप ढाल लिया, काम आसान हो गया। जो चीज मैं लिख के नहीं दे सकता, दूसरे को कहना नहीं तू पागल है, तेरे गधा है, तेरे अकल नहीं है, तू समझता क्या, ऐसी बातें क्यों बोलनी किसी को भाई जो आप लिख के नहीं दे सकते, जो आने वाले टाइम में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिस पे आपको कोई प्रमाण नहीं है। ऐसी बातें कहने का अपने आप को ही ट्रेनिंग प्रोसेस है, अपने आप को ट्रेन करना है, स्वयं को नियंत्रित करना है, अभ्यास डालने की बात है कि मैं वो नहीं बोलूंगा जो मैं लिख के नहीं दे सकता, और जो मैं बोल नहीं सकता फिर वो मैं सोचूंगा क्यों। और ज्यादातर क्या होता है, लोग केवल लिख के नहीं देते, बोलते भी नहीं, लेकिन मन खराब करते रहते हैं, अपना दिमाग खराब करते रहते हैं। ये पोल्यूशन जो यहाँ है ना, इसको भी घटाना है। अपना सुकून बहुत जरूरी है। जब यहाँ ही गाली नहीं है, अब शब्द मेरे यहाँ ही नहीं है, तो उसका सुकून मुझे है। एक बात और याद रखने वाली है, वाणी के ऊपर बात चल रही है, तो आप कब सही थे से कोई याद नहीं रखता। मैं अब एक घंटा आपके बीच में हूँ बोलने के लिए, हो सकता है मैं एक घंटे में 60 बातें अच्छी कर जाऊं, लेकिन अगर मैंने एक अपशब्द यूज कर दिया, कोई गलत बात बोल दी, तो 10 साल बाद भी अगर अमित जी कहेंगे रमेश जी को कि नवनीत जी को बुला लें, तो रमेश जी कहेंगे अच्छा वो प्रोफेसर जिसने ये शब्द यूज किया था। 60 में से 59 मेरी बातें निकल जाएंगी सही वाली, गलत एक पकड़ी जाएगी। याद रखिए बात, आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे इसे कोई कभी भूलता नहीं। तो इसलिए लोग कहते हैं सॉरी कर लो, वेरी सॉरी कर लो, पैंव पकड़ लो। मैं कहता हूं अपने ऊपर इतना, हमारे ऊपर इतना प्यारा से, हम बहुत प्यारे इंसान है ना, तो हमें इतना प्यारा नियंत्रण अपने ऊपर होना चाहिए ताकि मैं माफी मांगने की जरूरत ही ना पड़े मेरे को। ऐसी स्थिति क्यों आए, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बेइज्जती कराऊं अपनी। पहले से ही अगर मैं प्लान वे में काम करूंगा तो ऐसी गलतियों से बचा जा सकता। पका हुआ फल जैसे होता है ना, पका हुआ फल की पहचान होती है। एक तो आम है या पपीता है, हम ले जाते हैं ना, केला भी, कोई फ्रूट देखिए आप। एक तो पपीता, जैसे मैं आज सुबह ही खाया, मैंने काटा, बड़ा एंजॉय करता हूँ पपीता, बड़ा अच्छा मिल जाता है कई बार, तो उसमें एक तो नरम हो जाता है, दबा के पड़ जाता है। देखा आपने कभी पपीता को दबाइए, पड़ जाएगा नरम हो गया। एक उसको टेस्ट, अगर मेरी आंखें बंद कर दीजिए, मेरे मुंह में डालेंगे तो मैं पका हुआ बता दूंगा, वो ना कच्चा होगा ना स्मेल वाला होगा, वो मीठा होगा। कोई भी फल एक नरम हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है, मीठा, स्वीट। आमतौर पर स्वीट फल जो होते हैं स्वीट हो जाते हैं, चाहे अंगूर है, चाहे पपीता है, चाहे आम है। और तीसरा उसका रंग बदल जाता है, रंग बहुत सुंदर हो जाता है, दूर से ही पता चल जाता है। रेडी वाले को देखते हैं हम, रुक जाते हैं कि इसका रंग बहुत सुंदर है पपीते का, और जब टेस्ट करके देखते हैं तो मीठा निकलता है, और दबा के देखते हैं नरम निकलता है। तो तीन गुण हो जाते हैं एक मीठे फल में, आमतौर पर पके हुए फल के अंदर, नरम, मीठा और उसका रंग, कलर।
0: नवनीत सर एक बात और पूछना चाहूँ, एक बात हम लोग अभी जो है अमित सर के पास कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, तो वो चाहेंगे कि आपसे बात करें, क्वेश्चन आंसर सेशन पूरा।
1: हाँ, मैं टाइम दूंगा, वेलकम, तो मैं चाहूंगा। इसका मतलब कोई सुन रहा है ध्यान, अगर क्वेश्चंस हैं तो इसका मतलब कोई इंटरेस्ट ले रहा है और ध्यान से सुन रहा है।
0: जी
1: अभी अमित सर करते हैं, थोड़ा बात कर लें फिर क्वेश्चंस ले लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: नवनीत जी, एवरी वर्ड ऑफ योर,
1: ऐसे ही परिपक्व मेच्योर्ड व्यक्ति, एक अच्छी पर्सनैलिटी के भी यही गुण होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, विनम्रता, अकड़ नहीं, विनम्र, दबाओ तो जैसे फल था नरम,
0: बिल्कुल
1: ऐसे वाणी की बात की हमने, वाणी में मिठास। और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मबल का, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है उससे, जब आपका करेक्टर अच्छा होता है तो आत्मिक बल का तेज आता है, रंग आता है। तो तीनों गुण पके हुए फल वाले, नरम, मीठा और रंगत, तो चेहरे पर रंगत, वाणी में मिठास और व्यवहार में विनम्रता। ह्यूमन टच की बात जो हम कर रहे थे वो तो हर जगह काम आती है। जिंदगी में इंसान इंसान तभी है अगर उसमें इंसानियत है। आपका व्यवहार सबसे पहले आपको इंसान है, कोई किस पोस्ट पर है, क्या काम करता है, वो बाद की बात है। मान लो अमित जी है या ये बेटी रोशनी थी, छोटी उम्र की लग रही है मुझे, तो इनकी गलती नहीं है कि बाद में पैदा हुए, मैं जल्दी पैदा हो गया। ईयर ऑफ बर्थ इफ इज अर्ली इट डजंट मीन कि मैं इनके साथ, छोटों के साथ, अनुज के साथ सही व्यवहार ना करूं। तो मेरा व्यवहार अच्छा, मुझे अच्छा पढ़ने का मौका मिल गया, मुझे मावा से अच्छा दिमाग मिल गया तो मैं प्रोफेसर बन गया, तो मान लो कोई क्लर्क है या किसी और कोई और कार्य करता है, कोई रिक्शा वाला है, इंसान की कीमत इंसान लिहाज से हमेशा हमारे हृदय में होनी चाहिए। और इंसानियत हर पग पर हृदय को टच करती है, उसको खुशी देती है, और बदले में रिएक्शन में इको के रूप में आप तो भी खुशी चाहते हैं। अगर आप जिंदगी में खुश रहना, कोई भी पढ़ ले कमा ले, अल्टीमेटली इंसान खुश होना चाहता है। आई शुड रिमेन हैप्पी। तो हैप्पीनेस की सीक्रेट यह है, बोइए, एफडी कीजिए, प्यार की, स्नेह की, व्यवहार की, इंसानियत की एफडी कीजिए। बहुत बार मैंने इसको जमाकर देखा है, छोटी छोटी एफडी इतना प्यार देती हैं। मैं एक बार बस स्टैंड स्टेशन पे उतरा तो मेरे हाथ में अटैची थी, आजकल बड़ा लकी है कि रोलर लगे होते हैं तो रोलर से आप लेके आ जाते हैं, छोटा बैग था। तो इमीडिएटली एक बुजुर्ग वार अच्छी उम्र के होंगे मेरे से 15 साल 20 साल बड़े, एक रिक्शा पुलर आए और मेरा अटैची उठाने लगे। मैं क्या आप क्यों उठा रहे हैं? कह सर मैं रिक्शा तक ले जाऊंगा। मैं क्या आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं उठाऊंगा। इतना कहते तो उसकी आंखों में चमक आ गई, कहते बाबू जी मुझे उम्र में बड़ा देख रहे हैं। तो एक छोटा सा सम्मान उसके प्रति, उसको कितनी खुशी थी। और जब घर उतरे तो मैंने कहा कितने पैसे, उसने कहा 30। मैं 30 दे दिए। मैं रुक जाओ नीचे उतरो, नीचे उतरा। मैं उसको कहा आपसे गले मिलना है, तो जबकि उसको पसीना भी आया हुआ था, मुझे नहाना ही था घर जाके, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं उसको गले मिलके, जबकि वो मुस्लिम भाई थे और कपड़े भी ऐसे थे और दाढ़ी ऐसी थी, लेकिन मैं उसको जफ्फी डाली। मैं कहा यार तुम ईमानदारी की कमाई खाते, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये ह्यूमन टच है, पर्सनल टच है, इंसानियत का टच है। उसकी आंखों में पानी तैर गया इतनी बात, और 10 रुपए और दिए कि तुम ईमानदारी की कमाई खाते हो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। एक फ्रूट वाले से मैं, दो भाई थे, मैं कहा भाई दोनों इधर बाहर आओ। कहते सर क्या हो गया? मैं कहा मिलना है, बात करनी है। मैं कहा कमाई के बहुत से साधन हो सकते हैं, तुम लोगों को हेल्दी चीज खिलाते हो, फ्रूट खिलाते हो, उन दोनों को प्यार किया, वो आज तक उस जफ्फी को भूले नहीं है कि सर आपने मुझे अप्रिशिएट कभी किसने किया ही नहीं। हजारों लोग हमारे से फ्रूट ले, किसी ने यही नहीं कहा तुम्हारा प्रोफेशन अच्छा है। तो एक पर्सनल टच, एक अप्रिशिएशन, एक अच्छा वाक्य किसी के लिए कितना हेल्दी हो सकता है। चंडीगढ़ में मैं एक बार किसी काम से गया तो मोची ने बहुत अच्छे से काम किया। मैंने मोची भाई को कहा, मैं आप खड़े हो सकते हैं? कहते क्यों खड़ा हो जी मैं? मैं आपको प्यार करना है। तो मोची भाई खड़े हो गए, मैंने उनको प्यार किया। मैं इतने अच्छे से काम करते हो दिल लगा के। उसने फिर अपनी स्टोरी सुनाई शुरू की, सर मैं हमेशा ही ये नहीं देखता कितने रुपए का काम है, कैसे है, मैं सोचता हूँ कि इसको दोबारा मेरे पास लाना पड़े, दी बेस्ट करके दो। एक बार मैं हमारे यहाँ स्टेट बैंक में एक गार्ड बंदूक वाला, मैंने देखा कि वो जो भी बुजुर्ग बहुत बड़ी उम्र का आता है 85-90 ईयर्स ओल्ड, तो उनका हाथ पकड़ के उनको गाइड करता है कि आप यहाँ खड़े हो जाए। कई बार अंदर इंस्ट्रक्शन देता है जो हेल्प के, मैडम देखना ये बुजुर्ग आए 90 साल के, इनकी हेल्प कर दीजिए। तो किसी का फॉर्म भरने में हेल्प कर रहा है, कोई कभी किसी की हेल्प करता है, तो आउट ऑफ द वे जाके वो हेल्प करता है। मैंने दूसरी बार देखा फिर वो सबकी हेल्प कर रहा था, तो मैंने उसको फिर कहा मैं आपसे सेल्फी लेनी है। कहते सर बैंक में सेल्फी अलाउड नहीं है। मैं बाहर आ जाऊं, बाहर आए सेल्फी ली, तो मैंने अपने ग्रुप में पोस्ट की, वो वायरल होते होते उनके स्टेट बैंक के मैनेजर पहुंच गए। मैनेजर ने उसको बुला के तारीफ की कि आपने हमारे SBI का नाक ऊंचा किया, इतने लोगों की तारीफ नहीं हुई, तुम्हारे व्यवहार की तारीफ हुई है। तो छोटी छोटी चीजें, हमारे यहाँ एक वॉशरूम बगल में है, मैं आपको ह्यूमन टच की बता रहा हूँ बात। बहुत कुछ दिन से मैंने महसूस किया साफ रहता है, तो मैं यूज करके बाहर आया, तो वो स्वीपर जो थे वो वहां पर थे, तो मैंने उनको कहा कि आइए। कहते सर बताइए क्या क्या बात है? मैं क्या आपको ना थपकी देनी है। कहते किस बात की? मैंने कंधे बात रखा। मैं जब से आप आए, अभी आए ना आप 2-3 हफ्ते पहले? कहते हाँ। मैं जब से आप आए ये स्थान बहुत साफ रहता है, आप देखिए कि वो कहते हैं वो एक जहर होता है पोटेशियम साइनाइड, वो बहुत तीव्र रिएक्शन करता है। मैं उसका तो रिएक्शन मैंने कभी अनुभव किया नहीं कि लगा के देखूं कितनी जल्दी करता है, लेकिन मैंने अप्रिशिएशन का, दिल से निकली प्रशंसा और उसके अच्छे शब्दों का असर मैंने देखा है। मेरे कहते ही लेस देन सेकंड उसकी आंखों में पानी आ गया। वो स्वीपर भाई कहने लगे, कहते शायद शुक्र है किसी ने देखा तो सही। मैंने जब कहा कि आपके आते हुए ये स्थान बहुत साफ रहने लग गया है, उसकी आंखों में पानी आ गया। कहते सर शुक्र है किसी ने देखा तो सही। लेस देन ए सेकंड पानी आंखों में आ गया। इतना इंसान मैंने एक बार, और हमारे दूसरे विभाग में मैं गया तो वहां एक स्वीपर थे, मैंने गले में हाथ रख के कहा पीठ पे, मैं आप कैसे हो? कहते सर पहली बार किसी ने गले मिलकर ऐसे पूछा आप कैसे हो, पूछता भी तो इंसान ही नहीं मानता कोई। तो ये देखिए कि जितना आप छोटा छोटा व्यवहार किसी इंसान के साथ करते हैं, कितना वो खुशी आपको देता है, कितना खुशी उसको देता है, यही इंसानियत है। जितना हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, जितना हम जीते हैं, उतनी हमें कुछ खुशियां मिलती चलती हैं। जिंदगी में एक और गुण बहुत हेल्प करता है जो मैंने बहुत अजमा के देखा है, वो है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जिंदगी में बहुत कुछ हमें दिया है, ये जिंदगी बहुत प्यारी है, लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। मैं हमेशा बच्चों से कहा करता हूँ, प्लीज डोंट इंसल्ट योर लाइफ, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट मदर नेचर हैज गिवन यू, यूटिलाइज इट फुली, एवरी सेकंड, एवरी डे, एवरी मिनट, हर पल इसका एंजॉय करने के लायक है। एंजॉय का मतलब ये नहीं कि पियोर पड़ जाओ, ये मतलब नहीं है, रुच खुशियां जो हैं वो आपको गलत दिशा में ले जा सकती हैं। दो किस्म का होता है, एक विनाश विकास। रुचियां वो फॉलो करनी है, खुशियां वो फॉलो करनी है जो विकास के पथ पे लेके जाए। तो जिंदगी विकास पे चलने के लिए, इवॉल्व करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, यू विल हैव टू बी सिलेक्टिव। उच्च खुशियां, नीच खुशियां, अदना खुशियां। अदना खुशियां दुखों में फंसाएंगी। इसलिए कोई भी नशा किसी किस्म का भी है, फौरी आपको हेल्प दे सकता है, आराम दे सकता है, सुकून दे सकता है, मजा दे सकता है, सो कॉल्ड, बट अल्टीमेटली टेक टू विनाश। क्यों? गलत दिशा है वो, तरीका गलत है। तो जो उच्च खुशियां हैं, पॉजिटिव चीजों में खुशी है, वो खुशी जीने के लिए है, पाने के लिए है। तो उसमें एक बहुत चीज जो हेल्प करती है खुश रहने में और आपको ग्रो करने में, नेचर का लॉ भी है, वो है ग्रेटिट्यूड। और इसका बड़ा क्रिटिकल सा नियम है, बड़ा मजेदार नियम है, जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह और समृद्ध होता जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी धीरे धीरे उससे ले लिया जाएगा। अगर कृतज्ञता नहीं है, इफ यू डोंट काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो धीरे धीरे ब्लेसिंग्स छिनने लगेंगी आपसे, खोती चली जाएंगी। और जब अपनी ब्लेसिंग्स को आप काउंट करते हैं तो ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होने लगती हैं। तो ग्रेटिट्यूड इज ए मैग्नेटिक पावर, इट इज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक बुक भी आई थी, अगर किसी ने पढ़ी हो, सीक्रेट, वो तो बात यही कर रही है, ग्रेटिट्यूड की मेनली बात करते हैं वो। तो समान ही समान को आकर्षित करता है। अगर हम जो चीज हमारे अंदर है, पॉजिटिविटी है, थैंकफुल है, तो आप वैसे देखिए, अगर घर में कोई लेडी काम करती है, भाई काम करती है, कोई आपका अजीज है, कुछ मांग के ले जाए, दो बच्चे हैं, कुछ आपसे चीज ले गए, बुक ले गए, एक ने कभी आपको पलट के थैंक यू नहीं कहा, भूल भी गया, पहचानता नहीं है, और एक आपके लिए बहुत थैंकफुल फील करता है, बहुत आपको याद करता है, धन्यवाद देता है, आपको सजदा करता है, आपको दोबारा किसको देने का मन करेगा? आप ही देख लीजिए, जो रिकॉग्नाइज करता है, जो थैंकफुल है, जो ग्रेटफुल है, उसके लिए आप कुछ भी करने तैयार होते हैं। किसी किसी के लिए हम कहते हैं इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, वो व्यक्ति अक्सर वही होता है जिसके लिए आप कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होती है। यही मदर नेचर का कंसेप्ट है, जो थैंकफुल है, जो ग्रेटफुल है, जो किसी के किए को, एहसान को मानता है, उसको मदर नेचर और ब्लेसिंग्स देती है। तो लकी है वो जो अपने अंदर कृतज्ञता के भाव को जगा सके। एक जिंदगी में हमारे पास एनर्जी और टाइम बड़ा लिमिटेड है, एम्पल नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सिचुएशंस के अनुसार रिएक्शन ना करें, रिस्पॉन्स करें। डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। पेशेंस, धैर्य हृदय में होगा, टॉलरेंस होगी, सहनशीलता होगी, तो आप परिस्थितियों में रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट करना आसान होता है, रिस्पॉन्ड करना मुश्किल होता है। रिस्पॉन्ड में स्थिति को संभालना पड़ता है, दो पानी के घूंट पीके शांति से बात करनी पड़ती है। बीरबल का आप देखिए कितना बड़ा एग्जांपल है, हमारे रोल मॉडल है। वो कभी भी सिंपल से सिंपल रिप्लाई भी एकदम नहीं देते थे, सोच के समझ के देते थे कि जहां पर ना कल बताऊंगा, नेक्स्ट डे। यूजली ही हैज बीन रिस्पॉन्डिंग नेक्स्ट डे, और द नेक्स्ट डे रिस्पॉन्स वॉज वेरी गुड। हम कई बार कहते हैं ओवर रिएक्शन में रहते हैं, ये कहा ये आंसर, वो गलत भी होता ठीक भी होता। तो इसलिए जिंदगी में पेशेंस बहुत बड़ी चीज है, हम रिएक्ट नहीं करें बल्कि रिस्पॉन्स करना सीखें, और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना भी सीखें। जैसे कहते हैं कि दुनिया में बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक मामूली सी मुस्कुराहट, किसी ने गलती कर दी, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, रिलैक्स हो जाए। देखिए, जब हम एज ए फादर, एज ए टीचर खड़े होते हैं, बच्चे से गलती होती है, तो वो कब तक वेट करता है, उसको कब पता चलता है कि उसको माफ कर दिया? जब हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, बात आई गई हुई, रफा दफा हो गई। और अगर हमारे से गलती हो गई है तो हल्की सी छोटी सी सॉरी बोलकर भी जिंदगी दोबारा पहले जैसी हो सकती है। कई बार टाइमली सॉरी ना बोलकर या टाइमली किसी को माफ ना करके इतना हमारा रिश्ता खींच जाता है कि कई बार रिपेयर ही नहीं हो पाता। तो रिश्तों में चाहे कहीं भी है, हमें थोड़ा सा धैर्य और सहनशीलता का गुण भी अपने अंदर रखना है। इसके अलावा हम जो संसार में सेवा के लिए बड़ा जोर देते हैं, लोग सेवा कीजिए, हर संस्था में जाइए आप, सेवा बहुत जोर है, तो हम सेवा देते नहीं है। असल में सच्चाई ये है, वी आर रिटर्निंग व्हाट वी हैव गॉट। और हमारे पास कुछ होगा नहीं तो देंगे कहां से, कुछ मिला है उसमें से हम लौटा रहे हैं। चर्चिल की बात बड़ी अच्छी लगती थी, मैं पढ़ी एक जगह लाइन, मुझे बड़ी टच

0: कि वो वी मेक ए लिविंग बाय व्हाट वी अर्न एंड वी मेक ए लाइफ बाय व्हाट वी गिव या व्हाट वी रिटर्न। जिंदगी में जो हम कमाते हैं वो तुम्हारी जीविका है, जो भी हम अर्न कर रहे हैं किसी भी रिसोर्स से। असली जिंदगी वही है जो हम किसी के लिए काम आते हैं, किसी को जो हमें मिला है जिंदगी में हम लौटाते हैं। इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जिंदगी में हम किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कितना काम आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बातें बहुत हैं, बहुत सी की जा सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि मुझे अभी इशारा किया गया है कि क्वेश्चंस हैं, तो बेटर है कि क्वेश्चंस की रिप्लाई कीजिए, तो ज्यादा मैं प्रयास करता हूँ कि मैं कितना सफल होऊंगा, देखते हैं। प्लीज
1: जी जी अमित जी हमारे साथ अभी आपको सवाल जवाब करेंगे। जी अमित जी।
2: नवनीत जी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, मेरी कोशिश ये थी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच नवनीत जी, और आपका एवरी वर्ड ऑफ योर्स फुल ऑफ विजडम, और मेरी पूरी कोशिश थी उसको एक एक पॉइंट को जोट डाउन करना।
0: So kind of you.
2: और ये जो भी आपका एक एक पॉइंट है, ये जो कॉलेज के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे रोशनी, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एवरी वर्ड ऑफ योर्स जो आप बात करेंगे अभी और जो अभी तक आपने की है, इस पे चिंतन होगा, मंथन होगा, बहुत सारी चीजें निकाली जाएंगी। एटलीस्ट फॉर अ वीक हम लोग हर स्पीकर को फॉलो करते हैं।
0: जी जी जी
2: जी,
0: मैंने थ्योरेटिकल बात नहीं बताई, जो प्रैक्टिस में चीजें आ सकती है जो हम कर सकते हैं, इस पे और खुल के बात हो सकती है। और अभी क्वेश्चन हो तो पूछिए आप।
2: जी सर जी, क्वेश्चन हमारे पास में इंटरनेशनल डिवाइन कॉलेज से रोशनी है और इनका पार्ट है ह्यूमन वैल्यूज का, इनको पढ़ाई जाती है सारी चीजें, लेकिन आप अपने प्रैक्टिकल अनुभव जब इनको बता रहे हैं तो बहुत गहराई से इनको ये बात छूने वाली है। जी रोशनी, आपका सर के लिए प्रश्न आपका।
3: थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, हमें नवनीत सर जैसे शख्सियत से मिलने का मौका मिला है, वो बहुत अच्छा सिखा रही है, उनकी वैल्यूज बहुत अच्छी है, उनका सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूट बहुत अच्छा है। चलिए धन्यवाद, अपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे आपसे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मेरे पास आपके लिए थोड़े से कुछ प्रश्न है। जैसे आप हर किसी को भी प्यार देते हो, चाहे मोची हो चाहे कोई कैब ड्राइवर हो, आप सबको इतना प्यार देते हो, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं कॉलेज में थी, प्लस वन प्लस टू में थी, मेरे बाल अच्छे से नहीं होते थे, मेरी यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं होती थी, इसलिए बच्चे ना मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करने के लिए बहुत ज्यादा बुली करते थे, मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे, पर मैंने उसे फाइट किया, मैं लड़के बाहर आ गई और मैंने इतना नेगेटिव वो था सहा था, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। दो साल मैंने डिप्रेशन में काटे हैं, मैं नींद की गोलियां लेती थी। तो मैं उससे रिलेटेड आपको पूछना चाहूंगी कि आगे मैं टीचर बन रही हूँ, मैं बीएड कर रही हूँ, मेरे आगे बच्चा ऐसा काम ना करे, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर मुझे ये बताइए कि मैं अपने बच्चों को क्या शिक्षा दूँ कि वो किसी के साथ नेट बुलिंग ना करे, किसी को परेशान ना करे, वो सबसे जो मैंने
0: मेरे बच्चे। अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप एक काम करें, मैं एक कभी देखो बहुत सी चीजें बताने वाली थी, अभी भी थी तो जुड़ गई है बात, अब आ गई, मैंने बताई नहीं थी अभी तक। मैं बच्चों को अक्सर कहा करता हूँ, खुद भी इसको काफी हद तक फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, कि चार बातें जो हैं उसको डस्टबिन में फेंक दो शुरू में। पहली बात, लोग क्या कहेंगे, आपको किसी को मेंटर बनाना चाहिए, चाहे वो अमित जी हो, नवनीत जी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, जिसको आपको प्यार पसंद आता है कि यार ये बंदा सही है, थोड़ा फॉलो करो, जज भी करो उसको थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध आप आंख बंद कर चलो उसके पीछे। अगर वो कह रहा है इट में बी योर फादर, इट में बी योर मदर, इट में बी सिस्टर और सम फ्रेंड इवन, वहां तक फॉलो करो, जहां तो थोड़ा जजमेंट भी रखो, लेकिन उसको खुश करना है, मतलब उसके मोहर लगवा लो। आप सोसाइटी में इतनी वैरायटी है, सबसे मोहर लगवाओगे तो कभी भी कंक्लूड नहीं कर पाओगे। एक तो जो व्यक्ति हर किसी को प्लीज करना चाहता है दुनिया में कभी कामयाब नहीं होता, क्योंकि इतनी डिमेंशंस हैं, किसी को झूठ बोलना पसंद है, किसी को सच बोलना पसंद है, दोनों को पसंद करूंगा मैं, दोनों के पीछे चलूंगा तो कहां जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाऊंगा ना। तो इसलिए अपने आप को फोकस पॉइंट कम रखना चाहिए, लेकिन अंधा नहीं होना चाहिए। पहला उसने डुबो दिया कहीं, आप थोड़ा सा अपना लॉजिक, अपना माइंड भी ब्रेन यूज करो, लेकिन आपको जहां तक ठीक लग रहा है उसको फॉलो करो, और उससे पूछो ये सही है गलत है, वो कहे सही है तो बढ़ो आगे। लोग क्या कहेंगे, पब्लिक ओपिनियन के चक्कर में कई बार गड़बड़ हो जाती है। दूसरी बात, ये कोई भी चीज सोचना कि मुझसे नहीं होगा, अगर एक से हो सकता है दूसरा भी करने की कोशिश तो कर ही सकता है, उतना नहीं होगा तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं एवरेस्ट नहीं चढ़ सकता लेकिन छोटी पहाड़ी चढ़ सकता हूं मैं भी, तरीका तो उसी का है। तो ये कहना कि मुझसे नहीं होगा, पहले ही डिक्लाइन कर देना, ये भी कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, जो भी आप मेंटर जिसको कर रहे हैं उसको ये सेंटेंस काट दे, और एक अभी मेरा मूड नहीं है, ये मूड कहां से स्विच ऑन होगा, ये तो मूड कभी नहीं बनेगा। तो ये सेंटेंस ऐसे है कि यू शुड बी रेडी, लाइफ इज शॉर्ट, आपको हमेशा तैयार रहना है। और चौथी बात, मेरी तो किस्मत ही खराब है, किसी पहलू में अगर आप सफल नहीं होते तो किस्मत को दोष देना, ये चारों चीजें हमें आगे नहीं बढ़ने देती। लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, अभी मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। असल में जब आपका ये लेवल तब रहता है, जब आपके जैसे ये बिटिया कह रही थी बालों के बारे में कि उनको लेके लोग जज करते हैं, मैं डिप्रेशन में आ गई। असल में चीज क्या है कि जब तक हमारी लाइफ में बैलेंस वायर्ड है, लाइफ इज ए बैलेंस, बाहर की चीजें भी मैटर करती हैं लेकिन भीतर जो है ज्यादा मैटर करता है। अभी मैं एक जगह एक लेक्चर दे रहा था, मैं बताया था कालगेरी टावर है कनाडा में, बहुत मशहूर टावर है, उसका जो मटेरियल है वो लगभग मान लो 10,000 टन है रफली, जो मटेरियल लगा है कंस्ट्रक्शन मटेरियल टोटल, आपको सुनकर हैरानी होगी कि लगभग 6,300 टन यानी कि ऑलमोस्ट 65% या 60% इन बिटवीन इज इन साइड द अर्थ, जो अर्थ लेवल है उसके नीचे कितना है से मोर देन 60%। तो जो टावर इतना ऊंचा बना है जो वर्ल्ड फेम का कालागिरी बल्कि है सही उसको प्रोनाउंस करें तो वो उसमें लोग जाते हैं देखने के लिए पूरे वर्ल्ड से, तो उसका 60% कहां है, इनसाइड द अर्थ नीव फाउंडेशन। तो अगर हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी हमारी पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, अपनी डेप्थ बढ़ाने की जरूरत है फीलिंग्स के अंदर, पॉजिटिविटी के अंदर, बाय स्टडी बाय प्रैक्टिस इट समटाइम कम बाय मैच्योरिटी बाय टाइम। तो 60% इनसाइड है तो बाहर 40% मैटर करता है, उस 40 में आपकी एजुकेशन भी है, आपकी शक्ल शक्ल भी है, आपकी गाड़ी भी, आपके ठहरने का हालात भी, आपकी बातें करने का ढंग भी है, आपकी एजुकेशन भी, बाहर की चीजें हैं जो बाहर से पैरामीटर स्टडी किया सकते हैं। 60% तो बिल्डिंग में ही अंदर थी, तो इंसान की बिल्डिंग तो असली 90% अंदर है, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है आपके 90% पर। तो मेरे बाल सफेद हो गए हैं, मेरा रंग काला है, या मेरा कद छोटा है, मैं मोटा हूं, मैं ये हूं, ये बातें 10% है। मैं एक अच्छा इंसान हूं, मेरी सोच अच्छी है, आई एम अ गुड ह्यूमन बीइंग, 90% मैटर्स। तो मुझे उस 90% पर अपने अंदर विश्वास जगाना है और बच्चों के अंदर भी विश्वास जगाना है कि वो सही है, उनकी दिशा सही है, तो सही के साथ कुदरत खड़ी होती है, कायनात खड़ी होती है, विश्वास रखिए। कॉस्मिक एनर्जी में नियम है, जो हेल्पिंग फोर्सेज होती हैं, जो राइट पर्सन होता है, विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सही रहा हो उसको दिखते ना आई हो, रिकॉर्ड समझिए, उसके सही होने का प्रमाण ही होता है कई बार कि वो दिक्कतों तकलीफों को फेस कैसे करता है, ये भी उसका एग्जामिनेशन है। जैसे हम बीटेक करते हैं या एमबीबीएस करते हैं तो कई कोर्सेज कंपलसरी कोर्सेज होते हैं, ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो अगर आपको एक जीवन में एक लेवल से ऊपर उठना है तो कुछ हर्डल्स को पार करना ही पड़ेगा, उसमें से एक हर्डल हो सकता है लोग कुछ कुछ कहेंगे आपको, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, हो सकता है आप ईमानदार लोग आपको बेईमान कह रहे हो और आपका करेक्टर सही हो, आपको करेक्टरनेस बता रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन सब चीजों को हम कैसे हैंडल करते हैं, इतनी मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं और उनके लिए भी दुआ करते हैं कि उनका शुभ हो। आप देखिए जितने ग्रेट मैन हुए हैं उनको सूली पे चढ़ा दिया गया, तब भी उन्होंने कहा अपने गॉड को कहा कि भाई इसको माफ कर देना, इनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगर दयानंद जी जो आर्य समाज के जो फाउंडर थे उनको जहर दिया गया, उन्होंने अपने जहर पीने वाले को उसने पिलाया था, उसको भी पोटली दी थी, धन देके बाहर भेज दिया नेपाल कि निकल जाओ तुम्हें मार देंगे। कल्प्रिट को मतलब आप देखिए कितने इतिहास भरा पड़ा इन घटनाओं का, कि कितना टॉलरेंस, कितनी पेशेंस, कितना बड़ा दिल होता है, क्योंकि वो इनसाइड उनका 90% जो होता है अंदर वो मैटर करता है, शरीर चला गया कोई बात नहीं, 10% मैटर करता है। तो हम फोकस किस पे कर रहे हैं उसके कारण दिक्कत आती है। तो अगर जैसे आपने बताया कि डिप्रेशन या आप डाउन गए, तो उस समय शायद अगर ऐसी मेंटरिंग उससे पहले आपको किसी ने की होती, इस पे काम आपने भी किया होता, तो स्थिति आती नहीं। तो आपके बच्चे की फैमिली में कल को या आपके स्टूडेंट्स या आपके सराउंडिंग में लोग हैं उनके ऊपर काम करके यही समझाना है कि 90% जो अंदर है भाव, सोच, पॉजिटिविटी, उसकी ग्राउंड मजबूत कीजिए। 10% में लोग कुछ कुछ कहते रहेंगे, इसी पे लोग कहते हैं, कहते रहें दो, कोई बात चलेगा।
2: जी, एक सवाल हमारे पास में और आया सर कि ये जो ह्यूमन टच से जो आज के दिनों में ये मिसिंग एलिमेंट है, ये देखा गया कि सिर्फ सिलेबस को आपने फिनिश करना है ऑन डेडलाइंस और ह्यूमन टच वहां पे लैग कर रहा है। लैग होने की वजह से क्या क्या सोसाइटी एट लार्ज हम जो चीजें देख पा रहे हैं और कैसे हम ह्यूमन टच इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, एक सवाल। और जब हम ह्यूमन टच से एज अ पर्पस टीच कर रहे हैं तो आत्म उत्थान में आपको कैसे ये मदद करती हैं चीजें?
0: मैं समझता हूँ कि टीचिंग इज सच ए नोबल प्रोफेशन, इसमें इसका सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि जब तक आपका दिल बच्चों के साथ नहीं है तो आप उनकी लाइफ को एक पॉजिटिव मोड नहीं दे सकते। उनको अर्निंग मशीन तो बना देंगे आप। अभी एक बच्चे ने सुसाइड किया हमारे रुड़की में, वो बीटेक कंप्यूटर साइंस था, यहीं से आईआईटी रुड़की से लॉन्ग बैक 5-6 साल पहले एमएनसी में जॉब कर रहा था। उसके फादर भी यहीं से पढ़े हुए थे, रुड़की के मतलब आईआईटी के पढ़े हुए थे, और उसके ग्रैंड पापा जो थे, ग्रैंड फादर हुई बस प्रोफेसर इन आईआईटी सम टाइम बैक। तो आप देखिए इतनी लर्नर्ड फैमिली में होते हुए बच्चे ने 5 साल एमएनसी में जॉब करके जॉब छोड़ दी और अल्टीमेटली 2-3 साल घर में रहकर तोड़फोड़ करके परेशान होकर बहुत बुरी हालत में उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया उस बच्चे ने। देखिए लाइफ की फ्रस्ट्रेशन, कहने को आईआईटी में एडमिशन होना बहुत बड़ी कामयाबी है, जिंदगी बन गई, जिंदगी कहां बनी, जिंदगी तो खत्म हो गई, इससे तक मजदूर अच्छा जी लेता है। तो लाइफ इज ए बैलेंस, जब तक बैलेंस नहीं होगा और पर्सनल टच नहीं होगा, अगर टीचर्स का स्टूडेंट्स का पर्सनल टच होगा तो उनकी लाइफ को बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होता है। और टीचिंग में तो सबसे बड़ी चीज जो है बच्चों से रिस्पेक्ट तो मिलती है, प्यार तो मिलता है, और वो तभी मिल सकता है अगर आपका पर्सनल टच होगा। अगर आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से वहां जाते हैं, फॉर्मेलिटी से पढ़ाते हैं, उनके जीवन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो वो भी आपको अपना नहीं समझते हैं। तो ये गिव एंड टेक दोनों तरफ से है, समय के साथ चीजें प्रोफेशनल होती जा रही है, मैं भी देख रहा हूं समय के साथ। तो वो उतना ही टीचर रिस्पेक्ट खोते जा रहे हैं। तो बच्चे अभी भी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, मेरा अनुभव यह है कि बच्चे अभी भी रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपके पास एज ए टीचर कुछ वाकई में ऐसा देने को है जो देने लायक है, उनकी लाइफ को

0: अधिक है, उनका अनुभव अधिक है, उनको पता है कि उनको पता है, तो वो दें। कड़वा घूंट पड़ पीना ही पड़ता है, कि बच्चा नहीं भी सुनता तब भी सुनाएं, बताएं, क्योंकि वो बड़ा यूजफुल है इंटरेक्शन। वो इंटरेक्शन पर्सनल टच बहुत रोल प्ले करता है। लव इज द मोस्ट पावरफुल पावर यू कैन कॉल इट इन द वर्ल्ड स्टिल। प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और वो बिना टच के, ह्यूमन टच के, पर्सनल टच के नहीं आ सकता। ठीक है, तो खाली माँ का प्यार नहीं चाहिए, हर किस्म का प्यार एक इंसान को चाहिए होता है। तो वो प्यार जो है, निस्वार्थ प्रेम जिसे कहते हैं आप, प्यार के लिए प्रेम इज बेटर वर्ड आई फील, नो भी निस्वार्थ भाव से जो होगा उसका लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है आदमी की पर्सनैलिटी के ऊपर। वो हम बड़ों का, जो सीनियर है, सीनियर सिटीजन है, घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, सबका रोल है कि वो दें। तो ये सोसाइटी में जो डिप्रेशन बढ़ रहा है, जो अवसाद बढ़ रहा है, जो नेगेटिविटी बढ़ रही है, ये उसमें बहुत बड़ी ब्रेक लग सकती है जब पर्सनल टच होगा। वो जो बचपन में, जैसे हम छोटे थे, दादा दादी नाना नानी गोद में लेकर कहानियां सुनाया करते थे, उन सब कहानियों के पीछे कोई मॉरल होता था, तो वो कहानियां अब भी सुनाई जानी चाहिए। अब अगर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, टीचर सुनाए, हम आपस में जो वॉलंटरली जो काम कर सकते हैं बच्चे, वो छोटी छोटी चीजें शेयर करें। हमारे यहाँ तो पंचतंत्र की बहुत कहानियां थी, छोटी छोटी चीजें बहुत लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। एक जो हमने सुनी थी बात बचपन में कि लालच बुली बुरा है, मैं समझता हूँ ये किताबें, सारा ग्रंथ, सारे एक्सपीरियंस एक तरफ, एक घटना सुनी थी कि वो लोमड़ी बड़ी चलाक थी, उसने कौवे को कहा कि तू बहुत अच्छा गाता है, उसके मुंह से वो टुकड़ा गिरा और वो लेके भाग गई। तो ये चलाकी चुस्ती के कारण कितना उसका लॉस हुआ, उसको खाना चला गया। ये एक छोटी सी बात सुनी हुई जो है वो कितनी इम्पैक्ट क्रिएट करती है, लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो वो चीजों की अभी भी जरूरत है, उसको इग्नोर ना करें बड़े, वो शेयर करें और बच्चे भी शेयरिंग लें, दोनों की जिम्मेदारी, ताकि इंटरेक्शन बना रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सर, जैसे कि कोई टीचर अगर पूरी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ में लविंगली पर्पसली, यही उसकी इंटेंशंस हैं कि बच्चों को इंपावर करना है और उनकी लाइफ में मीनिंगफुल चेंजेस लाने हैं खुद इंपावर्ड होके, तो जब इस रास्ते पे कोई टीचर चलता है तो इसका कनेक्शन हमारी आत्म उत्थान, हमारी अपनी शांति, हमारी अपनी जिंदगी में उसके साथ में क्या कनेक्शन है, क्या थोड़ी सी रोशनी डालेंगे इस पे?
0: देखिए, हम जो भी हम गति करते हैं, एक्शन करते हैं, या थॉट प्रोसेस करते हैं, या कर्म करते हैं, या बोलते हैं, वो हम किसी ना किसी फीलिंग से करते हैं। हमेशा कोई फीलिंग इन्वॉल्व होती है, कोई भावना इन्वॉल्व होती है उस काम को करते हुए। वो नेगेटिव भावना हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। जब हम किसी बच्चे को मेंटरिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट को या अपने बच्चों को मेंटरिंग कर रहे हैं, पड़ोसी कर रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ हेल्पफुल होने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं किसी भावना से कर रहा हूं। वो भाव मुझे ही पता हो सकता है, आपको नहीं पता, कि मैं अहम से कर रहा हूं या विनम्रता से कर रहा हूं, सरलता से कर रहा हूं, कृतज्ञता से कर रहा हूं, कि जिंदगी में पाया इतना मैं थोड़ा बांट दूं, भाई बोझ बोझ है मेरे कंधों पे, बहुत सीखा है मैंने, थोड़ा बांट दूंगा शायद बोझ कम हो जाए, ये भावना हो सकती है। एक हो सकती है कि मैं अहंकार से बोलूं, देखो मैं कितना पता है, ये सब सुन रहे मेरी बात, तो मैंने क्या खोया क्या पाया सिर्फ मुझे पता है। तो हम जो भी काम करें, देखिए बनिया बोलते हैं, कास्ट होती है बनिया, जो बिजनेस कम्युनिटी होती है वो तो ठीक है, मैं उस जाति की बात नहीं कर रहा हूं। असल में बनिया बिजनेसमैन वो है जो बनाने का काम करे, गेन का, कि उसका खर्च कम हो, आमदनी ज्यादा हो, वो है बनिया, वो है व्यापारी। तो जीवन के लिहाज से हमें सच्चे व्यापारी बनना है, हमने लूज कम करने हैं पॉइंट्स, गेन ज्यादा करने हैं, तब हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो जो भी हम काम कर रहे हैं जिंदगी में, वो हमने अपने आप को तोल के करना है कि मेरी कौन सी भावना है इसके पीछे, और वो भावना पॉजिटिव है तो मेरा अपना निर्माण होता है, मेरे आत्मिक पॉइंट्स बढ़ते हैं। असल में जैसे इंडेक्स होता है ना, ये सेंसेक होता है या निफ्टी होता है, वो आपकी मार्केट की वैल्यू को बताता है। ऐसे ही इंसान के अंदर आत्मबल होता है, उसका आत्मिक धन होता है, वो उसकी यूटिलिटी को बताता है कि नेचर में, विश्व में हमारा लेवल क्या है, हम कहां खड़े हैं, और वो उतना ही बढ़ता जाता है जितना हम पॉजिटिव होते हैं। उसके लिए किसी की मोहर की जरूरत नहीं है। जैसे हेल्थ का इंडेक्स है, जितना मैं अच्छा खाता हूं, सलाद खाता हूं, फ्रूट्स खाता हूं, अच्छी हवा सांस लेता हूं, पानी साफ पीता हूं, नशों से विषयों से बचा रहता हूं, उतनी मेरी हेल्थ, आई फील बेटर फ्रॉम इनसाइड। उसके लिए मुझे किसी मोहर की जरूरत नहीं है, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। टेस्ट आप कर सकते हैं चीजों से, लेकिन उसकी खुशी मेरे साथ ही है कि मैं हेल्थी हूं। तो जैसे हेल्थ पाना किसी पे एहसान नहीं, उसकी एंजॉयमेंट खुद होती है, ऐसे ही आत्मिक रूप से पॉजिटिविटी का जो लाभ है उसकी एंजॉयमेंट भी आपके पास ही है। तो उसके लिए किसी के तालियों की क्लैपिंग से जरूरत खत्म हो जाती है। यू फील गुड फ्रॉम इनसाइड, यू फील वर्थ लिविंग, यू फील योर लाइफ ब्लेसिंग। दूसरों को लगता ही कि ब्लेसिंग है, आप खुद लगता है मेरी लाइफ दूसरों की ब्लेसिंग है। ये अच्छा करने का सबसे बड़ा लाभ है। अच्छी हवा सांस लेंगे तो फेफड़े धन्यवाद देंगे ना आपको। तो आपकी आत्मा जो है, आपकी इनर जो सॉफ्टवेयर है, वो बहुत लाइट फील करता है जब अच्छी सोच से आप काम करते हैं। आपकी निगाहें अच्छी होती हैं, आपकी वार्ता अच्छी होती है, आपके काम अच्छे होते हैं, उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो आपकी आत्मा लाइट फील करती है, एंजॉय करती है, फ्लाई करती है, उड़ रहा हूं मैं, ऐसा फील होता है। और जितना आप गलत सोचते हैं, भारीपन आता है, यू फील हैवियर, बर्डन फील होता है, कभी भी कोई महान आत्मा मरने की बात नहीं करेगा, मैं मर जाऊं खत्म हो जाऊं, जीने फायदा क्या है, नेगेटिविटी में ही मन करता है चीजों का, इसलिए डिप्रेशन आता है, अवसाद आता है। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी कि आपने अच्छा सोचा, अच्छा किया किसी के लिए, यू आर एंजॉइंग, आप खुश हैं बहुत अंदर से, ये सबसे बड़ी खुशी। ये बाकी साइड इफेक्ट है, सम्मान मिलेगा, वो बाकी छोटी, ये सब छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें।

0: ये एडिशनल एडिशनल बोनस है। अरे एक बात मैं जवाब बताता हूँ, रोशनी बात बताता हूँ आपको बेटा, आप जिंदगी में जब अच्छे रास्ते में चलते हैं, मैं सबको कहा करता हूँ उसकी ब्लेसिंग सबसे बड़ी क्या है, आपको अपने से भी नेक और अच्छे लोग मिलते जाएंगे जिंदगी भर, एक से आपके इतने अच्छे इंसान हो सकता है, इतने अच्छे सर हो सकते हैं, अब और मिलेगा और अच्छा और अच्छा, क्योंकि आप खुद सही रास्ते पे हैं। और जब वो गलत रास्ते पे होते हैं तो आपको अपने से बड़ा शैतान, अपने से बड़ा गुंडा, अपने से बड़ा नेगेटिव, अपने से बड़ा डिप्रेस मिलेगा, अपने से बड़ा पागल मिलेगा आपको, कह रहे इतना बड़ा पागल, मेरे से बड़ा पागल है। तो दुनिया में पूरी वैरायटी है, ना सही दिशा में ना गलत दिशा में, आपका पाथ कौन सा है, आप जिस पाथ पर हैं उससे भी आपसे कितना बड़ा बदमाश है उसको उससे बड़ा बदमाश मिल जाता है। कह मैं 10 मर्डर किए हैं, अब महीने दो महीने बाद आपको 15 वाला मिल जाएगा, आगे से आगे चीजें बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए बहुत लक्की हैं जिनकी सोच और दिशा सही होती है जिंदगी में, उनको अपने से बहुत अच्छे नेक इंसान मिलते जाते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनकी खुशियां मिलती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जो है सर्व होते हैं, शेयर होते हैं, और प्यार सम्मान तो मिलता ही है, खुशियां मिलती हैं, और वो खुशियां स्थायी होती हैं, सबसे बड़ी बात है, वो टेम्परेरी नहीं होती हैं, वो गुदगुदाती रहती हैं। अभी मैंने घटनाएं जो बताई, अभी बच्चा भी जिक्र कर रहा था, आपने पढ़ा कोई कि वो आपने माली से बात की या मोची से बात की, अब जो वैसे खुशियां होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं। मैंने अभी यहाँ मान लो रसगुल्ला खाया नहीं, मैं वैसे ही बैठा हूँ, खाया पिया कुछ नहीं मैंने यहाँ के अभी, लेकिन कल्पना करो खाया वो कल तक भूल जाएगा, कुछ चीज और एंजॉय की तो कब तक उसका साथ रहेगा। लेकिन एक अच्छी घटना, एक अच्छा व्यवहार आपको 10 साल 20 साल बाद भी गुदगुदाता रहता है, खुशी देता रहता है, जो आप किसी के लिए अच्छा करते हैं वो आपका जीवन का एसेट बन जाता है, आपकी दौलत बन जाती है।
1: वेरी वेल सेड सर, बहुत बढ़िया कहा आपने कि जब हमारी इंटेंशन, हमारी भावना प्योर है, बल बढ़ रहा है आपकी आत्मा का और वर्थ लिविंग हो रही है आपकी लाइफ, एक ब्लेसिंग बन गई आपकी जिंदगी, और बाय प्रोडक्ट उसका सम्मान है और बहुत सारी चीजें। और जब आप इस रास्ते पे चल रहे हैं तो ऐसी फ्रीक्वेंसी पे, सेम फ्रीक्वेंसी ऑन अ पॉजिटिव नोट या उससे हायर फ्रीक्वेंसी पे और नेक इंसान भी आपको रास्ते पे मिलते हैं, तो जैसे आप हैं वैसी चीजें आप खींचना शुरू कर देते हैं। बहुत बढ़िया कहा सर आपने। और दूसरा आपने कहा कि आपकी जो आत्मा है आप लाइट फील करते हैं, और दूसरी तरफ अगर वही नेगेटिव इमोशंस हैं या इंटेंशंस हैं तो आप भारी महसूस करते हैं और उसका असर आपके मन पर, शरीर पर और आत्मा पर बीमारियों के रूप में भी हमें आजकल देखने को
0: मिलता है। इसकी साइंटिफिक स्टडी भी हो रही है और भी होती चलेगी कि हमारे हार्मोन्स पे बहुत असर पड़ता है। देखिए ये तो कहते ही हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि बीपी रह जाता है, कि आप चिंता ना किया करें, आपके चिंता से होता है, आप एंग्जायटी से होता है, ये चीजें तो दिखने लग गई हैं। अब शुगर की पेशेंट भी जो है या तो इनहेरिटेड होता है कुछ, लेकिन शुगर भी टेंशन रखने से बहुत हो जाती है, कि टेंशन बहुत होती है, शुगर हो गई, तो ये चीजें वैसे भी कहते हैं कि हम जैसे जंगल में गए मान लो, तो वहां शेर आ गया, तो हम किसी को सुना रहे होंगे यार मैं शेर मेरी गाड़ी से आगे निकल गया, मैं तो हल्के सूख गया, तो शेर में पानी कमी थोड़ी थी। आप देखिए एक शेर को देखकर या भेड़िए को देखकर या किसी जंगली जानवर को देखकर आपका हलक क्यों सूख गया, इसका मतलब माइंड के ऊपर जो प्रेशर पड़ा, जो आपने सोचा, जो डर आपके अंदर आया, उसका शरीर पर असर पड़ा नहीं पड़ा। कई बार आपको लूज मोशन लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है किसी घबराहट की बात सुनकर, कईयों को कोई ऐसी बात डेथ की न्यूज मिल जाए तो उनको पसीने आ जाते हैं। तो बॉडी रिएक्ट करती है इंसान की, तो हार्मोन्स भी रिएक्ट करते हैं, खुशी के हार्मोन्स अलग हैं, सेवा के हार्मोन्स अलग हैं, जेलसी के अपने इफेक्ट हैं हार्मोन्स के ऊपर, ईर्ष्या के अपने असर हैं, तो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर चीजों का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। असल में बॉडी और सोल इज वन यूनिट बेसिकली, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर है और दोनों इंपैक्ट डालते हैं इस के ऊपर। जब शरीर ठीक नहीं होता तो मन भी कई बार नहीं लग रहा होता। मैं अभी स्वस्थ बैठा हूं तो आपसे अच्छे से बात कर रहा हूं, और शरीर स्वस्थ नहीं होगा किसी कारण से, फीवर है और है, तो मैं इतने ठीक से बात भी कर नहीं पाऊंगा, सेवा ठीक से नहीं कर पाऊंगा। तो शरीर बीमार है तो आत्मा पर असर पड़ता है, और आत्मा बीमार है तो शरीर पर असर पड़ेगा, तो दोनों को हेल्दी रखना हमारी जिम्मेदारी है।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि आपकी जो थॉट्स हैं और आपकी जो इंटेंशंस हैं उसका असर आपकी बॉडी के ऊपर, जो सर ने कहा कि अभी बहुत सारी रिसर्चेस हो रही हैं कि उनके ऊपर जो आपके ऊपर बीमारियां हैं वो भी उनमें से, जैसे साइकोसोमेटिक इलनेसेस जिसे हम लोग कह देते हैं, कि
0: एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत विश्वविख्यात है, वहां पर ये जो आपने बताया अभी सेक्रेटरी वाला पार्ट और फिजियोलॉजी वाला पार्ट दोनों को मिला के डिग्री उन्होंने क्रिएट की उन लोगों ने, कि सोचने का प्रोसेस और फिजिक जो है इंसान की फिजियोलॉजी, हाउ दे आर क्रिएटिंग म्यूचुअली, मतलब इंपैक्ट कैसे क्रिएट हो रहा है, उसमें मास्टर प्रोग्राम शुरू हुआ है स्टैनफोर्ड में।
1: अमेजिंग। और एक सवाल हमारे पास में ये आया कि शिक्षा हम लोगों को कैसे बेहतर इंसान और बेहतर जिंदगी जीने में हेल्प करती
0: है? आपको जीने के लिए कमाने की शिक्षा है बेसिकली, जब तक वो वैल्यू ओरिएंटेड नहीं होगी, उसमें मॉरल वैल्यूज या ह्यूमन वैल्यूज का टच नहीं होगा, ह्यूमन टच नहीं होगा, तब तक वो इंसान नहीं बनाएगी तो आपको खुशी नहीं देगी, वो कमाने की कला सिखा देगी, सिर्फ मशीन बना देगी आपको। शिक्षा इनकम्प्लीट, अधूरी है विदाउट ह्यूमन टच। ह्यूमन वैल्यूज के साथ, इंसानियत के के साथ अगर एजुकेशन होगी, जहां से मैंने बात शुरू की थी, हमें चारों जगतों के साथ, इन एनिमेट वर्ल्ड, भौतिक जगत जिसमें धरती, सूरज, चांद, सितारे, पानी, हवा और प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम और फिर ह्यूमन काइंड, मैनकाइंड, ये चारों पक्ष जो नेचर के हैं, इनके साथ रहने की बैलेंस्ड वे में, एक होलिस्टिक वे में रहने की कला एजुकेशन का फर्ज है। अगर हमें कोई एजुकेशन इस पहलू में बढ़ाती है, मे बी स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन और व्हाटएवर एजुकेशन वी आर ट्राइंग टू शेयर राइट नाउ नॉलेज, अगर ये हमें, ये लेक्चर कितना अच्छा रहा, अब आपके पास 20 लेक्चर होंगे, ये 20 लेक्चर एजुकेट करने के लिए है, कौन सा लेक्चर कितना इफेक्टिव है जिसकी बात से इस पहलू में आपको मदद मिले कि चारों जगतों के साथ, चारों किंगडम के साथ आप हार्मनी में कैसे रहें। कोई सत्संग, कोई व्याख्यान, कोई पुस्तक कितनी श्रेष्ठ है, कोई ज्ञान उतना ही श्रेष्ठ है जितना हमें पूरे विश्व के साथ हार्मनी में रखने की प्रेरणा करता है। इफ आई वांट टू कंपेयर टू ऑर्गेनाइजेशंस, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन भाई जिसके अंदर जाके मुझे प्रेरणा मिलती है, मैं चारों जगतों के साथ, पूरी नेचर के साथ इंसान बन के कैसे रहूं, अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दे रही, उतनी अच्छी है।
1: जी जी जी जी, बहुत बढ़िया कहा आपने। और हमारे पास में बस समय की ऐसा है कि आपको सुनते रहे और आपकी विजडम हमें मिलती रहे, लेकिन समय हम लोगों को इजाजत नहीं दे रहा। और एक दो सवाल मैं आखिरी आपसे लूंगा ब्रीफ में, क्योंकि समय अब हम लोगों को इजाजत नहीं दे रहा। तो सवाल आपसे ये है कि कोई ऐसे टीचर आपकी जिंदगी में जिन्होंने आपको बहुत गहराई से आत्मिक स्तर पर आपको छुआ और आपको प्रेरित किया एक अच्छा टीचर बनने के लिए, उनमें क्या गुण थे और किस तरीके से उन्होंने आपको प्रेरित किया?
0: ये तो बहुत लंबा टॉपिक है। आई एम सो थैंकफुल यू हैव टच दिस सेंसिटिव टॉपिक, बट मेरे पास तो मेरे घर में इतने फोटोज रखे हुए हैं उन बुजुर्गों के, महान टीचर्स के, जिन्होंने मेरी लाइफ को हिला के रख दिया, एक अच्छा इंसान बनाने की प्रेरणा भी दी, और वैसे भी मेरे एजुकेशन में जो टच दिया उन्होंने, मैं तो उनको रोजाना याद करता हूँ, अक्सर याद करता हूँ, अपने टीचर्स डे पे भी याद करता हूँ, उनके बच्चों, उनके पोतों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपके बाबा जी ने, आपके पिताजी ने मेरा इतना भला किया था। तो इसको तो मैं प्रैक्टिकली जीता हूँ, तो घंटों का टॉपिक है मेरे लिए, लेकिन आप बात को समाप्त करते हुए एक मैं बताता हूँ। मेरे 8th क्लास में 99 नंबर थे 100 में से मैथ्स में, और जब 10th किया तो 150 में 150 थे बोर्ड एग्जाम में, हरियाणा बोर्ड में। तो लेकिन जब उसका 11th हुआ तो उस जमाने में ये कंपटीशन जेई और एग्जाम नहीं होते थे आईआईटी या किसी में इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए, तो सिर्फ पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का रोल होता था। तो लेकिन मेरे नंबर 120 रह गए 200 में से 11th क्लास में, और 11th के बाद इमीडिएटली बीटेक में एडमिशन होना था, तो 60% नंबर से मेरा बीटेक में एडमिशन नहीं हो सकता था। तो मेरे हाथ पांव फूल गए, क्योंकि कॉलेज की लाइफ थी 11th कॉलेज में होती थी उस जमाने में। तो मैंने किसी टीचर को ढूंढा, अपने पुराने टीचर को, उनकी हेल्प लेके एक मैं प्रोफेसर के पास गया कि मुझे पढ़ा दीजिए, बुजुर्ग थे, उन्होंने मना कर दिया मेरे पे टाइम नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से नेगोशिएट करके उन्होंने मुझे कहा एक टॉपिक पढ़ा सका, वन यूनिट। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक चीज पढ़ाई थी, ट्रिग्नोमेट्री, ओनली 5 लेक्चर्स। प्रोफेसर विद्या साहब उनका नाम था, ही नेवर आस्क्ड माय नेम, ही नेवर आस्क्ड माय फादर्स नेम एंड हिज स्टेटस, ओनली टॉट 5 लेक्चर्स, और वो 3 क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आए, तीनों 100% ठीक हुए, एंड आई गॉट 187 आउट ऑफ 200, जो कि 120 थे दिसंबर में। मार्च में 187 हो गए यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और उसके कारण मैं बीटेक में एडमिशन ले पाया। आज उनकी फोटो मेरे घर में सजा के रखी हुई है।
1: बिल्कुल,
0: एक टीचर कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मैं इंजीनियर होता और नहीं होता, जमीन आसमान का अंतर पड़ता, बीटेक एमटेक प्रोफेसर कहां से बनता मैं, और मेरा एडमिशन ही नहीं होता। तो एक व्यक्ति के 5 प्यार भरे लेक्चरर्स ने, जिसे मेरा नाम भी नहीं पूछा, आज मैं उसका नाम गा रहा हूं, प्रोफेसर विद्यासागर जी, उनके बेटे विकास अग्रवाल दिल्ली में बिजनेसमैन है, मैं उनको हर साल याद करता हूं। वो कहते हैं कि आपने मुझे याद रखा है, मेरे पिताजी को याद रखा है, कोई याद नहीं करता। मैं कहता हूं क्योंकि मेरे मेंटर श्री एसएन अग्निहोत्री जी हैं, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्होंने मुझे कृतज्ञता का पाठ पढ़ाया है, जिनको स्पिरिचुअल नेम उनका देवात्मा है, जिनकी टीचिंग्स पे मैं काम करता हूं, उन्होंने मुझे कृतज्ञता का पाठ पढ़ाया कि जिसके जिंदगी में तुम्हारे कोई काम आया है उसको भूल जाओगे, तुम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। तो 20 अध्यापक हैं जिनका मैं जिक्र कर सकता हूं, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए मैं सिर्फ एक का जिक्र किया है, उनका शुभ हो परलोक में। आई एम सो थैंकफुल टू हिम एंड टू माय स्पिरिचुअल मास्टर देवात्मा श्री एसएन अग्निहोत्री जी, हु टॉट मी ए लेसन ऑफ ग्रेटिट्यूड।
1: अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही प्रीशियस विजडम सर ने शेयर किया, और उसको कंक्लूजन हम लोग करते हैं, और लास्ट में जो सर ने कहा पूरे लेक्चर्स में, तो कोशिश करूंगा उसको सम अप करने की। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सर ने शेयर किया, रैंडम चीजें पिक कर रहा हूं मैं, कुछ चीजें मैं शेयर कर रहा हूं मैं, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता का एहसास, वेरी ब्यूटीफुल सर ने कहा, एंड अप्रिसिएशन, एक्नॉलेज करना हर इंसान को और उनको वो फील कराना वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड, और खुशियों के जब हम रास्ते पे चल रहे हैं, यानी खुशियों को जब हम बांट रहे हैं तो हम इवॉल्व हो रहे हैं, और हम लोगों को सिलेक्टिव भी होना है अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, और वैसे लोगों से एसोसिएशन। और सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जिनकी वजह से सर की लाइफ में इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, अपने टीचर का भी जिक्र किया, और सर ने कहा कि जो लव है, लव से ऊपर कोई बात नहीं है, और जहां पर प्यार है, प्यार में इतनी ताकत है कि वो आपसे बड़े काम आपसे करवा लेते हैं। बहुत ब्यूटीफुल कहा सर ने, और सर ने ये कहा कि जब हम अच्छे से प्योर इंटेंट से जब हम पढ़ा रहे हैं, इंपावर कर रहे हैं, उनको इनहेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी आत्मा का बल बढ़ रहा है और वो आपको दे रही है पीस और आपको सेटिस्फेक्शन और वर्थ लिविंग यू फील कि आपकी जिंदगी जो है वो वर्थ लिविंग है। इन सारे शब्दों के साथ में सर थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम और इतनी वैल्यूएबल विजडम आपने हम उनके साथ में शेयर करी। एंड आई विल मेक श्योर पर्सनली वी ऑल कि एवरी वर्ड ऑफ योर्स एटलीस्ट फॉर वन वीक जब तक नेक्स्ट स्पीकर नहीं आते इन सब पे मंथन किया जाता है और उसका पूरा रिपोर्ट क्या रहा वो आपसे शेयर भी किया जाएगा। स्टूडेंट्स के साथ में पढ़ाने के बाद वो सारा आपसे शेयर किया जाएगा।
0: YouTube पर मेरे लेक्चर्स और वीडियोस स्मॉल क्लिपिंग्स अवेलेबल हैं, शुभ हो बेटर लाइफ के नाम से, बच्चे या विद्यार्थी उसको देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं। वो क्लिपिंग्स कई बार बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत हेल्पफुल हैं, 5-10 मिनट की बात लेकिन इंपैक्ट क्रिएट करती है। कई बार कईयों को बहुत हेल्प मिलती है, लोग बाद में मिलते हैं तो कहते हैं वो उस क्लिप ने मुझे बहुत इफेक्ट किया। तो शुभ हो बेटर लाइफ,
1: शुभ हो बेटर लाइफ जी,
0: हाँ वो यूट्यूब चैनल है उस पर देख सकते हैं।
1: थैंक यू सो मच नवनीत सर फॉर योर प्रीशियस टाइम, वी लर्नड अ लॉट, आई पर्सनली लर्नड अ लॉट सर, थैंक यू सो मच सर,
0: थैंक यू ऑल जिन्होंने टाइम दिया, मुझे सेवा का मौका दिया, मैं सबके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। सबका शुभ हो, सबका विकास हो, हम जो सुना है उसको समझे और उसको जीवन में ढाल सके, मैं और अच्छे ढाल सकूं, हम सबका इसी में भला है, सबका शुभ हो। थैंक यू,
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।

ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

0: दोस्तों, कल रात को मैंने आपके लिए एक छोटी सी कविता लिखी है, लो सुनो। जब भी भागो दौड़ो तो आता है पसीना, प्यास हमें जब लगती पड़ता है पानी पीना। दिन के इस समय में हम सब खुश हो जाते हैं क्योंकि हमसे मिलने आती है अपनी मीना। कैसी लगी मेरी कविता? धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो चलो अब जल्दी से चलते हैं मीना के पास, जो अपने बाबा के घर लौटने का इंतजार कर रही है।
1: माँ, कितनी देर हो गई? बाबा कब आएंगे?
2: बस आते ही होंगे बेटा।
3: माँ, वो देखो, बाबा आ गए।
2: मीना के बाबा, आज तो आपने वापस लौटने में बहुत देर कर दी।
4: अब क्या बताऊं मीना की माँ।
2: क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं?
4: हाँ, सरपंच जी ने बुलाया था।
2: सरपंच जी ने? क्यों?
4: हरिया के बारे में बात करने।
3: हरिया कौन बाबा?
4: राजू बेटा, हरिया तुम्हारे दोस्त मोहन के पिताजी का नाम है।
3: ओह हाँ।
2: लेकिन हरिया भाई साहब के बारे में क्या बात करनी थी सरपंच जी ने?
4: तुम तो जानती हो मीना की माँ, हरिया अपनी दुकान में लोहे के औजार बनाता है।
2: हाँ।
4: पिछले कुछ दिनों से वो दिन रात काम कर रहा है। अब लोहे के काम में शोर तो होता ही है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
2: फिर
4: क्या, उन लोगों ने सरपंच जी से हरिया की शिकायत कर दी।
2: ओहो।
4: सरपंच जी चाहते हैं कि मैं हरिया को समझाऊं कि वो इतनी देर रात तक काम ना किया करे।
2: लेकिन हरिया भाई साहब तो बहुत अच्छे इंसान है, मुझे नहीं लगता कि वो जानबूझकर कभी किसी को परेशान करेंगे।
4: मैं जानता हूँ मीना की माँ, इसलिए मैं कल ही हरिया से बात करूँगा, ताकि पता तो चले कि आखिर कारण क्या है, वो आजकल इतनी देर तक काम क्यों करता रहता है।
1: बाबा, अगर आप कहें तो मैं कल मोहन से इस बारे में पूछ सकती हूँ।
4: हाँ मीना बेटी, तुम मोहन से मिलना और उसे ये भी कहना कि वो हरिया को याद दिलाए कि परसों स्कूल प्रबंधन समिति की विशेष मीटिंग है।
1: जी बाबा।
0: और फिर अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद, जब मीना, राजू और मोहन घर वापस लौट रहे थे।
5: मीना, राजू, मेरा घर आ गया, मैं चलता हूँ।
1: मोहन, हरिया चाचा को याद करा देना कि कल स्कूल प्रबंधन समिति की विशेष मीटिंग है, चाचा जी से कहना कि वो उस मीटिंग में जरूर आए।
5: मीना, मैं पिताजी से बात नहीं कर पाऊंगा।
1: क्यों मोहन?
5: क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं पिताजी से मिल ही नहीं पाता।
3: क्या मतलब?
5: राजू, पिताजी रात को बहुत देर से घर लौटते हैं और सुबह सुबह फिर से दुकान के लिए निकल जाते हैं।
3: ओ
1: मोहन, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं।
5: हाँ हाँ मीना, पूछो।
1: हरिया चाचा आजकल इतनी देर रात तक दुकान में काम क्यों करते हैं?
5: मीना, मैंने भी माँ से ये बात पूछी थी, माँ ने कहा कि पिताजी ये सब मेरे लिए कर रहे हैं।
3: तुम्हारे लिए?
5: हाँ, दरअसल हम जल्दी ही ये गांव छोड़ के जाने वाले हैं।
3: क्या? लेकिन क्यों मोहन?
5: राजू, पिताजी को शहर में एक काम मिला है, औजारों के कारखाने में, इसलिए हम लोग अब शहर में जाके रहेंगे।
1: लेकिन मोहन, इससे चाचा जी के देर रात तक काम करने का क्या संबंध है?
5: मीना, शहर जाके पिताजी को मेरा दाखिला किसी स्कूल में कराना होगा ना, इसलिए।
1: मैं कुछ समझी नहीं।
5: मीना, माँ ने मुझे बताया था कि दाखिले के समय बहुत पैसे लगते हैं, शायद इसलिए पिताजी दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
1: ऐसा नहीं है मोहन।
5: क्या मतलब?
1: अभी कुछ दिन पहले ही बहन जी ने हमें शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया था।
5: शिक्षा का अधिकार?
1: हाँ, शिक्षा का अधिकार एक कानून है जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूल में बच्चे का दाखिला कराने के लिए कोई रुपया पैसा नहीं देना पड़ता।
3: नहीं देना पड़ता, बच्चा मुफ्त में पढ़ता।
5: ओ, पर मुझे नहीं लगता कि पिताजी को इस अधिकार के बारे में पता होगा।
1: मोहन, तुम चिंता मत करो, मैं अपने बाबा से कहूंगी कि वो इस बारे में हरिया चाचा से बात करें।
3: बात करें, उनसे मुलाकात करें।
0: और फिर जब शाम को मीना के बाबा घर लौटे तो मीना ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुन के वो बोले,
4: तो इसलिए हरिया आजकल दिन रात मेहनत कर रहा है।
1: बाबा, क्यों ना हम हरिया चाचा की दुकान पे जाएं और उन्हें सारी बात बताएं?
3: हाँ बाबा,
6: आप हरिया चाचा को कल होने वाली स्कूल प्रबंधन समिति की विशेष मीटिंग के बारे में भी बता देना।
4: ठीक है बच्चों, चलो।
0: मीना और राजू अपने बाबा के साथ पहुँचे हरिया की दुकान पे।
4: कैसे हो हरिया?
7: अरे भाई साहब आप, नमस्ते नमस्ते
4: नमस्ते
8: नमस्ते चाचा जी।
7: खुश रहो बच्चों।
4: हरिया, मैंने सुना है कि तुम आजकल दिन रात काम कर रहे हो।
7: हाँ भाई साहब, ये सब मैं अपने मोहन के लिए कर रहा हूँ। वो क्या है ना, मुझे नौकरी मिली है शहर में, तो अब हम वहीं जाकर रहेंगे। अब मोहन का दाखिला नए स्कूल में होगा, तो रुपए पैसे तो खर्च होंगे ही, इसलिए आजकल मैं दिन रात काम करता हूँ।
4: हरिया, तुम्हें मोहन के दाखिले पर एक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा।
7: हाँ? क्या कह रहे हैं भाई साहब?
4: सही कह रहा हूँ। RTE यानी शिक्षा का अधिकार, ये नाम सुना है तुमने?
7: शिक्षा का अधिकार? नहीं तो।
4: हरिया भाई, शिक्षा का अधिकार एक कानून है और इसके अंतर्गत कोई भी सरकारी स्कूल बच्चे के दाखिले के समय एक पैसा भी नहीं ले सकता।
7: सच?
4: बिल्कुल सच। और इसके बारे में तुम्हें ज्यादा जानकारी चाहिए तो कल तुम स्कूल आ जाना।
7: मैं स्कूल में क्या?
1: चाचा जी, कल स्कूल प्रबंधन समिति की विशेष मीटिंग है।
7: ओ, अच्छा, वहाँ मुझे इस बारे में और पता चलेगा।
4: हाँ, तुम कल वहाँ आओ। बहन जी और प्रिंसिपल साहिबा के अलावा वहाँ BRC से संदर्भ व्यक्ति भी होंगे। ठीक है हरिया, कल स्कूल में मिलते हैं। हाँ?
7: हाँ, ठीक है भाई साहब।
0: और अगले दिन स्कूल प्रबंधन समिति की मीटिंग में।
7: साहब, क्या सचमुच मुझे अपने बेटे मोहन के दाखिले के लिए कोई भी पैसे नहीं खर्चने होंगे?
9: हरिया जी, अक्सर बच्चों के माँ बाप यही सोचते हैं कि उन्हें अपने बच्चों के दाखिले के लिए स्कूलों में बहुत रुपए पैसा देना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। RTE यानी राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार। इस कानून के अंतर्गत कोई भी सरकारी स्कूल बच्चे के दाखिले के समय एक भी पैसा नहीं ले सकता।
10: आपका मतलब नए स्कूल में मेरा दाखिला मुफ्त होगा?
9: हाँ मोहन, एकदम मुफ्त। और सिर्फ यही नहीं, इसी कानून के अंतर्गत स्कूल ना ही आपसे फीस के पैसे मांग सकते हैं, ना ही बच्चे को किसी कक्षा में रोक सकते हैं।
7: धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा का अधिकार रखना याद।
0: देखा दोस्तों, ये फायदा है मीना से मिलने का। एक तो मनोरंजन हो जाता है और साथ ही एक पते की बात भी मालूम पड़ जाती है।
11: सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना।
0: चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक नई कविता।
1: आठवीं कक्षा तक के हर बच्चे का ये अधिकार,
3: मुफ्त मिलेगी शिक्षा, कहता शिक्षा का अधिकार।
1: नियम है सरकारी स्कूलों का, सुन लो खोल के कान,
3: दाखिले के वक्त नहीं बच्चों का इम्तिहान।
0: आ हा हा हा, क्या बढ़िया कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। दोस्तों क्या ख्याल है, अब एक गाना सुन लिया जाए? तो ठीक है, ये रहा आपका गाना।

0: शिक्षा मेरा अधिकार है।
1: गाना सुनकर तो मजा आ गया, क्या ख्याल है दोस्तों, इस मजे को थोड़ा और बढ़ाया जाए? क्या कहा, कैसे? अरे भाई खेल के।
2: बच्चों आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर
3: एक।
2: हाँ, मैं तुम्हें एक अक्षर दूंगी और तुम्हें उस अक्षर से किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर और जगह का नाम बताना है, ठीक है?
3: जी बहन जी।
2: तो आज का अक्षर है ब। चलो चलो जल्दी से बताओ ब से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम।
4: भारत के मशहूर स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी।
2: शाबाश सुमी।
5: लेकिन बहन जी, लोकमान्य तो ल से शुरू होता है, जबकि आपने तो ब से नाम बताने को कहा था।
2: दीपू, बाल गंगाधर तिलक जी की सभी बहुत इज्जत करते थे, मतलब सब लोग उन्हें बहुत मानते थे, इसीलिए उन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था, समझे?
6: जी बहन जी।
2: चलो बच्चों, अब ब से किसी वस्तु का नाम कौन बताएगा?
7: बस्ता,
8: बाल्टी,
7: बल्ब।
2: बिल्कुल सही। चलो बच्चों, अब ब से किसी जानवर का नाम बताओ।
9: बाघ, यानी भारत का राष्ट्रीय पशु।
2: शाबाश सुनील। अब ब से किसी जगह का नाम?
10: बीकानेर।
2: शाबाश मीना। और बीकानेर भारत के किस राज्य में स्थित है?
10: राजस्थान।
2: हाँ बच्चों, राजस्थान की राजधानी का नाम पता है ना?
3: जयपुर।
2: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों खेल के मजा आया ना?
3: बहुत मजा आया बेटी।
1: मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
11: दोस्तों मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूँगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: चुलबुली चीनी। चीनी की मम्मी ने उनके बगीचे की देखभाल के लिए एक नया माली रखा था। वे बहुत ही गुस्से वाले और घमंडी थे। चीनी को भी फूलों के पास नहीं जाने देते थे।
3: मम्मी, मुझे ये नए माली अंकल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये कभी भी अच्छे से बात नहीं करते हैं।
4: क्या करे बेटा, यहाँ पर कोई दूसरा माली भी तो नहीं मिल रहा था। वैसे भी चीनी, इनका स्वभाव थोड़ा सा गर्म है, पर बागवानी करने में इनका जवाब नहीं।
2: एक दिन माली अंकल बगीचे में काम कर रहे थे, उसी वक्त चीनी की सहेली बिट्टू उससे मिलने आई। चीनी उससे अपना बगीचा दिखा रही थी कि तभी माली अंकल गुस्से से बिट्टू से बोले,
5: अरे लड़की, ये क्या कर रही हो? दूर हटो फूल से। अच्छा तो तुम फूल को चुरा रही हो।
3: पर माली अंकल, मैंने तो इन फूलों को हाथ भी नहीं लगाया, मैं तो सिर्फ इनकी खुशबू ले रही थी।
5: अच्छा तो ठीक है, तुमने जो बिना पूछे फूल की खुशबू ली है उसके लिए पैसे दो।
3: अरे फूलों की खुशबू के क्या पैसे? वैसे भी ये मेरी सहेली का घर है और वह भी तो मेरे साथ है।
5: एक तो चोरी करती हो और ऊपर से बहस करती हो। मैंने इतनी मेहनत से फूल लगाए हैं, चलो पैसे दो, चलो।
2: बिट्टू रोने लगती है। उसे रोता देखते चीनी बोलती है,
3: माली अंकल, बिट्टू ने तो फूलों को हाथ भी नहीं लगाया था और आप उसे बेवजह डांट रहे हो। फिर भी अगर आपको फूलों की खुशबू के पैसे चाहिए तो मैं देती हूँ आपको पैसे, मेरी प्यारी सहेली की तरफ से।
2: चीनी अंदर गई और एक डिब्बा ले आई और उसे जोर जोर से हिलाने लगी। उसमें से सिक्कों की खनखने की आवाज आती है।
3: अगर आपको फूलों की खुशबू के पैसे चाहिए तो वो तो ऐसे ही मिलेंगे।
2: माली अंकल चीनी की समझदारी को मान गए और फिर उन्होंने बेवजह बच्चों को डांटना भी छोड़ दिया।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जानिब से पेश है सातवीं जमात की उर्दू की मुआविन दर्सी किताब उर्दू गुलदस्ता में शामिल नज़्मों पर मुश्तमिल प्रोग्राम।

0: इस प्रोग्राम में पेश खदमत है एक नज्म, उन्वान है काम और जिंदगी, शायर हैं फैज लुधियानवी। इस नज्म को पहले तहत में पेश किया जा रहा है, आवाज है मोहतरमा सादिया रहमान की।
1: बरकतें हैं आज घर घर काम से, चल पड़ा दुनिया का चक्कर काम से। जिनको अपने फर्ज का एहसास है, दिल लगाते हैं वो अक्सर काम से। कामयाबी उनकी किस्मत में कहां, भाग जाते हैं जो डर कर काम से। खेत हो, स्कूल हो या फैक्ट्री, सबकी रौनक है सरासर काम से। काहिली तो जानलेवा रोग है, जिंदगी होती है बेहतर काम से। जिंदा रहने का सलीका है यही, मुंह न मोड़े कोई दम भर काम से। बैठकर बातें बनाना सहल है, असल में खुलते हैं जौहर काम से। कद्र करता है जमाना काम की, नाम पाते हैं हुनरवर काम से। दो घड़ी आराम करना चाहिए, जब फरागत हो मयसर काम से।
0: और अब ये नज्म तरन्नुम के साथ पेश की जा रही है, गुलकार हैं देवाशीष और अनुजा बिसारिया। इस नज्म को मौसीकी से आरास्ता किया है हरभजन सिंह और उनके साथियों ने।

एकेडमिक गाइडेंस डॉक्टर मोहम्मद नुमान खान, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चमन आरा, असिस्टेंट्स अब्दुल हक और अशरफ हुसैन, प्रोडक्शन हेड प्रभुदयाल खट्टर, टेक्निकल कंट्रोल सतीश लाड़े, रिकॉर्डिस्ट दीपक पांडे, असिस्टेंट्स इन प्रोडक्शन दाऊदयाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर रमेश रानी शर्मा।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा, मैंने किसे खुश किया, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हेलो दोस्त यार, हमारा तो एग्जाम आने वाला है।
2: अच्छा, मेरे में तो अभी टाइम है।
1: सही है, तुम्हारे तो पढ़ने के लिए टाइम भी मिलेगा। मेरे तो साइंस और मैथ्स का तो तैयारी हो गई है।
2: अच्छा,
1: और SST में थोड़ा डर लग रहा है।
2: हो, मुझे तो संस्कृत में बहुत डर लगता है भाई। मैथ्स और साइंस और हिंदी में तो एकदम परफेक्ट तैयारी है। मैथ्स की तो इतनी परफेक्ट है कि 100 में से 101 लाऊंगा।
1: सही है।
3: क्या बात है बच्चों, क्या इतनी गहरी चर्चा हो रही है आप लोगों की।
2: दीदी, हम एग्जाम की बात कर रहे थे और हमारे सब्जेक्ट्स की, जो हमारे फेवरेट हैं।
3: ओह माय गॉड, अच्छा मतलब आप लोगों के सबके फेवरेट सब्जेक्ट हैं।
2: हाँ दीदी।
1: हाँ दीदी,
3: क्या बात है। चलो मैं भी थोड़ा सा जान लेती हूँ आपके सब्जेक्ट के बारे में, कौन से पसंद है। और आज मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है यहाँ पे।
4: मेरा नाम है शिवानी, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ।
5: मेरा नाम है अमन और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ।
2: और मेरा नाम है आयुष, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ।
1: और मेरा नाम है रोशन और मैं भी 10th क्लास में पढ़ता हूँ।
3: क्या बात है, तो मतलब आप लोगों को तो ढेर सारी पढ़ाई करनी पड़ती होगी।
2: हाँ दीदी।
1: हाँ दीदी,
3: बहुत सारी।
2: हाँ बहुत सारी।
3: लग रहा है शिवानी को नहीं करनी पड़ती है।
4: नहीं, मुझे करनी पड़ी है।
3: हाँ, बिकॉज शिवानी तो एकदम चुप चुप थी, तो मुझे लग रहा है शिवानी को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऐसी हो जाती है ना चुटकियों में। अच्छा नहीं नहीं वैसे सही बात है बच्चों, पढ़ना तो बहुत पड़ता है एंड पढ़ाई तो बढ़ती भी जा रही है कुछ ना कुछ। हमारे टाइम में जो हम पढ़ते थे, मुझे लगता है आप लोग उससे तो ज्यादा पढ़ते हो।
2: हाँ दीदी, पहले मुझे लगता है पढ़ाई आसान होती थी क्योंकि वो मेरे को बताते हैं।
1: हाँ, मेरे को भी मेरे दादी एक बार बता रही थी कि उन्होंने 8th में ABCD पढ़ा।
3: हाँ, वो तो काफी पुराने जमाने की बात है।
1: हाँ दीदी,
3: है ना।
2: 10-20 साल पहले भी, मतलब अब जिसके 60% भी आते हैं ना, उसकी भी अच्छी जॉब है। लेकिन अब के टाइम में इतना कंपटीशन है दीदी कि 90 से तो ऊपर चाहिए।
3: चाहिए होता है, एडमिशन के लिए चाहिए होता है।
2: जी दीदी।
1: जी दीदी।
3: तो डर लगता है क्या।
5: हाँ थोड़ा सा।
2: हाँ।
3: क्या लगता है
5: कि हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वरना हमारे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, कम आए तो ऐसा।
4: मुझे लगता है अगर मैं फेल हो गई तो फिर इसी क्लास में पढ़ी रहूंगी।
3: ऐसा डर लगता है।
5: हाँ।
3: अरे बाप रे। तो वैसे क्योंकि पढ़ाई करने के लिए तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, कोई ऑप्शन तो होता नहीं हमारे पास।
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। 11th में होता है वो
3: तो। 11th का इंतजार कौन कौन कर रहा है यहाँ।
2: मैं कर रहा हूँ।
1: मैं भी,
2: बस कुछ महीने बाकी हैं दीदी।
3: अरे वाह। और अमन को इंतजार नहीं है।
5: थोड़ा सा, पर मुझे अभी 10th भी पढ़नी है।
3: ओ, तो समय लगेगा अभी। और शिवानी,
4: मुझे तो पता ही नहीं क्या करते।
3: कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। अच्छा बच्चों, आपके पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा, फेवरेट, अगर एक सब्जेक्ट कोई हो जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, मजा आता हो पढ़ने में, तो कौन सा है।
2: मैं बताऊं दीदी पहले।
3: बताओ।
2: मेरा तो मैथ्स है।
3: ओके, आयुष का सब्जेक्ट मैथ्स है, क्यों अच्छा लगता है मैथ।
2: दीदी उसमें सोल्व करने होते हैं, सम तो सोल्व करते हुए इतना मजा आता है, बहुत ज्यादा, और बहुत इंटरेस्टिंग मैथ्स है।
3: ओके, सबसे अच्छा क्या लगता है मैथ्स में।
2: ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वैसे मुझे सच में पसंद है क्योंकि मुझे आती वो सबसे कम है, लेकिन उसको सोल्व करने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है।
3: उसमें क्या होता है ये बताओ।
2: उसमें एक्स की वैल्यू।
1: अच्छा, फाइंड एक्स।
2: हाँ।
3: अच्छा, तो आपको इक्वेशंस अच्छी लगती है।
2: हाँ, इक्वेशंस।
3: ओके, अब पता है मुझे कैसे पता है, क्योंकि ना मेरा भी फेवरेट मैथ्स था।
2: ओ अच्छा। आपको क्या अच्छा लगता था दीदी मैथ्स में।
3: मुझे मैथ्स में तो सभी चैप्टर्स अच्छे लगते थे, बस वो जो जिसमें हमको एरिया पता करना होता था, ये सब करना होता था ना, कई बार मुझे वो थोड़ा सा फिर भी फॉर्मूला भूल जाती थी।
2: हाँ दीदी।
3: लेकिन बाकी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह इक्वेशन सॉल्व करना मुझे भी बहुत पसंद था। अच्छा अमन, आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है।
5: साइंस।
3: क्यों अच्छा लगता है साइंस।
5: साइंस में क्योंकि वो हमारे आसपास के, जैसे आसपास होता है वैसे साइंस में लिखा होता है, वैसे पढ़ते वक्त हम जो पढ़ते हैं वो उसे समझ आता है कि हमारे आसपास ऐसा है, ये कैसे बना है।
3: ओके, तो साइंस में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब क्या सबसे अच्छा लगता है आपको।
5: बायो।
3: बायोलॉजी अच्छी लगती है, मतलब अपनी बॉडी के बारे में जानना। हाँ। क्या क्या है, कहाँ कहाँ कैसे।
5: केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है पर फिजिक्स नहीं।
3: फिजिक्स बिल्कुल नहीं अच्छी लगती।
5: नहीं, थोड़ी थोड़ी, वो थोड़ा टफ होती है।
3: हाँ, कोई बात नहीं। और रोशन को क्या अच्छा लगता है।
1: मेरे को भी साइंस ही अच्छा लगता है दीदी।
3: साइंस में क्या अच्छा लगता है।
1: साइंस में बायो और केमिस्ट्री।
3: ओके, बायो या केमिस्ट्री, दोनों
1: दोनों सेम.
3: तो क्या अच्छा लगता है, केमिस्ट्री क्यों अच्छी लगती है, उसमें तो इतने टफ टफ फॉर्मूलास होते हैं.
1: फॉर्मूलास कुछ नहीं होता दीदी, एक उसका टर्म याद कर लो हो जाता है.
3: और उसमें तो एक्सेप्शंस भी होते हैं है ना.
1: एक्सेप्शंस भी होते हैं पर वो टेंथ में नहीं है. अच्छा, कोशों में
3: तो आपको अच्छा लगता है.
1: हाँ दीदी, और मेरे मम्मी कहते थे कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा.
3: हाँ हाँ. अभी क्या बनने का मन करता है?
1: अभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर.
3: ओके, मतलब साइंस से जुड़े.
1: हाँ, साइंस जुड़े.
3: क्या बात है. और शिवानी को क्या पसंद है?
4: मुझे तो हिंदी पसंद है.
3: अच्छा, क्यों? हिंदी में क्या अच्छा लगता है ऐसा?
4: क्योंकि उसमें हम लोग को बहुत जल्दी उत्तर याद हो जाते हैं.
3: तो आपको समझ में आ जाते हैं कि आपको ऐसे रटना पड़ता है?
4: मतलब मैं कहानी सर एक बार समझा देते तो मुझे समझ आ जाती, मैं बना बना के लिख देती हूँ.
3: अरे वाह, क्या बात है. मतलब शिवानी को कहानियाँ बहुत पसंद है ना. लेकिन हिंदी में तो बहुत सारी मात्राओं का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, क्या लगाना है, कहाँ छोटा ऊ बड़ा ऊ क्या क्या करना है, वो याद रहता है? अरे वाह.
4: और मैं सर से पूछ लेती हूँ, सर मैं अपने मन से बना बना के लिख दूँ सर के. ठीक है.
3: अच्छा अच्छा, ये बताओ आप लोगों के जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें किसी को अच्छे मार्क्स लाने हो तो कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि आपके फेवरेट है तो आपको तो मालूम होगा है ना. बताओ.
5: मैं उसे समझती हूँ और फिर पॉइंट में लर्न करती हूँ. पॉइंट में लर्न करने से हमें अच्छी तरह से लर्न होता है और उसके बारे में जैसे हम पढ़ लेते हैं, एक बार हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और फिर जैसे उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, बस उनको लर्न करने में ज्यादा वो नहीं लगता. जैसे हमने चैप्टर पढ़ लिया तो हम अपने मन से भी लिख सकते हैं उसके बारे में.
3: अच्छा, तो मतलब पॉइंट में मतलब कैसे लिखते हो?
5: पॉइंट में मतलब बड़ा सा क्वेश्चन होता है, हम उसको छोटे छोटे डिवाइड करते हैं. मैं छोटे छोटे डिवाइड करके इसको पूरा लर्न कर लेती हूँ. जैसे हम बड़ा होता है ना तो फिर बहुत बड़ा लर्न करना पड़ता है.
3: जैसे कोई एग्जांपल दोगे जो आपने लर्न किया हो?
5: जैसे याद नहीं है लेकिन
3: कोई बात नहीं, सोच के बताना.
5: बड़ा आंसर होता है, हम उसको छोटा करते हैं. जैसे एक लाइन के बाद जैसे पैराग्राफ खत्म हो जाता है तो उसको उत्ते में लर्न कर लिया और फिर थोड़ा देर बाद जो दूसरा होता है उसको दूसरे में. ऐसा
3: ऐसे तो लर्न नहीं किया, जैसे वो एक मूवी में एक सवाल पूछा था ना कि मोटर कैसे स्टार्ट होती है.
5: मोटर कैसे?
3: एक बहुत ही फेमस मूवी थी और मुझे लगता है थ्री इडियट. तो उसमें एक प्रोफेसर वो स्टूडेंट सवाल पूछता है कि मोटर कैसे शुरू होती है, तो क्या बोलता है वो, याद है किसी को?
5: मैंने नहीं देखी मूवी.
2: मेरे को तो वो क्वेश्चन भी याद नहीं है दीदी.
3: उसमें वो बोलता है ब्रूम.
5: नहीं, एक्चुअली साइंस ना हम इमेजिन भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको इमेजिन करके भी लर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे आसपास ही होती है, इसलिए वो लर्न करने में ज्यादा इजी होती है.
3: इजी होती है लर्न करने में.
5: मैथ्स नहीं होती इजी, सो सॉल्व करना पड़ता है.
2: मैं बताता हूँ.
3: हाँ भैया, मैथ्स जिसका फेवरेट सब्जेक्ट है उससे पूछ लेते हैं एक बार. आयुष आप बताओ.
2: दीदी हमारे सर बताते हैं, मैंने उनकी बात को फॉलो करा और वो बहुत अच्छी बात है. जो भी सर बोर्ड पे सम कराते हैं उसी दिन उसे घर पे जाके रिवाइज करो. जितने क्वेश्चन जैसे सिर्फ दो भी कराए ना तो उसको ही आप रिपीट करो 3 से 4 बार रफ कॉपी में, और फिर वो आपको आ जाएंगे समझ में. फिर अगर वो नहीं आया तो सर से पूछ लो, और अगर आ गया तो आप समझना होता है, रटना नहीं होता मैथ्स को, और समझ के बस करो. और क्या होता है, बस फॉर्मूले याद करो, उसमें पुटअप करो और आंसर आ जाता है. और बस थोड़ा टेबल याद होने चाहिए आपको, स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब, तो फटाफट होती है, बहुत इजी है.
3: मतलब कुछ चीजें जरूरी हैं, जैसे आप स्क्वायर याद कर लो. हाँ, उसका क्या होता है, क्यूब याद कर लो, स्क्वायर रूट याद कर लो, टेबल याद कर लो.
2: हाँ,
3: फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे.
2: फॉर्मूले तो मेन होते हैं मैथ्स में, और जो करवाया है बस उसको एक बार रिपीट कर लो घर पे जाके रफ कॉपी में, और फिर आपको मैथ्स आने लग जाती है.
3: बिल्कुल सही बात है. पता है जब मैं 10th क्लास में थी तो हमारे एक सर थे, वो पता है क्या करते थे, मतलब ट्यूशन पढ़ते थे हम लोग वहाँ पे, और वो हर संडे हमारा 100 मार्क्स का टेस्ट लेते थे, पूरे 100 मार्क्स का. तो भले कोई चैप्टर हमें पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, तो क्या होता था, शुरुआत में हमने कुछ चैप्टर नहीं पढ़े थे तो किसी के मार्क्स 100 में से 30 आ रहे हैं, किसी के 20 आ रहे हैं, किसी के 40 आ रहे हैं. फिर जैसे ही पढ़ते जाते थे तो मार्क्स भी धीरे धीरे बढ़ते जाते थे.
2: तो दीदी सेम क्वेश्चंस होते थे?
3: नहीं, हर बार अलग क्वेश्चंस होते थे. हर बार अलग क्वेश्चंस होते थे और क्वेश्चन पेपर का रिजल्ट भी हमें हर हफ्ते मिलता था. तो फिर इतनी उन लोगों ने लेकिन हमारी प्रिपरेशन करवा दी, टेस्ट दे के कि जब एग्जाम आया ना बोर्ड का, तब हमें से किसी को डर ही नहीं लग रहा था. और वो बहुत आसान हो गया और नंबर भी आ गए, क्योंकि हर संडे टेस्ट, क्या करोगे आप, याद हो ही जाएगा अल्टीमेटली.
2: और हमारे सर जो है वो हमारी रफ कॉपी डेली चेक करते, डेली, संडे भी नहीं. उनका कहना है बस जो सम कराता हूँ उसको ही आप घर पे याद करो, पहले देख के करो फिर नोटबुक में से, फिर उसको बिना देखे करो, और उसके बाद करो 2-3-4 बार. एक सम को 3 बार करना होता है और जितने भी करवाए, और वो डेली रफ कॉपी चेक करता है. अगर नहीं करे तो फिर डांटते हैं, मारते हैं, फिर वो अगले दिन करके लाता है बच्चा,
3: फिर पनिशमेंट मिलती है.
2: हाँ.
3: ओके, और रोशन आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी साइंस है, तो कैसे, अगर उसमें स्कोर करना है तो कैसे पढ़ना पड़ेगा उसको?
1: हमारे स्कूल में तो सर सिखाते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूँ उनको एक बार समझ लेना, तुम खुद एक टेस्ट बनाना, खुद क्वेश्चन लिखो, खुद आंसर लिखो।
3: ओके
1: और एक और बात, टेक्स्ट बुक खोलो, उसमें एक एक पैरा पढ़ो, उसमें से क्वेश्चन निकालो खुद और आंसर भी खुद लिखो।
3: अच्छा, ये भी अच्छा तरीका है, मतलब क्वेश्चन खुद ही निकालो। तो आप निकालते हो क्वेश्चन खुद?
1: जी दीदी।
3: कैसे निकलते हैं? हर बार कोई नया क्वेश्चन निकल पाता है?
1: हाँ, एक पैरा पढ़ता हूँ, उसमें समझ में आ गया तो क्वेश्चन निकलता है, समझ में नहीं आया तो फिर क्वेश्चन बन नहीं पाया।
3: तो फिर आप दोबारा पूछते हो फिर सर को?
1: हाँ जी दीदी।
3: तो सर समझा देते हैं?
1: हाँ, सर ने समझा देता ट्यूशन में।
3: इससे क्या फायदा होता है फिर आपको?
1: दीदी एक एक पैरा रटा हुआ नहीं, समझ में आ गया हमको तो फिर एग्जाम में तो आसान हो जाएगा, सब आता है फिर तो।
3: अच्छा, फिर डर नहीं लगता होगा साइंस में?
1: नो दीदी।
3: ओके, और शिवानी आप बताओ, आपका फेवरेट तो हिंदी है, तो हिंदी में कैसे मार्क्स लाए जाए और कैसे पढ़ाई की जाए?
4: मतलब कि पहले तो सर कहानी ही समझा देते तो इसलिए समझ आ जाता है। और जैसे इंग्लिश में मुझे लर्न करना होता है तो मैं तो सॉन्ग बना के लर्न कर लेती हूँ।
3: कैसे सॉन्ग बनाते हो बताओ?
4: म्यूजिक देख के।
3: कोई सॉन्ग याद है जो आपने बनाया हो?
4: मैंने नहीं बनाया, मतलब ये बोल रही थी तो मैंने इसके लर्न करवाया इसको।
3: हाँ, किसने बनाया वो सॉन्ग?
4: किसने बनाया था?
3: शिवानी ने बनाया।
4: हाँ।
3: शिवानी ने कैसा बनाया, सुनाओ तो।
4: मुझे वो आंसर नहीं याद, इसको याद दा से था।
3: बताओ बताओ।
4: दा प्रोसेसिंग।
3: जैसे गा के कैसे किया उसे याद, वो बताओ।
4: तुम्हें पता है ना, मैं भूल गई।
3: थोड़ा सा जितना याद है उतना बोल दो।
4: मुझे थोड़ा सा नहीं याद, थोड़ा सा याद था, दा प्रोसेसिंग ऐसा कुछ था।
3: अच्छा,
4: याद है, मैं नहीं बोलूंगी।
3: शिवानी हमें थोड़ा सा सुनाओ ना, क्या पता हमें भी नया तरीका आ जाए और हम भी जल्दी जल्दी याद कर लें फिर, है ना?
4: The processing on, ने ने।
3: हाँ, चलेगा।
4: ने ने ने ने ने ने ने ने। इसका पूरा था तो हम लोग ने आगे में करा तेने।
3: अच्छा, मतलब म्यूजिक में डाल दिया था सारे वर्ड्स को।
4: अब वो पहले मैं जब थोड़ी सी इसे एक क्लास और छोटी थी ना तो मैं ऐसे ही करती थी थोड़ा सा, मतलब कोई भी गाना सुनती थी तो गाना तो मुझे बहुत जल्दी रन हो जाता है और वैसे मैं सब आंसर में भी पुट कर देती थी आंसर को लर्न करने के लिए गाने, ऐसा अपने मन से ट्यूनिंग बना के।
3: तो फिर वो याद रहता था?
4: हाँ, बहुत देर तक याद रहता था, क्योंकि गाना होता है ना, हम लोग गाते हैं तो हम लोग को गाने याद रहते हैं इसीलिए। हाँ, गाने बहुत जल्दी याद हो जाते हैं जैसे हम म्यूजिक के साथ लर्न करते हैं, इसलिए।
3: कई बार ऐसा होता है ना, एग्जाम में गाने याद आ रहे होते हैं।
4: हाँ, मेरे साथ हो चुका है ऐसा। गाने क्या होता है, सब कुछ याद आने लगता है एग्जाम में, सिर्फ कंसर्ट्स नहीं याद आते।
2: ये तो बहुत यूनिक तरीका है दीदी।
3: हाँ, सही बात है, ये तो काफी यूनिक तरीका है कि भाई गाने याद कर लो। अच्छा, अब ये बताओ, ये तो फेवरेट सब्जेक्ट की बात हुई, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता?
2: हाँ, है ना?
4: हाँ?
2: संस्कृत।
3: क्यों नहीं अच्छा लगता आयुष?
2: Okay. दीदी उसके वर्ड्स ही ऐसे होते हैं, बहुत अलग होते हैं एकदम, मतलब तो वो वर्ड्स याद नहीं होते हैं। जैसे हिंदी है, साइंस है, वो हमने पढ़ा होता है, हमें याद आ जाता है। तो बोर्ड में मतलब एग्जाम में हम लिख भी सकते हैं कि हाँ ऐसा बताया था, कितना भी आता। संस्कृत में तो वो वर्ड्स ही नहीं पता होते दीदी।
3: ओके।
2: याद ही नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता।
3: अच्छा, यहाँ पे कोई है जिसको संस्कृत पसंद है? बहुत टफ लगती है शिवानी?
2: हाँ, इनकी छोटी होगी ना संस्कृत, तो इसलिए इसको फेवरेट।
3: क्या अच्छा लगता है उसमें?
4: उसमें ना मतलब बहुत ज्यादा फनी वर्ड्स होते हैं, जैसे किम करूती, रचंती।
5: मुझे संस्कृत का बिल्कुल भी एक वर्ड नहीं आता, मैंने बचपन से लेके संस्कृत अभी तक नहीं पढ़ी।
1: मार तो संस्कृति नहीं है, मैं छूट गया।
3: ओके।

0: मैं सिर्फ मैंने तो पढ़ी थी, मुझे तो बहुत डांट डांट के पढ़ाया गया था, और जब डांट के पढ़ाया गया फिर तो याद करना ही पड़ा. अच्छा, और किसको क्या पसंद नहीं है? आयुष ने तो बताया कि उसको संस्कृत बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि टफ होती है ना.
1: मुझे साइंस भी पसंद है.
0: साइंस भी पसंद है. शिवानी को तो मुझे लगता है सब पसंद है. तो शिवानी को हम डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट सब बना देंगे, है ना?
1: जी, ड्राइंग भी पसंद है.
0: ओ देखो, अभी आर्टिस्ट भी बनाएंगे. हाँ,
2: मुझे एसएससी बिल्कुल भी पसंद नहीं है.
0: क्यों?
2: क्योंकि सर जो हमारे समझाते हैं ना, एक्चुअली वो हमें हिंदी में समझाते हैं इंग्लिश का, लेकिन फिर भी वो जिस तरह से हम बना बना के भी लिख सकते हैं एसएससी में तो बहुत वो होता है, लेकिन मुझे फिर भी पसंद नहीं है.
0: Okay.
2: क्योंकि मुझे उसके जो ये डेमोक्रेसी और ये सब बताते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता. कुछ समझ ही नहीं आता समाचार में.
0: समाचार समझ नहीं आता मतलब ये तो थे कि समाज से जुड़ी बातें हैं.
2: हाँ, पॉलिटिकल ऐसा कुछ
0: ये सब नहीं समझ पाता.
2: समाज से जुड़ी बातें बिल्कुल भी नहीं. मैं समाचार भी नहीं देखती, इसीलिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता.
0: ओके, कोई बात नहीं. और क्या पसंद नहीं है रोशन को?
3: मेरे को हिंदी नहीं पसंद. बात करने में मजा आता है वो अलग बात है, पर लिखने में गलती होती है.
0: क्या ग्रामर जो होती है?
3: ग्रामेटिकल और मात्रा.
0: मात्रा
2: मेरी भी ऐसा ही कुछ होता है, मात्रा में बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है.
1: अब तो मुझे सर ने मुझे समझा दिया कि ई की मात्रा इधर लगती है, बड़ी की मात्रा.
2: लेकिन मैं अभी तक मुझे बहुत मिस्टेक होती है, अभी तक मेरी मिस्टेक होती है हिंदी में.
0: ओके, मतलब अभी
2: भी नहीं होती इतनी ज्यादा, हिंदी में बहुत होती है.
0: ओके, मात्राओं की वजह से मतलब आपको बस अच्छी लगती है?
3: हाँ दीदी.
0: बाकी वो जो पैराग्राफ में आंसर क्वेश्चन ढूंढने
2: आंसर वो तो हो जाता है
0: आसान. और चैप्टर में जो आंसर्स लिखने होते हैं
2: वो भी माइंड में.
0: और व्याकरण?
3: व्याकरण थोड़ा हार्ड.
2: हाँ,
0: हिंदी व्याकरण थोड़ा हार्ड.
2: अब तो नहीं है नाइन्थ मेरे क्लास में.
3: हमारा ऐसा होता है कि अगर एग्जाम हॉल में जो सर रहते हैं उनको हिंदी नहीं पता. सर से वो कोई टफ वर्ड हो तो पूछने गए थे तो बोलते हैं नहीं, मेरे को हिंदी नहीं आता, मेरे को पढ़ना भी नहीं आता, तुम जाके बैठ जाओ.
0: ताकि वो आपको कुछ हेल्प नहीं करे ना, इसलिए कुछ बोलते नहीं होंगे. हाँ भाई, अब एग्जाम में हेल्प करना थोड़ा मुश्किल है. नहीं. अच्छा, ये तो आप लोगों ने बात की कि आपको पसंद नहीं है सब्जेक्ट. तो अगर एग्जाम होता है और उस सब्जेक्ट का एग्जाम होता है जो आपको पसंद नहीं है, तो कैसे तैयारी करते हो फिर?
4: मैं तो रट लेता हूँ. मैं भी
2: मैं थोड़ा पहले समझने की कोशिश करती हूँ, नहीं समझ आता तो फिर वो रटना ही पड़ता है
3: पूरा रटन.
0: लेकिन मैथ्स रटना तो बड़ा मुश्किल है. मैथ्स कैसे रटते हो?
2: मैथ्स तो समझते हैं, वो दो तीन बार जैसे भैया ने बोला ना वो करके देखना, तो वो करके देखते हैं मैथ्स में,
0: फिर समझ में आ जाता है.
2: हाँ, मतलब जो नहीं समझ आता फिर मैं उसको बार बार टीचर से पूछती हूँ, अपनी ट्यूशन टीचर.
0: ओके,
1: मुझे तो जो नहीं आता मैं छोड़ देती हूँ.
0: फिर एग्जाम में क्या होता है?
1: जो आता मैं लिख लेती हूँ. फिर अपनी पहले एक दिन नहीं, थोड़े देर पहले मैं अपनी फ्रेंड से पूछती हूँ ये क्या है मुझे बताओ. फिर जब टेस्ट होता है तो मुझे पता चल जाता है.
0: अच्छा, मतलब आपकी फ्रेंड आपको बता देती है?
1: हाँ, क्योंकि ट्यूशन वाली मैम इतनी अच्छे से नहीं समझाती.
0: लेकिन आपकी फ्रेंड अच्छे से समझाती है.
2: इसकी फ्रेंड इसको अच्छे से समझा देती है.
0: मतलब फ्रेंड को ट्यूशन टीचर बन जाना चाहिए.
4: फ्रेंड की बात दीदी जल्दी समझ आ जाती है.
0: अच्छा, ऐसा क्या? सभी को मतलब फ्रेंड्स की बात जल्दी समझ में आती है?
2: कोई भी समझाए ना तो हमें जल्दी समझ आता है.
3: फ्रेंड्स मजाकिया तरह से बताते
0: हैं. कैसे कैसे मजाकिया तरीके से कैसे समझाते हैं?
1: मैं तो
4: मेरा फ्रेंड है, मैं जैसे मैथ्स का सवाल कोई समझ नहीं आता तो मैं कर रहा होता हूँ, तो जैसे 2 से 2 कट जाता है तो बोलता है देखो इसको 2 से 2 ये मर गए, ये दोनों मर गए, अब ये बचा है, ये आ गया. ऐसे मतलब उसका बहुत अच्छा तरीका है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता.
0: ओके.
4: हाँ,
0: और क्या रोशन आपको कैसे लगता है मजाकिया तरीके से समझाते कैसे?
3: केमिस्ट्री होता है जैसे कि फ्रेंड से पूछो तो ये इक्वेशन है और इसमें से ये हट गया, मतलब ये दोनों जोड़ के एक कंपाउंड बना, ये कैसे हुआ मैं पूछ रहा हूँ. तो उसने बताया कि हमारा क्लास में 2 मतलब बड़े हैं, वो 1 साल फेल हो गए थे.
0: ओके.
3: तो उनका एक एग्जाम्पल ले लिया और एक सबसे छोटा बच्चा हमारे क्लास में.
0: ओके.
3: बहुत छोटा, उसका एग्जाम्पल ले लिया. अब बोले ये बड़ा है, ये इसको हटा नहीं सकता, ये तो इसको लात मार के हटा देगा.
0: ओके.
3: तो ये जीत गया, बस ये आ गया.
0: ओ अच्छा.
4: ऐसा ही होता है दीदी.
0: ऐसे दोस्त समझाते. अच्छा, मतलब फिर तो याद हो जाता होगा, क्योंकि याद हो जाता होगा कि बड़ा जो है वो छोटे को. तो फिर कंपाउंड याद हो जाते हैं केमिस्ट्री में,
2: ज्यादा होती है जिसकी मात्रा कम होती है वो हट जाता है.
0: मतलब ये अच्छा तरीका है कुछ ऐसे पिक्चर कर पाए, अगर हम इमेज बना पाए या याद कर पाए आसपास की चीजों से, तो याद हो जाता है
4: प्रैक्टिकल में.
0: प्रैक्टिकल में याद हो जाता है. तो मतलब अगर आप लोग टीचर बनोगे
2: तो बच्चों को प्रैक्टिकल
4: हमारे तो दीदी टीचर ऐसे ही समझाते हैं.
0: तो मतलब आप तो बच्चों को सब कुछ याद करवा दोगे फिर
2: शायद से.
0: इतने इंटरेस्टिंग तरीके से
1: तो बहुत ढेर सारे बच्चे आ जाएंगे पढ़ने के लिए.
0: बताओ
1: मैं तो ड्राइंग सिखाऊंगी.
0: और अमन आपने तो बताया वैसे क्या क्या टफ लगता है, तो कैसे तैयारी करते हो आप, कैसे करते हो?
2: टफ होता है तो बस मैं उसकी बहुत बार प्रैक्टिस करती हूँ, उसको बहुत बार रीड करती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ. पहले ट्यूशन टीचर से समझती हूँ, फिर मम्मा से बोलती हूँ, मम्मा समझाती है, फिर मुझे खुद से समझती हूँ देर तक. बहुत टफ होता है ना तो उसको बहुत बार समझना पड़ता है, लेकिन जो ईजी होता है वो जल्दी हो जाता है.
0: ओके, कभी डर लगता है क्या किसी सब्जेक्ट में?
1: हाँ, मैथ्स में.
0: हाँ, क्या डर
2: मैथ्स
0: लगता है?
2: में थोड़ा सा लगता है क्योंकि उसके जो होते हैं ना सम्स वो गलत भी होते हैं, भले हमें मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं फिर भी मैथ्स में बहुत डर लगता है थोड़ा सा. मैं थोड़ा सा लगता है
0: थोड़ा सा बहुत लगता है
1: मुझे मतलब हाँ. मुझे तो इंग्लिश में बहुत लग रहा था, फिर मेरे इंग्लिश में 9 आ गए.
0: अच्छा, कितने में से?
2: 10.
0: और फिर ठीक हो गया डर? अरे वाह,
1: क्योंकि उसमें पैसेज था, उसमें से ढूंढ ढूंढ के आंसर करने थे.
0: अच्छा, बेस्ट टीचर कौन से सब्जेक्ट का लगता है, क्या वो उनके क्या तरीका अच्छा लगता है?
2: साइंस, मेरे साइंस के टीचर बहुत अच्छे.
0: ओके,
2: वो हमें मतलब समझाती ऐसे है ना मेरी मैम कि मतलब ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल, ऐसे एक एक पॉइंट समझाती है हमें बता बता के. एक पैराग्राफ पढ़ाया उसका भी अंदर से पूरा पढ़ाती रहती, हिंदी में इतना अच्छे समझाती है वो.
1: मुझे हिंदी और संस्कृत के सर दोनों सर एक ही है.
0: मतलब क्या टीचर जब अच्छे होते हैं तो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है, ऐसा होता है क्या कभी?
2: होता है,
0: ऐसा कब हुआ आप लोगों के साथ बताओ?
3: दीदी, जब मैं पहले पहले स्कूल में आया था, एक मैम थे साइंस के, वो इतने अच्छे नहीं पढ़ाते थे, मेरे को समझ में नहीं आता था, तब तो मैं ट्यूशन भी नहीं जाता था, कम पसंद था. जब मैं 8th और 9th, 10th में आया तो एक और मैम आए, वो स्कूल से निकल गए थे, ये मैम आए. ये मैम बहुत अच्छे, मतलब जो रियल लाइफ में होता है ना, जो अपने लाइफ में होता है उससे रिलेट करके समझाते हैं. जैसे कि कहीं अपने पेरेंट्स मतलब बड़े वाले बच्चे को मार के सिखाते हैं कि पढ़ नहीं तो फेल हो जाएगा, डराते हैं. मैम ऐसे समझा दी थी कि अगर डर होता है ना तो एक हार्मोन निकलता है अपने बॉडी में, उसका नाम एड्रेनल होता है. टॉपिक एड्रेनल था.
0: ओके, ओह,
3: ऐसे को रिलेट करके वो सिखा देते थे तो समझ में भी आता है एड्रेनल क्या है. हाँ, मार मार के डर हो जाता है, डर लिख दो.
0: वो तो आपको अभी तक याद है देखो.
3: जी दीदी,
0: क्या बात है, मतलब टीचर के कारण सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है. अमन, आपके साथ भी ऐसा हुआ?
2: हाँ, मैम फिगर से समझाती हैं.
0: कैसे?
2: फिगर बनाती हैं, जैसे अभी तो मेरे लेसन में मैम ने अभी हमें टिश्यू समझा रही थी, टिश्यू वाला लेसन है बायो में, तो उसमें मैम बताती हैं कि छोटे छोटे से सेल्स होते हैं ना, उनसे मिल मिल के छोटे बनता है, और फिर टिश्यू से हमारे ऐसे से पार्ट्स बनते हैं.
0: मतलब डायग्राम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं तो याद हो जाता है.
2: हाँ, वो चौक से बना के बनाती है.
0: ओके, शिवानी, आपके साथ भी ऐसा हुआ?
1: नहीं, मेरा तो हिंदी और संस्कृत, मतलब कि हिंदी और संस्कृत के दोनों सब्जेक्ट के एक ही सर है, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं,
0: तो उसके कारण आपका सब्जेक्ट फेवरेट हो गया.
1: हाँ.
0: अच्छा, कैसे पढ़ाते हैं वो इतना अच्छा?
1: वो मतलब कि पहले कहानी पढ़ाते हैं, फिर लिखवाते हैं. पहले कहानी पढ़वाते हैं, एक हम लोग की कहानी है, और मेरी क्लास में एक लड़की है, वो कह रही है सर कितने दिन में पढ़ाओगे, अभी मैं 2 मिनट में पढ़ा के खत्म कर दूंगी. मतलब सर ना एक एक उसका पॉइंट समझाते हैं कहानी का.
0: मतलब टाइम देते हैं.
1: हाँ, वो 3 दिन में इतने पेज है कहानी के, 3 दिन में खत्म करेंगे.
0: ओह, ये बात है. और आयुष
4: दीदी, केमिस्ट्री भी मुझे अच्छी लगती है बहुत. पहले 9th में एक मैम थी, वो अच्छा नहीं पढ़ाती थी, बहुत बहुत आलसी टाइप थी चली गई. अब हमारे जो सर आए हैं वो बहुत बेस्ट टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं, आबू रोड के सबसे फेमस टीचर हैं.
0: ओके, मतलब इतना अच्छा पढ़ाते हैं वो सर कि आपको सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा?
4: हाँ दीदी, समझ में भी आने लगा क्योंकि बहुत अच्छे से वो प्रैक्टिकल में बताते हैं. जैसे केमिस्ट्री में है कि उसको यहाँ से यहाँ तक लाना है इन्फिनिटी से, तो वो क्लास के पहले इस कोने में जाएंगे, मान लो मैं इधर इन्फिनिटी में हूँ और फिर हमें इस पॉइंट को उधर तक ले जाना है, फिर इसको ये चीज कहते हैं, इस तरीके से बताते हैं,
0: करके बताते हैं तो याद हो जाता है. ओके, वैसे लेकिन बच्चों अगर हमें अच्छे नंबर से पास होना है तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे ना?
4: हाँ दीदी,
0: है ना? तो फिर जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पे क्या करना पड़ेगा,
4: ज्यादा टाइम देना पड़ेगा,
0: देना पड़ेगा है ना
4: दीदी?
0: तो देंगे क्या ज्यादा टाइम?
4: हाँ मैं तो दे रहा हूँ दीदी,
0: वेरी गुड,
4: संस्कृत को याद कर रहा हूँ, जबरदस्ती याद कर रहा हूँ, मन नहीं करता है, करता हूँ करता हूँ करता हूँ और हो भी रहा है।
0: तो बस शिवानी की तरह गाना बना लो। कैसे बनाएंगे? पठती पठतम
4: पठंती
0: पठंती
4: राम राम रामा रामम रामो रामा।
0: हाँ और पता है रेडियो मधुबन पर पठामी संस्कृतम भी आता है।
4: हाँ दीदी
0: उसको सुन लो।
2: हाँ, हाँ। उसे संस्कृत आ जाएगी थोड़ी बहुत।
0: और नहीं तो शिवानी की मदद ले लेना, शिवानी गाने बना देगी और आप फटाफट संस्कृत याद कर लोगे है ना। तो हम लोग फिलहाल तो मुझे लग रहा है आप लोगों से गुड बाय करना पड़ेगा। आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि कैसे सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, आपके फेवरेट क्या है, और जाते जाते हमने जो शिवानी के तरीका था,
4: हाँ एकदम यूनिक वाला,
0: एकदम यूनिक वाला, वो गा के कैसे याद करती है वो सुनेंगे। साइंस की एक डेफिनेशन होती है मशीन की, पता है आप लोगों को? सबने पढ़ी होगी मशीन क्या होती है, पर आज लग हाँ याद नहीं है ना। अब देखो अब शिवानी याद करा देगी हम सबको।
2: कंप्यूटर में होता है ना मशीन, तो
0: सुन लेते हैं शिवानी की पहले। ओके,
1: ए सिंपल मशीन इज ए डिवाइस दैट कैन चेंज द डेकोरेशन और द मैग्नीट्यूड।
0: अब हम लोग सब लोग एक बार ट्राई करते हैं शिवानी के साथ, एक एक लाइन। शिवानी एक एक लाइन गाना, हम भी साथ में गाएंगे।
1: ए सिंपल मशीन इज ए डिवाइस,
5: a simple machine is a device
1: that can change the decoration,
5: that can change the decoration
1: or the magnitude,
5: or the magnitude।
0: अब एक बार पूरा करके देखते हैं, चलो चलो एक बार पूरा।
5: A simple machine is a device that can change the decoration or a magnitude।
0: Yay!
4: Thank you Shivani।
0: तो आज हमें मशीन की डेफिनेशन तो याद हो गई, और शिवानी को तो सच में थैंक यू कहना पड़ेगा। थैंक यू शिवानी।
2: थैंक यू शिवानी।
0: तो चलो बच्चों इसके साथ फिलहाल हम आपसे लेते हैं बाय बाय कहना पड़ेगा। तो बाय बाय बच्चों।
2: बाय बाय दीदी।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: IET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 13वां पाठ बसेरा ऊंचाई पर, पृष्ठ संख्या 120, कहानी एक यात्री की। मैं हूँ गौरव जानी और यह है लोनर, मेरी सबसे बढ़िया साथी, मेरी मोटरसाइकिल। अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। वैसे तो मेरी मोटरसाइकिल अकेली नहीं है, उसके साथ मैं हूँ हरदम। हम दोनों ही मुंबई की भीड़भाड़ वाली, शोरगुल वाली गलियों और ऊंची ऊंची इमारतों में से निकलने का मौका ढूंढते रहते हैं। हम दोनों को ही अपने सुंदर देश के अलग अलग इलाकों में घूमने का बहुत शौक है। आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ एक अद्भुत कहानी, दुनिया के सबसे ऊंचे रास्तों पर मोटरसाइकिल यात्रा की। कैसे की तैयारी? मेरी यात्रा थी लगभग 2 महीने की। इतने दिनों के लिए सामान ले जाना, वह भी मोटरसाइकिल पर लादकर। मैंने बहुत सोच समझ कर ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया। रहने के लिए टेंट, बिछाने के लिए प्लास्टिक की शीट और स्लीपिंग बैग, गर्म कपड़े, काफ़ी दिन तक ख़राब ना होने वाला खाना, कैमरा, पेट्रोल, रखने के लिए डिब्बे इत्यादि भी। मैं मुंबई से निकला, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे बड़े शहरों से होता हुआ दिल्ली पहुंचा। मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमीटर का रास्ता मैंने 3 दिन में तय किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, पर दिल्ली भी मुंबई जैसी ही लगी। इतने सालों से मैं थक चुका था एक तरह के शहर देखते देखते। पृष्ठ 121। वहीं एक जैसे घर सीमेंट, ईंट, कांच और स्टील के बने हुए। अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था। मेरी कल्पना थी कि मुझे देखने को मिलेंगे लकड़ी के घर, ढलवा छत वाले और बर्फ से ढके घर, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किताबों में भी देखे थे। दिल्ली में सारा सामान भरवा कर मैं आगे बढ़ा। 2 दिन बाद मनाली पहुंचकर पहाड़ों की ताज़ी हवा के बीच मैंने चैन की सांस ली। असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। जम्मू कश्मीर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था। पता करो, नक्शे में देखकर बताओ कि मुंबई से कश्मीर जाने के रास्ते में कौन कौन से राज्य आएंगे। गौरव जानी मुंबई से दिल्ली तक के रास्ते में जिन राज्यों से गुजरे उनकी राजधानियों के नाम पता करो। क्या और कोई भी बड़ा शहर रास्ते में आया होगा? मनाली मैदानी इलाका है या पहाड़ी? यह शहर कौन से राज्य में है? मेरा नया घर। मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट। मेरे छोटे से नायलॉन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि मैं सो सकूं। रात के समय मेरी मोटरसाइकिल टेंट के बाहर पहरा देती। सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहक से ही रोज आंख खुलती। पृष्ठ 122। बताओ, क्या तुम कभी टेंट में रहे हो? कहाँ? कैसा अनुभव था? मान लो तुम्हें अकेले पहाड़ पर 2 दिन तक एक टेंट में रहना है और तुम अपने साथ केवल 10 चीज़ें ले जा सकते हो। उन 10 चीज़ों की सूची बनाओ जो तुम ले जाना चाहोगे। तुमने किस किस तरह के घर देखे हैं उनके बारे में बताओ, चित्र भी बनाओ। ठंडा रेगिस्तान। आखिरकार मैं और लोनार लेह पहुंच ही गए। अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा, समतल और ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक दिखते थे बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान। लेह शहर की एक शांत गली में सफेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे झूले झूले यानी स्वागत स्वागत चिल्लाते हुए मेरा पीछा करने लगे। वे लोनर को देखकर बहुत हैरान थे। सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। ताशी के घर पर ताशी का जोर चला और वह मुझे खींचकर अपने घर ले गया। उसका घर दो मंजिला था, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बना था। उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी। अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था। हर तरफ घास फूस पड़ी हुई थी। ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते थे। पृष्ठ 123। नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगह थी और जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते थे। सर्दी के दिनों में अक्सर इनका परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहता। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की भी नहीं थी। छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल हुए थे। फिर ताशी मुझे घर की छत पर ले गया। आसपास का नज़ारा तो देखते ही बनता था। सभी घरों की छतें समतल थीं। कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए फैली थी तो कहीं सीताफल और मक्का। किसी छत पर धान के ढेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे। ताशी ने बताया कि छत उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी फल सब्जी सुखा ली जाती है। ये ठंडे दिनों में इस्तेमाल होती है जब फल सब्जी नहीं मिल पाते। सोचो यह किन महीनों में होता होगा और क्यों? वहां खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया।

0: गया था, बिल्कुल वहाँ के मौसम और लोगों की जरूरत के अनुकूल। मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ही ठंड से बचाते होंगे। लिखो, ताशी के इलाके के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, वे ऐसा क्यों करते होंगे? तुम्हारे घर की छत कैसी है? तुम्हारे यहाँ छत किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है? पृष्ठ 124। दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा। अब समय था आगे बढ़ने का। टेढ़े मेढ़े संकरे पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं बहुत ऊंचाई पर जाता जा रहा था, कहीं सड़क तो कहीं बड़े बड़े पत्थर। लोनर का चलना मुश्किलों से भरा था। अब मैं चांगयांग इलाके की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। मेरे सिर में दर्द होने लगा और बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत सी पड़ गई। मैं कई दिन तक यहाँ मोटरसाइकिल पर घूमता रहा, लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था, ना ही कोई पेट्रोल पंप, न मैकेनिक, सिर्फ दूर दूर तक फैला नीला आसमान और पहाड़ों के बीच बहुत से तालाब। कई रातें और कई दिन बीत गए, मैं अकेला ही बढ़ता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे सामने था बड़ा सा हरा मैदान और उसमें चरती भेड़ बकरियां। थोड़ी ही देर पर मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। मैं हैरान था कि इस सुनसान इलाके में ये कौन लोग थे और क्या कर रहे थे।
1: पता करो, तुम जिस इलाके में रहते हो वह कितनी ऊंचाई पर है। गौरव जानी ने ऐसा क्यों कहा? इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। तुम कभी पहाड़ी इलाके में गए हो? कहां? वह कितनी ऊंचाई पर था? क्या वहां सांस लेने में तुम्हें भी परेशानी आई? तुम ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई तक गए हो? पृष्ठ संख्या 125। चांगपा, वहां मैं मिला नामग्याल से। उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5,000 लोग? चांगपा घुमंतु लोग हैं जो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। इन्हीं जानवरों से उन्हें अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है, दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा और नरम होंगे। इसीलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। यही है इनकी जिंदगी। मैं मोटरसाइकिल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था, लेकिन ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लादकर घूमते हैं। जब आगे बढ़ना हो तो ये सिर्फ 2.5 घंटे में अपना डेरा समेटकर निकल पड़ते हैं। जहां ठहरना हो वहां कुछ ही देर में ये अपने टेंट गाड़ लेते हैं और तैयार हो जाता है इनका घर। आपका स्वागत है, कहते हुए नामग्याल मुझे बहुत बड़े तिकोने टेंट में ले गया। ये अपने टेंटों को रेवो कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियां बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं। पृष्ठ संख्या 126। ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी। पट्टियां 9 डंडियों के सहारे जमीन से बंधी थीं। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं और गड्ढे के आसपास ऊंची जमीन पर टेंट लगाते हैं। टेंट में घुसने पर मैंने पाया कि वह खूब ऊंचा था और मैं आराम से सीधा खड़ा हो सकता था। अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता। रेबो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था। 2 लकड़ी के बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना था। इससे टेंट में रहने वाले चांगपा ठंड से बचे रहते हैं। ठंड भी कैसी, सर्दियों में यहां का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है और हवा भी बहुत तेज चलती है। दुनिया में मशहूर पश्मीना, माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहां सर्दियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के 1 बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत, सोचो अगर डिजाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। पृष्ठ संख्या 127। 1 घंटे में 70 किलोमीटर की गति। सोचो अगर तुम अपने गांव में बस में बैठे और वह इसी गति से चले तो तुम 1 घंटे में कहां पहुंच जाओगे। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए एक जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाता है। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकालकर गिनकर चराने ले जाते हैं और ये काम औरतों और जवान लड़कियों का रोज का काम है। चांगपा लोगों की जिंदगी पूरी तरह से इन जानवरों से जुड़ी है। क्या कोई जानवर तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है? जैसे तुम्हारा कोई पालतू जानवर या खेती में इस्तेमाल किए गए जानवर इत्यादि। ऐसे 5 उदाहरण सोचो और लिखो कि जानवर तुम्हारी जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। क्या भेड़ बकरियों को अपने शरीर के बाल की जरूरत नहीं होती? चर्चा करो, पता करो। तुमने पढ़ा कि चांगथांग इलाके में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से काफी कम हो जाता है। टीवी या अखबार में देखकर बताओ कि और कौन से शहर हैं जिनका तापमान 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। वे शहर भारत के हो सकते हैं या किसी और देश के भी। किन महीनों में तुम्हें ऐसे तापमान की खबरें देखने को मिलेंगी? श्रीनगर की ओर मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताए। ना चाहते हुए भी आगे तो बढ़ना ही था। लेह से वापसी की यात्रा मुझे इस अनोखे इलाके से दूर एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी। लेह से वापस आते समय मैंने श्रीनगर की ओर का रास्ता पकड़ा। कारगिल से होता हुआ फिर श्रीनगर पहुंचा। रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्भुत इमारतें देखी। फिर कुछ दिन मैं श्रीनगर में रहा। वहां के अलग घरों को देखकर मैं हैरान था। उन घरों ने मेरा दिल ही जीत लिया। कोई पहाड़ पर तो कोई पानी पर, तरह तरह के घरों में लोग रहते थे। पृष्ठ संख्या 128। उन घरों में मैंने कई फोटो खींचे। ये फोटो तुम भी देखो। अपने सफर की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी न था कि

0: इस बारे में कोई दो राय नहीं कि ये मजबूत और टिकाऊ हैं, पर इनमें उन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुशकिस्मती से लेह और श्रीनगर में देखे। फिर से उतना ही लंबा वापसी का सफर करके मैं और लोनर मुंबई पहुंचने ही वाले थे। मुंबई शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर लोनर वापिस नहीं आना चाह रही थी। मेरा मन भी भारी हो रहा था, पर अंदर से दिल में एक खुशी थी। इतना कुछ अनोखा और नया मैं अपनी यादों और अपने कैमरे में कैद कर लाया था, और यह अंत थोड़े ही है। मैं और मेरी मोटरसाइकिल फिर जब इस शहर से ऊब जाएंगे तो निकल पड़ेंगे एक नए सफर पर। देखो और बताओ। देखो, जम्मू कश्मीर में अलग अलग तरह के घर हैं जो कि वहां के लोगों की जरूरत और मौसम के अनुरूप बनाए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 129। श्रीनगर के घरों पर एक नजर, यहां 6 तस्वीरें दी गई हैं। पहली तस्वीर, श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट या हाउस बोट में जो रहते हैं उनके बारे में है। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। दूसरी तस्वीर, बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। तीसरी तस्वीर है हाउस बोट, और हाउस बोट के बारे में यहां पर बताया गया है। हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्म बंद है जो जिग्सॉ पजल जैसा दिखता है। दूसरी तस्वीर में चलते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवां होती है। अगली तस्वीर, यहां के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियां। ये बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नजारा बढ़िया दिखता है। और अंतिम तस्वीर, यहां के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजों खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। पृष्ठ संख्या 130। क्या तुम्हारे इलाके में अलग अलग तरह के घर हैं? अगर हां तो इसके कारण सोचो। तुम्हारे घर में क्या कोई खास बात है, जैसे ज्यादा बारिश होती है तो ढलवां छत या बड़ा बरामदा, जहां गर्मियों में सोते हो और धूप में कुछ सुखाते हो? अपने घर के बारे में सोचो। घर बनाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है? मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या सीमेंट? अपने घर की खास बात चित्र द्वारा दिखाओ। सोचो और लिखो। इस चित्र को देखो, क्या इसमें कुछ घर पहचान पा रहे हो? ये लकड़ी और मिट्टी के घर हैं जिनमें सर्दियों में कोई नहीं रहता। गर्मियों में बकरवाल लोग यहां रहने आते हैं, जब वे बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। अंदाजा लगाओ कि बकरवाल और चांगपा लोगों की जिंदगी में कौन सी बातें मिलती जुलती हो सकती हैं और क्या फर्क है। हम क्या समझे? तुमने जम्मू कश्मीर के तरह तरह के बसेरों के बारे में पढ़ा, कुछ ऊंचे पहाड़ पर, कुछ पानी में, कुछ जिनमें लकड़ी और पत्थर पर सुंदर डिजाइन है, कुछ जिन्हें बांधकर किसी और जगह भी ले जाया जा सकता है। बताओ, यह बसेरे वहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से कैसे बने हैं? यह घर तुम्हारे घर से कैसे अलग हैं?
1: बसेरा ऊंचाई पर। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 13वां पाठ, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाएं। सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 5 अगस्त आज का तारीख है और आइए आज के दिन जन में उन खास लोगों के बारे में अगर बात करें तो द्वारका प्रसाद मिश्रा, शिवमंगल सिंह सुमन, वीरेन डंगवाल, दत्तो वामन पोद्दार, बीजी रेड्डी, आचार्य प्यारे मोहन, सुरेश मेहता, नील आर्मस्ट्रांग, उत्तराब्या ओकर और अरविंद जोशी, अंशु मलिक, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही गोपीनाथ बरदोसाई, लाला अमरनाथ, प्राण कुमार शर्मा, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम लोग आपसे जुड़ेंगे और कुछ खास लोगों की बातें आपसे शेयर करने वाला हूं। और कार्यक्रम के दौरान आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बातें बता सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक सुंदर विचार के साथ। और जितने सुंदर विचार आप सुनेंगे उतना ही आपका जीवन समृद्ध बनेगा। तो ये लीजिए एक सुंदर विचार अभी आपके लिए। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो ये रहा सुंदर विचार आपके लिए और इसी के साथ आइए एक खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। सर
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, और अभी बात करते हैं एक खास व्यक्ति की कहानी, द्वारका प्रसाद मिश्रा के बारे में। जी हां, भारत के बहुत ही पॉपुलर राजनेता, आज़ादी के दीवाने, पत्रकार और साहित्यकार थे। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया था। द्वारका प्रसाद मिश्रा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए थे। आंदोलन में उन्होंने सक्रियता से अपना योगदान दिया, और इसके मतभेद जवाहरलाल नेहरू के साथ इनका कुछ कारण के कारण इनका जो है नहीं बना, तो इन्हें 13 वर्ष तक राजनीतिक वनवास भोगना पड़ा। कई ऐतिहासिक शोध ग्रंथ भी इन्होंने लिखे। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और सांस्कृतिक साहित्य से द्वारका प्रसाद जी को बहुत लगाव था, और इनका जन्म आज ही के दिन 5 अगस्त 1901 को उत्तर प्रदेश के उन्वा जिले में पाडरी नामक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और फिर इस तरह से वहीं से इन्होंने शिक्षा दीक्षा लेकर देश विदेश सत्ता में संघर्ष कर रहा था। तब कुछ समय के लिए द्वारका प्रसाद मिश्रा ने कानपुर और जबलपुर में अध्ययन किया, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आगे की कानून की डिग्री पूरी की, और 1920 आते आते द्वारका प्रसाद मिश्रा महात्मा गांधी के आह्वान पर आज़ादी के संग्राम में कूद पड़े। फिर असहयोग आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में ये रहे। देश की सेवा करते हुए जेल यात्राएं उनकी साथी बन गई, और 1932, 40 और 42 में जेल की सजाएं भोग गई। उसके बाद द्वारका प्रसाद जी को 1937 और 46 में केंद्रीय प्रांतों में मंत्री का काम करने का मौका मिला, और 30 सितंबर 1963 से लेकर 8 मार्च 1967 तक ये, और फिर 9 मार्च से लेकर 29 जुलाई 1967 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। पंडित मिश्रा एक प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और रचनाकार थे, तो लेखन का कार्य इनका जारी रहता था, और लेखन के साथ साथ कई सागर विश्वविद्यालय जैसे विद्यालयों के कुलपति का भी सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ। और द्वारका प्रसाद जी शतरंज के माहिर खिलाड़ी थे। साहित्यकार, इतिहासकार, प्रखर राजनेता के रूप में द्वारका प्रसाद जी का विशेष याद किया जाता है उनके इन्हीं गुणों के कारण। और 5 मई 1988 को दिल्ली में इनका निधन हुआ। उनका पार्थिव शरीर फिर जबलपुर में नर्मदा नदी के तट पर पंचतत्व में लीन किया गया। तो ये थी कुछ खास बातें द्वारका प्रसाद मिश्र के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में। और आइए आप बात करते हैं शुमंगल सिंह सुमन के बारे में। जी हाँ, ये भी एक साहित्यकार है और भारत सरकार के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। हिंदी के कवियों में इनका भी नाम आता है। डॉक्टर शिवमंगल सुमन का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्वा जिले में आज ही के दिन 1915 को हुआ था। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए और काशी विश्व हिंदू विद्यालय से एमए और डीलिट की उपाधि प्राप्त कर ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन में उन्होंने अध्ययन कार्य शुरू किया था। कर्मक्षेत्र की बात करें तो शिवमंगल सुमन का कार्यक्षेत्र अधिकांश शिक्षा और जगत के संबंध रहा है। ग्वालियर में विशेष रूप से कॉलेज में हिंदी के व्याख्याता और माधव महाविद्यालय उज्जैन के प्राचार्य और फिर कुलपति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अध्ययन के अतिरिक्त विभिन्न संस्थाओं से प्रतिष्ठानों से जुड़कर हिंदी साहित्य में वृद्धि की और सुमन जी प्रिय अध्यापक, कुशल प्रशासक और प्रखर चिंतक और विचारक भी थे। साहित्य को बोझ नहीं मानते हुए अपनी सहजता में गंभीरता को छिपाए रखते थे और साहित्य प्रेमियों ही कि दिल में ही नहीं बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी ये लोकप्रिय व्यक्ति बन गए थे। अज्ञात अजनबी व्यक्ति के लिए भी रिक्शे वाले को भी ये बताना काफ़ी था कि उसे सुमन जी के घर जाना है, तो रिक्शा वाला सीधा बिना किसी पूछताछ के आगंतुक को उनके घर तक छोड़ आता था। एक बार सुमन जी कानपुर के एक महाविद्यालय में किसी कार्यक्रम में आए। कार्यक्रम की समाप्ति पर कुछ पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। आयोजकों में से किसी ने कहा, सुमन जी थके हैं। इस पर सुमन जी टपक से बोले, नहीं, मैं थका नहीं हूँ। पत्रकार तत्कालीन साहित्य के निर्माता और उनसे दो चार पल बात करना चाहते थे, उन्हें अच्छा लगा। और शिवमंगल सिंह सुमन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वो था जब उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। जब आँखों की पट्टी खोली गई तो वो हतप्रद थे। उनके समक्ष स्वतंत्रता संग्राम के महायोद्धा चंद्रशेखर आजाद खड़े थे। आजाद ने उनसे प्रश्न किया था, क्या ये रिवाल्वर दिल्ली ले जा सकते हो? सुमन जी ने बेहिजक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आजादी के दीवानों के लिए काम करने के आरोप में उनके विरुद्ध वारंट जारी हुआ। सरल स्वभाव के सुमन जी सदैव अपने प्रशंसकों से कहा करते थे, मैं विद्वान नहीं बन पाया, विविधता की देहरी भर छू पाया हूँ। प्राध्यापक होने के साथ प्रशासनिक कार्यों के दबाव ने मुझे विद्वान बनने से रोक दिया है। तो इस तरह से उनकी बहुत सारी कृतियाँ हैं और व्यक्तित्व के धनी थी। वो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन शैली को भी अच्छी तरह से जानते थे और इसलिए उनके साहित्य में जन कवि वाद और कर्म, ये चीज़ों को उन्होंने महत्वता देते हुए लोगों के इसके बारे में बताया। और ऐसे विशेष सम्मान उनको जो है बहुत सारे मिले हैं उनके किताब के लिए। और हिंदी कविता की परंपरा लोकप्रियता की साक्षी है। देश भर में काव्य प्रेमियों को अपने गीतों की रवानी से अचंभित कर देने वाले सुमन जी 27 नवंबर 2002 को मौन हो गए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो लीजिए एक और खूबसूरत गीत आपके नाम, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन खुद से यह सवाल पूछें, मैंने आज क्या सीखा, मैंने किसे खुश किया, मैं और बेहतर कैसे बन सकता हूं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक शख्सियत के बारे में बात करते हैं। और शाम का समय है, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। इसलिए हजार मुश्किलों को देखकर भी आप अपने सपने को अनदेखा मत कीजिए, अपने सपनों के लिए खड़े हो जाएं, काम करें, एक दिन कामयाबी शोर मचाएगी। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। आइए एक और शख्सियत के बारे में, हिंदी साहित्य जगत से प्यार करने वाले एक व्यक्ति वीरेन दंगवाल के बारे में बात करते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और वरिष्ठ पत्रकार थे। साहित्य अकादमी सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित वीरेन दंगवाल अपनी शक्तिशाली कवियों के साथ साथ अपनी जनपक्षधारता को, पक्कड़पन को और यार भाषा व्यक्तित्व के चलते बेहद लोकप्रिय हुए। वीरेन दंगवाल दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में संपादक भी रहे हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं, इनका जीवन परिचय से अवगत कराता हूँ। आज ही के दिन उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। इनकी माँ एक मिलनसार धार्मिक गृहिणी थी और पिता स्वर्गवासी रघुनंदन प्रसाद दंगवाल प्रदेश सरकार में कमिश्नर के पद पर काम करते रहे थे। इनकी रुचि कविताओं और कहानियों में रही। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल और अंत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा पूरा करने के बाद 1968 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और उसके पश्चात डी फील की उपाधि इनको मिली थी। साहित्यिक परिचय की बात करें तो वीरेन दंगवाल एक ऐसे कवि थे जिन्होंने जिंदगी को उसकी पूरी लय के साथ जिया। पिछले कुछ समय तक वे मुंह के कैंसर से जूझ रहे थे और राम सिंह कविता से कविता जगत में मजबूत पहचान बनाने वाले वीरेन दंगवाल के 3 कविता संग्रह और इन रचनाओं के पब्लिश होते इनका नाम जो है साहित्य के साथ जुड़ गया। और वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यिक काम को उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया और 68 साल की आयु में सोमवार के दिन 28 सितंबर 2015 को सुबह बरेली उत्तर प्रदेश में लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हुआ। बरेली के एक हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था। कैंसर होने के कारण वो कई सालों तक बीमार रहे और कुछ समय पहले वह दिल्ली बरेली आए। तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब होने पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनके परिवार में पत्नी डॉक्टर रीता डंगवाल, बेटे प्रफुल्ल और प्रशांत अभी है। तो ये थी कुछ खास बातें साहित्यकार वीरेन दंगवाल के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: नमस्ते, मैं हूं हमसिका अय्यर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंच गए हैं और आइए बात करते हैं साहित्यकार और प्रसिद्ध समाज सेवी थे, हिंदी को महाराष्ट्र के

भारत एशिया संशोधन मंडल के संस्थापक भी रहे, जो कि आज एक महत्वपूर्ण स्थापना के रूप में इतिहास के शोध पर उपलब्धियां लेकर पहले स्थान पर है। मराठी भाषा में उन्होंने सैकड़ों लेख किताबें लिखी जिन्हें मान्यता प्राप्त हुई है। दत्तू वामन पोद्दार ने पुणे विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते भी बड़ी जिम्मेवारी निभाई थी, पर उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है राष्ट्रभाषा हिंदी की सेवा। पूरे महाराष्ट्र में अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की। पुणे शहर में आप पुस्तकालय, आप लाइब्रेरी तथा वाचनालयों का जो जाल फैला दिखाया देता है उसमें प्रत्येक में पोद्दार जी का श्रेय मिलता है। महाराष्ट्र के राष्ट्रभाषा प्रचार कार्य में उनकी बड़ी सहायता रही और वे उत्तम वक्ता और कुशल संगठनकर्ता भी रहे। मराठी साहित्य सम्मेलन के वे सभापति भी रहे। मराठे यानी अंग्रेजी, मराठी गद्याच अंग्रेजी ची अवतार, और इस तरह से सम्मान इनको मिला 1967 में पद्म भूषण। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर जी हां सफर इस कार्यक्रम को, और दत्तू वामन पोद्दार जी 6 अक्टूबर 1979 को इस दुनिया से चले गए। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूं एक और गीत की तरफ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। आज के इस कार्यक्रम में हमने काफी लोगों के बारे में आपको बताया, द्वारका प्रसाद मिश्रा के बारे में, शुमंगल सिंह सुमन, वीरेन डंगवाल और दत्तू वामन पोद्दार जी की कहानियाँ सुनाई आपको कि किस तरह से साहित्य के माध्यम से देश सेवा की इन लोगों ने। तो इसीलिए हमेशा साहित्य के साथ जुड़े रहें। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी का ज़माना है जहाँ पर हम पुस्तकों के बजाय हम डिजिटल पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन डिजिटल चीज़ें हमेशा हमारी यादें ताज़ा नहीं करती हैं, हमें कुछ बहुत ज़्यादा जो है ताकत नहीं देती हैं। पुस्तकें हमें ताकत भी देती हैं, खुशबू देती हैं और व्यक्ति के जीवन से जुड़ने में हमें बहुत आसानी कर देती हैं, जबकि डिजिटल आपको बदलने पे मजबूर कर देता है, जिस तरह से स्क्रीन हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसीलिए किताबों से अपना नाता बना के रखिए, किताबों से दोस्ती बना के रखिए। भले टेक्नोलॉजी को समय समय पर आप यूज़ कीजिए, लेकिन किताबों से नाता दूर ना करें। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र इस कार्यक्रम को। तो चलिए एक और खूबसूरत विचार के साथ आपसे जाऊंगा इजाज़त। हथेली पर रख कर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर इस कार्यक्रम को। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आर 107.8 एफएम रेडियो मधुबन सुन रहे हैं आप, और रेडियो मधुबन पे समय हो गया है कार्यक्रम युवा मंच का। जी हाँ दोस्तों, 107.8 एफएम आपका अपना रेडियो मधुबन है, और इस कम्युनिटी रेडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं अलग अलग विषयों के कार्यक्रम। और अभी जो विषय का कार्यक्रम है जहाँ पर हम युवाओं की बात करते हैं, युवाओं से जुड़ी हुई चीज़ों की बात करते हैं, और कई बार बात करते हैं कि हमारा समाज हमारे युवाओं को क्या सपोर्ट दे सकता है ताकि वो निश्चिंत होकर आगे बढ़ सके। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं युवा मंच में, इस मंच पे आज मौजूद हैं रवि महाजन जी। रवि महाजन एक ऐसे युवा हैं जो आज के समय का जो एक सबसे चर्चित विषय है, जहां पर हम डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, ऑनलाइन बुकिंग्स की बात करते हैं, और जब भी कोई चीज़ होती है तो हम कहते हैं कि अरे भैया कौन जाके लाइन लगाएगा, हम ऑनलाइन बुक कर लो ना, ऑनलाइन निकाल लो ना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दो ना। तो ऐसे ही विषयों में जब इतनी टेक्नोलॉजी हमारे को सुविधा प्रदान कर रही है, उसी समय कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छी चीज़ों के अंदर भी बुराई ढूंढ लेते हैं, और ऐसे ही बुराइयों करने वालों को पकड़ने के लिए सरकार को साइबर सिक्योरिटी विभाग बनाना पड़ता है। तो महाराष्ट्र में साइबर सिक्योरिटी विभाग में कार्यरत रवि महाजन हैं, जो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, और सबसे पहली बात तो वो युवा है। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका।
1: नमस्ते, ओम शांति।
0: कैसे हैं रवि भाई?
1: बस बढ़िया।
0: तो जैसा कि मैं हमारे श्रोताओं को बता रहा था कि एक ऐसा विषय जो आज के समय का बजवर्ड है, साइबर, हाँ। साइबर साइबर किसी को भी कहो, डिजिटल साइबर,
1: राइट।
0: और बहुत बार तो सरकार इस बात को प्रमोट करती आती है कि भैया आप ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल करें, अभी कैश कम यूज़ करें, डिजिटल कैश यूज़ करें,
1: राइट,
0: और बुकिंग के लिए लाइन नहीं लगाएं, डिजिटली करें,
1: राइट।
0: ऐसे तो इस समय पर आप लोगों की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है,
1: राइट।
0: तो क्योंकि ये मंच युवाओं का मंच है, तो मैं युवाओं की ओर से आपको ये पूछना चाहूँगा कि ये जो फील्ड है, ये आपने कैसे चुनी, अपने बारे में कुछ बताइए और इस फील्ड के बारे में बताइए।
1: हाँ जी, नाम रवि महाजन। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में साइबर फॉरेंसिक डिवीजन एज अ साइंटिफिक ऑफिसर, जिसे हिंदी में कहते हैं वैज्ञानिक अधिकारी, के रूप में मैं कार्यरत हूँ। नागपुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ
0: जी।
1: और कई मीन्स बहुत सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे ईडी, सीबीआई, एनआई, एटीएस, महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच और पुलिस स्टेशन और ऑल महाराष्ट्र, जिसमें तांत्रिक जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी हेल्प दिया है, तो नियर अबाउट 12 साल का एक्सपीरियंस जो है तो इसी फील्ड में, जिसमें इन्वेस्टिगेशन, साइबर सिक्योरिटी, साइबर फॉरेंसिक, इंसिडेंट हैंडलिंग, तो इस सब चीज़ों में
0: काम करते हैं।
1: हाँ,
0: तो मेरा ये सवाल है कि ये जो फील्ड है, थोड़ी सी सुन करके बहुत सारे लोग इस साइबर के मतलब इंटरनेट के द्वारा होने वाले अपराधों से पीड़ित रहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, एक रोज़ कभी ना कभी कोई भी अखबार उठा लो, आज इनके इंटरनेट के द्वारा धोखाधड़ी करके 50 लाख उठा लिए, इसको ये नुकसान कर दिया, या कभी किसी की फ़ोटो कुछ उटपटांग बना के डाल दी, कई बार तो बहुत ज़्यादा भी सीरियस हो जाते हैं। तो आपने इस फील्ड को कैसे चुना?
1: तो फील्ड में चुनाव तो नहीं, लेकिन अपन कहते हैं ना कि एक नदी की एक जैसे बहाव होता है, लेकिन बहाव में भी एक एकाग्रता होती है, राइट
0: जी।
1: तो उस बहाव से मैं इस फील्ड में आ गया, और जो फील्ड मैंने चुन लिया तो उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको बिल्डअप किया, और उसमें अपना 100% जो है, जैसे कि बोलते हैं एकदम स्टिक, तो उस टाइप में मैं इस फील्ड में से बहता गया, और हर पॉइंट पर मैं एक एनालाइज करता रहा, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हो चाहे साइबर फॉरेंसिक, इंसिडेंट हैंडलिंग, ये सब चीज़ों में मैं परफेक्ट बनने की मैंने कोशिश किया।
0: क्या पढ़ाई करनी पड़ती है अगर कोई साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाना चाहता है?
1: इसमें तो एक कंप्यूटर आपका बेसिक होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, या बी कंप्यूटर होना चाहिए, इंजीनियरिंग या समथिंग कुछ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड। अभी मास्टर डिग्री भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने, अभी यूनिवर्सिटीज़ ने ओपन किया है एक साइबर सिक्योरिटी अलग सा डिपार्टमेंट, उन्होंने बहुत सारे भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे
0: ब्रांच खोली
1: है, यस, ब्रांच अलग से ब्रांच खोली है, जैसे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, उसके बाद इसमें भी एक आपका सिक्योरिटी मास्टर इन साइबर सिक्योरिटी, मास्टर इन साइबर फॉरेंसिक, तो ये ऐसे अलग अलग ब्रांचेस, स्पेशल ब्रांचेस यूनिवर्सिटीज़ ने निकाले।
0: तो मैं महसूस होता है कि जैसे बहुत सारे तो विभाग हैं सुरक्षा के लिए सरकार ने बनाए हैं, चाहे वो भारतीय सेना हो या फिर पुलिस विभाग हो, राज्य की पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, लेकिन ये एक ऐसा विभाग है जैसे कि वो कंप्यूटर पे बैठ के ज़्यादा काम करना होता होगा।
1: राइट राइट राइट, कंप्यूटर पे बैठ के काम, दैट इज़ द अनदर थिंग, लेकिन यहाँ पे दिमाग भी जैसे शारीरिक प्लस मानसिक, इसका दोनों का बैलेंस आपको रखना पड़ता है. और रिजल्ट जो रहता है साइबर सिक्योरिटी के लिए, जिस आप एनालिसिस करें हर चीज, तो उसके लिए पेशेंस भी बहुत जरूरी है.
0: ओके, धीरे रखना पड़ता है,
1: तो ही रिजल्ट अपने को आ सकता है.
0: बिल्कुल सही बात दोस्तों. जैसे आप सुन रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी माना खाली कोई हाथ में डंडा लेके रखवाली नहीं करनी है बंदूक लेके, लेकिन बुद्धि के घोड़े दौड़ाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. आपने एक शब्द मुझे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जैसे एविडेंस, उसको बारे में कुछ कहा, दूसरा आपने एक साइंटिफिक स्टडी करने फॉरेंसिक का शब्द यूज़ किया. फॉरेंसिक का माने क्या होता है?
1: फॉरेंसिक जैसे हम कहते हैं कि अगर कुछ एक चीज है, जैसे उसमें हम, जैसे हम पीएचडी करते हैं, तो एक सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं, राइट. तो फॉरेंसिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ओवरऑल नॉलेज चाहिए होता है. जैसे कंप्यूटर सिक्योरिटी का नॉलेज चाहिए होता है, राइट. आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज चाहिए, आपको डेटाबेस का नॉलेज चाहिए, आपको नेटवर्किंग का नॉलेज चाहिए, राइट. तो अलग अलग जो मीन्स कोडिंग का नॉलेज चाहिए, अलग अलग जो डोमेन है सिक्योरिटीज के बाद में, मीन्स वाट एवर रिलेटेड टू कंप्यूटर.
0: ओके,
1: सो इस सब मिला के वो फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक ये बनाए. मीन्स कल समझो हमारे, जैसे हमारे यहाँ पे भी क्राइम रजिस्टर होता है,
0: ओके,
1: राइट. जैसे डेटा थेफ्ट होता है,
0: जी जी जी,
1: डेटा थेफ्ट होता है किसी कंपनी से, तो वो रजिस्टर होता है,
0: केस बनता है.
1: हाँ, जैसे पेट्रोल पंप के कुछ अलग फेक पेट्रोल पंप में चिप लगाते हैं, तो प्रोग्रामिंग असेंबल हो जाती है. तो जैसे पेट्रोल में आपको समझो 99-100 रुपीज का पेट्रोल डालना है,
0: जी जी,
1: तो कई बार ऐसा देखा गया कि 60 रुपीज का ही आपको पेट्रोल मिला है, बाकी 40 का मिला है. तो ये दैट इज द प्रोग्रामिंग,
0: कंप्यूटर की छेड़छाड़,
1: राइट. प्रोग्रामिंग करके वो छेड़छाड़ करना चिप में, और उसकी तो फायदा उनको ही होता है, लेकिन नुकसान तो
0: जनता को होता है. ये भी साइबर सिक्योरिटी में आता है?
1: हाँ, ये भी साइबर सिक्योरिटी
0: माना कंप्यूटर से जुड़े हुए,
1: कंप्यूटर फॉरेंसिक में आता है. जैसे कोडिंग एनालिसिस उसमें हम करते हैं, राइट. जैसे डेटा थेप में हम अलग अलग जो डोमेन रहते हैं, जैसे उसने अगर किसी एम्प्लॉय ने डेटा चुराया है, तो किस फॉर्म में चुराया, बाय ईमेल चुराया है, बाय सोशल मीडिया एप्लीकेशन चुराया है, कुछ रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन से चुराया है, या लोकल उसका कुछ अकाउंट ऐसा है कि उस पर उसने अपलोड किया है डेटा कंपनी का. तो ऐसे अलग अलग जो केसेस है, तो बहुत सारा उसमें हमको डेटा देखना पड़ता है, अलग अलग फाइल्स, हजारों में लाखों में कुछ फाइल एनालाइज करना
0: पड़ता है,
1: राइट.
0: ये तो बहुत मुश्किल काम है दोस्तों, क्योंकि स्थूल रूप से जो चीज़ें दिख रही है आंखों के सामने, तो कैसे ना भी कैसे हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर ये हथियार इस्तेमाल हुआ है या और कोई चीज़ें, लेकिन जब कंप्यूटर की बात होती है तो ये सबकी बात, सबके बस की बात नहीं होती है. क्या कहेंगे आप?
1: राइट.
0: तो जैसे मैं आपको पूछ रहा था कि हमारे दोस्त अगर साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं. बहुत अच्छा आपने बताया कि अलग अलग विश्वविद्यालय में इसके कोर्स होते हैं, और उस कोर्स को हम जाके परस्यू कर सकते हैं, और कोर्स को करने के बाद में फिर क्या करना पड़ता है?
1: राइट. तो कोर्स स्टार्टिंग करने से पहले आप नेटवर्किंग के जो कंसेप्ट है, कंप्यूटर के जो बेसिक कंसेप्ट है, नेटवर्किंग जो बेसिक कंसेप्ट है, तो उसकी थोड़ा एकदम डिटेल में आपने जाना चाहिए. फिर उसके बाद जो भी साइबर सिक्योरिटी स्पेशल कोर्सेस है, जैसे इसी काउंसिल की साइबर इन इथिकल हैकिंग, राइट, उसके बाद साइबर इन इंसिडेंस हैंडलर, राइट, सर्टिफिकेट, तो अलग अलग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल है, CHFI, हैकिंग एंड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, राइट. लेकिन ये जो ये सब सिक्योरिटी के लिए बहुत, ये सर्टिफिकेशन की बहुत मदद होती है. तो आप मास्टर डिग्री प्लस सर्टिफिकेशन प्लस आपका बेसिक नॉलेज नेटवर्किंग का, तो आप एक अच्छे एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं.
0: मैंने एक ओवरऑल 360 डिग्री आइडिया होना भी जरूरी है, और साथ साथ में कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन भी हमारे को होना चाहिए,
1: राइट, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, ऐसे सर्टिफिकेट हमने करने चाहिए, ताकि हम भारत में भारत की कंपनियों को अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके जो ग्लोबल लेवल पे होते हैं,
0: कंपेटेबल.
1: यस,
0: माना कि क्योंकि क्राइम का जो है अब एक बॉर्डर भी क्रॉस हो चुकी है, कि कई बार ऐसे पता चलता है कि विदेश से हमारे मोबाइल में व्हाट्सएप आता है, फिर कोई लिंक आ जाता है, फिर कोई और कुछ हो जाता है. बीच में एक अखबार में मैंने पढ़ा था कि जैसे एक संगठित अपराध कहा जाता है, एक अपराध की श्रेणी है जहाँ पर जानबूझ करके अपराध किया जाता है, तो साइबर क्राइम में भी काफ़ी सारे संगठित अपराध हो रहे हैं. बहुत सारे लोग मिलकर फेक कॉल सेंटर चला के मिल करके लोगों को बुद्धू बनाने का काम करते हैं.
1: राइट राइट. जैसे कि हम देखते हैं पेपर में, हम न्यूज़ पढ़ते, जैसे राजस्थान में भरतपुर है, मेवाड़ है, उसके बाद हरियाणा में कुछ डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड में कुछ डिस्ट्रिक्ट है, तो ऐसी कुछ कुछ जगह है जहाँ पे ये एक सिस्टम चलता है, और वो टीम रहती है, पांच से छह जने की टीम रहती है, फिर एक स्क्रिप्ट बोलता है इसके साथ में, सामने वाले के
0: टेलीफोन
1: पे, यस टेलीफोन पे स्क्रिप्ट बोलता है, तो वो जैसे वो डिजिटल हिप्नोटिज्म करता है आपको, राइट,
0: इन सब मिल करके आपको एक तरफ धकेल
1: देते हैं, आपको वो टाइम नहीं देते हैं, तो आप जैसे उनको ओटीपी बताएंगे या जो फ्रॉस्टर है वो आपको लिंक भेजेंगे, वो लिंक आप एक्सेस करेंगे, वो लिंक एक्सेस करने के बाद आपको वो बोलेंगे कि आप एक एप्लीकेशन है एनी डेस्क हो या कोई रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो वो इंस्टॉल करने लगाते और आपको चांस भी नहीं देते हैं, राइट,
0: तो
1: अबे तो बहुत सारी बैंक कर रहे, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आता है कि आप ये मत करो वो मत करो ऑनलाइन में, मीन्स कुछ कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड मत, लेकिन हम उस वक्त बहुत हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है कि सामने वाला जो बंदा है वो मुझे लिंक क्यों डाउनलोड करने लगा है, राइट, अगर हम परमिशन देते हैं कोई भी लिंक को, जैसे बीच में बहुत सारी केसेस हुए जैसे फेक लोन ऐप, राइट, तो वो जो लिंक तो रैंडमली इंस्टाग्राम पे आते थे, फेसबुक पे आती थी, व्हाट्सएप पे आते थे, तो जैसे ही हम डाउनलोड करते तो हमारा जो पूरा जो डेटा है मोबाइल का, तो उसमें गैलरी में जो भी पिक्चर हो गए, जो भी कॉन्टैक्ट्स हो गए, व्हाट एवर द कंटेंट इन मोबाइल फोन, तो सब एक्सेस वो हैकर्स को,
0: ब्लास्टर
1: को मिल जाता है, तो फिर उस पर बाद में अगर आप उसको पैसे नहीं देते हैं स्क्रिप्ट के बाद, जैसे आप बोलते हैं वो फ्रॉस्टर बोलता है, राइट
0: जी,
1: तो जैसे सामने वाले से पैसे नहीं आ रहे हैं तो आपको ब्लैकमेल करता है, तो आपको जो फोटो एडिट, जो आपकी जो फोटो है चाहे कोई फीमेल हो तो उसका जो अल्ट्रेशन ऑफ बॉडी जो है, तो वो कुछ पिक लगा के, वल्गर पिक लगा के वो उनको ब्लैकमेल करते हैं
0: जोड़ तोड़ कर,
1: राइट, तो ऐसे समय में अपन खबरदारी रखने की एक नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके पहले कंप्लेन करना है, राइट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल ओपन हुआ है, या अभी जैसे गवर्नमेंट में एक प्लेटफॉर्म ओपन किया है 1930, आप कॉल तुरंत करेंगे तो आपका पेमेंट भी फ्रीज हो सकता है तुरंत,
0: अगर हम फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार हुए हैं तो उसको
1: रोक सकते हैं,
0: ओके,
1: अगर अपन सोशल मीडिया के मीन्स शिकार हो गए, राइट, हमारी पिक्चर से समथिंग कुछ है, तो हम cybercrime.gov.in पे हम जाके वहाँ पे पहले दर्ज कराए, राइट, फिर बाद में लोकल पुलिस स्टेशन पे जाइए, और साइबर सेल डिस्ट्रिक्ट का हर सेल होता है साइबर सेल, तो वहाँ पे भी जाके हम कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और तुरंत एक्शन हो सकती है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, और दोस्तों युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है रवि महाजन, जो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं और सबसे पहले वो एक प्रतिभाशाली युवा हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं, और जहां पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे अच्छी चीज़ों के लिए बनाए गए जो साइंस के साधन हैं उनको भी लोग दुरुपयोग करके किस प्रकार से मिसयूज़ कर लेते हैं और समाज को, व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए गीत याद आ रहा है, वो गीत सुनते हैं और फिर लौट कर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए पेश है लता मंगेशकर जी की आवाज़ में झूठ बोले कौवा काटे, ये गीत सुनते हैं और फिर लौट कर आएंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग। 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन और दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है युवा मंच। दोस्तों, युवाओं के मंच युवा मंच पे आज हमारे साथ मौजूद हैं रवि जी, जो एक प्रतिभाशाली युवा हैं और साथ साथ में एक साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट।
1: हाँ जी,
0: स्वागत है सर आपका वापस से।
1: हाँ जी,
0: तो जैसे हम बात कर रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी के अलग अलग चीज़ें हैं, उसके महत्व है कि किस प्रकार से हम लोग एक दूसरे को साइबर के होने वाले अपराधों से बचा सकते हैं और अगर किसी को इस फील्ड में जाना तो क्या कर सकते हैं। आगे मैं चलना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी की जो इश्यूज़ हैं तो उसमें युवाओं का भी कई बार नाम आ जाता है। कई बार हम पढ़ते हैं कि इस बच्चे ने ये गेम का एप्लीकेशन डाउनलोड किया, फिर अपने पिताजी के या माताजी के अकाउंट से 6 लाख रुपया उसमें चले गए या ऐसे कुछ कुछ। ऐसी चीज़ें भी आती हैं आपके पास कुछ?
1: राइट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि आजकल जो जैसे स्पॉन्जेस गेम जैसे पबजी है, राइट, उसके बाद में जैसे स्नेक के कुछ गेम्स हैं, राइट, तो जब हम ये खेलते हैं, राइट, जैसे ग्रुप में खेलते हैं तो रैंडमली हमारे ग्रुप में, जैसे फेसबुक के ग्रुप में होगा तो रैंडमली हमको वो ऐड कर देते हैं, राइट। तो ऐड होने के बाद हमको तो मज़ा तो बहुत आता है
0: जी,
1: लेकिन उसमें कुछ ऐसे लिंक वो डाल देते हैं और सब एक्सेस कर लेते हैं।
0: सब एक्सेस कर लेते हैं?
1: यस यस, सब मीन्स जैसे जैसे हमने फेक लोन्स के बारे में पहले देखा कि हमारा डेटा पूरा हैक हो जाता है, राइट, एक्सेस हो जाता है हैकर्स को। तो सामने वाला वही करता है कि एक लिंक जो है, एक स्पाइवेयर लिंक उसमें डाल देता है, राइट, जो ग्रुप में डाल देता है और वो सभी उसको ऐसे लगता है कि ये कुछ नया गेम्स है, राइट, या कुछ गेम के रिलेटेड है वो लिंक। तो जैसे कि इम्पर्सनेशन हो जाता है तो जब वो लिंक एक्सेस करते हैं तो अपना जो भी उस ग्रुप में है वो सब का डेटा वो एक्सेस कर लेता है और उसके बाद एक इंडिविजुअल जो टारगेट होता है कि बाबा जैसे उसे कहा जाता है कि तुम ये टास्क करो और नहीं करोगे तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, राइट, एक ब्लैकमेलिंग जो डिजिटली अपहरण जो बोलते हैं, राइट, डिजिटली अपहरण। तो इस कंसेप्ट से वो हर टास्क, जैसे अभी हम देख रहे हैं जैसे टास्क फ्रॉड होता है, जैसे अलग अलग इस पे, जैसे आपको व्हाट्सएप पे अचानक कोई भी नंबर से मैसेज आ जाता है।
0: मेरे को तो कल के दिन में 3 मैसेज आए थे इसी जगह से, दो तो अंतर्राष्ट्रीय नंबर थे।
1: राइट, तो ऐसे कोई ऐप होते हैं जैसे वो ऐप हर सेकंड नया नंबर जनरेट होता है वो ऐप से, और वो ऐप से व्हाट्सएप भी हम उसको OTP की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं होते, वो ऑथेंटिकेशन हो जाता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थ्रू, राइट। तो उससे हम वो नंबर से हम व्हाट्सएप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। तो आपको आपने देखा होगा हर मीन्स बहुत सारे भारतीयों के नंबर में मोबाइल के व्हाट्सएप में अचानक एक कुछ नंबर आता है और वो कहता है कि हाय हेलेना या कुछ फीमेल का नाम एक अट्रैक्टिव करने के लिए कि आप मैं एक लिंक भेज रही हूँ, आप ये लिंक सब्सक्राइब करोगे, राइट, या शेयर करोगे तो आपको 150 रुपये मिलेगा या 300 रुपये मिलेगा।
0: मैं एक ऐसा ही मैसेज कल आया था, मैं कल के दिन में मेरे पास,
1: राइट,
0: और जब पहले से उन्होंने खाली लिखा हेलो,
1: राइट,
0: और हेलो लिखा तो वैसे मैंने जैसे बताया कि 2 विदेशी नंबर मेरे व्हाट्सएप पे आए,
1: राइट,
0: तो 2 विदेशी नंबर आए तो मैंने तो उसको ब्लॉक लिस्ट कर दिया,
1: राइट।
0: उसके बाद में जो भारतीय नंबर आया,
1: राइट,
0: तो भारतीय नंबर आया तो मेरे को, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था किसी एक का मैं व्हाट्सएप आएगा,
1: राइट,
0: तो मुझे लगा हो सकता है उनका हो, तो उसने खाली हेलो ही लिखा, तो मैं सोचा कि भैया ये मेरे को उस व्यक्ति ने तो नहीं मैसेज किया है,
1: राइट।
0: और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मेरे हाथ में ही मोबाइल है अभी, तो इसमें पहले लिखा था कि हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, फिर मैंने जवाब नहीं दिया, फिर अगले दिन सुबह दोबारा आया हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, तो मैंने उसको लिखा हु इज दिस, कौन है आप, कौन है, तो उसने लिखा आई एम अनिका पटेल फ्रॉम DDB मीडिया वर्ल्ड वाइड, कैन यू प्लीज गिव मी 2 मिनट इन योर प्रीसियस टाइम। मैंने लिखा कि आप यहाँ लिखिए जो भी आपको चाहते हैं, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे सर्च किया DDB मीडिया वर्ल्ड वाइड क्या है,
1: राइट,
0: तो वहाँ पर कुछ एक वेबसाइट दिखी मेरे को,
1: हाँ जी,
0: तो हो सकता है कुछ काम है, मीडिया वाले हैं हम लोग भी,
1: राइट।
0: तो बाद में उसने लिखना शुरू किया कि हमारी कंपनी ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो कि रिव्यू लिखेंगे, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। मैंने लिखा कि आप गलत नंबर पे मैसेज कर रहे हैं और आप कृपया अपनी नंबर लिस्ट में से नंबर निकाल दीजिए,
1: राइट।
0: पर उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, उसने लिखा नहीं, मैं आपसे कोई ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप एक बार ट्राई तो करो ना, ये करो ना वो करो करके, फिर मैंने उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया,
1: राइट। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे आप अवेयर मीन्स इसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है. जैसे कोई भी लिंक आते हैं राइट, कोई भी लिंक आती है तो वो मालवेयर बेस है कि उसमें कुछ एक कोडिंग छुपी हुई है, तो ये हमें एनालिसिस करना चाहिए पहले. क्योंकि जैसे हम वो स्क्रिप्ट हमें देते हैं राइट, तो वन बाय वन तो हमें एक एक मैसेज हमने पहले एनालिसिस करना है, हमारा विवेक आपको जागरूक रखना है राइट.
0: वो लिंक टेम्पटिंग भी बहुत होता है राइट, ऐसा लगता है कि नहीं करके देखते ना क्या होगा
1: राइट राइट करके. यस आपको करना भी है तो बहुत सेफली कीजिए, वो लिंक लीजिए, उसके बाद उसको अपने पीसी पे ओपन कीजिए वो लिंक राइट. वो लिंक ओपन करने के लिंक ओपन मत करिए, उसको कॉपी करके जो कुछ वेबसाइट है स्टैंडर्ड वेबसाइट जैसे jotty.com है राइट, या virustotal.com है, या समथिंग और एक दो वेबसाइट है जो एनालिसिस करती है, लिंक एनालिसिस करती है, अगर वो मालवेयर बेस है तो रिजल्ट दे देगी, तो उसको आप एक्सेस ही नहीं कीजिए.
0: अच्छा, वो लिंक वहाँ डाल के हम चेक कर सकते हैं. हाँ,
1: तो हमें दूसरी,
0: क्या वो वेबसाइट का नाम दोबारा बोलना चाहेंगे हमारे श्रोता जो है?
1: virustotal.com और jotty.com है.
0: ओके,
1: ये दो वेबसाइट है एंड्रॉयड के लिए राइट. तो हम ये जो लिंक उसमें डाल सकते हैं, तो मालवेयर पे उसमें अगर मालवेयर छुपा है तो वो लिंक आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी. ये एक तरीका है. और दूसरा एक अपना एक खुद का एक समझ होता है कि बाबा हम सब्सक्राइब कर रहे हैं और मुझे 150 रुपये मिलेगा, और बाद में वो कहते हैं कि हम तुम दोबारा सब्सक्राइब शेयर करोगे तो आपको 3000 मिलेंगे राइट. तो हम ये तो बड़ी लालच है, तो ये लालच में हम ना खोए, हम हमारा थोड़ा विवेक जागरूक रख के हम अपना जो जो टाइम जो मोमेंट है वो बचा सकते हैं, और हम घर वालों हम अपनी सुरक्षा और घर वालों की एक डिजिटल सेफ्टी अपनी हो सकती है.
0: यूथ जो घर में है, जो अभी मेरे रेडियो को सुन रहे हैं और जो घर में रहते हैं यूथ, तो उनका क्या रोल हो सकता है घर के अंदर साइबर सिक्योरिटी का?
1: उनका तो बहुत रोल हो सकता है, क्योंकि एक युवा जो है वो हर ये घर में समय सबका मोबाइल हैंडल करता है, या वाईफाई सिक्योरिटी जो है जैसे वाईफाई वो इंस्टॉल करता है, तो उसका सिक्योरिटी वो जो इंस्टॉल करने वाला है उसके पास ही उसका पासवर्ड वगैरह सब कुछ होता है, और वो इतना वीक होता है तो बहुत मिस कोई उसने मोबाइल नंबर डाल दिया होता है या समथिंग कुछ @@123 समथिंग कुछ, जो कि बहुत ईजिली हैकेबल है
0: राइट.
1: तो आप वाईफाई का एक्सेस आपके हाथ में लीजिए, आप खुद का क्रेडेंशियल एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड उसको दीजिए, 10 कैरेक्टर विथ डिजिट एंड ऑल राइट स्पेशल कैरेक्टर. तो एक अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखेंगे, स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल रखेंगे, तो आपका जो भी डिवाइसेस है वो हैक नहीं होंगे राइट.
0: तो ये रोल युवा ही प्ले कर सकते हैं.
1: हाँ, ये क्योंकि युवा को ये मालूम होता है, ये जो डिजिटली चीजें है कि बाबा वाईफाई में जो कुछ है, जो भी कुछ कंटेंट है वो कैसे वर्क करते हैं, वो तो युवा को ही जानकारी होते हैं राइट. क्योंकि उसने बहुत सारे कोर्सेस किए, वो अपने आप जो आजकल ऐप भी आ रहे हैं कि हम कितना घंटा सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, कितना घंटा कंप्यूटर पे बिता रहे हैं राइट. तो वो दे देता है. तो युवा नियर अबाउट 20 hours, जैसे एक सर्वे में आया कि सोशल मीडिया पे नियर अबाउट 18 to 20 hours हो,
0: मतलब 24 घंटे में से 18 घंटे सोशल मीडिया
1: राइट राइट राइट. इसलिए
0: ये मुझे भी चेक करना पड़ेगा फिर
1: राइट. तो ऐसे कुछ ऐप्स है वो आप इंस्टॉल कीजिए, जो कि बहुत जरूरी है, ताकि हम घर वालों की तरफ भी हमारा लक्ष्य हो. क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो गए, अगर हम इतनी 18 to 20 hours हम इसमें ही बिजी रहेंगे तो हम घर वालों के डिजिटल गैजेट पे कब ध्यान रखेंगे? अगर उनके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आपको समझ में नहीं आएगा.
0: क्या क्या शिक्षाएं हैं जो अपने माता पिता को बता सकते हैं युवा, क्या सिखा सकते हैं
1: उनको
0: फ्रॉड से बचने के लिए?
1: फ्रॉड से बचने के लिए जैसे कि नॉर्मल चीजें, जैसे कोई भी लिंक डाउनलोड करने को बोलता है राइट, तो वो माता पिता को ना बताना चाहिए कि आपको अगर कोई कॉल आता है तो उनको अगर बैंकिंग का कुछ डिटेल या कार्ड का डिटेल मांगता है तो वो देना ही नहीं चाहिए. फ्रॉड तीन बातों से होता है. तो आपको फ्रॉडस्टर आपको डिटेल्स आपके खुद की मांगेगा राइट, लेकिन प्रीवियस पहले वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको कहेगा, सर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी ये, जो कि आपकी सच में रहती है राइट, इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है,
0: बैंक हमारी जानकारी उनके पास आ जाती है.
1: हाँ, उनके पास आ जाती है बाय थर्ड पार्टी, जो डेटा ब्रिज कहते हैं उसको राइट. तो हर मीन जैसे पीछे मूवी की जो एप्लीकेशन था उसमें जो भी जितने भी कस्टमर थे उनका सब डेटा हैक हो गया राइट. तो उसको उनको रैंडमली कॉल आने लगा राइट. तो ऐसी सब जो चीज़ें होती हैं, तो इसमें हम अवेयर कर सकते हैं हमारे पेरेंट्स को कि कोई लिंक आए, कोई ओटीपी मांग रहा है या कोई बैंक डिटेल्स मांग रहा है जहाँ पे ऐसा सस्पिशियस लग रहा है, तो वहाँ पे शेयर करना ही नहीं चाहिए, राइट। ये हुई पहली बात। दूसरी बात होती है जैसे हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, राइट, तो एक फेक प्रोफाइल हमारे सामने आता है, उसको हम हैंडलिंग करते हैं और जो कुछ स्क्रिप्ट होती है तो उसमें हम बहते चले जाते हैं। तो कब रुकना है, कौन सा प्रोफाइल वेरीफाई करना है, इसकी जानकारी बच्चों ने माँ बाप को देना चाहिए, पेरेंट्स को देना चाहिए, ताकि वो फ्रॉड से बच सकें। जैसे बहुत सारे आजकल मैट्रिमोनियल फ्रॉड से या समथिंग, जैसे हमारी सेम प्रोफाइल, जैसे मुझे एक इंसिडेंस याद आता है, राइट, तो मेरा जो एक ऑफिसर थे तो उनका फेसबुक क्लोन हुआ, उनका जो सेम अकाउंट फर्स्ट ने ये किया, तैयार किया, और उस अकाउंट से जो भी हमारे म्यूचुअल फ्रेंड थे उनको पैसे मांगने लगा, और उसने लगा कि मैं मीटिंग में हूँ तो मुझे अभी तुरंत 5,000 भेज दो, ये मेरा UPI है, और बहुत सारे लोगों ने उसको पैसा भेजा,
0: बहुत सारे लोगों को भेज दिया,
1: राइट। क्योंकि हम इसमें सिक्योरिटी हमने ये लेना चाहिए कि हमारा फेसबुक प्रोफाइल जो है हम लॉक ही नहीं करते, राइट, तो हमारा सब म्यूचुअल फ्रेंड की लिस्ट उसके पास ऑलरेडी मॉनिटरिंग हो जाती है और वो सबको मैसेज भेजते रहता है।
0: आप ये कह रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है कि मेरे भी फेसबुक में बना ऐसे ऐसे लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं जिनको मैं ऑलरेडी फ्रेंड हूँ,
1: राइट,
0: तो उसी नाम से दोबारा,
1: राइट, तो ये समझ के चलने का, और हम अपने सर्च करना चाहिए कि सेम नाम से कितने अकाउंट्स है और उनका ओरिजिनल अकाउंट कौन सा है, तो सामने वाले का जो अकाउंट है उसको भी हमने जानकारी देना चाहिए कि बाबा इसमें
0: आपके नाम पे तीन अकाउंट,
1: हाँ तीन अकाउंट है, तो आपका दो अकाउंट की आप रजिस्टर कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में, तो वो दो अकाउंट जो रहेंगे वो ब्लॉक कर सकते हैं पुलिस स्टेशन से।
0: साइबर सेल में कैसे रजिस्ट्रेशन करें?
1: साइबर सेल में आप जो कुछ इंश्योरेंस है उसका फेसबुक आईडी, जो आईडी का जो लिंक है वो आप दे सकते हैं, उसमें एक एप्लीकेशन लिखी, उसमें वो फेसबुक लिंक आप कॉपी पेस्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए साइबर सेल को, वो ब्लॉक कर देंगे।
0: चलिए, तो सरकार ने भी काफ़ी इस बारे में सोच, मतलब चर्चा चला रखी है।
1: हाँ, गवर्नमेंट की तो बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है, हर महीने में जैसे अक्टूबर में एक साइबर सिक्योरिटी सप्ताह होता है, पूरा मंथ होता है, पूरी जागरूकता होती है, लेकिन कई बार हम एक नॉर्मली उसको ले लेते हैं कि चलिए ये तो चलता ही रहता है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि 90% हम उस पर आधार डिजिटल सब, जो जैसे हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, राइट, तो हर एक इस पे गैजेट है। हमारे घर में पहले कुछ भी नहीं था, आज सब हर एक के पास मोबाइल है, हर एक के पास PC है, हर एक के पास
0: स्मार्ट
1: 10-10 अकाउंट है सोशल मीडिया के, हर एक स्मार्ट TV तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं,
0: जिम्मेदारी
1: आ जाती है। यस यस यस।
0: तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए, और आपने अच्छा अभी जो अवेयरनेस दी कि यूथ क्या रोल प्ले कर सकते हैं अपने परिवार के अंदर, जहां अपने माता पिता को गाइड कर सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं कि कैसे आपको लिंक पे क्लिक नहीं करना है, या फिर कोई अनजान व्यक्ति या जान का व्यक्ति भी अगर कुछ मांगता है डिटेल्स जो कि आपके व्यक्तिगत हैं, तो डिटेल्स को आपको शेयर नहीं करना, आपके फेसबुक प्रोफाइल को भी लॉक करके रखना है, अगर लॉक करेंगे तो लोगों का पता नहीं चल जाएगा कि आपके फ्रेंड्स कौन है, फिर वो आपके फ्रेंड्स को कॉन्टैक्ट करके बनाने का प्रयास नहीं करेंगे।
1: राइट।
0: तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करते हुए, लेकिन समय हो रहा है कि एक ब्रेक लें और श्रोताओं को समझने का मौका दें जो अभी तक हमने बताया है। जब तक श्रोता इस बात पर एनालाइज करते हैं, तब तक उनको एक गीत सुनाते हैं। सुनाए गीत बताइए आप। आपके पसंद एक बुरा मत सुनो ये है, ये बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, बुरा मत देखो, तो बुरा मत सुनो वाला गीत है जो मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में है, मैंने भी सुना नहीं है, 1969 का गीत है। आइए सुनते हैं ये गीत और फिर लौट कर आएंगे 107.8 FM पर। दोस्तों, हमारे साथ बने हुए रवि महाजन, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं और एक प्रतिभाशाली युवा हैं। आप सुनिए गीत, फिर लौट कर आते हैं

तो दोस्तों, सुना आपने बहुत ही खूबसूरत गाना 107.8 रेडियो मधुबन पर, और जहां पर हमको बुरा मत सुनो बुरा मत देखो इस बारे में बताया जा रहा था, क्योंकि कुछ लोग अच्छाई में बुरा ढूंढ लेते हैं तो फिर दर जरूरत पड़ जाती है हमारे देश को सुरक्षा देने वाले जवानों की। और ना सिर्फ बंदूक लेके लोग जवान सीमाओं पर डटे हुए हैं या पर पुलिस स्टेशन पर डटे हुए हैं, क्राइम हो रहा है उसके पर भी बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, बहुत सारा लोड है। कोई दोस्त हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आइए बात करते हैं।

0: चीज़ें बताई, हमारा ध्यान खिंचवाया कि युवा कौन सा ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं जिससे बहुत सुरक्षा में सहायता हो सकती है। फिर भी अगर हो जाता है, और जैसे आपका विभाग है लोगों को सहायता करता है, आपने वेबसाइट के बारे में बताया और एक नंबर के बारे में बताया कि जहाँ पर कॉल करके हम सहायता ले सकते हैं, पर ये जो प्लेटफॉर्म है जैसे सोशल मैसेजिंग के एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जैसे व्हाट्सएप है या टेलीग्राम है, इनमें भी कुछ खतरे हैं?
1: राइट, जैसे देखो अभी तो इतने प्लेटफॉर्म्स निकले हैं, जैसे नॉर्मल तो है जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तो ऐसे टेलीग्राम है, सिग्नल्स है, वी चैट है, उसके बाद स्नैपचैट है, बहुत सारे ऐसे चैटिंग एंड डेटिंग एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन जितना जाओगे तो ये जो जंजाल है ऐपों का जंजाल, तो ये बहुत बड़ा जंजाल है। तो इसमें हम एक वर्चुअल वर्ल्ड जो है उसके साथ हम बात कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं आगे वाला पर्सन कौन है क्या है, लेकिन फिर भी हम ट्रस्ट उस पर कर रहे हैं,
0: जी
1: फिर भी हम ट्रस्ट कर रहे हैं और उसके साथ बातें कर रहे हैं, उसके साथ अपनी निजी इन्फॉर्मेशन, निजी जीवन का
0: चित्र, आवाज,
1: यस पूरा, जैसे आजकल जैसे फाइनेंशियल क्राइम में जैसे देखा जाता है, तो फ्रॉस्टर वालों की भी एक स्क्रिप्ट हर महीने में अलग अलग चेंज होती है, हर दो महीने में।
0: ये सुनने में बड़ा फनी लगता है कि जैसे मैंने आपसे पहले भी एक साइबर एक्सपर्ट आए थे, बात किया था, तो वो मुझे बता रहे थे कि जैसे हम पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए लाखों रुपये खर्च करके लोग पढ़ते हैं, ऐसे साइबर क्राइम करने वाले जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं, उसके लिए भी वो पैसे दे के ट्रेनिंग लेते हैं।
1: राइट उनका तो एक जैसे नाइजीरियन होते हैं, नाइजीरियन तो नाइजीरियन में ऐसा देखा गया है कि वहाँ पे क्लासेस होते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे
0: क्लासेस
1: होते हैं। तो वही फोर्स से हमने भी एक सिक्योरिटी के भी क्लासेस हमने ओपन करना चाहिए, उसका अवेयरनेस हमने बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे साथ, हमारे निजी जीवन के साथ या हमारे घर वालों के निजी जीवन के साथ कोई
0: खिलवाड़
1: ना हो, तो ये हमें ख्याल में रखना चाहिए। तो इसमें अलग अलग जो फ्रॉस्टर होते हैं, हर जैसे कि देख रहे कि पहले जैसे कोरोना में था, कोरोना में इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको एक लिंक भेजी जाती थी, अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी वो कट की जाएगी, तो आप डर जाते थे, तो वहाँ से जो लिंक रहती थी वो HTTP, उसमें हमें एक कॉमन एक लिंक होती है HTTP और एक HTTP विथ यस होती है, तो हमें वो फर्क समझ में नहीं आता है और हम वो एक्सेस कर लेते हैं और पेमेंट भी कर देते हैं, तो ये जो छोटा छोटा एक ये होता है कंसेप्ट, तो हमें सीखना चाहिए या अवेयर, उसके बारे में अवेयर होना चाहिए,
0: फिर बाद में फेक लोना है मेरे को, मतलब जैसे मैंने को भी कुछ ना कुछ तो जानकारी रहती है, पर कभी कभी ऐसा लिंक आ जाता है, कोई पूछ लेता है, कई बार हम लोगों को कहते हैं, मतलब आपसे ही ये सवाल है ये कि लोग कहते हैं कि अच्छा जो सरकार के लिंक होते हैं .gov.in वाले होते थे, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, बाकी में नहीं करना चाहिए। पर मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि किसी गाड़ी चलाई, गाड़ी में कुछ फाइन लगा, फाइन लगने के बाद मैसेज आया, व्हाट्सएप या SMS आया, और उसमें एक लिंक था, तो शॉर्ट URL था bit.ly करके, तो वो खोलने से तो सरकार की वेबसाइट पे जा रहा था।
1: अच्छा,
0: लेकिन जैसे कि उस व्यक्ति ने कुछ दिन पहले किसी साइबर एक्सपर्ट से सुना था कि भी आपका जो URL है .gov.in नहीं होगा तो आप नहीं खोलना, तो उसको bit.ly दिखा तो उसको लगा ये फ्रॉड मैसेज।
1: राइट,
0: तो दोनों में फर्क करना में बहुत मुश्किल।
1: राइट, इसीलिए हमने जो वेरीफाई जो है, जैसे हमने कहा कि हर एक वेबसाइट जो है वो वेरीफाई करनी चाहिए कि उसका सोर्स कहाँ से, उसका कंटेंट क्या क्या है, उस वेबसाइट में कंटेंट क्या क्या है, जैसे आप गवर्नमेंट की वेबसाइट देखोगे तो एक ऑथराइज वेबसाइट आपको प्रॉपर वहाँ पे जो भी सांकेतिक चिन्ह है या कंटेंट है वो आपको एक ऑफिशियली वो सब आपको, जैसे विजुअल आप जाओगे, जैसे cybercrime.gov.in जाओगे तो आपको अलग अलग टैब देखेंगे, बराबर, तो दैट इज वेबसाइट। तो हमने वो जो URL है वो वेरीफाई करना चाहिए, फिजिकली वो डाल टाइप करके वो देखना चाहिए, तो उसमें जैसे कि हम बता रहे थे इलेक्ट्रिसिटी बिल की स्क्रिप्ट फ्रॉस्टर ने शुरू की, फिर बाद में फेक लोन ऐप की उन्होंने शुरू किया, फिर अभी लेटेस्ट वाला जो है, जैसे हमारा बहुत बढ़िया काम जो है अपने भारत में हो रहा है, जैसे राम मंदिर का एक बहुत उद्धार हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है राम मंदिर का, तो उसके अकॉर्डिंगली भी फ्रॉस्टर इतने जागरूक हो गए कि उन्होंने अभी लिंक भेजना शुरू किया है कि हमें ये लिंक पे भेजो, डोनेशन आप

0: आपको आने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन भेज सकते हैं। तो लिंक भेज रहे और चंदा जमा कर रहे हैं।
1: तो वैसे जो लिंक आ रहे हैं आजकल व्हाट्सएप में कि श्री राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए डोनेशन करिए, तो कई बार इसमें फेक भी होंगे?
0: ये सब फेक ही होता है, क्योंकि एक ऑथराइज जो है ये लिंक ऑलरेडी दिया है गवर्नमेंट ने,
1: राइट? गवर्नमेंट ने दिया,
0: यस दिया है। तो वहाँ पे भी आप या आपके हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में कोई संस्था ऐसी है कि वो घर जा जाकर उन्होंने प्रोवाइड किया है जो कुछ डिटेल्स है, यस, डोनेशन के लिए। तो आप पहले एक वेरीफाई कर लीजिए और बाद में आप पेमेंट कर लीजिए, ताकि आपका
1: तो
0: जो
1: कुल मिला के काफी जागरूकता का स्तर भी काफी होना चाहिए।
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: कभी भी खतरे में आ सकते।
0: हाँ जी,
1: राइट। तो आपने जैसे ये सोशल ऐप, सोशल मैसेजिंग वाले जो ऐप हैं उसके बारे में बताया कि लिंक्स वगैरह आते हैं और इससे फ्रॉड होते हैं।
0: हाँ,
1: जो व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं,
0: हाँ हाँ,
1: उनकी क्या क्या सुरक्षा की टिप्स देना चाहेंगे?
0: सुरक्षा की टिप्स जैसे व्हाट्सएप की सुरक्षा टिप्स, आपका मोबाइल जो है, राइट, आपका जैसे हम किसी की भी हाथ में मोबाइल दे देते हैं जो हमारा पहचान करने होता है कई बार। एक जैसे मुझे एक इंसिडेंस याद आता है कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को 2 मिनट के लिए मोबाइल दे दिया और उसने ऐसा कहा कि मुझे सिर्फ घर पे कॉल करना है, राइट। लेकिन उसने वो कॉल लगा रहा था और साइड बाय वो क्या कर रहा था, उसमें एक एप्लीकेशन, एक लिंक वो डाल रहा था जिससे वो पूरा डेटा मॉनिटर हो सके। उसको बोलते हैं स्पाईवेयर, राइट। जिसने APK डाल दिया और वो पूरा जो डेटा था उसका वो मॉनिटर हो गया पूरा, राइट,
1: मोबाइल मॉनिटरिंग,
0: राइट राइट। तो ऐसे कुछ अगर हम सामने वाले के हाथ में मोबाइल देते हैं, राइट, तो हमारा जो निजी इन्फॉर्मेशन वो चला जाता है, राइट। हमारे क्रेडेंशियल अगर वीक है तो सोशल मीडिया के, जैसे हम फेसबुक में अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, बर्थडे डालते हैं, राइट, नॉर्मल चीज़ें, बहुत सिंपल चीज़ें। हम क्रेडेंशियल वीक रखते तो अकाउंट हैक होना ही है, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, तो उसमें हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना चाहिए।
1: तो जैसे अपने सोशल मीडिया का बताया, तो मोबाइल का जो हैंडलिंग है,
0: हाँ हाँ,
1: तो इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, जैसे पासवर्ड या ऐसा क्या कुछ करना चाहिए?
0: मोबाइल का तो पासवर्ड तो अपने को
1: क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए?
0: मोबाइल का पासवर्ड तो रखना ही है अपने को, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। और हैंडल करते वक्त हमारा पासवर्ड जो है वो किसी को न दिखे, ताकि अगर आप कहीं जाते हो, समझो मोबाइल छोड़ के गए और किसी दूसरा उस मोबाइल का अगर उसको पासवर्ड वो देख लेता है आपका, तो पुनः डाल सकता है और वो एक्सेस कर सकता है आपका मोबाइल, राइट। और उसके बाद आप कुछ जैसे कंप्यूटर भी आप यूज करें सोशल मीडिया, राइट, तो आपकी नॉर्मल कि मैं बार बार क्यों खोलूं, तो मैं वो सेव पासवर्ड करके रखता हूँ, राइट। तो उसमें से भी हैकर्स जो है, फ्रॉडस्टर जो है, वो वहाँ से पासवर्ड ले सकते हैं और आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं, राइट। इंस्टाग्राम पे भी आपके बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं आजकल।
1: इंस्टाग्राम पे किस प्रकार के फ्रॉड होते हैं?
0: इंस्टाग्राम पे वही है जो स्पॉन्जी स्कीम, जैसे फेक लोन ऐप के जो लिंक्स आते हैं, राइट, तो वही पे सबसे ज़्यादा, जैसे हमारे हम देखते हैं कि एक बंदे ने एक फेक प्रोफाइल बनाया, राइट, एक लेडीज का फेक प्रोफाइल बनाया और उसके अकॉर्डिंगली, मीन्स मैंने जैसे पहले कहा कि वर्चुअल जो रियलिटी वो अलग है, राइट। हम कोई भी अकाउंट के एक्सेस उनको देते, फॉलो कर लेते, राइट, कुछ आगे से रिक्वेस्ट आते हैं उनको हम फॉलो कर लेते और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको लिंक भेजता है, राइट। तो आपका जो इंस्टाग्राम का जो आईडी है, उसके रिलेटेड जो भी आपका ईमेल है, वो सब उसके पास वो क्रेडेंशियल जाती है, राइट। तो वो एक्सेस करने के बाद आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाता है और उसका OTP वो डाइवर्ट कर लेता है और जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सब वो एक्सेस करता है और फिर बाद में जो कुछ फ्रॉड हो तो बाद में अपने को पता चल ही जाता है,
1: मुश्किल हो जाता है।
0: हाँ जी,
1: तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज युवा मंच में आप आए और साइबर सिक्योरिटी के बारे में अलग अलग जो विषय हैं उसके संबंधित, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बात किया। एक विषय जो अभी और भी 2 दिन से चल रहा है इंटरनेट पे, मैंने अखबार में पढ़ा था कि डीप फेक,
0: राइट,
1: तो सचिन तेंदुलकर के नाम से एक न्यूज़ आई थी कि सचिन तेंदुलकर की आवाज़ और चेहरे का इस्तेमाल करके किसी ने वीडियो बनाया था, जो कि वास्तविकता में सचिन जी ने रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर उन्होंने इस बात की कंप्लेन की, माननीय प्रधानमंत्री ने जी ने भी कुछ समय पहले ये कहा था कि डीप फेक वीडियो जो है, तो इसका इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए।
0: राइट, जैसे कि हम सेलिब्रिटीज देखते हैं, रश्मिका मंथाना का जो कुछ, मीन्स उनके निजी जीवन के साथ भी खिलवाड़ हुआ, राइट,
1: कोई किसी ने उनका वीडियो, उनका चेहरा और शरीर किसी का।
0: Yes, yes. उसके बाद सारा तेंदुलकर का देखा हमने, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का देखा जो गरबा खेलते हुए यस तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से देश को जागरूक किया, क्योंकि ये सब जो टेक्नोलॉजी से राइट, और ये अभी उसके टूल्स आएंगे मार्केट में, ये दैट इज द जेन्युइन और नॉट राइट, वो फेक है या रियल है, वो अभी टूल्स तो धीरे धीरे आएंगे, लेकिन
1: तो कोई इन चीजों का अगर शिकार हो कि जैसे किसी का वीडियो किसी ने या फोटो को ऐसा बना दिया कि दिखता आपके जैसे पर अब आप हो नहीं, पर कुछ गड़बड़ करते हुए आपका वीडियो बना, मतलब ऐसे बना दिया कंप्यूटर के अंदर
0: राइट,
1: तो उसमें क्या एक्शन लेना चाहिए आम जनता को?
0: उसमें पहले एक्शन वैसे जो लीगल एक्शन हो तो होने ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस अपना यही चाहिए कि पहले पुलिस स्टेशन जाए या साइबर सेल जाए, वहाँ पे तुम्हारी जो कंप्लेंट है, वो जो आईडीज है या वो जो कौन से प्लेटफॉर्म पे वो जो एआई बेस जो हमारा वॉइस जो है या कुछ पिक्चर्स है वॉट एवर जो कुछ है वो सबमिट, जो स्क्रीनशॉट लेके या लिंक लेके वो सब पुलिस स्टेशन को देना चाहिए ताकि वो अटक से वो ब्लॉक कर सके।
1: तो दोस्तों आज युवा मंच में हमारे साथ मौजूद थे साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट रवि महाजन, और आप एक प्रतिभाशाली युवा हैं और अपने समाज के लिए महाराष्ट्र पुलिस में कार्यरत हैं और साइबर सिक्योरिटी के लिए लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो बहुत कुछ जाना आज हमने सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मैसेजिंग ऐप के बारे में, मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना इस बारे में भी जाना, ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी आपने दी हमको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: थैंक यू।
1: तो सर विदा लेते हैं आज युवा मंच कार्यक्रम में, आज इतना ही, और एक गीत पेश करेंगे देश के इस सेवक के नाम, धरती हिंदुस्तान की, जो देशभक्ति का गीत है। और कुछ समय पहले हमें कॉल किया था हमारे माउंट आबू के जो अंधजन विद्यालय है वहाँ से अर्जुन है, अर्जुन 9 साल के हैं और उन्होंने ये गाना हमसे डिमांड की थी, तो वो गाना पेश करते हैं, फिर मिलेंगे, सुनते रहिए, मुस्कराते रहिए रेडियो मधुबनी।

सेना को साफ साफ कहना होगा, देश प्रेम की प्रबल धारा में हर मन को बहना होगा। अरे जिसे लगे ये तिरंगा पराया, वो मेरा देश छोड़कर जाए। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तानी बनकर ही रहना होगा। हिंदुस्तान

जीवन की गंगा तो बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। अरे लाल और हरे रंग में मत बांटो हमको, लाल और हरे रंग में मत बांटो हमको, मेरे छत पे भी एक तिरंगा रहने दो।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: रुक रुक रुक। तो सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: कठिन तो सफर है पर आगे बढ़ते ही जाना है, और साथ ही साथ आप दोस्तों को इनवाइट भी करते हैं किस चीज के लिए। दोस्तों आप सभी को बता देते हैं, रन फॉर ब्रदरहुड। जी हाँ, रन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा 9 अगस्त अर्थात इसी संडे सुबह 4 बजे, एक्चुअली 4 बजे से रन तो होगा नहीं, लेकिन आप साथ ही 4 बजे 5 बजे इस पूरे रन को देखने के लिए पहुंच सकते हैं। हम सभी आप सभी का स्वागत करते, ज़्यादा से ज़्यादा इस रन में भाग लीजिए और इस पूरे मैराथन में आप लाइव ब्रॉडकास्ट भी सुनते रहिए। जो लोग इस मैराथन में भाग नहीं ले पा रहे हैं, खुद नहीं दौड़ पा रहे, उनसे आग्रह यही है कि आप मैराथन को सुनिएगा ज़रूर कार्यक्रम, क्योंकि लाइव होगा। आप इस कार्यक्रम को बिल्कुल लाइव देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के दौरान आपके लिए एक और कहानी मैं ज़रूर लेकर आती हूँ। ये है एक फ्लूट की कहानी। जी हाँ,
1: में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? आज जहाँ हमारी धरती धूमिल और गंदगी से भरती जा रही है, वहीं दूसरी ओर इतनी सफाई, इतने रंग, इतना जीव इस गांव में कैसे आए? वैसे चौंकाने की असली वजह अभी बाकी है। और देखिए ना, हाँ, इस गांव को चलाने की जिम्मेदारी बच्चों के हाथ में है, इसी वजह से आज भी ये गाँव इतना निर्मल और इतना उज्ज्वल है। ये आज की बात नहीं है, कई कई दिनों पहले ये परंपरा शुरू हुई थी और आज तक चलती आ रही है, बहुत समय पहले का एक दिन।

0: आज मैं सभी को मार डालूंगी, सभी को। जा, भाग जा।
1: तेज और तेज।

0: क्या करूं, ये कैसी मुसीबत आ गई है। मुनीम जी कहां रह गए, जमींदारी का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। अजीब बात है। ये क्या है मुनीम जी, आपके कपड़े इस तरह से कैसे फट गए हैं, क्या बात
1: है? अरे हुजूर, ये फटे नहीं है, काट डाला है चूहों ने, इसी वजह से तो आने में देर हो गई।
0: खैर जाने दो, चलिए जमींदारी का काम शुरू करते हैं। सुनो, अभी तुरंत जाओ और जाकर हिसाब की कॉपी लेकर आओ।
2: जी हुजूर।
1: हुजूर, हुजूर, कुछ कीजिए हुजूर, पूरे गांव में चूहे भर गए हैं, इंसान परेशान हो रहे हैं।
2: ये लीजिए हुजूर।
0: हाय हाय हाय, इसे तो बिल्कुल कुतुर डाला है। सुनिए मुनीम जी, आपकी छुट्टी है, जाइए और जाकर गांव में घोषणा करवा दीजिए कि जो भी चूहों को मार भगाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। जाइए जाइए, जल्दी करिए।
1: ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ।
3: पता है सारे आलू चूहों ने खा लिए, अब मैं आलू की सब्जी भला कैसे बनाऊं, बताओ।
1: तो अब क्या होगा?
3: तुम अभी तुरंत जाकर खेत से एक बैंगन ले आओ, सब्जी बना दूंगी और साथ में रोटी भी।
1: अच्छा।
4: सुनो सुनो सुनो, जो भी इस गांव के सारे चूहे भगाएगा वो जो भी मांगेगा जमींदार साहब उसे वो पुरस्कार देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो सुनो सुनो।
5: मैं कर सकता हूँ, मैं इस गांव के सारे चूहे भगा सकता हूँ।
0: ये मैंने क्या सुना, कर सकते हो तुम, ये कर सकते हो, चूहों को भगाने का काम तुम कर सकते हो, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, घर द्वार सोना चांदी जमीन जायदाद सब कुछ।

0: जमींदार साहब, मैंने पूरे गांव में पता कर लिया है, कहीं भी एक भी चूहे का नामो निशान तक नहीं है।
1: वाह वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं 60 किलो लड्डू बटवाऊंगा। मुनीम जी सुनिए, तैयारी करवाइए।
2: वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत दयालु हैं हुजूर।
1: ओहो, गर्मा गर्म लाल पीली जायकेदार लड्डू खाऊंगा।
2: लाल लाल जायकेदार लड्डू खाएंगे।
3: हम सभी लड्डू खाएंगे।
4: जमींदार साहब, लाइए मेरा पुरस्कार।
1: क्या पुरस्कार? कैसा पुरस्कार?
4: चूहे भगाने का। आपने कहा था ना कि जो भी मांगूंगा वो मिलेगा।
1: चल भाग यहाँ से। घोड़े से चूहे को क्या भगा लिया, पुरस्कार लेने आ गया। तुझे कुछ नहीं मिलेगा।
4: ये क्या, आपने तो वादा किया था कि चूहे भगा देने पर जो भी मांगूंगा वो सब मिलेगा मुझे।
1: मैंने ऐसा कब कहा? मुझे कुछ भी याद नहीं है, चलो जाओ।
4: मुनीम जी, आप तो उस वक्त मौजूद थे ना, आप ही बताइए ना, या फिर आप ही मुझे पुरस्कार दे दीजिए।
0: क्यों, जमींदार साहब की बात कानों तक नहीं पहुंची? हाँ, जाओ यहाँ से।
4: अच्छा, आप लोग तो अब चूहों के अत्याचार से मुक्त हो गए ना, इसलिए आप लोग ही मुझे कुछ दे दीजिए, मेरा पुरस्कार।
5: ये तो गले ही पड़ गया है। क्या पुरस्कार? सुन, परेशान मत कर, ठीक है? जा जा जा यहाँ से, चल निकल।
4: हाँ, चला जाऊंगा, लेकिन एक बात कहकर जाता हूँ। आप लोगों को पता है ना कि ये धरती पहले और भी हरी भरी थी। पहाड़ों के ऊपर की बर्फ और भी ज्यादा सफेद और उज्जवल थी। पानी और आसमान और ज्यादा पवित्र थे। साधुओं के गेरुआ वस्त्र और भी ज्यादा गाढ़े थे। लेकिन इंसानों के अत्याचार और लालच की वजह से प्रकृति के सारे रंग फीके पड़ते जा रहे हैं, धूमिल होते जा रहे हैं। चलता हूँ।
6: ओ बांसुरी वाले, जमींदार ने आपको क्या पुरस्कार दिया, बताओ?
7: दिखाइए क्या दिया है, दिखाइए ना।
4: नहीं बच्चों, जमींदार ने मुझे कोई पुरस्कार नहीं दिया।
7: और बड़ों ने, उन्होंने क्या दिया?
4: नहीं बच्चों, उन लोगों ने भी कुछ नहीं दिया।
7: ये क्या, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, सबने मना कर दिया?
4: हाँ बच्चों, उनके पास देने वाला दिल ही नहीं है।
6: आप रुकिए, हम लोग देंगे, हम लोग अपने गुल्लक वाले पैसे आपको पुरस्कार स्वरूप देंगे।
7: बांसुरी वाले, हमारे पास तो इससे ज्यादा पैसे नहीं है।
6: हाँ बांसुरी वाले, हम लोग जब बड़े हो जाएंगे ना, आप फिर से आना, ठीक है? उस वक्त हम लोग आपको और भी ज्यादा पुरस्कार देंगे।
7: बांसुरी वाले, मैंने सब्जी और रोटी बनाई है, आप खाओगे?
4: हाँ खाऊंगा बेटी, खाऊंगा, जरूर खाऊंगा।

0: आपको?
1: हाँ बेटी, बहुत अच्छा लगा। पेट, मन, सब कुछ भर गया। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने बहुत दिनों के बाद खाया है। तुम लोग ही सुंदर हो, तुम लोग ही निश्चल हो, तुम लोग ही कर सकते हो। बड़े होकर तुम लोग इस धरती को और सुंदर, और भी ज्यादा सुंदर बनाना। चलता हूँ अब मैं।

उसके बाद बच्चों को गांव की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। बांसुरी वाले ने बच्चों को जिम्मेदारी उठाना सिखाया और बड़ों को शिक्षा देना चाहता था। कुछ दिनों बाद बड़े वापस लौट आए थे, लेकिन तब तक बच्चे जिम्मेदारी उठाना सीख गए थे। वो परंपरा आज तक चल रही है।

0: क्या होता है?
1: अरे तिकु नहीं पता क्या, इसमें पता है लोग धुए में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुए में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है? बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: सूर्यपुर गांव में सेठ मोतीलाल नाम का एक बहुत अमीर और लालची जमींदार रहता था। उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन, बड़े बड़े बाग और कई दुकानें थीं। लेकिन इतनी दौलत होने के बाद भी उनका लालच कभी खत्म नहीं हुआ। इस बार उनकी नजर गांव के गरीब किसान अर्जुन की छोटी सी जमीन पर थी।
1: अर्जुन की वो जमीन मेरी हवेली के बिल्कुल पास है, चाहे जितना पैसा देना पड़े वो जमीन एक दिन मेरी ही होगी।
0: अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार किसान था। वो अपनी पत्नी गौरी के साथ छोटे से घर में रहता था। दोनों सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते और अपनी रोजी ईमानदारी से कमाते थे। अर्जुन के लिए वो जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी, बल्कि उसके पिता की आखिरी निशानी थी।
2: अर्जुन जी, हमारे पास पैसा कम जरूर है, लेकिन सुकून और ईमानदारी बहुत बड़े खजाने होते हैं।
3: बिल्कुल गौरी, जब तक ये जमीन हमारे पास है, मुझे लगता है बाबूजी की दुआ हमेशा हमारे साथ है। मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा।
0: अगली सुबह सेठ मोतीलाल अपनी चमचमाती काली कार में बैठकर सीधा अर्जुन के खेत पर पहुंच गया। उसके साथ दो नौकर भी थे। कार से उतरते ही उसने अपने कपड़े ठीक किए, मूछों को ताव दिया और सीधा अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा। दूर खड़े गांव वाले समझ गए कि सेठ किसी नए इरादे के साथ आया है।
4: अर्जुन, सुना है तू अपनी जमीन से बहुत प्यार करता है, चलो देखते हैं तेरा प्यार बड़ा है या मेरा पैसा।
3: सेठ जी, कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये जमीन मेरी पहचान है और मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा।
0: अर्जुन की बात सुनकर सेठ मोतीलाल के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। आज तक किसी ने उसके मुंह पर इतनी हिम्मत से मना नहीं किया था। उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन फैसला कर लिया, अगर पैसों से बात नहीं बनी तो अब वो कोई और चाल चलेगा। सेठ मोतीलाल चुपचाप अपनी कार में बैठकर हवेली लौट आया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ अर्जुन की जमीन घूम रही थी। पहली बार किसी गरीब किसान ने उसके मुंह पर उसकी बात ठुकरा दी थी। ये बात उसके घमंड को बुरी तरह चुभ गई थी। उसने फैसला कर लिया कि अब अर्जुन को मजबूर करके ही उसकी जमीन हासिल करेगा।
4: अर्जुन, तुमने मेरी बात ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं देखूंगा तुम अपनी जमीन कैसे बचाते हो।
0: अगले ही दिन सेठ मोतीलाल ने अपने मुनीम को बुलाया और उसके कान में धीरे से कुछ कहा। मुनीम मुस्कुराया और तुरंत गांव की तरफ निकल गया। सेठ अपनी कुर्सी पर बैठकर मूछों को ताव देने लगा। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि कोई नई चाल चल दी गई है।
5: सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, दो दिन के अंदर अर्जुन खुद आपके दरवाजे पर जमीन बेचने आ जाएगा।
4: इसीलिए तो तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, दिमाग भी चलाते हो और काम भी निकाल लेते हो।
0: उसी शाम अर्जुन जब बीज खरीदने गांव की दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने उसे उधार देने से मना कर दिया। दूसरी दुकान पर गया, वहां भी वही जवाब मिला। अर्जुन हैरान था क्योंकि आज तक गांव में किसी ने उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था।
6: अर्जुन भाई, बुरा मत मानना, हमें ऊपर से मना किया गया है, हम तुम्हें उधार नहीं दे सकते।
3: लेकिन लाला जी, मैं तो हर बार वक्त पर पैसे लौटाता हूँ, आज अचानक सब लोग मना क्यों कर रहे हैं?
0: थका हुआ अर्जुन जब घर लौटा तो गौरी उसके चेहरे की परेशानी देखकर सब समझ गई। अर्जुन ने पूरी बात बताई। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। उन्हें एहसास हो गया था कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी सोची समझी चाल का हिस्सा है।
2: मुझे लगता है इस सब के पीछे सेठ मोतीलाल का हाथ है, वो हमें मजबूर करके जमीन छीनना चाहता है।
3: चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। ये जमीन मेरे पिता की निशानी है और इसे बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा।
0: दूसरी तरफ हवेली में बैठा सेठ मोतीलाल दूर से अर्जुन के घर की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि गरीबी और मजबूरी जल्दी ही अर्जुन को उसके सामने झुकने पर मजबूर कर देगी। लेकिन सेठ को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस कहानी का अगला मोड़ उसकी सोच से बिल्कुल अलग होने वाला है। अगली सुबह अर्जुन उदास बैठा था कि तभी गांव के बुजुर्ग करीम चाचा उसके घर आए। उन्होंने अर्जुन का परेशान चेहरा देखा और पूरी बात समझने के बाद हल्का सा मुस्कुरा दिए। उन्हें अंदाजा हो गया था कि ये सब सेठ मोतीलाल की कोई नई चाल है।
7: बेटा अर्जुन, हिम्मत मत हारना। झूठ और जुल्म कुछ दिन जरूर चलते हैं, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है।
8: फिर करीम चाचा उससे कहते हैं कि पहले जब तुम्हारे पापा इस जमीन को संभालते थे तो उस वक्त सारे जमीन के असली कागजात का रिकॉर्ड दफ्तर में होता था। अब वो दफ्तर पुराना हो गया था। जब करीम चाचा वहां गए तो उन्हें उसकी जमीन के असली कागजात मिल गए। वो उन कागजात को लेकर अर्जुन के पास वापस आए।
7: अर्जुन, तुम्हारी जमीन के असली कागज बिल्कुल ठीक हैं। सेठ चाहे जितनी चाले चल ले, कानून तुम्हारे साथ है।
0: इधर सेठ मोतीलाल को खबर मिली कि करीम चाचा अर्जुन की मदद कर रहे हैं। गुस्से में उसने तुरंत गांव की पंचायत बुलवा दी। उसका इरादा था कि सबके सामने अर्जुन को झूठा साबित करके उसकी जमीन हमेशा के लिए अपने नाम कर ले।
4: कल पंचायत में फैसला हो जाएगा, देखता हूँ अर्जुन अपनी जमीन कैसे बचाता है।
0: अगले दिन पूरा गांव पंचायत में जमा हो गया। सबकी नजरें सेठ मोतीलाल और अर्जुन पर टिकी हुई थी। हवा में सन्नाटा था और हर कोई फैसले का इंतजार कर रहा था।
9: मुखिया जी, ये जमीन असल में मेरी है। अर्जुन झूठ बोलकर सबको बेवकूफ बना रहा है।
3: मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन झूठा नहीं। मेरे पास सच है और मुझे उसी पर भरोसा है।
8: इतने में करीम चाचा आगे बढ़े। उन्होंने अपनी पोटली से पुराने सरकारी कागज निकाले और पंचायत के सामने रख दिए। पंचों ने ध्यान से हर कागज देखा। कुछ ही पलों में सच सबके सामने आने लगा।
7: ये रहे असली कागज। इन पर साफ लिखा है कि ये जमीन अर्जुन के पिता के नाम थी और अब कानूनी तौर पर अर्जुन की है।
0: सेठ मोतीलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पास ना कोई सबूत था और ना ही कोई बहाना। गांव वालों को समझ आ गया कि सेठ सिर्फ अपने लालच की वजह से एक गरीब किसान की जमीन हड़पना चाहता था।
10: सेठ मोतीलाल, तुमने झूठ बोलकर और धमकी देकर एक ईमानदार किसान की जमीन छीनने की कोशिश की है। पंचायत तुम्हारी इस हरकत की सख्त निंदा करती है।
0: पूरे गांव के सामने सेठ मोतीलाल की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। जिस दौलत पर उसे इतना घमंड था, आज वही दौलत उसके किसी काम नहीं आई। अर्जुन और गौरी की आंखों में सुकून था, क्योंकि सच की जीत हो चुकी थी।
4: अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मेरे लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। आज समझ आया कि पैसा सब कुछ नहीं होता।
0: अर्जुन ने बदले की जगह माफी को चुना। उसने सेठ मोतीलाल को माफ कर दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि किसी गरीब की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा पाप है। सेठ ने सबके सामने वादा किया कि आज के बाद वो कभी किसी के हक पर बुरी नजर नहीं डालेगा। उस दिन के बाद सूर्यापुर के लोगों ने एक बात हमेशा के लिए याद रख ली। लालच इंसान को कुछ वक्त के लिए ताकत दे सकता है, लेकिन सच और ईमानदारी की जीत को कभी नहीं रोक सकता।
11: बिल्कुल सही कहा। लालच से आप थोड़े दिनों के लिए तो विजयी बन ही सकते हो, लेकिन सदा के लिए कभी नहीं। तो चलिए मस्ती भरे इस गीत को सुन लेते हैं आज की उड़ान में।
12: दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर।

जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे।

0: वेल दोस्तों, मजेदार ये गीत आप तक पहुंचा दिया। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते हैं, एक और गीत आप तक पहुंचाते हैं। उससे पहले मिशन लाइफ।
1: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
2: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
1: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
2: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: नमस्कार, मैं हूं सिंगर साईराम अय्यर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल,
2: बन के दीपक चलता चल। तो चलिए एक और गीत महेंद्र कुमार की मीठी आवाज़ में हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन साथ ही साथ इतना पुनः याद दिलाते हैं, इस रविवार आप में से कोई भी इच्छुक रनर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं रन फॉर ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो आयोजक हैं ब्रह्मा कुमारीज, और ये एक हाफ मैराथन है आबू रोड के ब्रह्मा कुमारीज के प्रांगण मनमोहिनी वन से ये रेस शुरू होने वाली है और पहुंचने वाली है माउंट आबू ओम शांति भवन तक। तो इस रेस में आप भाग सकते हैं और इसीलिए आपको सुबह के 4 बजे ज़रूर पहुंचना होगा और रेस में पार्टिसिपेट करना होगा। स्पेशली एक नंबर मिलता है, यदि अब तक आपने रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना नंबर प्राप्त नहीं किया है तो वेबसाइट में जाकर इसके विषय में ढेरों जानकारी लेकर आप इस रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए दौड़ लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो ज़रूर जुड़िए रेडियो मधुबन के माध्यम से भी और पीस ऑफ माइंड के माध्यम से भी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में कार्यक्रम का नाम ही अपना गाँव और अपना अंचल। जिस गाँव और जिस अंचल में रहते हैं पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे वो गांव और अंचल कभी नहीं भूल पाते। तो सरकार का जो मंशा है जो रेडियो स्टेशन दिया है आसपास में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए एक मंच आज राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडला में और बच्चों का बारी बारी हुनर और प्रतिभा सुनने को मिलेगा। पहला प्रस्तुति हम सुनने जा रहे हैं एक प्रार्थना के रूप में और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ 6 छात्राएं हैं तो वो भी अपना बात को रखेंगे नाम का साथ अपना नाम और वो कौन सा गांव से आते हैं और कौन सा क्लास।
1: मेरा नाम सुपना कुमारी है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ, मैं अंबावेली से आती हूँ।
2: मेरा नाम मंजू कुमारी है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ, मैं बघेरी से आती हूँ। मेरी स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडीगढ़।
0: तो चलिए बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए हम आज आपका पास खास रहे हैं खासकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय का सहयोग से। तो जैसे बच्चे अपना प्रस्तुतियाँ देंगे, सुगना रेडी?

कर दी हूँ।

ना पाऊं, रोटी और दाल।

0: कार्यक्रम का पहला गीत में ही बच्चे अपने के रूप में अपना दिल का था अपना भाव और भावना को माँ सरस्वती तक पहुँचा दिए और इस तरह कार्यक्रम जब होता है बच्चे पढ़कर भाग लेते हैं और अपना भाव और भावना को देते हैं अर्पण करते हैं तो समर्पित रूप में अपना जीवन को जब क्या करते हैं तब भगवान भी खुश हो जाते हैं बच्चों का गीत को देख कर उनका सुर ताल का साथ लय का साथ भावना भी है भाव भी है जैसे घर में अगरबत्ती करते हैं नमस्ते करते हैं पूजा पाठ करते हैं तो हमारा छह छात्र जो सुकुना एंड अंजू सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं पहला प्रस्तुति के लिए और छोटे बच्चे भी हमारे साथ इस कार्यक्रम को जोड़ेंगे लेकिन और कोई विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर तो खास कर अंजू बड़े होकर क्या बनेगी
1: टीचर
0: क्यों टीचर क्यों क्योंकि पढ़ाते हैं तो बच्चा मिट्टी को जैसे रूप देंगे उस तरह बनता है जैसे कारीगर क्या करता है कारीगर अच्छा से सुंदर देते हैं लकड़ी हो चाहे मिट्टी हो उसको सुंदर रूप दे देते हैं तो शिक्षक भी बच्चों को सुंदर रूप में रूप देकर डॉक्टर इंजीनियर टीचर बना देते हैं तो इसलिए टीचर शिक्षक का महत्व ज़्यादा है सैनिक टीचर और किसान ये तीनों देश का ज़्यादा और पूरा मेन रोल करते हैं पूरा पिलर है उनका बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा सैनिक जो कि बॉर्डर में सैनिक काम क्या करता है जो फौजी में देश को रक्षा करते हैं हाँ और किसान हमको अन्न देते हैं और शिक्षक हमें अच्छा शिक्षित कराते हैं बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं छोटा सा

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चले कार्यक्रम को
2: आगे बढ़ाते हैं। अपना पारी में बहुत सुन लिए बेटा पहले और अच्छा गीत सुने प्रार्थना के रूप में और हमारे रेडियो मधुबन तरफ से भी गीत सुने। तत्पश्चात और एक प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए गोड्डा गुड़िया दोनों आए हैं, तो सुनते हैं उनका आवाज़ से क्या बोलना चाहेंगे। अपना नाम बताएंगे। हेलो, नाम बताइए। और कौन सा क्लास? पहले का प्रस्तुत सुनेंगे। सभी बच्चे साथ दे रहे हैं हमारा कार्यक्रम को सुनकर, अपने को कंट्रोल करके बैठे हैं चुपचाप। और हमारा तीन छात्रा और छात्रा दोनों मिलकर गीत गाएंगे। सुना
3: पहुंच गई चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जयपुर, जयपुर से रामेश्वर, रामेश्वर से चलते चलते लौट चली।

आप ही नहीं गए, सब घूम कर आकर अपना घर में पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम के लिए हम और छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी स्वागत कर रही है कि बच्चे सच्चे होते हैं, मन के सच्चे, दिल के सच्चे, प्यारे प्यारे लगते हैं। और ये सब बच्चे भी आए, हम भी कभी बच्चे थे लेकिन आप तो बड़े हो गए, हमारा बच्चे कम नहीं है। आपने अपना नाम बताएंगे प्लीज, अपना नाम बताओ। हेलो जी, हाँ यशोदा बा चेतना, आत्मा तो चेतना है कि नहीं? अरे यशोदा बिना हमारा मुश्किल अस्तित्व नहीं है। मधु बा मधुबन, रेडियो मधुबन से हम आए और मधु हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे। और एक गुड़िया किंजल, बस सभी के लिए ताली बजा दो भाई, ये तीनों बच्चे के लिए। सुना कौन सा गीत सुनाएंगे? कविता हाथी राजा, वाह हाथी तो राजा है, जंगल का राजा हाथी है, जंगल का राजा हाथी है। हाथी कभी देखा है? चित्र में नहीं, फोटो में नहीं। हाथी देखा है? कितना पैर है उसके हाथी का? चार। कितना पैर है? सभी बच्चे हाथी देखें? असली असली असली देखें? कब? जंगल में ना गांव में? गांव में हाथी आता है? अरे बस, क्योंकि जंगल का बाजू में तो बड़ा बड़ा पहाड़ है, जंगल है, हो सकता आ सकता है, लेकिन कोई भी पालतू हाथी भी आता है। चलिए हाथी राजा के बारे में सुनेंगे, सभी सुनेंगे बच्चे? चलिए सुनते हैं हाथी राजा।

0: वाह, तुम्हारा नाम बताओ।
1: राजकुमार।
0: अरे वाह राजकुमार, राजकुमार हमारा होबनहार बच्चा है और राजा बनेगा। बड़े होकर क्या बनेगा? राजा बनेगा ना, डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा?
1: डॉक्टर।
0: हाँ हाँ, राजकुमार हमारा राजा बनेगा और डॉक्टर भी बनेगा। डॉक्टर का काम क्या होती है?
1: सुई लगाता।
0: अरे बाप रे सुई। बहुत होशियार बच्चा हमारा राजकुमार। अरे बैठ जाता है, सिर्फ राजा तो बैठता नहीं है, राजा तो पूरा शासन करता है ना। तुम्हारा अच्छा मैम कौन है?
1: ममता मैडम।
0: अच्छा क्या बात है, ममता मैम उनका अच्छा मैम है। क्या ममता मैम क्या सिखाते हैं?
1: गिनती
0: सिखाते हैं और राजा बनने के लिए तरीका बताते, डॉक्टर बनने के लिए तरीका बताते है ना। बहुत अच्छा है। राजकुमार के लिए क्या करेंगे, जोर से ताली बजाएंगे। राजकुमार हमारा खुशी लग रहा है, तुमको सब ताली बजा कर खुशी करा दिए। ताली बजाने से कोई पैसा नहीं लगता है, एक्सरसाइज हो जाता है और चेहरा में गोला फूल जैसे खिलता है। सबका चेहरा देखो कितना खिलखिला रहा है ना, जैसे कमल फूल खिलता है ना। कमल फूल कैसे खिलता है देखो बच्चे, ऐसे करो हाथ। अरे वाह कमल फूल, दो दो हाथ अंगुली से इशारा से करो, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। कमल फूल ऐसे खिलता है, कमल फूल जैसे हमको भी बनना है। कैसे बनना है? कमल फूल जैसे
1: बनना है।
0: हाँ देखो बच्चे आज कितना खुशी से बोले, कमल फूल जैसे सब सहन करता है, कीचड़ पानी सब उनके साथ रहकर पूरा उपराम, सबसे अलग। तो हमारा राजकुमार भी सबसे अलग है, सभी मैम उनको याद करते, सभी सर उनको याद करते ना
1: जी।
0: क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास गुण है, विशेषता है। बहुत अच्छा बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और दो बच्चे है, तीन बच्चे वो भी सुनाएंगे, लेकिन आओ और बच्चे सुनाएंगे कुछ।
2: हसीना
0: सुनाएंगे कुछ इस कार्यक्रम को, अगला कड़ी में सुनाएंगे हसीना हमारे साथ। कौन सा क्लास में हसीना है?
1: फाइव,
0: फिफ्थ क्लास। तो सुनाओ
1: ना।

0: क्या बात, प्यार प्यार मतलब कितना खुशी का बात, ताली बजा प्यार के लिए। प्यार में सब कुछ समय होता है, जब प्यार से कोई काम करेंगे, प्यार से याद करेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, प्यार से बुलाएंगे, चुटकी में सब काम हो जाता है। और हमारा गुड़िया, हमारा परी आज प्यार सबको लुटा रहा है, गीता माध्यम से, कविता का माध्यम से। कौन सा फलिपा, कौन सा गांव से आती गुड़िया, तुम कहाँ से आती?
1: गिरवर बोर्ड से।
0: अरे बाप रे, गिरवर बोर्ड से आती, इतना दूर से आती है, वाह, गिरवर बोर्ड से। और बड़े होकर क्या बनेगी गुड़िया तुम?
1: डॉक्टर।
0: हाँ डॉक्टर, डॉक्टर का काम सुई लगाना होता है, इंजेक्शन देना होता है। और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए, और प्यार प्यार भरा, दिल भरा कविता का माध्यम सबका मन मुग्ध कर दिया। हमारा श्रोता सुन रहे इस कार्यक्रम को, और ये तो चंडला का आवाज, विद्यालय के भुवनहार बच्चे ममता मैम और एक मैम हमारा साथ इस कार्यक्रम में आए हैं, तो उनको भी हालो करेंगे। मैम आप अपना परिचय देंगे?
2: मेरा नाम संगीता शर्मा है और मैं इसी विद्यालय में अध्यापिका हूँ, पहले से पांचों को हिंदी पढ़ाती हूँ। और ये बच्चे अच्छे अच्छे कविता बोल रहे हैं, इनको सिखाइए मैंने। और मुझे पढ़ाने का बहुत ही शौक है, मुझे पढ़ाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चों से पढ़ाना है, इनको नॉलेज देना। और इनको, मैं सांस्कृतिक प्रभारी भी हूँ, तो नाच गाने वगैरह करवाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद भी गायिका हूँ, गाती हूँ गाना।
0: बच्चों का आवाज को सुनकर मैम भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और बड़े भी तो सच्चे बना देते हैं। और इस कविता का माध्यम से प्यार कितना सीमेंट का काम करता है, जोड़ना है प्यार, जैसे ईंट और रेती को सीमेंट दे देंगे तो दोनों को पूरा बराबर जोड़ देता है, कभी टूटता। तो इस कविता का माध्यम से सभी बच्चे भाग लिए। और मैम इस कविता का माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? मैम एक जो कविता सुनाई बच्ची, प्यार वाला कविता, वो कविता का महत्व थोड़ा बताइए, आपका, आप तो बच्चों को सिखाते हैं।
2: ये कक्षा 5 का पहला ही पाठ है, तो मैं इनको, मैंने पढ़ाया और रोज ही प्रार्थना के जस्ट बाद ये कविता मैं बुलवाती हूँ। तो ये बच्चे क्या है, इन कविताओं को बोलते हैं और इनको सबको करीब करीब याद हो चुकी है। तो इसमें नानी का जो प्यार वो बताया है, नानी दादी हमें पहले कैसे कहानी सुनाती थी, प्यार करती थी, है ना। तो उससे बच्चों का क्या होता था, संस्कार के विकास होते थे, है ना। जैसे उन्होंने, नानी हमें प्यार से बताती थी कि ये संसार पूरा किसने बनाया, ईश्वर ने, ईश्वर ने बनाया ना। और ईश्वर, तो ईश्वर को हमको ध्यान रख करना चाहिए, ईश्वर ही हमको सबसे जुड़ने का और इस संसार से जुड़ने का प्रेम सिखाता है, है ना। तो इसलिए नानी का और दादी का बच्चों के संस्कार निर्माण में बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। और इसी में दो लाइन मैं बच्चों के ऊपर गाना गा देती हूँ, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बच्चों के लिए ही गाना गा रही हूँ।

0: के सच्चे धन्यवाद।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चे का शुरुआत कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम को भी धन्यवाद और हमारा ममता मैम को भी धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। ममता बहन का आवाज भी लेंगे अंतिम समय में।
2: लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद पुनः मिलेंगे सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और एक बोलते बोलते फिर और एक प्रस्तुति करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें खुशी मिल रहा है। बच्चे सच्चे होते हैं और बढ़ चढ़ कर अपना भाव और भावना को देते हैं क्योंकि उनको मौका मिलता नहीं। आज मौका मिला है रेडियो मधुबन उनका बात को रखने के लिए एक मंच दे रही है जिस मंच का माध्यम से जिस स्टेज का माध्यम से अपना भाव को जन जन तक पहुँचाते हैं। और आदिवासी गाँव में रहते बच्चे इस तरह आकाशवाणी में आने के लिए उनको कोई पूछता नहीं था तो रेडियो मधुबन ब्रह्मा कुमारी आज उनका बात को रखने के लिए उनको मंच दे रहे माइक दे रहे तो पुनः और एक प्रस्तुति के लिए रेडी है। हमारा सभी बुढ़िए आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे सभी? अपना नाम क्या बताया था?
2: अंजू
3: शुभना।
1: चलिए सभी मिलकर एक प्रस्तुति करेंगे। ओके

0: वाह वाह बोल रहे से बच्चे, बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति के धन्यवाद देते हैं।
1: इस तरह बच्चे को जब मान के मिलते हैं आगे आकर अपना बात करते हैं, कोई बने अपना मास्टर बनाते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस बनेंगे सभी बड़े होकर।
0: लेकिन लेकिन मेहनत जरूरी है विद्यार्थी जीवन में, मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बिना मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है।
1: इसमें पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई तब तक विद्यार्थी पढ़ाई का जीवन में पढ़ाई करना है और बड़ों का बात मानना चाहिए, है ना।
0: ब्रेक के बाद और एक प्रश्न सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन
2: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल रहे हैं और आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन पर राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडला का आवाज अंतिम प्रस्तुति में पुनः उनको स्वागत करते हैं। शुरू करेंगे
3: चंडा पड़ा अंबर में।

सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। सभी बच्चे बोलो रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सबका आलमगीर, सबको मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, सुनते रहिए, गाते रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और सबको प्यार से झुमाते रहिए। ओ, आज दर पे चल के आया है मौका।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ किखाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

0: मैं हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अभी बजे हैं रात के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दे।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, सहज स्वास्थ्य की इस कड़ी में हम फिर वही बात लेकर आए हैं कि अपने आप को स्वस्थ कैसे रखा जाए। अक्सर ये जो बात हम सोचते हैं कि हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी डॉक्टर्स पर है, चिकित्सकों पर है, अस्पतालों पर है, नर्सेस पर है, दवाई की दुकान वाले पर है या दवाइयों पर है, ये सही धारणा नहीं है। आज हम ये सोचते हैं कि दवाइयां खाकर या दवाखानों के चक्कर लगाकर या दवाई लिखने वाले हमारे चिकित्सकों के पास जाकर ही हमें स्वास्थ्य मिल सकता है, अपितु इसके विपरीत जब हम स्वास्थ्य के सही डेफिनेशन को खोजने का प्रयास करते हैं तो ये बात कही जाती है कि बीमारियों का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य को एक संपूर्ण सर्वांगीण स्वास्थ्य के रूप में डिफाइन किया गया है। आज हम सिर्फ शरीर या मन में व्याधि का न होना ही स्वास्थ्य न समझें, हमारे वेल बीइंग के लिए भी कुछ चीजें आवश्यक हैं। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में रेडियो मधुबन छोटे छोटे कदम ले रहा है और आप सबके साथ मिलकर हम एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ भारत, एक स्वस्थ विश्व को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए दोस्तों, आज की बातचीत में भी हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में कुछ और जानकारियां हासिल करें। आज हमारे साथ स्वास्थ्य जगत के ही विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर राहुल मोदी जी हैं स्टूडियो में, जो भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लाखों लोगों को शफा दी है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो मैं इस बात पर आपकी राय जानना चाहूंगा कि हम स्वास्थ्य को कैसे देखते हैं। प्रायः हम ये चीज सुनते हैं कि बीमारी का ना होना या शरीर में या मन में व्याधि का ना होना मात्र ही स्वास्थ्य नहीं है, ये बात हम अक्सर सुनते हैं। आप एक चिकित्सक होने के नाते स्वास्थ्य को कैसे देखते हैं?
1: श्री भैया, स्वास्थ्य जो है वो सिर्फ तन तक नहीं है, आपके शरीर तक नहीं है, वो तन और मन दोनों पे असर करता है और उसका अच्छा रहना आपको फिजिकल, मेंटल और सोशल, मतलब आप दिमाग से, शरीर से और समाज में तीनों रूप से अच्छी तरह रह रहे हैं। हम लोग बहुत सारे बस ये कहते हैं कि अरे तुम एकदम ठीक हो, तुम्हारा बीपी ठीक है, तुम्हारा शुगर ठीक है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल ठीक है, तुम सांस ठीक से ले पा रहे हो, तो तुम स्वस्थ हो। मगर अगर हमारा दिमाग उस समय परेशान चल रहा है, अगर हमारा दिमाग संतुलित नहीं है, एक और बात हम करते हैं कि हम एग्जाम की डेट जैसे आ गई है, 3-4 दिन बाद परीक्षा होने वाली है और उस समय हम खेलने लगे, कूदने लगे, जो पढ़ रहे हैं उनको डिस्टर्ब करने लगे, तो हमारे जो अगल बगल के जो छात्र हैं वो कहेंगे यार तुम पागल हो, तुम स्वस्थ नहीं हो क्या, तुम्हारा शरीर ठीक है पर तुम जो काम कर रहे हो, जो

0: एक्शंस कर रहे हो वो इस समय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल ले लें कि हम किसी शादी में जा रहे हैं, वहां लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हम लगे रोने कि अरे क्या हो रहा है, तो फिर हमको अगल बगल वाले कहेंगे कि अरे आप गलत कर रहे हैं। तो आप मानसिक रूप से या आप सामाजिक रूप से उस समय स्वस्थ नहीं माने जाएंगे। शारीरिक रूप से क्या कहा जाए कि मैं आपसे कहूं कि मेरा घर दूसरी मंजिल पे है, चलिए चला जाए, आप कहें ठीक है चलते हैं और आप दूसरी मंजिल तक आराम से आ गए। ठीक है, पहली मंजिल चढ़ने के बाद आप थोड़ा धीरे हो गए, मगर आप उस जो बिल्डिंग है उसको आप चढ़ गए और दूसरे माले तक पहुंच गए। अब आप ये कहिए कि मैं पहले माले के बाद तो चढ़ ही नहीं सकता, मेरा शरीर मेरा साथ दे ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि आप स्वस्थ नहीं है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जितने भी लोगों के घर में जो सीनियर सिटीजन्स हैं, स्पेशली जो 70+ या 80+ हैं, आप उनको अगर देखेंगे तो वो बड़े संतुलित भोजन करते हैं, वो कुछ ना कुछ व्यायाम जरूर करते हैं। आप मेरे घर में, मेरी दादी, मेरी नानी, ये लोग किचन में कुछ रोटी जरूर बनाती थी, आटा जरूर सानती थी, वो सब्जी जरूर बनाती थी। ग्रैंडफादर जो भी थे वो न्यूज़पेपर जब भी पढ़ते थे तो वो अपने लिए दूध लेने रोज सवेरे वॉक करके जाते थे, उन्होंने एक उसको अपनी दिनचर्या बना दी थी। मैं मॉडर्न सोसाइटी के लिए यही बात बोलता हूँ कि ओल्डर टाइम्स में मेन यूज टू बाई एंड ब्रिंग फूड, पुरुष घर में अनाज सब्जी फल तरकारी सामान लेके आता था और महिलाएं उसको बनाती थी, धोती थी, घर की साफ सफाई करती थी। नोइंगली अनोइंगली हम लोग अपने शरीर का ध्यान रख रहे थे। एक अच्छी बात और थी हमारे साथ कि हमारा पर्यावरण उस समय कीटनाशक दवाइयों से कम प्रदूषित था, हमारी हवा उस समय कम प्रदूषित थी, तो हम लोगों को अच्छा लग रहा, हम अपने शरीर के साथ कोई भी दुराचार नहीं कर रहे थे। आपने भैया मुझे माउंट आबू बुलाया था एक कार्यक्रम में, और मैं इसके पहले करीब आई थिंक 18 साल पहले माउंट आबू आया था। दोनों समय में कितना बदल गया आबू, कितने नए नए होटल खुल गए, कितने कंस्ट्रक्शंस हो गए, और जो माउंट आबू, जो ब्रह्म कुमारीज ने एक शांति के लिए, मेडिटेशन के लिए, एक शांत दिनचर्या कैसे जी जाए, कैसे जीवन की भाग दौड़ से आप अपने आप को थोड़ा सा स्लो करके आके वापस आए, उसका पूरा का पूरा जो वातावरण है वो बदल दिया गया। अब सिर्फ हा ही करिए, शॉपिंग करिए और वीकेंड में घूमने आइए, तो आप खुद देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने शरीर के लिए ना अच्छा भोजन इस समय ला पा रहे हैं, हम स्वाद भरा भोजन ला रहे हैं, हम ज्यादा स्वादिष्ट भोजन ला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा पहले जो भोजन 2 दिन नहीं टिक पाता था, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन टिक रहा है। जो शेल्फ लाइफ जिसे कहा जाता है कि एक भोजन की कितने दिन रहती थी, उसको हम लोग कितना लंबा खींच पाते थे। मुझे आज भी अच्छे से याद है, जिन्होंने अचार देखा होगा तो उसके ऊपर एक बड़ी मोटी जो परत थी वो तेल की रहती थी कि इसको वातावरण के कॉन्टैक्ट में नहीं लाना है। बारिश के समय हमको हमेशा याद है कि माए बहने ये कहती थी एकदम चम्मच को ठीक से पोंछ के उसके अंदर डालना, और उस बड़ी वाले मर्तबान में नहीं चम्मच बार बार डालनी, उसको छोटे से बर्तन में डाल लो, कहीं फंगस ना लग जाए, कहीं वो खराब ना हो जाए। आज के दिन में आप उसको जैसे चाहे वैसे रख दीजिए, कोई फंगस नहीं लगनी है। भैया नमक गीला होना छूट गया बारिश में, आप देखिए क्या प्रोसेस हो गया। तो हम ये बात को जाने कि हमने अपने भोजन को लॉन्गर शेल्फ लाइफ में कर दिया, जो कि और हमने अपने शरीर में एक्सरसाइज नाम की चीज को कम कर दिया। गर्मी ठीक है 3-4-5 डिग्री जरूर बढ़ी, पर उस 3-4-5 डिग्री गर्मी के बढ़ने के साथ हमारे यहाँ सबके घर में एसी लग गया, सबके घर में कूलर लग गया। पहले हम लोग सुना करते थे कभी कभार पानी बरस गया, अरे बाढ़ आ गई, पानी बरस गया, अब तो हर साल सुन रहे हैं। हमने अपने पर्यावरण को चौपट कर दिया, हमने अपनी दिनचर्या को चौपट कर दिया, हमने अपने भोजन को चौपट कर दिया। तो अगर हम अपने आप को ठीक कर लें, अपने भोजन को ठीक कर लें, थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, तो हम पूर्णतः स्वस्थ रहेंगे। और मैं फिर सबको बोलता हूँ, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा समाज, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। और एक स्वस्थ देश से कोई भी दुश्मनी लेना नहीं चाहता। हम अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगर हम स्वस्थ रहें तो हम अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है ये कि हम ये सोचते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा हमारे जवान करते हैं। बिल्कुल करते हैं, हमारे सरहदों के सेनानी हैं, वो हमारे सरहदों के निगहबान हैं, वो हमारे रक्षक तो हैं ही, मगर एक मजबूत राष्ट्र, एक स्वस्थ राष्ट्र ही बन सकता है। अगर हम स्वस्थ हैं, अंदर से मजबूत हैं, तो हम वास्तविकता में देश की रक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ये बात समझ में आती है। पिछले दिनों से हम अलग अलग विषयों पर बातचीत कर रहे थे और पिछले दिनों हम बीपी के विषय पर चर्चा कर रहे थे। अक्सर करके बीपी के विषय पर जब हम इतनी गहराई से चिंतन करते हैं तो बहुत सारे लोगों को नई नई चीजें समझ में आती हैं। मैं कुछ मोटी चीजें आज आपसे पूछना चाहता हूँ। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि भाई बीपी होता क्यों है, ये हो क्यों रहा है, ये एक प्रश्न उठता है। और खासकर क्योंकि हम आसपास के क्षेत्रों में देखते हैं और अगर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी ये बीमारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कई लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो या उनको इन चीजों पर, स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर जानकारी ना हो, तो ये सामान्य प्रश्न के रूप में पूछ लेते हैं, आखिर ये होता क्यों है? बचपन से तो हम नमक खा रहे हैं, बचपन से तो हम सब कुछ कर रहे हैं।
0: सबसे बेसिक चीज हम लोग ये जाने कि हम सबको, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर है, सबके में है, और उसको हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जब ये, जिसको अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए तो करीब 100 से लेके 120 तक ऊपरी पार्ट को मानते हैं और ये 70 से लेके 90 तक को हम निचला पार्ट मानते हैं। पर डेफिनेशन में 120 बटे 80 मिलीग्राम मर्क्यूरी को हम इसको एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं। सबसे कॉमन कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने का, और जब भी हम बीपी की बात करते हैं तो वो आम बोलचाल की भाषा में उसको हाई बीपी माना जाता है या उच्च रक्तचाप समझा जाता है। सबसे कॉमन कारण है कि अगर आपके परिवार में लोगों को ये समस्या है तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये आपको भी हो सकता है। इसको जेनेटिक बोला जाता है, या आपके ये परिवार में ये बीमारी चली आ रही है तो आपको हो सकती है। और दूसरा जो सबसे कॉमन इसका कारण है, मोटापा। अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपके हृदय को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, इसीलिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। आपने कहा ही नमक की बात करी, जहां नमक ज्यादा खाया जाता है वहां भी ये कहा जाता है कि आपको बीपी हो सकता है। आप अगर शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तो भी आपके हृदय के लिए ये अच्छी चीज नहीं है। और अगर आप मादक चीजों का, जैसे सिगरेट हुआ, शराब हुआ, तंबाकू हुआ, इसका सेवन करते हैं तो भी आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। और इसीलिए डॉक्टर्स पहली बात जब भी आप जाइए तो वो आपसे बोलते हैं कि जो आप नमक खा रहे हैं उसको आधा करिए, और आप जितने भी मादक पदार्थ हैं जैसे सिगरेट हुआ, शराब हुआ, इसको तुरंत बंद करिए और थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी शुरू करिए। ये कुछ नॉर्मल सी बातें हो गई। कभी कभार ब्लड प्रेशर दूसरी बीमारियों की वजह से भी आपको हो सकता है, जैसे आपको थायराइड हो जाए, एड्रेनल ग्लैंड का आपको कोई ट्यूमर हो जाए, आपको किडनी की कोई समस्या हो जाए, तो आपको उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। आप कुछ दवाइयां खा रहे हो, दर्द की दवाइयां रेगुलरली आप खाए चले जा रहे हो, उसकी वजह से भी आपको परेशानी हो सकती है। और आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो, बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, बहुत अग्रेसिव नेचर के हो, तो भी माना जाता है कि आपको इन कारणों से ब्लड प्रेशर हो सकता है। बढ़ती उम्र के साथ ये बोला जाता है कि जो आपकी धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, उनका लचीलापन जो है वो कम होता चला जाता है, तो इससे भी आपको बीमारी इसकी हो सकती है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आपको हो सकता है। डायबिटीज हुआ कि आपके शुगर बहुत बढ़ी हुई है, वो आपकी पूरी की पूरी सिस्टम को गड़बड़ कर दे रही है, तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपको बार बार आप जगते हैं, आपकी नींद खराब है, तो भी आपको हो सकता है। और ये बेसिक कारण है जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है।
1: अब जब समस्या को हम समझते हैं कि ये कई कारणों से हो सकता है, कई चीजें तो इसमें हमारे कंट्रोल में है और कई हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे आप कह रहे थे कि कई चीजें आनुवंशिक हैं, जैसे हमारे परिवार में बीमारी चली आ रही है तो लोग सोचते हैं कि ठीक है हमारे पिताजी को था हमको भी है, या हमारी मम्मी को था इसलिए हमारी माँ को था इसलिए हमारे को है। अनेक ऐसी चीजें हम देखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब बीपी डिटेक्ट हो गया है, जब पता चल गया है आपको बीपी की बीमारी है, तो प्रकृति चिकित्सा के उपचार में हम इसके लिए क्या समाधान देखते हैं कि क्या करें जिससे बीपी को हम कंट्रोल में रखें या बीपी से निजात पा सकें?
0: सबसे पहली बात जो एक प्राकृतिक चिकित्सालय में आपसे की जाती है वो आपको आपके भोजन में बिना तला बिना भुना हुआ भोजन को हटा देते हैं और एक उबला सादा सुपाच्य भोजन आपको वो प्रदान करते हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात जो वो आपके साथ करते हैं कि वो आपके नमक का इंटेक, जो नमक आप लेते हैं, उसको तुरंत बंद कर देते हैं। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा सबसे अच्छा काम ये करती है कि वो आपको आपके भोजन में जो चीज आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकती है उसको तुरंत वो बंद करते हैं। इसका चमत्कारिक लाभ मिलता है। अगर आपको तुरंत आपका बीपी जो है वो आपको मतलब डायग्नोस हुआ है तो तुरंत आप अगर प्राकृतिक चिकित्सालय में जाएं या किसी अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले से बात करें तो वो सबसे पहले एक काम ये करेगा कि वो आपके भोजन को ठीक करेगा। तो जो भी रिफाइंड भोजन है, जो भी तला है, भुना है, प्रोसेस्ड है, भारतीय भोजन में हमेशा कहते हैं जिसमें भयंकर नमक है, जैसे चूरन, चटनी, अचार, पापड़, जिसको जीभ पे रखते आह कितना अच्छा स्वाद आ रहा है, इसको तुरंत, या नमकीन स्नैक्स हो गया जैसे चिप्स हुआ, बहुत तरह के, किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मगर हम लोग उसको खा रहे हैं, पैकेट के चिप्स हैं, उनको तुरंत बंद किया जाता है क्योंकि इनमें नमक और केमिकल इतने ज्यादा है जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तुरंत आपका कोल्ड ड्रिंक, जो पैक्ड जूसेस हुए, तो ये तक बोला गया है कि जितनी एनर्जी ड्रिंक्स आ रही हैं वो सबसे खतरनाक हैं। अभी भारतीय सरकार ने बात की है कि स्कूल के आसपास कोई भी एनर्जी ड्रिंक नहीं बिकेगी क्योंकि उसमें सिर्फ कैफीन और सिर्फ शुगर है और ये बहुत हाई डोज में कैफीन है, बहुत हाई डोज में शुगर है। तो एकाएक ऐसा लगता है कि आप जग गए हैं, आप बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं, आप एकदम थके हुए, आप एकदम एनर्जाइज हो गए, आप चार्ज्ड हो गए। सरकार भी अब जागी है, उसने भी इसको बंद किया है, तो उसको बंद किया जाता है। आपकी प्राकृतिक चिकित्सालय में आपको चाय नहीं मिलती है, आपको कॉफी नहीं मिलता है, तो ये दोनों कैफीन जो है वो आपको मतलब आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। जो बोलते हैं ना चाय पीते ही तरोताजा हो गए या कॉफी पीते, उसके इनटेक को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अल्कोहल, टोबैको, एनर्जी ड्रिंक, ये तीनों चीज को बंद किया जाता है। तो सबसे अच्छी बात, प्राकृतिक चिकित्सालय में जाते ही आपको संयम सिखाया जाता है कि आप अपने भोजन को क्या करें जिससे आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े। एक बहुत फेमस कहा बिना मेक दाय फूड दाय मेडिसिन, मतलब अपने भोजन को ही अपनी दवा बनाइए। फिर आपको योगा या एक्सरसाइज शुरू कराई जाती है। इससे दो फायदा होता है, एक आपके शरीर से आलस से कम होता है, दूसरा आपके शरीर में जो तनाव है वो कम होता है, आपका शरीर स्ट्रेचिंग होने लगती है और आपका वजन कम होने लगता है। तो एक्सरसाइज करते ही मॉडरेट हल्की एक्सरसाइज, स्विमिंग, योगा या अतुब, जो अच्छे नए सेंटर्स हैं उनके पास जिम्स भी हैं, योगा भी है, एक्सरसाइज भी है, पिलाटेस भी है, और अब नया जो है वो जुम्बा या इस तरह के डांस क्लासेस भी हैं, वो सब भी हैं। ये सारी चीजें बहुत आपके शरीर को लचीला बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं और आपके ओवरऑल फिटनेस को ठीक करती हैं। मेडिटेशन ये भी कराया जाता है कि शारीरिक सुदृढ़ता के साथ मानसिक सुदृढ़ता भी रहे, मतलब मेंटल जो मन है वो भी मजबूत रहे, इससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। आप एक चीज नोटिस करेंगे भैया, आप विश्व में कहीं भी मेडिटेशन करने जाइए, किसी भी इंटरनेशनल होटल में, प्रॉपर्टी में, वहां आपको एक बुद्ध भगवान की प्रतिमा जरूर मिलेगी। वो पद्मासन में बैठे हुए हैं, एक और आंखें उनकी बंद हैं और दोनों हाथ उनके नीचे हैं और वो एक मेडिटेशन का पर्यायवाची बन चुका है पूरे विश्व में। और इससे हम लोग अपने मन को कंट्रोल करना सीखते हैं। अपने ब्रह्म कुमारी में भी मेडिटेशन कराया जाता है और उस मेडिटेशन का फायदा ये होता है कि आप जब मानसिक रूप से शांत होते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा अच्छे से सोच पाता है। और जहां आप मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, आपके शरीर से, आपके मन से एक चीज जो सबसे तेज कम होती है वो अग्रेशन। और जहां अग्रेशन कम होता है वहां एंगर कम होता है। तो मेडिटेशन हेल्प्स यू टू डिक्रीज योर अग्रेशन एंड इन टर्न इट डिक्रीजेस योर एंगर। तो जहां आप रिलैक्स हुए वहां आपका ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो गया है। प्रैक्टिकली देखिए, आप गुस्सा है, आप सबसे, आप सड़क पे किसी से आपकी गाड़ी टच हो गई, आप उतर गए लड़ने के लिए उससे, सबसे पहले आपकी आवाज तेज होगी, आपका चेहरा लाल होगा, आपका पसीना आपको आने लगेगा, आपके हाथ और मुट्ठियां बंद हो जाएंगी, आपको ऐसा, और आपके शरीर में हल्का कंपन शुरू होगा। और यही आप तुरंत कोई दो लोग आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे, रुको रुको रुको रुको, यही आप पहली बात तो गुस्सा ही नहीं है, और गुस्सा हुए तो रुक कर दो गहरी सांस लीजिए, अपने आप आपका अग्रेशन कम हो जाएगा। और जहां अग्रेशन कम हुआ आपका एंगर कम हो जाएगा, और जहां एंगर कम हुआ आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो मेडिटेशन की सबसे पॉजिटिव चीज यही है कि वो आपके अग्रेशन को और एंगर को, और एक और चीज, जितना क्लियर माइंड होगा उतना आप क्लियर सोच पाएंगे। मैं श्रोताओं को एक बात बताना चाहूंगा कि मेरा नाम डॉक्टर राहुल मोदी और मेरे सामने श्री भैया बैठे हैं। श्री भैया मल्टीपल रोल्स में काम कर रहे हैं और मैंने श्री भैया को हमेशा मुस्कुराते हुए और शांत देखा है। जितने लोगों ने श्री भैया को नहीं देखा है वो किसी भी एक व्यक्ति को मुस्कुराते हुए देख लीजिए, श्री भैया एकदम वैसे ही हैं और थोड़े पतले दुबले हैं, तो ये देख के ही उनको आप बोल सकते हैं कि ये हेल्दी, फिट और हैप्पी व्यक्ति हैं।
1: जब आप ये उदाहरण देते हैं तो मैं अपने आप के बारे में भी सोचता हूँ कि मैं कैसे ऐसे बन पाया हूँ, ऐसे कैसे संभव है कि मैं ये चीजें कर पाता हूँ। और मैं समझता हूँ ये सब कुछ ऐसे लोगों के राय मशवरे के कारण है जिन्होंने जीवन में अनेक चीजों के लिए मुझे गाइडेंस दी है। आज डॉक्टर साहब आप स्वास्थ्य के विषय पर हमें गाइडेंस दे रहे हैं। मैं अपने अनुभव में ये चीज अक्सर कहता हूँ कि जब तक मेरा ध्यान इस विषय पर गया नहीं था कि मैं ये सोचता था कि मैं तो जवान हूँ, मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और जब धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, शरीर का ख्याल रखना भी मेरी जिम्मेदारी है और शरीर जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा, ऐसा नहीं है, अगर मैं कुछ गलत करूँगा, शरीर के अंदर कुछ गलत डालूंगा, गलत खाऊंगा, गलत देखूंगा या गलत व्यवहार होगा तो इसका असर मुझ पर होगा, मेरे मन का असर मेरे शरीर पर और मेरे शरीर का असर मेरे मन पर, दोनों होंगे। ये बात समझ में आई। और आप जैसे अनेक लोगों ने जो मार्गदर्शन दिया है उसके कारण जीवन में परिवर्तन ला पाना संभव हुआ है, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने बीपी के बारे में चीजें बताई, ये क्यों होता है ये समझा, और इससे ठीक होने के लिए क्या करने की जरूरत है ये भी चीज समझ में आई है। समय को देखते हुए हम रुकते हैं। आज आप कार्यक्रम में आए और हमारे श्रोता मित्रों को मार्गदर्शन दिया ताकि वो एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
0: नमस्कार। ओम शांति।
1: दोस्तों, आज सहज स्वास्थ्य में हमने ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी हासिल की। अब ये जानकारी अगर हम इस्तेमाल न करें तो इस जानकारी का कोई फायदा नहीं होगा। आप सबके समक्ष रेडियो मधुबन ये कार्यक्रम इसीलिए लाता है ताकि हम अपने को स्वस्थ बनाने में, अपने प्रियजनों को स्वस्थ बनाने में, अपने देश को, समाज को स्वस्थ समाज बनाने में एक कदम आगे बढ़ाएं, कुछ न कुछ हम अच्छा करने की कोशिश करने लगें। ऐसा नहीं है कि हम दूसरों के कल्याण के बारे में सोचें, बिल्कुल हमें सोचना चाहिए, सर्व मंगल की, लोक मंगल की हम कामना करते हैं, मगर साथ साथ स्वयं के स्वास्थ्य को बेहतर करने की दिशा में भी जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हम दुनिया और देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते हैं। आज सहज स्वास्थ्य में ये रुकते हैं, अगले एपिसोड में कुछ और विषयों को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: This is Uma Shankar Mishra, former director CBI, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: हेलो बच्चों, बैठो बैठो रेडियो के पास, क्योंकि सपनों की सैर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है।
2: हाँ बच्चों, और मनी दीदी और परी आ गए हैं रिम झिम फुहारों के साथ अपने प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे बच्चों से बातें करने के लिए।
1: और बातें हो रही है इन्हीं बारिश की, मौसम की।
2: हाँ, और काफी सारी बातें हमने पिछले कड़ियों में पूरी की है, जिसमें मानसून का महत्व क्या है, फायदे क्या होते हैं, चुनौतियाँ क्या आती है, और स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए।
1: तो बच्चों, आज हम आपको कुछ कुछ अच्छी अच्छी इम्पोर्टेंट बातें बताने वाले हैं, ध्यान से सुनना।
2: हाँ बच्चों, जो कि आपके जनरल नॉलेज में भी काम आएगी।
1: बिल्कुल बच्चों, भारत में सबसे पहले मॉनसून सामान्यतः कहाँ आता है पता है ना?
2: केरल में।
1: हाँ, केरल के तट पर ये पहुँचता है और आगे आगे बढ़ता है।
2: और पता है, मेघालय का मौसिन राम दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है।
1: बच्चों, ये जनरल नॉलेज पता थी क्या आपको? नहीं ना, ये बातें सिर्फ सपनों की सैर कार्यक्रम में मिलती है।
2: सही कहा बरी। और बच्चों, क्या पता है कि भारत की लगभग आधी से अधिक की जो खेती किसानी है वो मानसून पर निर्भर करती है।
1: तो इसीलिए बच्चों, देखा ये मानसून सीजन कितना इम्पोर्टेंट है।
2: हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो हमें पसंद भी है।
1: हाँ, तो चलो बच्चों, ये थी आज की मानसून के बारे में जानकारी। अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
2: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
1: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर,
2: सपनों की सैर को।
3: इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी,

0: काशिया।
1: तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की कहानी। हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, अब बारी कहानी की है। आज आपको बारह सिंगे के सींग और पांव की कहानी सुनाएंगे। एक बारह सिंगा था, एक बार वो तालाब के किनारे पानी पी रहा था। इतने में उसे पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसने मन ही मन सोचा, मेरे सिंग कितने सुंदर हैं, किसी अन्य जानवर के सिंग इतने सुंदर नहीं हैं। इसके बाद उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ी। उसे बहुत दुख हुआ। बच्चों सोचो क्यों दुख हुआ होगा पैरों को देखकर? मेरे पैर कितने दुबले पतले और भद्दे हैं। तभी उसे थोड़ी दूर पर बाघ के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। सोचो बच्चों क्या हुआ आगे? बारह सिंगा तो डर कर तेजी से भागने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, बाघ उसका पीछा कर रहा था। वो और तेज गति से भागने लगा। भागते भागते बच्चों वो बाघ से बहुत दूर निकल गया था। आगे एक घनघोर जंगल था, वहां पहुंचकर उसे खूब राहत मिली। तो देखा बच्चों कैसे वो बच गया। वो अपनी गति धीमी कर सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने लगा। एकाएक बच्चों उसके सिंग एक पेड़ के डालियों में उलझ गए। बारह सिंगे ने अपने सिंग छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं निकले। उसने सोचा, ओहो मैं अपने दुबले पतले और भद्दे पैरों को कोस रहा था, पर उन्हीं पैरों ने बाघ से बचने में मेरी कितनी मदद की। मैंने अपने सुंदर सींगों की बहुत तारीफ की, पर यही सींग अब मेरी मृत्यु का कारण बनने वाले हैं। इतने में बच्चों बाघ तो दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा और बच्चों उसने बारह सिंगे को मार डाला। तो देखा बच्चों कहानी कैसे हमें सीख देती है कि सुंदरता से उपयोगिता ये अधिक महत्वपूर्ण होती है, है ना बच्चों? तो इसीलिए भगवान ने जो कुछ हमें दिया है उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए, ना कि उसकी बुराई करनी चाहिए। चलो बच्चों अब सुनते हैं गाना और फिर मनी दीदी तेनाली रामा की कहानी लेकर आएगी, तो कहीं जाना नहीं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: मैं हूँ वर्षा उसगांवकर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: तो चलो बच्चों, आज एक नई कहानी हम पढ़ेंगे तेनाली रामा की अनोखी दुनिया की किताब से, और उसका शीर्षक है सबसे बड़ा मूर्ख, और जिसमें तेनाली राम की हाजिर जवाबी भी दिखाई गई है। तो एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में चर्चा छिड़ी कि दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो राजा ने तेनाली राम को आदेश दिया कि एक महीने के भीतर खोज कर लाएं कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तेनाली राम पूरे राज्य में घूमे। एक दिन उन्हें एक व्यक्ति मिला जो घोड़े पर बैठकर भारी सामान अपने सिर पर उठाए हुए था। पूछने पर उस आदमी ने कहा कि अगर वह सामान घोड़े पर रखेगा तो घोड़े पर बोझ बढ़ेगा। तो तेनाली राम समझ गए कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो नहीं सकता जो खुद घोड़े पर बैठा है पर भारी बोझ अपने सिर पर ढो रहा है। और उन्होंने उस आदमी को राजा के दरबार में पेश कर दिया, और राजा भी तेनाली राम की सूझबूझ पर बहुत खुश हुए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें तो ध्यान देना चाहिए, थोड़ा अपनी बुद्धि को भी तीव्र बनाए, तीक्ष्ण बनाए, है ना। तो चलो भाई, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: बच्चों चलो चलो, गाना पूरा हो गया, बहुत सारी बातें हमने सुनी, कहानियां भी सुनी, अब बारी पहेली की है। तो पिछले कड़ी में तो कोई पहेली थी नहीं, हमने बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंडशिप डे के मैसेजेस सुने थे। तो नोट कर लो आज की पहेली, मैं किताब नहीं पर मैं सिखाती हूँ, हर पल साथ निभाती हूँ, फ्रेंडशिप डे पर याद आती हूँ, बताओ मैं कौन।
3: तो बच्चों कौन है जो हमेशा हमारा साथ निभाता है और हमें नए नए लेसन देता ही रहता है? तो चलो भाई जल्दी जल्दी से अपना सही जवाब हमें 9414151415 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो।
2: बिल्कुल बच्चों, तो ये फ्रेंडशिप वीक है इसीलिए दोस्ती के ऊपर ही पहेली है, हिंट भी हमने दे दी है। तो चलो अब क्या करना है मनी दीदी?
3: करना है भगवान जी को और बच्चों को गुड नाइट,
2: स्लीप टाइट,
3: गुड बाय।
2: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

सुबह का समय तब बनता है खास जब उषा आती है अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। अब आपको बहुत ही सुंदर विचार आज का सुनाऊंगी कि हमारे ऊपर विपत्तियां आती है तो हम अक्सर अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं, परंतु वो भी मजबूर होकर के सहायता नहीं कर सकते तो लास्ट में हम किसको याद करते हैं? भगवान को। कैसे? तो जरा विचार करेंगे और चाय की पत्ती को उबाल करके क्या करेंगे? चाय की पत्ती को उबाल करके आगे क्या भाई? वो तो आप आशियाना सुनिए जरूर जान जाएंगे। और कहते हैं कि इस दुनिया में वो इंसान ही ठीक है जो हमेशा कहता है मैं ठीक हूँ। तो इस विषय पर चर्चा जरूर करेंगे और आज बनाएंगे मठिया, गुजराती डिश। सीखने के लिए तैयार रहिएगा और प्रश्न भी पूछने वाली हूँ। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार ध्यान से सुनेंगे। पहले आपको सुना चुकी हूँ, फिर भी हमारे ऊपर विपत्तियाँ आती है तो हम अक्सर अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं, परंतु वो भी मजबूर होकर के सहायता नहीं कर सकते, तो लास्ट में हम किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार बहुत ही सुंदर है, एक दृष्टांत के साथ समझाना चाहूँगी कि बहुत समय पहले त्रिकुट नामक पर्वत के पास एक गज माने हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। वहाँ का वातावरण बड़ा सुंदर था, मीठी नदियाँ, बगीचे, रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों से वह स्थान अति सुंदर लगता था। एक दिन गज अपने परिवार के साथ सरोवर में नहाने के लिए निकला। सरोवर में बहुत आनंद से और स्वच्छंदता पूर्वक तैर रहा गज माने हाथी आने वाले संकट को पहचान न सका। उसी सरोवर में एक ग्राह माने मगरमच्छ भी रहता था। ग्राह ने गज के पैर को पकड़ करके अंदर खींचना शुरू किया और दोनों ने अपनी अपनी शारीरिक शक्ति को आजमाना शुरू किया। गज अच्छे ढील डोल वाला विशाल काय शक्तिशाली प्राणी था, परंतु उसकी शक्ति सफल नहीं हुई। ग्राह खींचता ही गया, गज जल में धंसता चला गया। गज के प्राण संकट में पड़ गए, पुकारने लगा अपने रिश्तेदारों को। किनारे पर खड़े गज के साथी परिवार वाले सदस्य देखते ही रह गए, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर सके, गज की कोई मदद नहीं कर पाए। आखिर गज ने सोचा कि संकट से बचाने वाला एक ही ईश्वर है। ऐसा निश्चय करके, सभी को भूल करके, एक ही परमात्मा को अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगा। दयालु ईश्वर ने तुरंत प्रत्यक्ष होकर के सुदर्शन चक्र से ग्राह का संहार कर दिया और गज को बचा लिया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि हमारे ऊपर विपत्तियां आती है तो हम अक्सर क्या करते, पहले अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं। जब रिश्तेदार मदद नहीं करते ना, तो फिर भगवान याद आते हैं। लेकिन हमें कौन याद आने चाहिए? अगर कोई विपत्तियाँ आती है तो ईश्वर को याद करें, न कि अपने रिश्तेदारों को। रिश्तेदार क्या कर पाएंगे? भगवान जो कर सकेगा वो रिश्तेदार नहीं कर पाएंगे। तो यह है आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बड़े सुंदर नुस्खे, बहुत ही अच्छे सुंदर नुस्खे दूंगी कि भाई चाय की पत्ती को उबाल करके क्या करेंगे। तो चाय की पत्ती को उबाल करके उस पानी से बाल धोइए, इससे बाल कम झड़ेंगे। ठीक है, तो चाय की पत्ती उबाल दीजिए पानी में डाल करके, फिर उस पानी को छान दीजिए, उससे सिर धोइएगा, इससे बाल कम गिरेंगे। बहुत बाल गिरते हो तो क्या करें, कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा ना, तो आप इस उपाय को कर सकते हो। अब आपको अगला नुस्खा दे रही हूँ, बैंगन के भरते में शहद मिला करके खाइए, इससे अनिद्रा रोग का नाश होता है। ऐसा शाम को भोजन में भरता बनाते समय करें, सुबह नहीं। ठीक है, बैंगन के भरते में शहद मिलाकर खाइए, इससे अनिद्रा रोग का नाश होगा, परंतु शाम के समय। अगर शाम को आप भरता बना रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो। और भी सुनेंगे आप अगला नुस्खा कि संतरे के रस में थोड़ा सा शहद मिला दीजिए, और दिन में 3 बार 1-1 कप पीजिए। गर्भवती माताओं के लिए है ये, तो गर्भवती माताओं को जब ये दस्त की शिकायत होती ना तो दूर हो जाएगी। संतरे के रस में थोड़ा सा शहद मिला करके दिन में 3 बार 1-1 कप पीना है गर्भवती माताओं को, इससे उनके दस्त की शिकायत होगी, वो ठीक हो जाएगी। और भी सुनेंगे आपके गले में खराश होने पर सुबह ही सुबह सौंफ चबाइए, इससे बंद गला खुल जाएगा। गले में खराश हो रही हो तो सुबह ही सुबह आप सौंफ चबाइए, इससे बंद गला खुल जाएगा। और लास्ट नुस्खा है कि सवेरे भूखे पेट 3-4 अखरोट की गिरिया निकाल करके कुछ दिन खाइए, इससे घुटनों का दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। सवेरे भूखे पेट 3-4 अखरोट की गिरिया निकाल करके कुछ दिनों तक लगातार आपको खाना है, इससे घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये सारे ही नुस्खे लाजवाब है, आप चाहो तो आजमा सकते हो, और जो भी ये समस्या कही है वो आप ठीक कर सकते हो। और हाँ, ज़्यादा है तो देखिए डॉक्टर को भी बताइए, कम है तो हम खुद ही घर पर करने की कोशिश करते हैं, पर ज़्यादा है तो लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, और अब आज का प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए वो समझाए, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए और वो समझ जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है, अब आप जवाब देंगे, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस इतना सही कहूंगी कि भाई बेटी को समझाते हैं लेकिन वो समझ जाते हैं, अब वो कौन है जो समझ जाते हैं? जवाब जरूर दीजिएगा, हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अभी सुनेंगे गीत, उसके बाद में पुनः लौट करके आ रही हूँ खुशनुमा जीवन में अच्छे विषय पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए वो समझ जाए। आज का ये प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना है। हमारे नंबर है 94-14-15-14-15। तो आज का प्रश्न बड़ा सुंदर है, आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ, फिर भी आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और आज का विषय है कि इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे हैं, फिर भी कहते हैं कैसे हो आप, तो वो बोलेंगे हम ठीक है। ये आज का विषय है। क्या कहेंगे आप इस विषय पर? आप अपने राय जरूर व्यक्त करिएगा और प्रश्न का जवाब भी जरूर दीजिएगा। बहुत ही सुंदर विषय है। देखते हैं आप चर्चा में कौन कौन भाग लेते हैं। नंबर हमारे हैं 94-14-15-14-15। प्रश्न भी बड़ा सुंदर है, विषय भी बड़ा सुंदर है कि इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे हैं, फिर भी वो कहते हैं मैं ठीक हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जिसका अपना सब कुछ लुट गया हो, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, फिर भी उनको कहते हैं कि कैसे हैं जी आप। मिलते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं ना, सबसे पहले नमस्कार या राम राम करते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, कैसे हो आप, तो क्या कहते हैं? अगर उदासीन व्यक्ति होगा तो मुंह लटका करके बोलेगा ठीक हूँ। खुश मिजाज व्यक्ति होगा तो क्या कहेगा? हाँ जी बिल्कुल, हम तो ओके है, बिल्कुल ठीक है। आप सुनाइए आप कैसे हो। और ज़्यादा ही उमंग उत्साह वाला होगा तो क्या कहेगा? अरे ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर, हम तो एकदम ओके है, आप सुनाइए आप कैसे हो। तो बोलने का लहजा अलग अलग होता है। अरे मैं ही बोले जा रही हूँ इतने सुंदर और सरल विषय पर, मैं तो आपके साथ चर्चा करना चाहती हूँ इस विषय पर कि इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। तो मैं तो आपके साथ बात करना चाहती हूँ। शायद इस विषय पर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्या? ठीक है, मुश्किल लग रहा है तो हम ही चर्चा कर लेते हैं भाई, हम तो बैठे किस लिए, इसीलिए है। पर अवसर हम आपको देते हैं कि आप भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि सरल विषय है। तो बहुत सारे देखे, आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग अपनों से ही रूठे रहते हैं, परायों से बड़े खुश रहते हैं। वो कहते हैं कि अपने ही काम आते हैं और अपने ही काम बिगाड़ते हैं, दोनों ही बातें हैं यहाँ पर। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार,
1: हाँ जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हो आप?
2: सब बिल्कुल अच्छे हैं और काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपसे।
1: जी जी जी,
2: काम भी चलता है, बात भी चलती है, सुनते भी है, क्योंकि हर साथ में काम होता है।
1: जी जी बिल्कुल,
2: तो सुविधा है रेडियो की कि हम आराम से सब कुछ कर सकते हैं रेडियो सुन के।
1: जी जी जी, क्या बात है।
2: तो बहुत अच्छा, दोनों ही आपने प्रश्न भी अच्छा पूछा, विषय भी अच्छा है कि आज आप बता रहे, बिल्कुल सही है कि आज चाहे लोग के पास कुछ ना हो फिर भी कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। कई लोग हमने देखा है, कई लोग को भी हमने सुना है कि चाहे कितने प्रॉब्लम हो, चाहे कितनी परेशानी हो, पैसा ना हो, पैसे की दिक्कत हो, फिर भी कहते हैं कि हम अच्छे हैं।
1: जी
2: वही तो सही है दीदी, क्योंकि कई बार क्या होता है, पैसा वाला होता है, पैसा बहुत ज्यादा होता है, सब अच्छा होता है, फिर भी बोलता है कि ठीक है।
1: जी
2: तो
1: जी जी,
2: ठीक का मतलब तो ठीक ही होता है कि, लेकिन कहते हैं कि भाई हम बहुत अच्छे हैं।
1: जी
2: तो वही तो एक कहते हैं कि हमारे हम चाहे 600 रोटी खा के बाहर निकले, लेकिन जब हमें ऐसा किया कि चलो हम सब कुछ 32,000 का भोजन खा के बाहर निकले।
1: जी जी,
2: तो ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हम ऐसे कहेंगे चलो भाई हमको ठीक नहीं है, ऐसा नहीं तो कोई कुछ देता तो नहीं है, कुछ कोई देने वाला नहीं है।
1: जी,
2: लेकिन हम हमारे सोच से बिल्कुल अच्छे हैं तो अच्छे ही रहेंगे, क्योंकि आज कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है।
1: जी,
2: तो हम भी चाहे कुछ भी हो, देरी आज तक चाहे कितनी दिक्कत आई हो, लेकिन हमने क्या है कि हम बिल्कुल ठीक है, अच्छे हैं।
1: क्या बात है।
2: अच्छा, क्योंकि अब तो क्या दीदी, पहले तो हमारी परिस्थिति बहुत नाजुक थी, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं।
1: जी जी जी,
2: तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं, आज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आगे।
1: क्या बात है, वो कहते हैं हम पॉजिटिव रहते हैं ना तो पॉजिटिव एनर्जी आती ही है, मिलती ही है और हम अच्छे हो जाते हैं।
2: नहीं ऐसे मोह लटका के मेरे बैठे रहेंगे हमारे, उसको कहेंगे नहीं हमको अच्छा नहीं है यार, अच्छा तो कोई देने वाला तो नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, उल्टा हम ऐसे कहेंगे तो सामने वाला भी उदास हो जाएगा,
2: उससे जो आपके ऊपर हट्टी उड़ाएंगे और आपका फायदा उठाएंगे ऐसे करके नाम के बहुत बहुत अच्छे हैं। आज हमारे को कितने लोग पूछते हैं, हमारा एक ही जवाब होता है बहुत अच्छे हैं
1: जी,
2: बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे ही रहेंगे जब तक हम कह सकते।
1: जी जी जी बहुत सुंदर। अच्छा और आज के प्रश्न का जवाब आप ऑफ एयर देंगे?
2: हाँ लेकिन थोड़ा सा दिक्कत तो है कि थोड़ा सा सुनने में समझने में दिक्कत है, तो अब थोड़ा सा जरूर बात थी कि आपका कहना क्या है, हम नहीं समझ पा रहे हैं।
1: बिल्कुल हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही अच्छा, सरल प्रश्न है, अगर नहीं आएगा तो हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, बाकी बहुत ही सरल है।
2: लेकिन थोड़ा वो तो सही है लेकिन थोड़ा सा
1: जरूर जरूर
2: हो जाए तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं।
1: हाँ जी हाँ जी जरूर हम थोड़ा सा हिंट देंगे। ठीक है जी जी नमस्कार। तो देखिए प्रश्न बड़ा सुंदर है, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए और वो समझ जाए। बहुत ही सरल और सुंदर प्रश्न है, थोड़ा सा सोचिए आप, दिमाग जरूर लड़ाइएगा। हेलो
3: राम राम दीदी।
1: राम राम जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: हम हनुमान जी बोल रहे हैं।
1: हाँ जी हनुमान जी स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
3: बढ़िया है जी एकदम परफेक्ट।
1: क्या बात है, हमेशा अच्छे ही रहिए हम तो यही चाहते हैं। और आज का विषय आपने सुना?
3: विषय वो हाथी वाला गज और ग्रह वाला
1: नहीं, वो तो हमारा विचार था, जो विचार को एक्सप्लेन किया। आज का विषय है कि इस दुनिया में वो इंसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे हैं, फिर भी वो कहते हैं मैं ठीक हूँ। क्या कहेंगे आप?
3: जी जी वैसे देखा जाए तो इस दुनिया में एक ये चलन सा हो गया है, जो मर्जी जैसे मर्जी बंदा हो उसके ऊपर कितनी भी विपत्ति हो, पर जब एक दूसरे से हाल चाल पूछते तो हर कोई सही ही बताता है, पर वो वास्तव में सही जब होगा तो सही बताते समय भगवान पे ध्यान रखे, उस पर विश्वास करे, और वैसे हर कोई सही ही बताता है। और जब हम सामने वाले को अपना अगर दुख भी सुना देंगे ना तो क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे अच्छा हम अगर दुख सुनाएं तो भगवान को सुनाएं और लोगों से खुद मिजाज के बीच में रहें, अपनी उसकी प्रॉब्लम को सलूशन ढूंढने में लगे रहें। और क्या
1: क्या बात है, बहुत अच्छा है। और आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
3: हाँ उसी लिए तो मैंने फोन किया था।
1: हाँ जी बता दीजिए।
3: ये जो पर्सन है ये पर्सन इशारा कर रहा है हमें बहू को समझाने को।
1: अच्छा
3: तो बेटी को कहेंगे ना तो बहू समझ जाएगी और डायरेक्ट हम बहू को नहीं कह पाएंगे कुछ।
1: देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत, आप आशियाना सुनते रहिए। ठीक है हम जवाब जरूर देंगे आपका। और हनुमान जी आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कौन से गांव के रहने वाले हैं?
3: हम उत्तर प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से हैं, इधर नेपाल से सटा हुआ है जी।
1: अच्छा बलरामपुर।
3: हाँ और ये एप्लीकेशन के माध्यम से सुनते हैं, कई बार हमें दिक्कत भी होती है नेटवर्क से, एप्लीकेशन में टूट जाते हैं फिर कनेक्ट करते हैं टूट जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सारे दिन पकड़े ही रहता है
1: जी,
3: तो मौसम के हिसाब से होता है जी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, कभी कभी मौसम ऐसा होता है तो वो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है।
3: हाँ वो डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, कई बार तो सही रहता है मौसम तो सही पकड़े रहता है, कई बार तो वैसे इस समय तो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, बीच में बहुत दिक्कत हुआ करता था
1: जी जी जी,
3: तो हम कई बार सुनते भी नहीं थे, क्या करें जब नहीं पकड़ते तो क्या करें
1: जी जी जी।
3: हाँ
1: चलिए आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार आपका, रेडियो से जुड़े आप इसके लिए और जरूर जुड़ते रहिए, हम तो यही कहेंगे। हमारे जो नए नए श्रोता बंधु सुन रहे हैं, जो बात नहीं कर पाते हैं वो भी जरूर एक बार तो जरूर बात करें ताकि हमें पता चले कि कौन कौन रेडियो मधुबन सुनते हैं। इसलिए देखिए गुप्त मत रहिए, गुप्त रहने से कोई पहचान नहीं पाएंगे, आप सामने आइएगा, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई देख रहे हैं, आपकी आवाज़ पहुंच रही है ना तो अच्छा है, हमें भी अच्छा लगेगा कि कौन कौन रेडियो मधुबन सुनते हैं। और आज का प्रश्न

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए और वो समझ जाए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब जरूर दीजिएगा। नंबर हमारे है 94-14-15-14-15। और आज का विषय भी बड़ा सुंदर है कि कोई भी विकट परिस्थिति हमें घिरे हुए हो, चाहे सभी साथ छोड़ दे, लेकिन कोई पूछे कि कैसे हो आप, तो क्या कहेंगे हम? ठीक है, अब वो सभी के बस में नहीं है ऐसा कहना। हर कोई नहीं कह सकता विपरीत परिस्थितियों में कि हम ठीक है। कोई कोई तो क्या कहते हैं कि अरे अरे बात मत पूछो भाई, अभी हमारे बात करने का मूड नहीं है, हम कैसे, हम ही जानते हैं, हमको हमारे हाल पर छोड़ दो। अब ये कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब बहुत सारी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आती है तो वो इतने निराश, इतने हताश, इतने उदास हो जाते हैं कि वो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं और अंदर अंदर घुटते जाते हैं। परिवार में अगर बच्चा कुछ कहता है तो उस पर भन्नाएंगे, ऐसे चिल्ला कर बात करेंगे। पत्नी कुछ कहती है तो उसको भी डांट देंगे। परिवार के अन्य सदस्य भी बात करना चाहते हैं तो उनको भी ऐसे खराब मूड से बात करेंगे, चिड़चिड़ेपन से बात करेंगे। तो इससे तो कोई समस्या का समाधान निकलने वाला नहीं है भाई। समस्या किसके जीवन में नहीं आती है, हर कोई। अगर मैं अभी पूछूं कि अच्छा किस किस के जीवन में समस्याएं आई, तो हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु जुड़ जाएंगे कि हाँ बहन जी हमारे जीवन में आई थी। सभी के जीवन में आती है ना, और समस्या आती है तो अच्छा है कि हमें उस समय पता चलता है कि कौन अपने कौन पर आए। दूसरी बात यह है कि हमें इस परिस्थिति में कैसे हम अपने आप को स्टेबल बना करके रख सकते हैं वो भी पता चलता है। फिर तीसरी बात यह है कि हम दूसरों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, और चौथी बात यह कि दूसरे हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि परिस्थितियां आती है ना तो अपने ही दामन छोड़ देते हैं, सबसे पहले तो अपने ही साथ छोड़ेंगे, अपने भाई, अपने काका, चाचा, मामा, जो भी है कुटुंब के, वो साथ छोड़ेंगे कि अरे ये तो दिवालिया हो गया, ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, अभी बात करेंगे तो पैसा मांगेगा या कुछ मदद मांगेगा। तो सबसे पहले अपने ही साथ छोड़ते हैं, और अपने साथ छोड़ देते हैं तो फिर इंसान को ऐसा लगता है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। फिर कोई कोई व्यक्ति तो गलत काम भी कर लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं और अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। कोरोना काल में आपने सुना होगा, कोरोना इतना भयंकर रूप से पहला कोरोना आया था, तब बहुत समय तक रहा और बहुत समय तक ये बाज़ार बंद रहे, दुकानें सब बंद रही। उसके बाद व्यापारी बहुत जनों के व्यापार ठप हो गया, किसी के देना हो गया और बहुत कुछ हो गया, तो बहुत लोगों के

0: में आपने सुना होगा कि उस समय उन लोगों ने सुसाइड कर ली। तो ये कोई समस्या का समाधान नहीं है कि हम अपने आप को खत्म कर देवे। अरे जिएंगे तो समस्याओं से लड़ेंगे, मरने के बाद क्या सुखी रह पाएंगे? मरने के बाद की बात अलग है, लेकिन कहते हैं ना कि जो हम करते हैं वैसा हमें भरना पड़ता है। मरने के बाद भी कहीं हम जाने वाले नहीं, फिर से जन्म लेकर इसी दुनिया में आने वाले हैं, तो फिर और ज़्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज समेत भुगतना पड़ेगा। अभी तो क्या है कि ठीक है, जो समस्या आई है उसका ही सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम उससे छूटने की कोशिश करेंगे तो समस्याएँ ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा जटिल हो जाएगी। इसलिए जो भी समस्याएं आती है, लेकिन कोई भी पूछे, कोई भी मिले, कैसे हो आप? तो जी हम ठीक है, तो कोई भी आपसे बात करने की इच्छा करेगा और उदास होकर के ठीक हूँ, कैसा हूँ, आपको क्या लेना देना। बहुत जने ऐसे होते हैं जो ऐसे फटकारते हैं सामने कि हम कैसे भी हैं, आपको क्या लेना देना। अरे भाई, लेना देना तो किसी को नहीं है, लेकिन जब परिस्थितियाँ आती हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हर कोई हमको टोंट से बात करता है, जबकि सामने वाला स्वाभाविक रीत से पूछता है कि कैसे हो भाई साहब या कैसे हो बहन जी। लेकिन परिस्थिति में घिरे रहने के बाद वो कहते हैं ना कि हमारी बुद्धि भी काम करना बंद हो जाती, ऐसा लगता है कि अरे इन्होंने टोंट पास किया कैसे है, क्योंकि हम दुखी है ना तो इनको भी मजा आ रहा है, जबकि उनको पता ही नहीं कि हम कैसे हैं या हमारे अंदर से दुखी है या नहीं है, तो हमें क्यों बताना, बिल्कुल अच्छे हैं। अगर आप हंस करके अच्छे मूड से बोलेंगे हाँ जी हम तो बिल्कुल अच्छे हैं, तो सामने वाला अगर थोड़ा सा उदासीन होगा ना, तो वो भी खुश हो जाएगा कि देखो जब भी इनसे बात करते हैं बड़े मुस्कुराहट के साथ आते हैं कि हाँ जी हम अच्छे हैं। और ऐसे लोगों के साथ लोग बात करना पसंद करते हैं, अपनी समस्याएं व्यक्त करते हैं कि देखो आज मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्योंकि पता है कि इतने एनर्जी के साथ कहा है कि मैं हाँ जी हम खुश हैं, तो एक दिन नहीं जब रोज इसी तरह कहते हैं तो लोग यही सोचते हैं कि अपनी कुछ अंदर की बातें हैं जिनके साथ शेयर कर सकते हैं, ये हमेशा खुश मिजाज रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ दुख सुख की बातें भी करते हैं और उसका समाधान भी मिलता है। भले हम अंदर से दुखी हैं वो हम जानते हैं और ईश्वर जानता है, लेकिन हमें अच्छी सलाह देनी है लोगों को, उनको ये नहीं जताना है कि हम अंदर से टूट चुके हैं या दुखी है। अरे भाई, इधर उधर भटकने के बजाय हम एक ही लगन से कार्य करें, एकाग्रता से कार्य करें और एक ईश्वर के याद में कार्य करें कि हे भगवान जो भी हुआ है ये सब शायद पहले से ही लिखा हुआ था, हो गया, लेकिन मैं अच्छा करने का प्रयत्न करूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा। हम ईश्वर को याद करें, देहधारियों को क्यों याद करें, क्यों हम अपने रिश्तेदारों से मदद मांगे? बहुत सही है कि देखिए रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि हम भी कभी उनके काम आए होते हैं, तो अपेक्षाएं रहती है कि हमारे भी वो काम आए, लेकिन ये भूल जाइएगा कि हमने मदद की तो वो भी करेगा हमारी, ये बिल्कुल आप भूल जाइएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल। भूल जाइएगा कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है, करने वाले होंगे वो सामने आकर के कहेंगे, कोई तकलीफ तो नहीं है, अगर तकलीफ हो तो ज़रूर बताना, हम तैयार हैं आपके लिए। करने वाले होंगे वो सामने कहेंगे, नहीं करने वाले आपसे 10 फुट दूर हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि ये। और सबसे पहले पता कैसे चलता है, किसको चलता है? जब समस्याएं आती है तो अपनों को ही पता चलता है कि अब इसके ऊपर ये विपत्तियां आई है, भाई खिसक लो, साइड में हो जाओ, और फिर आपसे अच्छी तरह बात नहीं करेंगे। आप बोलेंगे, बात करने जाएंगे तो कहेंगे अरे समय नहीं है, अभी वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे अपने आप को व्यस्त बताएंगे कि जैसे कि वो बहुत ही राजा भोज हो, बहुत ही व्यस्त रहने वाले हो, जबकि भले उनके पास समय ही समय है, लेकिन वो आपको समय नहीं देंगे, ऐसा जताएंगे कि हमें बहुत सारा काम है, जानते हैं कि अगर उसको समय दिया तो वो कुछ मांग लेगा, इसलिए पहले से किनारा कर लेते हैं। और ये मैंने तो अच्छी तरह देखा है, बहुत जनों की कहानियाँ मैंने अपने आँखों से देखी है, वो सारे रिश्तेदारों की आज भी फ़ोन कॉल्स आते हैं तो कहते हैं कि बहन जी जब ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे मीठे मीठे बोलते हैं, अपने ही देवर जेट इतने मीठे मीठे बोलेंगे, और अरे भाई तुम ये कर लो वो कर लो, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा किनारा करते हैं कि बात करना भी बंद कर देते हैं। मतलब कैसे इस नेचर को बना सकते हैं कि आप घर के समय तो गधे को भी बाप बना लेते हो, और फिर आप दूर हट जाते हो जब आपका स्वार्थ पूरा हो जाता है, तो फिर आपके तकलीफ आई तो आप आ जाते हो और फिर आप दूर हट जाते हो। लेकिन कोई कोई लोग क्या है, ऐसे मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसे मतलब रहते हैं कि जैसे सामने वाला यही समझता है कि नहीं ये तो हमारे है, भले उनके साथ बार बार छल कपट करते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि फिर से आएंगे और इतने प्यार से चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे कि बंदा फंस ही जाएगा। अरे नहीं नहीं मेरा भाई है ना, अरे नहीं नहीं मेरा रिश्तेदार है, ऐसा नहीं हो सकता है। हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, नमस्कार।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत आपका कंचन भाई, कैसे हो आप?
1: बहन जी, सस्ता अनाज की दुकान में आज जो मिलता है तो चोखा तो लेने के लिए आए हैं।
0: जी जी जी, बहुत अच्छी बात है।
1: जेब में है, सुनता हूँ घड़ी, मोबाइल।
0: जी जी,
1: बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं आप, हम भी सुन रहे थे।
0: जी
1: तो हाँ, जीवन में सही बात है बहन जी, हमने किसी का काम किया है तो वो भूलेगा नहीं, वो तो सही बात, जरूर हमारा काम मदद में आएगा।
0: जी,
1: हमने भी कई अनुभव किए हैं जीवन तो
0: जी।
1: हमें ये करना चाहिए। तो आज
0: जी।
1: का सवाल क्या?
0: आज का सवाल है, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए वो समझ जाए।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: सही बात है, इसमें थोड़ा विचार करना पड़ेगा। और ये क्या है आज का?
0: जी आज का विषय अब पूरा हो गया, समय समाप्त हो गया।
1: और
0: आप बहुत लेट जुड़े।
1: हाँ जी, थोड़ा बाइक पे था तो।
0: अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप प्रश्न सोच करके जवाब जरूर दीजिएगा, फिर से आप फोन कॉल्स कर सकते हो, ठीक है?
1: जी जी
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका। और अब प्यारे श्रोता बंधु, आप समझ गए होंगे कि कोई भी परिस्थिति हो लेकिन हमें अपना रोना किसी के सामने नहीं रोना है, अपने दुख को किसी के सामने जताना नहीं है, अंदर अंदर उसको समझ करके परिवार के साथ, अपने ही परिवार, बीवी बच्चे जो भी है उनके साथ मिल करके अपने बातचीत करके फिर कैसे आगे बढ़ा जाए और उस समस्या से कैसे सुलझा जाए, ठीक है? बाकी कोई भी आपको कहे कैसे हो तो एकदम ठीक है, हम बहुत ही एनर्जी के साथ कहिए ताकि सामने वाला भी फुल एनर्जी में आ जाए, ठीक है? इससे क्या है कि सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है, दुआएं मिलती है, यही खुशनुमा जीवन का राज है। और आइए बढ़ते हैं एक गीत की ओर, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: this is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का. तो भाई हम जरूर नए व्यंजन सिखाएंगे जिसमें आपको बता चुके हैं कि मठिया पे गुजराती रेसिपी आपको सिखा रहे हैं क्योंकि अभी दीपावली के दिनों में आप देखेंगे कि घर घर में सुवारी मठिया चोराफली घोघरा ये तो लगभग आपको खाने को मिलेंगे ही घर घर में बनाए जाते हैं. और सुवारी मठिया चोराफली ये घोघरा ऐसी चीज़ है कि आप 15-20 दिन तक रखो ना बना करके इकट्ठा तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा आराम से फिर आप नाश्ता कर सकते हो भाई. क्योंकि त्यौहार वार पर हम एक दूसरे के घर पर जाते हैं क्योंकि नए दिन कहलाते हैं ना दीपावली के बाद के सारे दिन कहते हैं भाई नया दिन है. अब नए दिन में सब एक दूसरे से मिलते हैं तो स्वाभाविक है भोजन बनाने में लेट हो जाते हैं. तो इस तरह आप घर पर नाश्ता कर सकते हो ये चीज़ें बना करके रखोगे तो आप आराम से खा सकोगे ताकि इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी भोजन की. कभी कभी त्यौहार वार पर वो कहते हैं ना कि इन चीज़ों से काम चलाना पड़ता है. हमारे घर इतने मेहमान आते हैं कि उनको सभी को यही नाश्ता वगैरह रखना पड़ता है और हमको समय भी देना पड़ता है तो भोजन हम नहीं बना पाते नहीं खा पाते. ऐसी परिस्थितियां बहुत जनों के सामने क्रिएट होती है इसलिए कोई टेंशन नहीं इन चीज़ों से भी पेट भर जाता है और कभी कभार खाने में कोई तकलीफ भी नहीं. तो मठिया की सामग्री आप सभी को लिखवा रही हूँ कि आप ले लीजिए मटकी दाल. मटकी दाल लीजिएगा आप. अगर 1 किलो ले रहे हैं तो आप लीजिए 700 ग्राम मटकी दाल ठीक है और इसमें 300 ग्राम उड़द की दाल लीजिएगा. और आटा बनवा दीजिए इसका ठीक है. पिसवा करके आटा तैयार कर लीजिए और छान दीजिए आटे को. और अब सामग्री में लेना है आपको एक तो नमक खाने वाला मीठा सोडा अजवाइन तीखी वाली हरी मिर्च और हींग. हींग तो आपको विशेष लेनी ही है ठीक है. और शक्कर ठीक है. यही सामग्री है. फिर से दोहरा रही हूँ मटका आटा मतलब मटकी दाल का आटा उड़द की दाल का आटा. इसमें आप मोगर ले सकते हो. बस दोनों ही दाल को धुलाई करके सूखा दीजिए. सूखा करके आप पिसवा लीजिए ठीक है. तो ये आटा और फिर नमक खाने का सोडा मिर्ची हरी मिर्च तीखी वाली. अगर आप सफ़ेद मिर्च लेना चाहो तो सफ़ेद मिर्च भी ले सकते हो स्वाद के अनुसार ठीक है. और बाकी हरी मिर्च ले सकते हो. और फिर लेना है शक्कर स्वाद के अनुसार शक्कर भी लेनी है ठीक है. और फिर आप ले लीजिए अजवाइन थोड़ी सी और थोड़ी सी हींग. तो ये हो गई सामग्री. तेल तो लेना ही है तलने के लिए. बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ कि आप ऐसा करेंगे कि इसमें भी देखिए बनाने की अलग अलग विधि है. कोई किस तरह से बनाते हैं कोई किस तरह से कोई क्या करते हैं कच्चे मसाले ही इसमें डाल देते हैं. जैसे हरी मिर्च की अच्छी पेस्ट करके डाल देते हैं. हरी मिर्च नहीं डालते तो सफ़ेद मिर्च का पाउडर आता है वो मठे में डाल देते हैं. नमक डाल देते हैं दोनों आटों को मिक्स कर देते हैं ठीक है. उड़द की दाल का और मठ की दाल का आटा छान करके मिक्स करके इसमें सारे ही मसाले कच्चे ही डाल देते हैं. और फिर हींग भी ऐसे डाल करके फिर 9 सेके पानी से इसको बांध लेते हैं फिट. बांधने के बाद इसको अच्छी तरह कूटते पीटते हैं. शक्कर वगैरह सब डाल देते हैं ठीक है. तो इसका क्या है कि एक तो कूटने की मेहनत है और एक इसको तुंबने की मेहनत है. तुंबने के बोले तो दोनों हाथों में जब ये अच्छी तरह कूट करके मिक्स कर दो आप क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइट चाहिए ठीक है आटा जो हम गूंद रहे हैं वो. फिर उसको मूसल से कूटो या फिर बहुत जने गुजरात में क्या करते हैं कि प्लास्टिक का कट्टा ले लेते हैं और प्लास्टिक के कट्टे के थोड़ा सा तेल लगा करके इस आटे को मतलब थोड़ा सा इसको पानी डाल करके गून दिया है फिर उस कट्टे में रख करके कट्टे को फोल्ड करते हैं. फिर माताएं बहनें क्या करती पैरों से उसको कुचलती है क्योंकि आटे के डायरेक्ट पैर नहीं लग रहे हैं वो प्लास्टिक के कट्टे के बीच में है और ऊपर कट्टा आ गया है. फिर ऊपर माताएं बहनें पैरों से कुचलती है क्योंकि अब हाथ से तो इतनी मेहनत नहीं होती ना हाथ ही दर्द करने लग जाते हैं. तो इस तरह किल्ला किल्ला दो दो किल्ला का आटा होता है तो पैर से अच्छी तरह तुम करके मतलब अच्छी तरह उसको कुचल करके फिर उस कट्टे को ऊपर का भाग हटा करके उसको लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा तोड़ करके फिर दोनों हाथों से उसको खींचते हैं। इससे क्या है, जितना तुंबते हैं ना उतने ही मठिया सॉफ्ट बनते हैं। तो बहुत इसको खींचना पड़ता है और खींचने के बाद फिर लास्ट में लुए बनाते हैं। लंबी सी बेल, जैसे पापड़ की बेल कैसे बनाते हैं, ऐसी लंबी सी गोल गोल करके एक बेलन की तरह इसकी बेल बनाई जाती है। फिर अंगूठे में धागे को फंसा करके एक हाथ से उसके लुए काटे जाते हैं और फिर उसको बेल करके तले जाते हैं। पापड़ तो यह है कि बस सुखा करके हम भर देते हैं डिब्बे में, जब चाहे तब यूज़ कर सकते हैं। मठिया क्या है, आजकल तो वैसे मठिया रेडीमेड भी मिलने लगे हैं, पहले नहीं मिलते थे, पहले हाथों से ही बनाते थे। तो बनाने के बाद बस सारा बेल करके इकट्ठा, पहले वाले सूखते जाते थे थोड़ा थोड़ा, तो उनको इकट्ठा करते जाते थे, दूसरे बेलते जाते थे, क्योंकि ज़्यादा सूख जाएगा तो भी मज़ा नहीं आएगा, वो फूलेंगे नहीं, सॉफ्ट नहीं बनेंगे, है ना, तो उसको टूट जाएंगे मतलब। तो ज़्यादा नहीं सुखाना है, इस तरह झेट बना करके फिर इनको तलना है। और आजकल तो ऐसा है कि मठिया आप बना करके जब इच्छा हो तब तल सकते हो, कि ताज़ा ताज़ा तल के खाना है तो इकट्ठी थप्पी करके एक अच्छे से एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दीजिए और जब मूड हो, जब इच्छा हो तब आप तलिए। ऐसा हो गया, पहले नहीं रखे जाते थे, पहले तो आटा रात को रात नहीं रखते थे, कोई भी प्रकार का गूंदा हुआ आटा रात नहीं रखते थे। अब आज समय के साथ परिवर्तन हुआ है तो रात भी रखते हैं और जब चाहे तब बनाते हैं, लुए बना करके भी रख देते हैं, दूसरे दिन भी बेलते हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो ठीक है, ये मठिया की आपको विधि सिखाई है, ज़रूर आप बना करके खाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट है। और ये मठिया की दूसरी विधि भी आपको मैं सिखाने वाली हूँ, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ठीक है, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: Hello, I'm Alexander, diplomat from Russia, and you are listening FM Radio Madubar. Keep listening and keep smiling. You can also tune radiomadyuban.in on internet, even Russia, even everywhere.
1: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे मठिया और मठिया की दूसरी विधि अब फिर से आपको सिखा रही हूँ क्योंकि मठिया अच्छी तरह बना लीजिए, सुवारी अच्छी तरह बना लीजिए, कुछ एक दो रेसिपी और भी सिखाएंगे दीपावली से पहले, वो अच्छी तरह बन जाए ना तो बस और क्या चाहिए, फिर तो आप दूसरी चीज़ें बना सको ना बना सको तो भी आपके गुणगान हो ही जाएंगे कि अरे वाह क्या आपने स्वादिष्ट बनाया। अभी तो देखिए समय के साथ इतना चेंज आ रहा है कि मठिया रेडीमेड लेकर के आ रहे हैं क्योंकि माताओं बहनों को इतना समय नहीं होता है, अक्सर कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं और दीपावली के दिन ऐसे होते हैं कमाने के दिन होते हैं, इस समय ज़्यादा बिजनेस चलता है और जॉब वाले भी छुट्टी नहीं देते हैं कि नहीं नहीं भाई अभी तो आपको आना ही है, दीपावली के एक आध दिन पहले भले छुट्टी देंगे लेकिन ये सारी चीज़ें एकदम तो नहीं बना सकते ना, दीपावली के दिन या एक दिन पहले तो नहीं बना सकते हैं भाई, धनतेरस के बाद तो ये सब कुछ बनाना बंद कर देते हैं, फिर तो त्यौहार की खुशियां मनाते हैं ना, दीपक जलाए जाते हैं और घर की सजावट में ही हम लग जाते हैं। पहले हाँ थोड़े से घर की साफ़ सफाई पहले शुरू होती है, कुछ खाना बनाना ये सब ग्यारस से शुरू हो जाता है एकादशी से, ताकि क्या है कि एकादशी से पहले भी बनाते हैं, जैसे कि सातम आठम से ये करवा चौथ चली गई ना, करवा चौथ के बाद माताएं बहनें सफाई अच्छी तरह पहले से कर लेती हैं, उसके बाद ये खाना खजाना ही बनाती है, क्योंकि जिनको शौक है वो तो अपने हाथ से ही बनाते हैं और हाथ से बनाते हैं उसमें समय लगता है तो फिर वो शुरू कर देती है करवा चौथ के बाद, ताकि दीपावली पर कुछ करना ना पड़े, आराम से सब्जी रोटी बनाई और ये सारी मिठाइयाँ पहले से ही तैयार हैं, नमकीन आइटम पहले से तैयार है तो सब्जी और पूरी बना देते हैं, बाकी ये मिठाइयाँ वगैरह रख देते हैं और रिलैक्स रहते हैं, ताकि हल्के रहते हैं कि कहीं जाना हो, घर पर कोई आवे, देव दर्शन मंदिर जाए तो भी सरल रहता है। तो इसलिए मैं आपको अब मठिया सिखा रही हूँ ताकि आप बना करके आराम से रख दीजिए, 20-25 दिन कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। महीने भर के बाद थोड़ा सा तेल चढ़ना शुरू हो जाता है, बाकी कच्चा पक्का महीना आप निकाल सकते हो ऐसी चीज़ें बनाकर रखने से, ठीक है, हाथ से बनाते हैं तो क्योंकि जैसे कि आपको बताया कि मठिया बना करके रख दो, जब चाहो तब तल सकते हो, तलने में कोई समय नहीं लगता, चीज़ बनी हुई तैयार है तो तलने में समय नहीं लगता, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी विधि बता रही हूँ, आप क्या करेंगे, देखिए भोजन क्या करते हैं, नमक को सेकते हैं और नमक को सेक करके दूसरे मसाले कच्चे डालते हैं और फिर सिका हुआ नमक डालते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी विधि बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा पानी लीजिए, ठीक है, हरी मिर्च की पेस्ट भी आप तैयार कर लीजिए और उस पानी में आप शक्कर, नमक, पापड़ खारा, हरी मिर्च ये डाल करके थोड़ा सा गर्म करिए, ठीक है। अजवाइन भी इसमें डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, हींग मत डालना, ठीक है, अजवाइन भी इसमें डाल दो और इसको अच्छी तरह गर्म कर दो, गर्म करने के बाद इस पानी को छान दो, ठीक है, छानने के बाद थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, हाँ आप इसमें थोड़ा सा घी डाल दो, गर्म गर्म में थोड़ा सा घी डाल दो, एक किलो है तो एक छोटा चम्मच घी डाल दो, ठीक है, और जब ये पानी गर्म हो जाए तो इसको छान दो, छान करके जब ये ठंडा हो जाए तो नवसेका रहे तो भी चलेगा, फिर आप मठिया के लोट को इसी तरह बांध दो, ठीक है, पानी आवश्यकता के अनुसार ही लेना है, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना है क्योंकि भाई उसमें सारे मसाले पड़े हुए हैं, ज़्यादा पानी डाल दिया तो मठिया का टेस्ट बिगड़ गया और वो पानी आपका वेस्ट चला गया, ऐसा नहीं करना है। ऊपर से आप पानी ऐड कर सकते हो लेकिन मसाला वाला पानी ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे आप, वो तो काम नहीं आएगा ना, फिर मठिया का टेस्ट बिगड़ेगा, इसलिए आप आवश्यकता के अनुसार थोड़ा सा ही पानी लो, ज़रूरत पड़े तो ऊपर नवसेका पानी करके आप डाल सकते हो, ठीक है। तो इस पानी को छान करके इससे आप बांध दीजिए, तिखास मिठास जैसा आप पसंद करें वैसा डालिएगा और अच्छी तरह इसको, वही प्रोसेस है फिर उसके बाद कि पानी से इसको अच्छी तरह मिक्स कर दो, सारे आटे को सूखा नहीं रहना चाहिए, फिट भी होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए अगर आप प्लास्टिक के कट्टे में रख करके पैरों से कुचलना नहीं चाहते हैं तो फिर आप लोखन वाला हमाम दस्ता का मूसला लीजिए, ठीक है, और पत्थर होना चाहिए, टाइल्स पर मत आप पीटिएगा नहीं तो टाइल्स टूट जाती है, मजबूत पत्थर हो वहाँ पर आप एकदम तेल लगा करके, मतलब पहले तो उसको पोछा लगाइए अच्छी तरह, फिर वहाँ पर पोछा लगाने के बाद सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लीजिए, फिर तेल लगा दीजिए और फिर मठिया के लोट को वहाँ डाल करके अच्छी तरह आप उसको कूटिए, ठीक है, जितना हो सके आप में दम है उतना आप कूटिए, और कूट पीट करके ऐसा उसको बना देना है कि एकदम वो खींचो ना तो वो टूटे नहीं, एकदम खींचा जाए रबड़ की तरह खींच जाए, ऐसा सॉफ्ट आपको बना देना है। इतनी देर आपको इसमें क्या है, मेहनत ही कूटने पीटने की है भाई। मठिया ऐसे ही नहीं बनता है, सुवारी मठिया चोराफली ऐसे ही नहीं बनते, इसमें बहुत मेहनत लगती है। फिर हाँ, तलने में कोई मेहनत नहीं है, तो बस इस तरह आपको अच्छी तरह कूटने में तुमने में मेहनत लगती है, तो कूट लिया आपने अच्छी तरह, फिर उसके बाद छोटे छोटे लोए बना करके उसको अच्छी तरह तुंबिए, जितना हो सके आप खींचिए, फिर लोए को मिक्स करिए, फिर खींचिए, फिर लोए को मिक्स करिए, लास्ट में जब आपको लगे कि बहुत अच्छी लोच आ रही है, आप खींचने से भी आटा टूट नहीं रहा है, वो खींचा जा रहा है रबड़ की तरह, वो खींचा जा रहा है, तो फिर आप उसको अच्छी तरह गोल गोल करके फिर इसको बेलन की तरह वही बेल बना दीजिए, और वही धागे से अंगूठे में धागे को पलटिए, फिर एक हाथ में उस धागे को पकड़ करके एक हाथ में उस बेल को लीजिए, और ऐसे जो भी साइज आप पसंद करते हो गोल गोल काट लीजिए। काटने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा आपको रखना है, ठीक है, थोड़े से आटे में तेल डालना है, ठीक है, और तेल डाल करके फिर ये जो लुए तैयार हो गए हैं ना, इनको उस आटे वाले तेल वाले आटे में इनको पलटना है। जैसे हम चपाती बनाते हैं तो बीच बीच में आटा लगाते जाते हैं ना, इसमें बीच बीच में आटा नहीं लगाना है, तेल आटा मिक्स करके इसमें अच्छी तरह इन सारे लुए को आपको ऐसे तरह हिलाना है कि सभी के वो तेल वाला आटा लग जाए, फिर आपको क्या बनाते समय कुछ भी लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बेलते समय। तो ये लुए आप रख दीजिए और जब चाहो तब आप बेलिए, जो साइज आप पसंद करना चाहते हो उस साइज के ही लुए काटिए, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, और उसके बाद फिर आप बेल करके फिर आप तलिए। तलने का भी बड़ा ध्यान रखना है, एकदम लाल नहीं होना चाहिए, आप एक बार तेल को गर्म कर दीजिए, फिर उसको मध्यम आंच पर कर दीजिए, ज़रूरत पड़े तो बीच में स्लो कर दीजिए, फिर ज़रूरत पड़े तो गैस को तेज कर दीजिए, तलने की भी कला होती है, ठीक है, और फिर आप डालिए और चिमटे से ही निकालना है, ठीक है। हींग आपको बताई ना कि हींग हमको गर्म पानी में नहीं डालना है, फिर वो लोट बांधते समय ही उसमें हींग का पाउडर डाल देना है, हींग से अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। अजवाइन तो आपने डाल ही दिया है, तो फिर इस तरह तलिए, हल्का हल्का सा रेड होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ऐसे आप तलेंगे ना तो उसके वो फूलेंगे, एक वो क्या कहते हैं, बूंदी की तरह फूलेंगे, फूले हुए मठिया ही अच्छे लगते हैं, बैठे हुए तो फिर पापड़ हो जाएंगे, पापड़ की तरह हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, फूलने चाहिए बीच बीच में से, ठीक है, टिपके टिपके फुली हुई होनी चाहिए, तो सही मायने में प्रॉपर मठिया उसे ही कहते हैं। फिर अब आप तल करके डिब्बा भर दो, और उसके बाद जब चाहो तब खा सकते हो, तो चलिए जब चाहे तब क्यों, अभी ही भोग लगा देते हैं। तो लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप सुवारी रखिए, मठिया रखिए, सब्जी चपाती जो भी बनाई है रखिए, और तुलसी पत्र जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कवर ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद अब आप पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा मठिया का, साथ ही गीत का। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं, बहुत ही सुंदर आपको विचार दिया है, जरूर उस पर गौर करिएगा और नुस्खे भी बड़े अच्छे हैं, जरूर आप आजमा सकते हो। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत अच्छी हुई है कि कोई भी हमें कहे कैसे हो तो बड़े खुशी से एनर्जी के साथ बोलना है, हम ठीक है, हम अच्छे हैं, ठीक है। और आज का प्रश्न भी बड़ा सुंदर था, कहीं पे निगाहे कहीं पे निशाना, बेटी को समझाए वो समझ जाए। तो कौन समझ जाए भाई? हमारे भाई जो हनुमान जी है उत्तर प्रदेश बलरामपुर से, इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि भाई आजकल क्या है, बहुओं को डायरेक्ट नहीं कह सकते हो आप, बेटी को सुनाएंगे तो बहुत समझ जाएगी। पहले के समय में लोग क्या करते थे कि कोई भी बात होती, पहले क्या है कि जल्दी शादियां हो जाती थी, बहुएं भी बेचारी कम उम्र की आती थी तो वो समझ नहीं पाती थी। तो माँ अक्सर माता पिता घर में तो पहले संयुक्त परिवार होते थे, तो माताएं ऐसे मिल करके अपनी बेटियों को समझाते थे, देखो बेटा तुम ससुराल में जाओ तो ऐसे रहना, ऐसे करना, वैसे करना। अब बहू भी सुन रही है सब, तो फिर बहू भी फॉलो करती है कि अरे मुझे ऐसे रहना है, मुझे वैसे चलना है। तो और आज का समय भी ऐसा है, पहले तो फिर भी बहुओं को आप दो बात सुना देते थे, लेकिन आज सुना के देखो, दो सुनाओगे तो दस सुनने को नहीं मिले तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। सभी के लिए नहीं कह रही हूँ लेकिन अक्सर, ठीक है। तो आज भी माताएं बहनें यही करती है कि अगर घर में बहू भी है बेटी भी है, बहू कहना नहीं मानती या फिर कहना मानती है लेकिन डायरेक्ट तो उनको शिक्षा नहीं दे सकते ना, तो बेटियों को ही समझाती है। कुछ भी बात होती है तो बेटियों को ही डांटती है ताकि बहू सुने और वो भी समझे। तो हनुमान जी ने सबसे पहले जवाब दिया, उसके बाद तो खैर सभी ने दिया है, सुरेश भाई चोटाना से और कंचन भाई मंडाली से, आप सभी का जवाब सही है। सुरेश भाई ने कहा है कि बेटी को समझाएंगे तो बेटा समझ जाएगा, मतलब सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। तो देखो बेटा और बेटी तो माता पिता का अधिकार है, वो बच्चों को डायरेक्ट ही डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन बहू को डायरेक्ट नहीं कह सकते, एक मर्यादा रहती है। और कहीं बहू को बुरा न लग जाए इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए बहू को कोई डायरेक्ट नहीं कहते, मतलब कह सकते हैं। तो सबसे पहले तालियां बजेगी हनुमान जी के लिए जिन्होंने सही जवाब दिया सबसे पहले, और उसके बाद सुरेश भाई चौटाना से, कंचन भाई मंडाली से, आपने भी सही जवाब दिया, इसके लिए तालियां। और बाकी सभी ने कोशिश अच्छी की, सुरेश भाई ने भी बहुत अच्छी कोशिश की है। और अब आज का सुविचार आपको सुना रही हूँ कि फूल है जीवन तो सुगंध है दोस्ती, तन है मंदिर तो आत्मा है दोस्ती। अब मैं आपको एक प्यारा सा हनुमान जी पर भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। ये भजन इस तरह का है कि जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ के द्वारा जब बाण लगता है और वो अचेत हो जाते हैं, तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। अब जाते हैं लेकिन आने में विलम्ब होता है, तो इधर सभी घबरा जाते हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर भजन है, सुनेंगे।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: नमस्ते, मैं हूँ आरजे केवल। दादी प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन का आगाज 9 अगस्त 2026 की सुबह 5:30 बजे से होने जा रहा है। आप सभी आबू वासियों और मेरे यूथ फ्रेंड से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि इस मैराथन में रेडियो के साथ आप सभी भी मन से दौड़े और सभी धावकों का उमंग उत्साह बढ़ाइए। तो आइए साथ दौड़े, साथ जुड़े और मिलकर विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाए। याद रखे, 9 अगस्त सुबह 5:30 बजे से सिर्फ और सिर्फ लाइव रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सामुदायिक रेडियो केंद्र रेडियो मधुबन 107.8 FM द्वारा प्रस्तुत हिंसा को नो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक महिला अपने जीवन में बचपन से लेकर वृद्धावस्था के बीच किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार बनती है। साथियों, महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि बेटे की चाहत में गर्भपात करवा देते हैं, बेटी के स्कूल जाते वक्त लड़के ने सीटी बजाई तो लड़की का स्कूल छूट गया, तुम पराए घर से आई हो तो जायदाद में तुम्हारा नाम नहीं आ सकता, थोड़ी पढ़ाई क्या कर ली, घूंघट निकालना ही छोड़ दिया। तो इस तरह बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है। आज के इस नाटक के द्वारा हम जानेंगे कि महिलाएं किन किन कारणों से हिंसा का शिकार बनती है।
2: आज आपको ले चलते हैं राजस्थान सिरोही जिले के एक ऐसे गांव में जहां रहता है जगदीश। जगदीश के परिवार में उनकी मां रमा, पिता सीताराम के साथ कुल 10 सदस्य रहते हैं। जगदीश अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा है और उसका विवाह पड़ोस के जिले की पुष्पा से हुआ है। बहू पुष्पा पहली बार गर्भवती हुई है और उसका 9वां महीना चल रहा है। पुष्पा की मां बीमार होने के कारण पुष्पा को डिलीवरी के लिए पियर लेकर नहीं जा पाती है। इस वजह से सास रमा बहू को ताने कसती है और साथ साथ बार बार पुष्पा को पोता चाहिए कहकर परेशान करती रहती है। चलिए चलते हैं पुष्पा के घर और देखते हैं अभी वहाँ क्या चल रहा है।
3: बीनणी, ए बीनणी, कटे परीगी, मारा पगड़ा दुख है, थोड़ा दबा तो।
4: माजी, मने घना चक्कर आ रहा है माजी, मारी तबियत ठीक कोनी, सुबह 4 बजा की उठोड़ी हूँ, रात की 10 बजा तक काम कर रही हूँ, अबे मारी ताकत कोनी, मैं सोवा जा रही हूँ।
3: चक्कर आ रहा तो काई करूँ मैं, अणि दुनिया में तू ही एकली महिला कोनी जो माँ बनवा जा रही। अरे मैं तो 7 टाबरा ने जन्म दी दो पर घर रो सारो काम करती, समझी।
4: माँ जी, आपको समय अलग हो।
3: सामने बोल रही थू, ए जग्या थारी लुगाई ने समझा दे, गणिया में बोले।
5: थारी ही हिम्मत क्या न हुई मारी माँ के सामने बोलवा की।
4: थाने खबर है मैं गर्भवती हूँ, पूरा टाइम चल रो, फिर भी तुम्हारा मैं हाथ उठा ही रहा हूँ।
5: देख पुष्पा, तू मने मारवा पे मजबूर मत करया कर, घर का काम तो थाने ही करना पड़ी।
4: थाने खबर है कि मारो पूरो टाइम चल रहो, मारो सु काम कोनी हो रहो, क्या समझाऊ थाने, आ आ मारो पेट दुख रहो। आ
5: पुष्पा, पुष्पा कई होयो थारे, माँ माँ जल्दी आ, थारी बिंदड़ी ने कई होयो।
3: अरे कई नहीं होयो, जा दाईमा ने बुला ला, बालक ने जन्म दिवारी पीड़ा है। बिंदड़ी सुन, मारे तो पोतो ही चाहिए।
6: बधाई हो काकी सा, जलेबी खावा वो लक्ष्मी जी आया है।
3: बाटो आयो, मारे तो छोरा रो खर्चो बढ़ गयो।
6: काकी सा, छोरा छोरी अपना हाथ में कोनी, बीनणी और बालक दोई घना कमजोर है, या को ध्यान राख जो, मैं जाऊं, राम राम।
3: पोतो तो दीदो कोनी और ध्यान रखो।
4: सुनो पिंकी रा पापा, अपनी पिंकी रा मालिश करानी है, घनी कमजोर है, ताकि माँ ने कौन
3: काई जरूरत कोनी मालिश वालिश करवा की, वेजा ही पड़ता दर्द का मूर्ति, छोरिया ने गणे माथा पर नहीं बिठानी।
4: सो जा।

0: बोल बजान पिंकी को स्वागत करवा रहा है। नाश्ता पानी की तैयारी करो।
1: अरे वाह वाह वाह, या तो घनी खुशी री बात है। मारी लाडो तो मारो नाम कर दी दो।
2: देखा आपने, पुष्पा ने परिवार के विरोध के बावजूद पिंकी को अच्छी शिक्षा दिलवाई। पिंकी ने भी मेहनत कर पढ़ाई की और आगे चलकर नामी वकील बन गई। पिंकी ने अपनी बहन को भी अच्छी शिक्षा दिलवाई है। अब वह अपने परिवार के साथ साथ समाज की अन्य बालिकाओं और महिलाओं के साथ खड़ी होती है। इस बात से पिंकी के दादा दादी, परिवार वाले सभी बहुत खुश हैं और पुष्पा की तारीफ करते कहते हैं कि बहू हो तो ऐसी जिसने बेटी को इतना काबिल बनाया।
3: श्रोताओं, सुना आपने कैसे हमारे समाज में एक महिला को जन्म से लेकर हर पड़ाव में आगे बढ़ने के लिए न सिर्फ समाज बल्कि अपने परिवार के अंदर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर इन बातों को नजरअंदाज करते हैं तो छोटी बातें बड़ा रूप धारण कर देती है। महिलाओं के व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है, वो आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित नहीं कर पाती है। कभी कभी महिला सुसाइड भी कर लेती है या फिर तलाक ले लेती है। फिर भी अगर हम हिंसा को बढ़ावा देते हैं तो उसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आज आप सभी देखते व सुनते भी होंगे कि अधिकांश समाज में बेटों की संख्या ज्यादा है और बेटियों की कम। दलालों को पैसे दे करके दूसरे समाज की बेटियों को बहू बना रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जब नारी ठान लेती है तो हम यही कह सकते हैं, नारी तू ना हारी। पुष्पा ने अपने दृढ़ संकल्प के बल पर अपने पति सास ससुर के विरोध के बावजूद भी अपनी बेटी पिंकी को उच्च शिक्षा दिलाई। इस नाटक से हमने ये जाना कि महिलाएं किस किस प्रकार से हिंसा का शिकार बनती है। हम भी अगर अपने आसपास देखें तो हमारे परिवार तथा समाज के अंदर जाने अनजाने में महिलाओं को इस प्रकार के हिंसा का सामना करना पड़ता है। तो आशा करते हैं कि आज के इस नाटक से आपने जो सुना इसे अपने जीवन में डालने का प्रयास करेंगे और आप किसी महिला के जीवन में होने वाली हिंसा का कारण नहीं बनेंगे तथा अपने समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित माहौल देने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही प्रेरणादायक कार्यक्रमों के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन और कहिए सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। आइए आरजे उषा के द्वारा सुनते हैं इस एपिसोड के मर्म को प्रस्तुत करता हुआ एक दिल को छू लेने वाला गीत।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में कार्यक्रम का नाम ही अपना गाँव और अपना अंचल। जिस गाँव और जिस अंचल में रहते हैं पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, वो गांव और अंचल कभी नहीं भूल पाते। तो सरकार का जो मंशा है, जो रेडियो स्टेशन दिया आसपास में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए एक मंच आज
1: राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडला में, और बच्चों का बारी बारी हुनर और प्रतिभा सुनने को मिलेगा। पहला प्रस्तुति हम सुनने जा रहे हैं एक प्रार्थना के रूप में, और इस कार्यक्रम को साधने के लिए हमारे साथ 6 छात्राएं हैं, तो वो भी अपना बात को रखेंगे नाम का साथ, अपना नाम और वो कौन सा गांव से आते हैं और कौन सा क्लास।
2: मेरा नाम सुपना कुमारी है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ, मैं अंबावेली से आती हूँ।
3: मेरा
2: नाम अंजू कुमारी है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ, मैं बगेरी से आती हूँ। मेरी स्कूल का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडीला।
1: तो चलिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए हम आज आपका पास बात कर रहे हैं, खासकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय का सहयोग से। तो जैसे बच्चे अपना प्रस्तुतियाँ देंगे, सुगना रेडी

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। कार्यक्रम का पहला गीत में ही बच्चे अपने अपना भाव और भावना को माँ सरस्वती तक पहुँचा दिए और इस तरह कार्यक्रम जब होता है बच्चे पढ़ कर भाग लेते हैं और अपना भाव और भावना को देते हैं अर्पण करते हैं तो समर्पित रूप में अपना जीवन को जब त्याग करते हैं तब भगवान भी खुश हो जाते हैं बच्चों का गीत को देखकर उनका सुर ताल का साथ लय का साथ भावना भी है भाव भी है जैसे घर में अगरबत्ती करते हैं नमस्ते करते हैं पूजा पाठ करते हैं तो हमारा छह छात्र जो सुकुना एंड अंजू सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं पहला प्रस्तुति के लिए और छोटे बच्चे भी हमारे साथ इस कार्यक्रम को जोड़ेंगे लेकिन और कोई विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। तो खास कर अंजू बड़े होकर क्या बनेगी
1: टीचर
0: क्यों टीचर क्यों क्योंकि
1: पढ़ाते हैं
0: तो बच्चा मिट्टी को जैसे रूप देंगे उस तरह बनता है जैसे कारीगर क्या करता है कारीगर अच्छा से सुंदर देते हैं लकड़ी हो चाहे मिट्टी हो उसको सुंदर रूप दे देते हैं तो शिक्षक भी बच्चों को सुंदर रूप में रूप देकर डॉक्टर इंजीनियर टीचर बना देते हैं तो इसलिए टीचर शिक्षक का महत्व ज़्यादा है सैनिक टीचर और किसान ये तीनों देश का ज़्यादा और पूरा मेन रोल करते हैं पूरा पिलर है उनका बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। सैनिक जो कि बॉर्डर में सैनिक काम क्या करता है जो फौजी में देश को रक्षा करते हैं हाँ और किसान हमको अन्न देते हैं और शिक्षक हमें अच्छा शिक्षित कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं छोटा सा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए कार्यक्रम को
2: आगे बढ़ाते हैं। अपना पहले में बच्चों का सुन लिए बेटा पहले और अच्छा गीत सुने प्रार्थना के रूप में और हमारे रेडियो मधुबन तरफ से भी गीत सुने तत्पश्चात और एक प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए गोड्डा गुड़िया दोनों आए हैं तो सुनते हैं उनका आवाज़ से क्या बोलना चाहेंगे। अपना नाम बताएंगे। हेलो, नाम बताइए। और कौन सा क्लास? पहले का प्रस्तुत सुनेंगे। सभी बच्चे साथ दे रहे हैं हमारा कार्यक्रम को सुंदर में पूरा अपने को कंट्रोल करके बैठे हैं चुपचाप और हमारा तीन छात्रा और छात्रा दोनों मिलकर गीत गाएंगे। सुना
3: पहुंच गई चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जयपुर, जयपुर से रामेश्वर, रामेश्वर से चलते चलते लौट चली।

0: गए, सब घूम कर आकर अपना घर में पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम के लिए हम और छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी स्वागत कर रही है कि बच्चे सच्चे होते हैं, मन के सच्चे, दिल के सच्चे, प्यारे प्यारे लगते हैं। और ये सब बच्चे भी आए, हम भी कभी बच्चे थे लेकिन आप तो बड़े हो गए, हमारा बच्चे कम नहीं है। आपने अपना नाम बताएंगे प्लीज, अपना नाम बताओ। हेलो जी, हाँ यशोदा बा
1: चेतना,
0: आत्मा तो चेतना है कि नहीं? अरे यशोदा बिना हमारा मुश्किल अस्तित्व नहीं है। मधु बा मधुबन, रेडियो मधुबन से हम आए और मधु हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे। और एक गुड़िया किंजल, बस सभी के लिए ताली बजा दो भाई, ये तीनों बच्चे के लिए। सुना कौन सा गीत सुनाएंगे? कविता हाथी राजा, वाह हाथी तो राजा है, जंगल का राजा हाथी है, जंगल का राजा हाथी है। हाथी कभी देखा है? चित्र में नहीं, फोटो में नहीं, हाथी देखा है? कितना पैर है उसके हाथी का? चार। कितना पैर है? सभी बच्चे हाथी देखें? असली असली असली देखें? कब? जंगल में ना गांव में? गांव में हाथी आता है? अरे वाह, क्योंकि जंगल का बाजू में तो बड़ा बड़ा पहाड़ है, जंगल है, हो सकता आ सकता है, लेकिन कोई भी पालतू हाथी भी आता है। चलिए हाथी राजा के बारे में सुनेंगे, सभी सुनेंगे बच्चे? चलिए सुनते हैं हाथी राजा।

0: वाह, तुम्हारा नाम बताओ?
1: राजकुमार।
0: अरे वाह राजकुमार, राजकुमार हमारा होबनहार बच्चा है और राजा बनेगा। बड़े होकर क्या बनेगा? राजा बनेगा ना डॉक्टर बनेगा? क्या बनेगा?
1: डॉक्टर।
0: हाँ हाँ, राजकुमार हमारा राजा बनेगा और डॉक्टर भी बनेगा। डॉक्टर का काम क्या होती है?
1: सुई लगाता है।
0: अरे बाप रे, सुई। तो बहुत होशियार बच्चा हमारा राजकुमार। अरे बैठ जाता है, सिर्फ राजा तो बैठता नहीं है, राजा तो पूरा शासन करता है ना। तुम्हारा अच्छा मैम कौन है?
1: ममता मैडम।
0: अच्छा, क्या बात है, ममता मैम उनका अच्छा मैम है। क्या ममता मैम क्या सिखाते हैं?
1: गिनती।
0: गिनती सिखाते और राजा बनने के लिए तरीका बताते, डॉक्टर बनने के लिए तरीका बताते है ना। बहुत अच्छा, राजकुमार के लिए क्या करेंगे, जोर से ताली बजाएंगे। राजकुमार हमारा खुशी खुशी लग रहा है, तुमको सब ताली बजा कर खुशी करा दिए। ताली बजाने से कोई पैसा नहीं लगता है, एक्सरसाइज हो जाता है और चेहरा में गोला फूल जैसे खिलता है। सबका चेहरा देखो कितना खिलखिला रहा है ना, जैसे कमल फूल खिलता है ना। कमल फूल कैसे खिलता है देखो बच्चे, ऐसे करो हाथ। अरे वाह कमल फूल, दो दो हाथ अंगुली से इशारा से करो, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। कमल फूल ऐसे खिलता है, कमल फूल जैसे हमको भी बनना है। कैसे बनना है? कमल फूल जैसे
1: बनना है।
0: हाँ देखो बच्चे आज कितना खुशी से बोले, कमल फूल जैसे सब सहन करता है, कीचड़ पानी सब उनके साथ रहकर पूरा उपरा सबसे अलग। हमारा राजकुमार भी सबसे अलग है, सभी मैम उनको याद करते, सभी सर उनको याद करते ना
1: जी।
0: क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास गुण है, विशेषता है। बहुत अच्छा बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और दो बच्चे है, तीन बच्चे, वो भी सुनाएंगे। लेकिन आओ और बच्चे सुनाएंगे कुछ,
2: हसीना
0: हसीना हसीना सुनाएंगे कुछ इस कार्यक्रम को। अगला कड़ी में सुनाएंगे हसीना हमारा साथ। कौन सा क्लास में हसीना है?
3: फाइव,
0: फिफ्थ क्लास। तो सुनाओ।
3: नानी जी ने हमें बताया,
4: नानी जी ने हमें बताया,
3: ईश्वर ने संसार बनाया,
4: ईश्वर ने संसार बनाया,
3: बहुत जरूरी समझ इसने,
4: बहुत

0: क्या बात, प्यार प्यार मतलब कितना खुशी का बात, ताली बजा प्यार के लिए। प्यार में सब कुछ समय होता है, जब प्यार से कोई काम करेंगे, प्यार से याद करेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, प्यार से बुलाएंगे, चुटकी में सब काम हो जाता है। और हमारा गुड़िया, हमारा परी आज प्यार सबको लुटा रहा है, गीता माध्यम से, कविता का माध्यम से। कौन सा फलिपा, कौन सा गांव से आती गुड़िया, तुम कहाँ से आती?
1: गिरवर बोर्ड से।
0: अरे बाप रे, गिरवर बोर्ड से आती, इतना दूर से आती है, वाह, गिरवर बोर्ड से। और बड़े होकर क्या बनेगी गुड़िया तुम?
1: डॉक्टर।
0: हाँ डॉक्टर, डॉक्टर का काम सुई लगाना होता है, इंजेक्शन देना होता है। और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए, और प्यार प्यार भरा, दिल भरा कविता का माध्यम सबका मन मुग्ध कर दिया। हमारा श्रोता सुन रहे इस कार्यक्रम को, और ये तो चंडला का आवाज, विद्यालय के भुवनहार बच्चे ममता मैम और एक मैम हमारा साथ इस कार्यक्रम आए हैं, तो उनको भी हालो करेंगे। मैम आप अपना परिचय देंगे?
2: मेरा नाम संगीता शर्मा है और मैं इसी विद्यालय में अध्यापिका हूँ, पहले से पांचों को हिंदी पढ़ाती हूँ। और ये बच्चे अच्छे अच्छे कविता बोल रहे हैं, इनको सिखाई है मैंने, और मुझे पढ़ाना का बहुत ही शौक है। मुझे पढ़ाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चों से पढ़ाना है, इनको नॉलेज देना, और इनको, मैं से सांस्कृतिक प्रभारी भी हूँ, तो नाच गाने वगैरह करवाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद भी गायिका हूँ, गाती हूँ गाना।
0: बच्चों का आवाज को सुनकर मैम भी अपना आवाज को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और बड़े भी तो सच्चे बना देते हैं। और इस कविता का माध्यम से प्यार कितना सीमेंट का काम करता है, जोड़ना है प्यार, जैसे ईंट और रेती को सीमेंट दे देंगे तो दोनों को पूरा बराबर जोड़ देता है, कभी टूटता। तो इस कविता का माध्यम से सभी बच्चे भाग लिए। और मैम इस कविता का माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? मैम एक जो कविता सुनाई बच्ची प्यार वाला कविता, वो कविता का महत्व थोड़ा बताइए, आपका, आप तो बच्चों को सिखाते हैं।
2: ये कक्षा 5 का पहला ही पाठ है, तो मैं इनको, मैंने पढ़ाया और रोज ही प्रार्थना के जस्ट बाद ये कविता मैं बुलवाती हूँ। तो ये बच्चे क्या है, इन कविताओं को बोलते हैं और इनको सबको करीब करीब याद हो चुकी है। तो इसमें नानी का जो प्यार वो बताया है, नानी दादी हमें पहले कैसे कहानी सुनाती थी, प्यार करती थी, है ना, तो उससे बच्चों का क्या होता था, संस्कार के विकास होते थे, है ना। जैसे उन्होंने, नानी हमें प्यार से बताती थी कि ये संसार पूरा किसने बनाया, ईश्वर ने, ईश्वर ने बनाया ना, और ईश्वर, तो ईश्वर को हमको ध्यान रख करना चाहिए, ईश्वर ही हमको सबसे जुड़ने का और इस संसार से जुड़ने का प्रेम सिखाता है ना। तो इसलिए नानी का और दादी का बच्चों के संस्कार निर्माण में बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। और इसी में दो लाइन मैं बच्चों के ऊपर गाना गा देती हूँ क्योंकि बच्चे मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बच्चों के लिए ही गाना गा रही हूँ।

0: के सच्चे धन्यवाद।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चे का शुरुआत कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम को भी धन्यवाद और हमारा ममता मैम को भी धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। ममता बहन का आवाज भी लेंगे अंतिम समय में।
2: लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: this is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और एक बोलते बोलते फिर और एक प्रस्तुति करने के लिए हम आगे बढ़ रहे, तो हमें खुशी मिल रहा है। बच्चे सच्चे होते हैं और बढ़ चढ़ कर अपना भाव और भावना को देते हैं, क्योंकि उनको मौका मिलता नहीं। आज मौका मिला है रेडियो मधुबन उनका बात को रखने के लिए एक मंच दे रही है, जिस मंच का माध्यम से, जिस स्टेज का माध्यम से अपना भाव को जन जन तक पहुँचाते हैं। और आदिवासी गाँव में रहते हैं बच्चे, इस तरह आकाशवाणी में आने के लिए उनको कोई पूछता नहीं था, तो रेडियो मधुबन ब्रह्मा कुमारी आज उनका बात को रखने के लिए उनको मंच दे रहे, माइक दे रहे, तो पुनः और एक प्रस्तुति के लिए रेडी है। हमारा सभी बुढ़िए आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सभी? अपना नाम क्या बताया था?
2: अंजू
3: शुभना।
1: चलिए सभी मिलकर एक प्रस्तुति करेंगे। ओके।

0: वाह वाह बोल रहे हैं सर बच्चे, बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति को धन्यवाद देते हैं।
1: इस तरह बच्चे को जब मान के मिलते हैं आगे आकर अपना बात करते हैं, कोई बड़े अपना लक्ष्य भी रखते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कॉलेज बनेंगे सभी बड़े होकर,
0: लेकिन लेकिन मेहनत जरूरी है। विद्यार्थी जीवन में मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बिना मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है।
1: इसमें पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई तब तक विद्यार्थी पढ़ाई का जीवन में पढ़ाई करना है और बड़ों का बात मानना चाहिए, है ना।
0: ब्रेक के बाद और एक प्रश्न सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन
2: चलिए कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल रहे हैं और आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन पर राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडला का आवाज अंतिम प्रस्तुति में पुनः उनको स्वागत करते हैं। शुरू करेंगे
3: चंडा पड़ा अंबर में

धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। बहुत खुशी लगा सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। सभी बच्चे बोलो रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: दूसरों के साथ हम चूज कर सकते हैं, हम अपने रिश्तों में कितना चूज करते हैं, मुझे इनसे बात करनी, इनसे नहीं करनी, मैं इनसे 5 मिनट ही कर सकती हूँ, इनसे 5 घंटा कर सकती हूँ, इनके साथ मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ मैं नहीं काम कर सकती, आई हैव सो मच चॉइस। लेकिन अपने आप के साथ
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता, करें स्वीकार संदीप कुमार त्रिवेदी का नमस्कार। श्रोताओं, आज हाजिर हूं आप सबके लिए आप सबका ही पसंदीदा प्रोग्राम लेकर के, जिसका नाम है हमराही। ये सिलसिला श्रोताओं हमारा लगातार चल रहा है और ये सब संभव हो पाता है हमारे मेहमानों की बदौलत और आप सबकी प्रतिक्रियाओं की बदौलत। अब इनमें से कुछ भी कम होगा तो फिर आगे इस सिलसिले को बढ़ाने में हमें बड़ी दिक्कत आ सकती है, तो ऐसे में ये जरूरी है दोनों ही तरफ से मामला जो है वो बराबरी का रहे। तो चलिए आज भी कोशिश करते हैं ऐसे ही हमारे दो मेहमानों से जुड़ने का, मिलने का और उनकी कहानी को जानने समझने का प्रयास करेंगे आज। और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, श्रोताओं, जब कई साथी जब ये बोलते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न स्थानों के, विभिन्न जगहों के, विभिन्न प्रदेशों के ग्रामीण परिवेश का माहौल होता है, उसको समझने का बड़ा अच्छा एक मौका होता है, ऐसे में हमारे लिए काम आसान हो जाता है कि हम इस कार्यक्रम में और नए नए आयामों को भी जोड़ सकते हैं। वैसे आप सब जानते ही हैं, हमराही कार्यक्रम जो है वो दिव्यांग साथियों का जो संघर्ष होता है, खासकर विवाह के क्षेत्र में, क्योंकि वो अपनी जॉब में आ जाते हैं, उसके बाद में वो चाहते हैं कि अपना परिवार बढ़ाएं और समाज में अपना एक अलग स्थान हासिल करें, तो ऐसे में जब वो अपने जीवन साथी की, वो अपने हमराही की जब तलाश करते हैं तो फिर उन्हें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और कई बार ऐसे में हमारे दिव्यांग साथी इस मुख्य धारा को या समाज को एक संदेश दे करके चले जाते हैं। अब उस संदेश लोग समझते कितना है, ये सोचने वाली बात है। प्रोग्राम शुरू करते हैं और स्वागत है भीलवाड़ा राजस्थान से ओम प्रकाश बुनकर जी एवं उनकी श्रीमती प्रेम देवी जी का। ओम भाई।

0: आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार सर, धन्यवाद
0: जी। और प्रेम देवी जी, आपका भी स्वागत है।
2: नमस्ते सर संदीप जी।
0: जी जी जी, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और कार्यक्रम के ऊपर अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहो। ओम भाई, हम कार्यक्रम में आगे बढ़े, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को अपने बारे में बताएं।
1: जी सर, मैं ओम प्रकाश बुनकर, भीलवाड़ा राजस्थान से। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भीलवाड़ा से हुई और उच्च माध्यमिक स्तर की पढ़ाई अजमेर से हुई
0: जी।
1: और सर कॉलेज एजुकेशन सारा ही बीए, बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन सारा जोधपुर से हुआ। और वर्तमान में मैं वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के तौर पे पोस्टेड हूँ सर।
0: क्या बात है जी
1: जी।
0: तो आपको कौन सी शारीरिक समस्या है ओम भाई?
1: मुझे सर दृष्टिहीनता की प्रॉब्लम है सर।
0: कब से है?
1: मैं जब 2.5 वर्ष का था तब दृष्टि चली गई थी सर।
0: अच्छा, तो कुछ पता है कि कैसे दृष्टि गई थी, कोई क्या वजह रही थी, ऐसा कुछ है मालूम?
1: ऐसा विशेष कोई जानकारी नहीं मिल पाई सर, लेकिन घर वाले कहते हैं कि अचानक ही खुजली चली और 3 दिन लगे रोशनी को जाने में। और 3 दिनों के अंदर जितनी उनकी दौड़ थी वो उन्होंने करी। पहले क्या कि हॉस्पिटल की ज्यादा व्यवस्था नहीं थी तो देवी देवताओं के गए और देवी देवताओं ने भी उस समय भरोसे नहीं रखा। उन्होंने भी कहा हमारा कुछ भी नहीं है, आप हॉस्पिटल जाइए
0: जी।
1: और उस समय फिर हॉस्पिटल भीलवाड़ा पड़ता था तो वहाँ गए
0: जी।
1: वहाँ जाकर के दिखाया, उन्होंने मेडिसिन भी दी, उन्हें आने को कहा, लेकिन वो मेडिसिन भी काम नहीं करी, खराब हो गई।
0: अच्छा
1: जी।
0: तो ये देवी देवताओं से याद आया कि आपके वहाँ मतलब ये इस तरह की मान्यताएं उस इलाके में कुछ ज्यादा है जहाँ के आप हैं?
1: जी सर।
0: अच्छा, तो उसके बाद में भी फिर प्रयास हुए होंगे?
1: उसके बाद में भी सर हर तरह से, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि देवी देवता का, तो ये सिलसिला अभी तक भी चल रहा था जब मेरी सर्विस लग चुकी थी।
0: अच्छा
1: जी। और आसपास की जिसने कहा कि हमारे वहाँ पे ऐसे संत हैं या हमारे वहाँ ऐसे देवता है, वहाँ से ही हो जाता है, तो वहाँ तक भी। फिर मेरे पिताजी ने तो मना कर दिया कि अब कोई मतलब नहीं है, ये सारा कुछ ढोंग है, अगर होना होता तो पहले ही हो जाता।
0: बिल्कुल।
1: फिर भी रिश्तेदारों के आगे झुक करके सर्विस के बाद भी दौड़ भाग करी और हॉस्पिटल भी गए, SMS हॉस्पिटल जो जयपुर में है
0: जी।
1: और चित्तौड़ के पास आगे वो नीमच है, उसमें भी गए हम आगे
0: जी,
1: पर सफलता नहीं मिली सर। और इसके बारे में जब 8वीं पढ़ा था सर, तो भीलवाड़ा में संस्था के स्तर पर भी उन्होंने ऑपरेशन करवाया पर सक्सेस नहीं हो पाया सर।
0: अच्छा
1: जी।
0: तो ओम भाई, अब जो है हम चाहेंगे कि आपकी श्रीमती जी से भी जरा हम जाने उनके बारे में।
1: जी सर।
2: हाँ सर
0: जी। प्रेम देवी जी, आप भी थोड़ा सा अपने बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए, आपने कोई शिक्षा वगैरह कहाँ तक ली है और आपको तो किसी तरह की शारीरिक कोई दिक्कत है या नहीं है, थोड़ा सा ये बताएं।
2: जी, उनमें तो हमारे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई और पढ़ाई तो हमने 10th तक की है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: 10th तक की है और शादी के मामले में हमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और आप तो मतलब देख सकते हैं पूरी तरह से ना?
2: हाँ, पूरी तरह से देख।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: हम तो ये चाहते हैं कि हमारे को तो अगले जन्म में भी ऐसा ही पति मिले।
0: अरे वाह, क्या बात है।
2: हम तो ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि ब्लाइंड है उनमें, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि ये ब्लाइंड है मेरे लिए।
0: जी जी जी।
2: क्योंकि हर काम में मेरा साथ देते हैं ये लोग।
0: अच्छा, कितने साल हो गए आपको प्रेम जी शादी किए हुए?
2: 2015 में की थी।
0: 2015 में। अच्छा, बहुत बढ़िया।
2: बाकी सब परिवार इतने खुश रहते हैं मेरे साथ, उनसे रहते हुए भी इतना अच्छा लगता है, बहुत ऐसा ही रहे साथ।
0: आपके घर परिवार में कौन कौन है?
2: ससुर जी है और 2 जेठ जी है और परिवार बहुत अच्छे, बच्चा घर सब अच्छे।
0: और आपके अपने परिवार में, आप जहाँ की रहने वाली है वहाँ की बात कर रहा हूँ?
2: पापा तो एक्सपायर हो गए और मम्मी और छोटा भाई है 2।
0: अच्छा, उनकी शादियाँ हो गई छोटे भाई वगैरह की?
2: सिर्फ एक ही है और शादी हो गई उनकी।
0: अच्छा
2: हाँ।
0: तो आपका जो गांव है वो क्या कहलाता है, उसका नाम क्या है?
2: सुराज।
0: सुराज
2: हाँ।
0: ये भी भीलवाड़ा जिले में ही आता होगा?
2: हाँ, भीलवाड़ा जिले में ही।
0: तो 10वीं के बाद प्रेम जी क्या कारण रहा कि आपने आगे पढ़ाई नहीं की?
2: वो पढ़ाई में दिमाग ही नहीं लग पा रहा था और मैं आगे करना ही नहीं, फिर कोशिश भी की लेकिन मेरा दिमाग ही हट गया।
0: अच्छा,
2: पढ़ाई में कमजोर थी इसीलिए वहाँ।
0: नहीं नहीं वो तो कोई बात नहीं, लेकिन मतलब कई बार ऐसा भी होता है ना कि गांव में घर परिवार की जिम्मेदारी भी आ जाती है।
2: नहीं नहीं परिवार से तो कोई समस्या नहीं थी, पापा और बहुत प्यार करता था, पापा ने बहुत भी झगड़ा भी किया था, पढ़ाई छोड़ दी थी तब।
0: अच्छा ओके, हाँ,
2: ओके। पापा की तरफ से कोई मना नहीं थी।
0: बहुत बढ़िया, चलो तो ओम भाई
1: जी सर,
0: कैसे मिलने का सिलसिला हुआ प्रेम जी से आपका, क्या कहानी रही जरा शुरू करते हैं आपका हमराही का सफर।
1: जी सर,
0: जी
1: सर उससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा।
0: निश्चित रूप से आप खुल करके बताएंगे तो हमारे भी सुनने वालों को जो है बहुत सारी बातें समझने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी मुझे लगता है।
1: जी सर
0: जी,
1: उससे पहले यहाँ तक पहुंचू उससे पहले सर क्या कि इस फील्ड में जो समस्याएं आती सर वो मेरे साथ
0: सर उसी पे प्रकाश डालिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: जी जी जी। उसमें क्या सर सर्विस लगने से पहले भी मेरे रिश्ते आए सर।
0: अच्छा
1: हाँ, और उसमें मैं तैयार नहीं था सर,
0: कारण की नौकरी नहीं थी आपकी।
1: हाँ मैंने कहा मैं पांव पे खड़ा नहीं हूँ
0: जी,
1: फिर मैं मान लो खिलाऊंगा क्या।
0: सही बात है,
1: और ये समस्या होने के कारण फिर मैंने वो रिश्ते नकारता रहा। लेकिन उन रिश्तों में भी थोड़ी सी खटास थी सर कि किसी बहुत ही ज्यादा विकलांगता थी, जैसे बिल्कुल डिपेंडम है या बिल्कुल जैसे पाँव को नहीं चला पाते है वैसी समस्या थी। मतलब यूं विकलांगता भी ज्यादा आड़े नहीं आती सर, लेकिन ज्यादा समस्या हो रही थी सर। और दूसरा मेन मकसद तो यही था सर कि कुछ पाँव पे खड़े हो जाएं, चाहे छोटी मोटी हो कुछ
0: जी।
1: और उसके बाद जब सर्विस लगी सर 2012 में
0: जी,
1: उसके बाद जब रिश्ते देखने लगे, हो सकता है कि इसमें हकीकत में और इसमें थोड़ा फर्क लगने लगा। जब पहले बिना सर्विस के लोग आ रहे थे तो अब सर्विस लगने के बाद क्यों नहीं आ रहे
0: जी,
1: इसमें मुझे काफी यूं लगने लगा कि दोहरापन हो रहा है ये
0: जी।
1: फिर इधर उधर रिश्ते देखने शुरू किए, मौसा जी रिश्तेदारों ने भैया ने पापा ने भी दौड़ भाग करी
0: जी।
1: और यहाँ आकर के अटकती है कि ब्लाइंड होकर के नौकरी कर रहा है ये तो संभव ही नहीं है।
0: अच्छा, कहानी यही आकर के अटकती थी हर जगह।
1: हाँ, और जब उनको ये कहते हैं ना कि आप वहाँ स्कूल में जाके देख लो, तो कहते हैं तो पागल बनाते हैं, तो वहाँ कहानियां वानियां सुनाते हैं और पागल बना रहे हैं, कोई प्राइवेट हो रहा है, ऐसे ही रख रखा होगा वहाँ मनोरंजन करने के लिए बच्चों का।
0: अरे बताइए ये मतलब आपके गांव की स्थिति आप बता रहे हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: क्या नाम है आपके गांव का?
1: मरेवड़ा।
0: मरेवड़ा, अच्छा
1: जी। तो गांव के पास की बात है, जैसे आसपास की जो बता रहा हूँ मैं
0: जी जी जी।
1: तो वो कहते हैं कि तो मनोरंजन के लिए रख रखा होगा, यूं गांव में तो सब जान गए थे, गांव वालों को कोई समस्या नहीं हुई
0: जी,
1: पर आसपास के कई लोगों को यूं नहीं लग रहा था कि सर्विस ब्लाइंड कर सकता है क्या।
0: अच्छा
1: हाँ, और एक दो बार भी लड़कियों से मिले भी सर, लेकिन उनको उनकी सहेलियों ने एक बार मेरे साथ यूं हुआ कि मिलने गए शाम को और मुझे बिठा रखा था, लड़की आई अंदर देखने और उसने तो बाहर जाके पापा को हाँ कर दी, और थोड़ी देर में उसकी जब सहेली आई वो अंदर देखने आई तो उसने पता नहीं मेरी दिव्यांगता देखी और उसने कानाफूसी करी, थोड़ा सा मेरा शब्द सुनाई पड़ा के पागल हो रही है क्या जी सर। तो फिर उन्होंने उस समय फिर टाल मटोल कर दी कि चलो हमारे देवता की पाती उतरेगी, देवता अनुमति देंगे तो करेंगे। फिर वो संदेश तो वही मिल गया था कि थोड़ा सा कमी है इशारा। इस तरह से दो चार रिश्ते सर हुए, और फिर बाद में सर एक हमारे मौसा जी, बड़े मौसा जी है, उन्होंने और उनके और साझा परिवार से एक कोशिश हुई जो हमारे श्रीमती जी तक पहुंचने का जरिया बने। और उस दिन सर जल जुलनी 11 थी 2015 में, और उस दिन मैं तो तैयार ही नहीं था, गांव गया हुआ था, कुछ चार दिन की छुट्टी हुई थी सर, कोई संडे और सैटरडे और पता नहीं क्या क्या मिल करके।
0: अच्छा
1: हाँ, तो मैं भी घर पे बैठा था आराम से, अचानक भाई साहब का फोन आता है, तू जिस भी हालत में तुरंत प्रभाव से अपनी दुकान पे पहुंच। भाई साहब गांव से 9 किलोमीटर दूर काम करते हैं वहाँ पे। मैंने कहा मेरे तो दाढ़ी नहीं बनी हुई है ना, मैंने कुछ किया तो आज जाके जैसे है जैसे।
2: ये सब दाढ़ी की प्रॉब्लम की वजह से, उसने दाढ़ी बना के इतने हैंडसम लग रहा था आज सुबह
0: आज भी कार्यक्रम में दाढ़ी बना के ही बैठे हैं
2: लगते हैं।

0: प्रेम जी से पहले रिश्ते तो मैंने बताया सर कि रिश्ते आने में तो पांच
1: मतलब
0: सात
1: लगभग
0: आए।
1: 5-7 तो आए ही होंगे, तो
0: हाँ पांच
1: वो
0: सात
1: दोनों ही तरफ से थे, आप आपके घर की तरफ से भी प्रयास किए गए या सारे सामने से ही आए थे? अच्छा,
0: घर की तरफ से भी प्रयास हुए सर और उधर से भी थे। हाँ
1: उधर से भी थे, और उसमें दोनों ही तरह के थे, विकलांग भी थे और साइटेड भी, मतलब थे,
0: हाँ
1: सब
0: जी
1: सब तरह के थे मतलब।
0: जी
1: लेकिन ज्यादातर जगहों पर आपकी जो नौकरी और दृष्टिबाधिता और ये सब जो है, इन पर भरोसा लोग नहीं कर पा रहे थे।
0: जी जी जी
1: तो जब प्रेम जी से मुलाकात हुई आपकी, फिर
0: जी सर
1: उसी दिन सब कुछ तय हो गया था या उसमें
0: उसी दिन
1: कुछ
0: नहीं हुआ, उसी
1: अड़चनें
0: दिन तो
1: आई?
0: इन
1: जी
0: हाँ उसी दिन तो इनको बात कर ली थी इनके भाई एक दो दिन में जैसा भी आपको मिले जैसा भी आप उत्तर दे देना। पर उसमें क्या कि मेरे मौसा जी और इनके मामा जी इन्होंने इतना जबरदस्त प्रयास किया, इनको भी कन्विंस किया और इनके तरफ से उधर समस्या आ रही थी सर घर परिवार में। पापा मम्मी तो मान रहे थे लेकिन आसपास के जो कह रहे थे घर के दृष्टिबाधित के साथ कहाँ कर रहे हो और क्या समस्या करोगे रे सर वैसे, तो उन्होंने थोड़ा सादा प्रयास करके समझाया कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो फिर रिश्ता बन गया और फिर 5 दिन के अंदर फिर इनकी तरफ से संदेशा मिला कि भाई हमें कोई समस्या नहीं है। ये सर
1: और फिर इस दिन से शादी होने में कितने महीने लग गए?
0: देख लीजिए सर कि जैसे सितंबर फर्स्ट के बाद जैसे नवंबर में कर दी सर 27 नवंबर को। हाँ
1: 2-3 महीनों में सब कार्रवाई हो गई।
0: जी हाँ जी
1: बहुत बढ़िया। तो उस दौरान फिर तो मतलब जब 5 दिन बाद जब फैसला आया, फिर
0: जी
1: तब तो बातचीत शुरू हुई इनसे कि नहीं हुई? तभी भी बातचीत, सीधा शादी में ही मुलाकात हुई, क्या हुआ?
0: नहीं नहीं सर उसके बाद क्या हुआ
1: जी
0: इनकी जो भाभी जी थे ना तो इनके गांव गए ये, जो वहाँ इनकी भाभी जी ने अचानक से मेरे कॉल किया और मेरे से बात करते करते कहते हैं कि बात कराऊं क्या। मैंने कहा भाई बात तो कौन नहीं करना चाहेगा
1: सही है, सही है।
0: तो फिर इनके भाभी जी ने मुझे बात कराई फिर वहां उस दिन से हमारे बातचीत शुरू हो गई थी सर।
1: अच्छा, उस दिन से मतलब जो है फिर कोई।
0: हाँ लगभग देख लो सर 15 दिन तो लग गए थे बीच में, ये जब उनके गांव के भाभी जी के गांव तब उन्होंने बात करवाई।
1: तो फिर शादी से पहले आमतौर पर मतलब क्या चर्चाएं रही कि भाई, आपने भी ये सब तो आपके दिमाग में भी होगा ही, शंकाएं तो होंगी कि आप दृष्टिबाधित हैं और कैसे मतलब जो है वो समस्याओं का समाधान किया जाएगा?
0: हाँ इस तरह की प्रॉब्लम तो मेरे दिमाग में ज्यादा नहीं आई सर।
1: अच्छा,
0: मन का भी आगे लाइफ पार्टनर को अगर दिख रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समस्या आएगी और मेरे को ज्यादा यूँ फील तो नहीं हुआ सर कि भाई कोई अपन को अनकंफर्टेबल महसूस होगा ऐसा तो नहीं लगा मुझे।
1: अच्छा,
0: इनकी सर क्या फोन पे सारी बातें पता हो गई थी कि भाई ऐसा सब कुछ ठीक है और आस पड़ोस वालों ने भी बता दिया था कि आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ऐसा तो कुछ मन में डर नहीं था।
1: अच्छा,
0: जी
1: किसी तरह का कोई डर नहीं था।
0: हाँ
1: आपने कुछ पूछा हो कि भाई ये सब कैसे करोगे, या कुछ चीजें होती है ना जो आपने भी पूछा होगा, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, इस तरह की भी कोई बातचीत रही होगी?
0: नहीं इनको मैं ऐसे नॉर्मली तो खैर पूछा ही कि भाई देख लो मेरे साथ ऐसी दृष्टिबाधिता है तो हर तरह से आपको ट्रीट करना पड़ेगा भाई, ये अपने गांव की एक परंपरा है कि भाई आप हाथ पकड़ के नहीं चलना है वैसा नहीं चलना है तो आपको देख लो भी थोड़ी सी इस चीज को इग्नोर करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि मुझे पहले पता कोई समस्या नहीं है, जब दिखाई नहीं देता दे तो स्वाभाविक है फिर कौन पकड़ने आएगा फिर रास्ते में।
1: अच्छा, ये भी मतलब है आपके यहाँ परंपरा कि भाई वो जो गांव में आमतौर पर पुराने जमाने में माना जाता था कि
0: हाँ जी
1: पति पत्नी हाथ पकड़ करके नहीं चल सकते, मतलब
0: हाँ ये है तर ये रखा जाता है इस तरह से थोड़ा।
1: चलिए बहुत बढ़िया। ओम, तो हमें लग रहा है आप तो थोड़ा सा मतलब, क्योंकि हम तो परिचित भी हैं आपसे, तो थोड़ा शर्मीले स्वभाव के हैं, और प्रेम देवी जी जो है काफी हसमुख लग रही हैं हमको चलिए, तो ये अब बातचीत तो करते हैं, उनसे भी पूछते हैं जरा कि किस तरह उन्होंने जो है वो आपके साथ आगे बढ़ाया रिश्ता। जी
0: बिल्कुल सर इनके साथ भी बहुत सारी

0: ये बताएंगे आपको।
1: वही वही वही, ताकि एक समाज में एक अच्छा संदेश जाए। जी प्रेम जी, तो
2: हाँ जी सर।
1: ओम जी ने तो बताया कि आपसे मिलना हुआ, लेकिन ओम जी से मिलने के पहले की क्या कहानी रही आपके जीवन में?
2: पहले मेरे एक बार शादी हो चुकी थी,
1: अच्छा,
2: पहले शादी हो गई थी, लेकिन क्या वो शराब की वजह से मैंने छोड़ दिया उसे।
1: तो आपकी जब शादी हुई तो आपकी उम्र क्या रही होगी प्रेम जी?
2: तीन तीन 4 साल थी।
1: अच्छा, मतलब बाल विवाह जिसे कहते हैं
2: हाँ,
1: आमतौर पर।
2: बाल विवाह में हो गई थी।
1: ओके ओके। तो और वो गांव गांव में ही हुई थी या गांव से कहीं दूर हुई थी?
2: नहीं, गांव में हुई थी।
1: गांव में हुई थी।
2: हाँ
1: अच्छा, तो उसकी कोई फिर बाद में जब, जैसे अपने तो एक रस्म होती है गोने वगैरह की, तो वो फिर कब आपका, मतलब आप गए कब अपने ससुराल, कब गए आप?
2: नहीं, ससुराल इतना जाना ना हुआ ही नहीं था, क्यों थोड़ा दूर भी पड़ता है इसलिए कम जाती थी।
1: नहीं,
2: नहीं,
1: आप तो कह रहे थे गांव में ही है ससुराल।
2: थोड़ा दूर है उनसे।
1: अच्छा, थोड़ा दूर था तो फिर, लेकिन आपने 10वीं तक पढ़ाई की तो कभी तो गए होंगे ससुराल।
2: वैसे तो पहले तो नहीं गई थी, सिर्फ एक बार दशा माता में मेला था तो एक रात रह के आई थी सिर्फ।
1: 10वीं के बाद
2: हाँ
1: तो फिर आपको ये बिना गए ही ये सब पता चल गया कि भाई वो शराबी है या सही
2: वो
1: नहीं है?
2: क्या करता था, जैसे कि मेरे परिवार वाले बोलते थे कि छोटी है हम भेजेंगे नहीं, तो वो बार बार घर पे लेने के लिए आ जाता था,
1: अच्छा,
2: तो बहुत परेशान करता था वो, बहुत बार बार रोज परेशान करता
1: तो आपके और उनके उम्र में कितना अंतर था मतलब?
2: था। वो थोड़ा हाइट में ज्यादा था और हम छोटे थे। नहीं
1: अच्छा, आप छोटे थे। उसकी कोई नौकरी वगैरह भी नहीं होगी?
2: नहीं उनकी कोई नौकरी वोकरी नहीं है, वो टेलर है।
1: अच्छा, टेलर है। अच्छा, तो जब घर वालों ने आपको, तो फिर बहुत बाद में पता चला होगा कि आपका बचपन में ही विवाह हो गया है।
2: हाँ बहुत, यहाँ मैं जैसे कि पहले मेरा जन्म भी अहमदाबाद में हुआ था,
1: जी,
2: मैं यहाँ लेट आई थी, तो यहाँ आने के बाद में धीरे धीरे पता चला कि मेरी शादी हो चुकी है।
1: जब आप कौन सी क्लास में थे तब पता चला आपको?
2: जैसे कि देख लो ना कि 5वीं 6ठी में आने के बाद
1: छठी
2: ही पता
1: छठी
2: चला।
1: में। तो जब समझदार हुए, कभी इच्छा नहीं हुई पिताजी से प्रश्न पूछने की कि भाई ये क्या किया आपने, बचपन में ही शादी कैसे करा दी?
2: वो क्या है कि पहले के टाइम तो ऐसे थे कि जैसे कि बहुत दादाजी वगैरह एक्सपायर हो गए थे,
1: जी,
2: तो उनके कार्यक्रम में ही उनकी शादी करवा दी। पापा ने कहा कि मेरे पास में इतनी सैलरी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा,
1: हाँ, ये भी एक पहले।
2: इसीलिए पहले
1: जी,
2: की स्थिति की वजह से शादी करवा दी।
1: तो फिर आपने वहां से ते को जब आपने तोड़ा तो पूरी कानूनी कार्रवाई हुई या क्या होता है, मतलब जैसे तलाक वलाक लेना, ऐसा हुआ कि क्या हुआ?
2: कानूनी हुई ना, वो क्या हुआ कि वो पहले और लेके आ गया,
1: अच्छा,
2: वो बार बार मुझे परेशान करता था, तो फिर उसके एक दिन ऐसे जीती जो और दूसरी लेके आया, तो भी मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला, मैं कहा तू लाया तो अपने कम्मा खा, मैंने उसे परेशान किया ही नहीं मैंने उसे,
1: अच्छा
2: फिर भी वो और लाने के बाद भी मेरे मेरे को परेशान करता था
1: अच्छा
2: और बोलता है कि जो तूने पहना हुआ दागीना मुझे वापस दे। भाई मैंने कहा अगर तूने दागीने जो दिया मेरी गलती है तो तू ले जा सकता है, बाकी मेरी गलती यही नहीं तो मैं तुझे क्यों दू,
1: सही है।
2: छोड़ा तो तूने छोड़ा, तू और क्यों लेकर आया। तो फिर ऐसी थाने वगैरह का केस चला, फिर समाज की तोर से उसने लिखावट दे दी।
1: अच्छा, समाज से आपने लिखो तो वो मान्य है मतलब वहां पर?
2: हाँ उसने आराम से, कोई मतलब छेड़खानी कोई परेशानी नहीं की, उसने आराम से समाज की तोर से मुझे खुला कर दिया।
1: अच्छा, उसने स्वीकार कर लिया कि चलो भाई हम अलग हो गए।
2: हाँ उसने कहा तू तेरे जा, कोई बात नहीं।
1: ये आपकी जब शादी हुई ओम जी से, उससे कितने साल पहले आप अलग हो गए थे? अच्छा,
2: 2 साल में।
1: दो, यानी 2013 में लगभग आप अलग हो गए।
2: हाँ।
1: फिर उसके बाद और कहीं तलाश हुई शादी की या नहीं हुई कहीं और?
2: जैसे कि रिश्ते तो आते थे, खूब आए रिश्ते भी,
1: जी,
2: रिश्ते तो खूब आए, लेकिन किसी में नाम में प्रॉब्लम हो जाती तो किसी में हाइट में प्रॉब्लम हो जाती तो इसमें मेरे कंफ्यूज हो जाती थी।
1: मतलब प्रेम देवी जो है, नाम लोगों को पसंद नहीं आता था?
2: नहीं लड़कों को मतलब मेरा मुझे नाम पसंद नहीं
1: अच्छा,
2: आता
1: आपको नहीं आता?
2: क्योंकि कोई नाम में प्रॉब्लम हो जाए मुझे लोग चिढ़ाते हैं।
1: अच्छा, तो लड़कों के नाम आपको पसंद नहीं आते थे? अच्छा,
2: हाँ
1: ये ओम प्रकाश नाम पसंद आ गया?
2: बहुत ही
3: सर फटा हुआ बुशर्ट शर्ट पहन के गया फिर भी इनको पसंद
1: पता ही है। हाँ, क्योंकि ओम वो तो भाई नाम ही पसंद आ गया था ना आपका, तो फिर आप तो कुछ कैंसल होने का तो फिर प्रश्न ही नहीं था।
2: हाँ
1: प्रेम देवी जी, जब पहली बार आपने देखा ओम जी को, मतलब आपको पता था सारा कि भाई व्यक्ति देख नहीं पाता है आंखों से, ये सब बताया गया था आपको पहले से?
2: जी उसके लिए पहले ही मेरे को पापा ने बता दिया था।
1: और फिर आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने कहा कोई बात नहीं?
2: पापा ने तो कहा था लेकिन फिर मैंने मानी नहीं, लेकिन पापा ने कहा तू एक बार देख तू ले जरा।
1: अच्छा आपने उस समय थोड़ा आनाकानी की थी कि यार नहीं कैसे होगा?
2: ऐसी कोई बात नहीं, फिर मन में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वो नहीं देख रहे तो हम तो देख सकते कम से कम।
1: अच्छा इससे पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था आपने जो जिनको दिखाई नहीं देता था?
2: लेकिन देखा भी था ऐसे एक दो लड़कों को देखा।
1: अच्छा
2: ब्लाइंड को देखा लेकिन ऐसे मतलब ऐसा नहीं था कि ब्लाइंड कभी टीचर बन सकता है।
1: अच्छा ये आपको भी नहीं पता था?
2: हाँ ये नहीं पता था कि ब्लाइंड कभी टीचर बन पाएगा।
1: अच्छा अच्छा
2: ये तो पहली बार देखा था।
1: सारी बातें वही शिक्षा से जुड़ी हुई है प्रेम देवी जी। हाँ, जितना हम पढ़ते हैं समाज में उठते बैठते हैं जितना लोगों से मिलते जुलते हैं ना,
2: हाँ,
1: उतना ही हमारा जो दायरा है वो बढ़ता जाता है सोच का।
2: क्योंकि भले बाहर रहने के बाद में ये पता चला कि भाई कोई ब्लाइंड भी टीचर हो सकता है, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार देखने से ही अच्छा रहेगा।
1: अच्छा तो आपके यहाँ पर ऐसा था मतलब कि घर वालों को तो ये था कि एक बार मिलाएं आपसे?
2: हाँ।
1: कहीं जो थोड़ी बहुत उलझन थी वो आपके ही दिमाग में थी?
2: हाँ।
1: पिताजी वगैरह को कुछ भी नहीं थी?
2: पापा तो पहले ही मान गए थे लेकिन मम्मी और भाई नहीं मान रहे थे।
1: वो क्या उनका क्या कहना था मम्मी और भाई का?
2: मम्मी आना बोलते थे कि नहीं के लोग समाज वाले ये कहेंगे कि जो देखता था उसे छोड़ के अंधे को ले जाके दिया, क्या पहले पैसों का लालच था तुम लोगों का, लोग ये कहेंगे।
1: ओहो अच्छा अच्छा इस तरह की भी
2: क्या क्या सवाल बनाती है ऐसी।
1: हाँ इस तरह की भी वही मैं कह रहा था कि इस तरह की भी सोच कई बार देखिए गाँव में हो जाती है।
2: अब लोगों के मन में तो यही है कि इन्होंने पैसों के लिए उनको माँ पे शादी करवा दी।
1: बताइए
2: बल्कि हमारा इनसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे परिवार वाला आज भी इनसे कुछ नहीं मांगते।
1: आप अब कम से कम 6 साल हो गए, 6 सालों से आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा है और लग रहा है कि आप दोनों राजी खुशी जो है अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं बावजूद इसके।
2: हाँ।
1: तो अच्छा चलो एक बार बात करते हैं कि आज मम्मी और भाई जो है वो समझते हैं सारी चीजों को कि अभी भी उनके दिमाग में वही सब है?
2: नहीं नहीं धीरे धीरे अब देखो सब मेरे खिलाफ सब भड़क गए और इनकी तारीफ ज्यादा करते हैं वो लोग।
1: अच्छा उल्टा हो गया।
2: मेरे को तो बोलते तू पागल है, हमारे लिए तो वही अच्छे
1: है। अच्छा चलो कुल ना के आपके रिश्ते से खुश है मतलब आप?
2: बोल बिल्कुल खुश है सब।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर जब आपने पहली बार देखा ओम को तो मतलब क्या लगा देख करके आपको?
2: मतलब थोड़ा डर तो था कि टीचर है मैं कैसे इनको एडजस्ट कर पाऊंगी, लेकिन डर लगता था।
1: अच्छा आपने सोचा कहीं मेरे को 10वीं के बाद 11वीं नहीं पढ़ाना शुरू कर दो?
2: स्कूल में जाने के बाद में टीचरों से बहुत डर लगता था, लेकिन इनके बारे में सुना कि ब्लाइंड टीचर है, लेकिन मेरे को डर लगता था कि कहीं मारेंगे पीटेंगे पढ़ाई के बारे में।
1: यही ऐसे ही हंसी मजाक जो है आप लोगों के जीवन में चलती रहनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। फिर प्रेम देवी जी जब 4-5 दिन बाद आपने कहा कि भाई ठीक है सहमत हैं आप, तो उस दौरान आपको ही सोचना था कि क्या करना, कैसे वो नतीजा कैसे निकला, निर्णय कैसे निकला जब कि भाई ओम जी से अब शादी करनी है, ये कैसे तय हुआ फिर?
2: देखो लोगों ने भड़काने में भी बहुत भड़काया मुझे, लेकिन अपने दिल ने और दिमाग ने सोच लिया कि करनी तो करनी है बस।
1: जब पहली बार देखा आपने इनको तब?
2: हाँ।
1: अच्छा उसके बाद
2: देखते ही? हाँ बोल।
1: फिर जब बातचीत होती थी तो कभी कहीं किसी मोड़ पर लगा आपको कि यार कहीं मैं मतलब जो निर्णय लेने जा रही हूँ वो सही है या नहीं है, ऐसा कभी लगा?
2: नहीं नहीं सिर्फ एक ही डर था कि वो टीचर है इसीलिए मैं कैसे एडजस्ट कराऊंगी, ऐसा कोई डर नहीं था कि मैं क्या करूंगी कैसे करूंगी, ऐसा कुछ कोई डर नहीं था।
1: अब 6 सालों बाद तो नहीं लगता कुछ भी कि भाई टीचर मास्टर साहब जो है वो कुछ कहेंगे?
2: नहीं नहीं ऐसा कुछ कहा भी नहीं और ऐसा कुछ लगा भी नहीं।
1: अच्छा कुछ लगा भी नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ओम भाई
3: जी सर
1: आपके परिवार में तो सबने स्वीकार कर लिया होगा आसानी से या यहाँ पर भी कुछ दिक्कतें आई?
3: यहाँ तो कुछ नहीं आई सर, क्योंकि सामाजिक तौर पे हो रहा था, अदर कास्ट होती तो थोड़ी प्रॉब्लम होती।
1: जैसे ये जो पहला विवाह इनका हो गया था या उस बात को लेकर के?
3: हाँ उस बात को लेकर के तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई, कोई बात नहीं, कम से कम यूं दिमाग में था कि भाई दूसरे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, कम से कम वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं। यूं कई बार अपने जो मैंने पूर्व में बताया कि कई लोग तो नौकरी को भी नकार रहे थे और दृष्टिबाधिता तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ही
1: जी।
3: कि भाई कुछ लड़कियां तो ऐसा कह रही थी कि हमें घुमा नहीं सकते कहीं पे, गाड़ी घोड़े पे बैठा के सैर सपाटा नहीं करा सकते, तो मतलब क्या है? तो इस तरह का दिमाग में इनके नहीं आया
0: और सारा घर वालों ने भी इनको एक्सेप्ट कर लिया, कोई समस्या नहीं रही।
1: अच्छा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रही मतलब? तो अब क्या स्थिति है आजकल, आपका जीवन जो है वो कैसा चल रहा है
0: आजकल? सर जीवन बेहद सुखद चल रहा है।
1: अच्छा,
0: और बढ़िया कॉम्बिनेशन है सर, कोई समस्या नहीं आ रही अब तक तो जीवन को चलाने में। आज तक तो ऐसी कोई मतलब मुझे समस्या महसूस नहीं हुई कि भाई विवाह करके कोई गलती कर ली या इनसे जुड़ करके कुछ गलती होगी, ऐसा नहीं लगता है सर।
1: कभी कहीं ऐसा नहीं लगता?
0: हाँ जी जी सर।
1: तो ओम भाई, आप जिस माहौल में आप रहते हैं
0: जी,
1: वहाँ पे आमतौर पर हमारे जो दृष्टिबाधित साथी हैं खासकर
0: जी,
1: उनके साथ यही सब होता है या अलग अलग परिस्थितियां हैं? वही जैसे मतलब नौकरी वाली जैसे आपने बताई, शादी ब्याह के मामले में क्या स्थितियां हैं वहाँ आमतौर पर?
0: नहीं सर ऐसी तो, फिर भी जैसे मैं जहाँ पोस्टेड हूँ यहाँ पे तो उनको बहुत अचंभा होता है और बहुत खुश है वो यहाँ पर। और इधर वालों ने खूब कोशिश की सर, जब मैंने ज्वाइन करी यहाँ आया तो भी यहाँ वालों ने भी बहुत कोशिश करी भाई रिश्ता इधर ही बन जाए।
1: नहीं आमतौर पे मैं पूछ रहा था कि जो बाकी साथी हैं आप, हाँ, उनकी हाँ, कैसी स्थिति है वहाँ पर उस इलाके?
0: उनकी स्थिति में भी सर थोड़ा सा यही हो रहा है, उनके कोई समाज में मिल नहीं रही उनको देने की।
1: ये समाज वाला मामला अभी भी है क्या वहाँ पर?
0: समाज तो मतलब वाला मामला है सर, अदर कास्ट नहीं करते हैं सर।
1: क्या होता है अगर कर लें तो?
0: फिर सर समाज से बाहर कर देते हैं। फिर
1: क्या होगा अगर समाज से, अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है सरकारी मान लीजिए,
0: उनके साथ
1: बाहर कर दिया तो क्या होगा उससे?
0: फिर उनके साथ कोई गांव गांव वाले खाना पानी बैठना उठना सारा बंद कर देते हैं सर।
1: वो शहर में चला जाए, वो शहर में बस जाए जा करके तो?
0: हाँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: तो गांव में ऐसा है क्या?
0: ये थोड़ा सा रिश्ते से जुड़ाव रखने का और वो रहता है, हर कोई रिश्ते को तोड़ता
1: है। उम्र निकलती जाए अपनी कोई तो भी कोई बात नहीं हो,
0: यही हो रहा है सर।
1: तो ये लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता इस पर विचार किया जाना चाहिए?
0: हाँ सर, किया तो जाना चाहिए पर कई बार यूँ लगता है कि परिवार से दूर होकर के भी समस्या रहेगी, ऐसा भी कई बार फील होता है ना सर। कई बार घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते अदर कास्ट को। एक दो बार ऐसे मैंने इशारों में पूछने की कोशिश भी करी पर वही उनकी तरफ से रिएक्शन मिल रहा था, अगर गांव में रहना है तो अपन को समाज में ही चलना पड़ेगा, बीच में थोड़ा
1: तो ये परिस्थिति तो कुल ना के आपके साथ भी रही कि आप समाज के बाहर कुछ सोच नहीं सकते थे मतलब?
0: हाँ, जी।
1: ये बड़ी गंभीर स्थिति आज भी 2021 में भी ये सब बातें सुनने को मिल रही हैं भाई।
0: मेरे आस पास में जो भी मित्र है उनके साथ ये समस्या हो रही सर।
1: तो इस हिसाब से आप अपने आप को काफी भाग्यशाली मानते होंगे?
0: बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि भाई मुझे समाज में ही रिश्ता मिल गया।
1: चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब और कौन कौन है आपके मतलब बच्चे वगैरह?
0: एक गुड़िया है सर जो 5वां वर्ष चल रहा है इनको।
1: जी बहुत बढ़िया। तो क्या नाम है गुड़िया का?
0: विद्या।
1: अरे वाह विद्या।
0: जी सर
1: बहुत बढ़िया। तो उनकी पढ़ाई वगैरह शुरू हो गई? आप तो पढ़ाते होंगे?
0: हाँ मैं, ये मेरे से भी ज्यादा ये यूट्यूब से सीख लेती है।
1: अच्छा।
0: यूट्यूब से कई चीजें सीख गई है, कलर वगैरह फल फ्रूट का नाम इस तरह से कई ABCD वगैरह ये यूट्यूब से सीख लेती है। मेरे साथ तो फिर भी मैं टैकल करता हूँ तो मजाक करने लग जाती है, एक बोलता हूँ तो दो बोल जाती है।
1: हाँ बच्चों का यही तो एक मतलब माहौल है कि बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं हम लोग भी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्या बात है। तो ओम भाई आपको भी ये सब किसी ने समझाया था कि भाई समाज वालों ने बुला करके आपके पिताजी को कि भाई आपका बेटा ब्लाइंड है, ये है, ऐसा करना पड़ेगा वैसा करना पड़ेगा, कुछ याद आता है ऐसा?
0: किस तरह से सर?
1: भाई जैसे आपकी जब नौकरी लग गई तो शादी ब्याह के बारे में जब बातचीत चल रही थी आपकी
0: जी,
1: तो मतलब साफ साफ शब्दों में किसी ने कह दिया होगा कि भाई समाज में ही करोगे तो ठीक है, नहीं तो उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है?
0: ये सर खुद पापा ही मानते हैं सर कि भाई समाज में ही करनी है।
1: अच्छा, तो कभी आप तो फिर ये तो कभी मन में आया ही नहीं होगा कि भाई मैं किसी ब्लाइंड से शादी करूं या कहीं दूर के जाऊं
0: सर? हाँ,
1: तो कभी आया ही नहीं होगा मन?
0: थोड़ा ख्याल कमी आया सर, मैंने इस तरह के, मैंने सर जब कॉलेज लाइफ में था ना तब मैंने इधर उधर से मैंने काउंसलिंग करी।
1: अच्छा,
0: कई टूर्नामेंट में गए, कोई संगीत सम्मेलन में गए
1: जी,
0: तो वहाँ मैं काउंसलिंग करता था सर, जो वहाँ आते थे ना मित्र लोग तो उनसे मैं काउंसलिंग करता था सर, आप भी ब्लाइंड हो और मैडम भी ब्लाइंड है, तो फिर आप कैसे कंफर्ट होते हो। उन्होंने बढ़िया संतुष्ट भी किया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ही डर लगता था कि पता नहीं ब्लाइंड के साथ ब्लाइंड अपन आगे का कैसे कुछ करेंगे, थोड़ा सा ही लगता था सर। जो मुझे ये लगता था थोड़ी सी विजन हो कि भाई आगे कुछ गाड़ी घोड़ा पड़ा हो तो देख सके, या कुछ बस पे नंबर वगैरह देख सके, तो ये थोड़ी सी मेरी भी सर थी अंदर, थोड़ा सा दिखना चाहिए,
1: थोड़ा सा आपको भी मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर था कि भाई
0: दोनों अगर दृष्टिबाधित होंगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं घाटा उठाना पड़ सकता है। लेकिन कई बार सोचता हूँ सर, दृष्टिबाधित भी परिवार मैंने फिर बाद में देखा भी था, मैंने एक मेरे मित्र हैं सूरज गुरु बख्शानी, और उनके भी मैंने देखा सर कि उनकी माताजी भी ब्लाइंड थे, उन्होंने बढ़िया शानदार खाना पका के मुझे खिलाया, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये ब्लाइंड है सर।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो वो परिस्थितियां तो मतलब दोनों ही तरह की हैं ओम भाई।
0: जी जी सर,
1: कि एक्चुअली हमें निर्णय अपनी परिस्थितियों के अनुसार भी कई बार लेना पड़ जाता है,
0: लेना पड़ जाता है सर।
1: अब आप जैसा बता रहे हैं आपको गांव में ही रहना था
0: जी,
1: आपके वहाँ तो शायद ही कोई स्वीकार करता, फिर आपको तो निकलना पड़ता वहाँ से।
0: ये बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप, अगर मैं ब्लाइंड के साथ भी कर लेता तो मुझे फिर गांव में मुश्किल ही होती सर, मुझे बाहर निकलना पड़ता। एक मेरे से मिले भी थे सर, उन्होंने कहा कर लो, लेकिन वही हमारा वही आके अटक गई सर, नौकरी का ही मामला अटक गया था, नौकरी का ही सबसे मेन अटक रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पांव पे खड़े हो जाएं तभी देखेंगे।
1: ओम भाई, जो आपके इलाके में दृष्टिबाधित लड़कियां हैं
0: जी,
1: उनका क्या होगा?
0: हाँ सर, उनके उनके भी यही है सर, थोड़ी सी कंडीशन, कुछ एक की तो शादी हो गई सर, ऐसी बात नहीं है।
1: अच्छा, वही समाज में हुई?
0: हाँ, उनकी समाज में हो गई, उनके जैन परिवार में, तो उनके जैन परिवार ने एक्सेप्ट कर ली, मेरी भी गत वर्ष मुलाकात हुई उनसे।
1: क्या नाम है?
0: सरोज, सरोज जैन थी जो, उनकी भी उनके समाज में हो गई, और ज्यादा से तो टच में नहीं है सर।
1: लेकिन कुल मिला के ओम भाई, अब समय आ गया है कि जैसे अब आप शिक्षक भी हैं
0: जी,
1: शिक्षक का काम है समाज में रोशनी फैलाना, समाज में जो व्याप्त मान्यताएं हैं, जो जो मान्यताएं ठीक नहीं है, उन मान्यताओं पे थोड़ा सा लोगों को समझाना
0: जी।
1: तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अब ये समझाना चाहिए कि भाई अब जमाना बहुत बदल गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तकनीक ने बहुत कुछ आसान कर दिया है, आंखें होना नहीं होना ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मतलब अब
0: बिल्कुल सर, अब लगता तो है, और मेरा भी यही प्रयास रहता सर लोगों को समझाने का, और जो भी कुछ मित्र हैं उनके भी मैं थोड़ा काउंसलिंग करता हूं, पर वही वहां पर अटक तो जाता है सर, समाज का अटक जाता है।
1: क्योंकि देखिए कहते हैं ना, वो शुरुआत हमें अपने घर से करनी पड़ती है ओम भाई।
0: जी जी जी जी, तो ये बात सही कह रहे हो, लेकिन सर मेन बात तो हकीकत ये कहा जाए कि मैं इस मन से कहूंगा कि शिक्षा मुख्य है, शिक्षा की कमी है सर,
1: शिक्षा की कमी है सबसे बड़ी बात,
0: इस फील्ड में शिक्षा की बहुत कमी है, शिक्षा का होना जरूरी हो रहा सर।
1: ओम भाई, आप तो संयुक्त परिवार में रहते हैं इसलिए ये तो छोटी मोटी दिक्कतें तो कुछ आती नहीं होंगी, सामान लाना ये वो मतलब रोजमर्रा की दिक्कतें तो कुछ होंगी नहीं,
0: प्रॉब्लम नहीं आती, नहीं आती।
1: हाँ, क्योंकि आप लोग तो वैसे ही मतलब वहाँ पर तो गाँव में सब चीजें आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है।
0: हाँ, और जहाँ मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पे भी सर कोई जैसे टीचर आते हैं मार्केट से तो उनको लिस्ट दे देता हूँ, वो ले आते हैं, यहाँ पे भी इनको नहीं जाना पड़ता मैडम को।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: तो वही मैं पूछने वाला था कि जहाँ आप नौकरी करते हैं वहाँ आपकी कैसी स्थिति है, शिक्षक साथियों के बीच में कैसा व्यवहार है, आपसे उनका संबंध कैसा है?
0: अच्छा कोऑपरेशन है उनका भी, अच्छा कोऑपरेशन है, और जितना मुझसे बन पड़ता है मैं भी उनका सहयोग करता हूँ, जो कुल मिला के मुझसे संतुष्ट है वो लोग।
1: अच्छा अच्छा, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
0: हाँ,
1: और अब पिछले कुछ सालों में जब से आप नौकरी कर रहे हैं लोगों में थोड़ा सोच बदली है कि भाई ब्लाइंड व्यक्ति भी पढ़ा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ माहौल बदला भी है सर, इस इलाके में बदला। एक बार मेरा इधर कोई कीर्तन में जाना हुआ सर, तो वहाँ पे भी प्रश्न खड़ा किया मेरे साथ में स्टाफ साथी, तो उनसे पूछा कि ये पढ़ाते हैं या ऐसे कहानियां सुना करके रखते हैं। उनको फिर उन टीचर ने समझाया कि भैया ये हमसे भी ज्यादा वर्क करते हैं, आप कभी आके देखना। तो उन फिर तब से उन्होंने भी एक दो बार ऐसे गांव वालों ने चुपके चुपके आकर के भी मैं देखा, और शुरू शुरू में प्रिंसिपल साहब ने भी मुझे देखा बाहर से कि देखे टेकल कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो फिर वो विश्वस्त हो गए सर, गांव वाले भी विश्वस्त हो गए, और जब बच्चे जब जाकर के घर पे बताते हैं कि भाई सर तो तरीके से समझाते हैं, पूरा गाइड करते हैं, कोई समस्या नहीं है, तो फिर अब उनको नॉलेज आ गया सर।
1: अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम थोड़ा परिवर्तन हुआ। तो प्रेम देवी जी,

0: कोई अब आपको भी मतलब लगा कुछ कि भाई ब्लाइंड के साथ रहने से जीवन में कुछ कठिनाइयां बढ़ जाती हैं या ऐसा कुछ होता है?
1: नहीं कर सर, अभी तक तो कोई कठिनाई नहीं आई मेरे साथ,
0: कभी ऐसा नहीं लगा आपको?
1: नहीं बिल्कुल भी नहीं लगा।
0: तो कहीं बाहर किसी कार्यक्रम में जाना हुआ कभी ओम जी के साथ?
1: हम जाते हैं बिल्कुल, दोनों साथ जाते हैं।
0: अच्छा, नहीं भीलवाड़ा के बाहर या गांव के दूर कहीं बाहर?
1: हाँ वैसे तो घूमने गए थे, दोनों
0: अच्छा,
1: साथ
0: घूमने गए थे? क्या
1: घूमने गए थे, पूरा परिवार साथ
0: बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब जो है वो आपके ससुराल में, आपके पियर में ओम जी की काफी रेस्पेक्ट है, मतलब है काफी सम्मान है
1: हाँ
0: ओम जी का।
1: मतलब बहुत खुश है और बहुत उनको इज्जत देते हैं ऐसे।
0: तो क्या क्या सिखाया आपने वो ये बताओ ओम जी को शादी के बाद?
1: सर जो भी इन्होंने सिखाया, मैंने तो इनको कुछ भी नहीं सिखाया जो कुछ भी इन्होंने सिखाया, क्योंकि मैं तो अनसीखी थी।
0: क्या सिखाया इन्होंने?
2: इन्होंने सर मुझे सिखाया बोलना।
0: अच्छा, बोलना सिखा दिया है।
2: मैं सर आपको पता ही है कि मैं थोड़ा कम ही बोलता था पहले भी। हाँ
0: क्या बात है। और श्रोताओं, मैं आपको बताऊं, ओम भाई जो है वो बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है। अभी इनकी बातों से आप सबको लग रहा होगा कि बहुत सादगीपूर्ण इंसान है, सीधे सादे, लेकिन इनके अंदर टैलेंट कूट कूट करके भरा हुआ है। कई तरह का अभिनय करते हैं अपने बुखार बिंद से। तो ओम भाई, चाहेंगे हम
2: जी
0: हमारे
2: सर,
0: श्रोताओं को थोड़ा सा आप अपनी कला का जो है नमूना पेश कर सकते हैं क्या आज रेडियो मधुबन के इस मंच पर?
2: बिल्कुल सर, इस मंच को मैं भी नहीं छोड़ना चाहूंगा सर।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल ओम भाई। तो आज एक एक करके आप अपनी कलाएं जो है वो प्रस्तुत करेंगे तो हमारे सुनने वालों को भी एक अलग रंग नजर आएगा आज के इस कार्यक्रम का।
2: जी सर,
0: जी, बताइए।
2: तो सर मैं सबसे पहले, अब मोबाइल की दुनिया है तो मैं पुराने समय को याद करता हुआ एक टेलीफोन की बेल सुनाना चाहूंगा सर।
0: हाँ, क्या बात है, सुनाइए। वाह, ये मुंह से आवाज हो रही है श्रोताओं, देखिए आप। जी,
2: जी
0: गजब
2: सर,
0: गजब का टेलीफोन बजाया भाई ओम आपने। दूसरी प्रस्तुति
2: और
0: क्या है आपकी?
2: जी सर दूसरी प्रस्तुति कोयल के रूप में सर।
0: हाँ बताइए। क्या खूब। वाह, गजब।
2: और सर इसी के साथ में एक पक्षी और है सर, पपीहा,
0: हाँ,
2: उसको देखते सर।
0: ये बताइए, पपीहे को भी ले आइए जरा। वाह, गजब। अब ये पपीहे को अब कोई भी पहचान जाएगा अगर सुनेंगे तो इसको।
2: जी सर,
0: जी ओम भाई, क्या बात।
2: क्या करें सर, आपने मुझे पुरानी यादें दिला दी, तो पता नहीं परत दर परत खुलती जा रही है कार्यक्रम में। हो सकता कि समय का भी हो रहा होगा, पर फिर भी थोड़ा समय लूंगा सर मैं।
0: नहीं, आप तो बिल्कुल इस मौके को हाथ से जाने मत दो ओम भाई,
2: जी,
0: बताइए।
2: एक सर खटारा कार है सर, उसको स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ सर।
0: हाँ, पुरानी मतलब एम्बेसडर कार है कोई?
2: जी सर।
0: जी, शुरू कीजिए।

0: स्टार्ट हो गई कार। वाह वाह वाह वाह, बढ़िया। आपने तो बंद भी कर दी स्टार्ट करके।
1: जी सर ज्यादा क्या क्या पर काफी दिनों से चले, वापस रेस लगानी पड़ेगी ना बात में।
0: हाँ थोड़ा जोर ज्यादा लगाना पड़ा है।
1: जी सर जी जी,
0: चलिए आगे
1: आगे सर। जब अपन कार लेके निकल जाते हैं तो बाहर रोड पे कुछ ट्रक्स और बसेस के हॉर्न की सुनाई पड़ती है सर।
0: जी जी,
1: वो भी इस मन से सुनाना चाहूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत।

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ओम भाई, बहुत जबरदस्त। ट्रैफिक ले आए आप तो, सड़क का ट्रैफिक ले आए पूरा। जी
1: जी सर, अब थोड़ा जो अपने भारत का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है सर यातायात का, उसकी तरफ चलते हैं अपन।
0: जी जी जी
1: मेरा इशारा सूरत अलगढ़ जो है समझ चुके होंगे,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: पुराना इंजन चलाने का प्रयास कर,
0: रेल का पुराना इंजन है।
1: जी सर, जी सर,
0: जी जी जी, जी, जी।

0: बहुत जबरदस्त ओम भाई, ये भाप का इंजन था मतलब पुराना।
1: जी सर जी सर।
0: आपके खजाने में कुछ और भी है कि हो गया पूरा?
1: और भी है सर।
0: अरे वाह,
1: अनुमति दे तो।
0: हाँ हाँ, पूरी अनुमति आप तो लाइए।
1: एक सर अब क्या कहे, थोड़ा जानवरों की दुनिया में आ जाऊं?
0: आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
1: एक और आवाज सुना रहा हूँ सर, जो आप उत्तर बता देना सर।
0: जी
1: ठीक साहब
0: जी।

0: ग्यारह सर
1: क्या बात है ओम भाई, आवाज तो बड़ी जबरदस्त है लेकिन हम कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा। जी
0: सुअर
1: सुअर जैसी। हाँ वही वही वही, क्या बात है, गजब। जी, प्रेम जी भी हंस रही हैं पीछे से। उनको उनको ये सारी कलाएं पता है कि नहीं पता है?
0: सर हकीकत कहूँ क्या, इनको
1: हाँ बिल्कुल कह ही दो।
0: भी इतना नॉलेज नहीं था
1: चलो भाई कुछ
0: चीजों का पता था, कोयल का,
1: तो
0: पता था इनको, वो भी एक दिन गलती से हो गया था सर।
1: आप जोश में आ गए होंगे किसी दिन।
0: हाँ जोश में आ गया सर, जो पता चल गया।
1: चलो बहुत बढ़िया हो। और क्या है आपके पास
0: और तो सर
1: फिलहाल, मतलब जो है वो कुछ याद नहीं आ रहा और ज्यादा।
0: हाँ व्यवस्था से नहीं बैठ पा रहा, अचानक
1: जी, समझ, क्योंकि वो अचानक हुआ ना ये सब, तो वैसे भी पहले से
0: अचानक
1: आपको पता होता तो फिर तैयार कर सकते थे, लेकिन चलिए खैर। लेकिन मजा आ गया ओम भाई, आपने माहौल जो है बिल्कुल ही शानदार बना दिया आज के इस
0: देखो
1: कार्यक्रम का।
0: रिकॉर्डिंग क्लब और रेडियो मधुबन का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर, हमें इस तरह से मंच देते हैं आप, और हमारी जो भी समस्याओं से आप रूबरू कराते हो, मैसेज दिलवाते हो, इसलिए पूरी टीम को सर हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे, और इस तरह से हम चाहेंगे और अन्य मित्रों को भी अवसर मिलते रहे सर। बिल्कुल
1: क्या बात है, बहुत खूब ओम भाई। अच्छा ये बताइए, आप हमारा ही कार्यक्रम सुनते हैं कि नहीं?
0: सुनता हूँ सर,
1: सुनते हैं?
0: और मेरे यहाँ जहाँ पोस्टेड हूँ वहाँ पे नॉर्मल पर्सन भी तक सुनते हैं सर, उनको भी मैंने यूट्यूब लिंक दे रखे हैं और वो भी सुनते हैं, वो कह रहे हैं कि एक दिन सर आपका भी तो प्रस्तुत करवाओ, हम आपका भी सुनना चाहेंगे सर।
1: बस तो इस बार जो है उनको कहना आपकी मुराद पूरी होने वाली है। चलिए बहुत
0: जी
1: अच्छी बात है। तो प्रेम देवी जी, अब कार्यक्रम के तो अंत में हैं हम लोग, आज का कार्यक्रम तो समाप्त हुआ, कैसा
0: हाँ सर,
1: लगा आपको आज के इस प्रोग्राम में आकर के? अच्छा
0: सर आज मैंने आपके साथ में जुड़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
1: लगा। तो
0: हाँ
1: प्रेम जी, गांव में जो लड़कियां या जो लोग आपको सुन रहे हैं आज इस कार्यक्रम
0: हाँ
1: के माध्यम से, उनको क्या कहना चाहेंगी आप?
0: जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी रिश्ते को आए तो ऐसा मत सोचो कि वो ब्लाइंड है, उसके बारे में ये भी सोचो कि आप तो कम से कम देख सकते हो,
1: जी,
0: ये मत सोचो कि वो ब्लाइंड है इसीलिए हम रिश्ते को मना करते हैं, ये नहीं, उनमें भी कुछ गुण है, कुछ अच्छाइयां है उनमें भी,
1: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब।
0: ये नहीं सोचना चाहिए वो ब्लाइंड है इसीलिए हम छोड़ दें, उनके लिए और भी हाथ बढ़ा उनके साथ का।
1: जी, बहुत
0: इससे
1: खूब,
0: जो भी मेरी बहन है उनसे यही कहूंगी, ब्लाइंड का साथ देने में अच्छा है आपको।
1: बहुत खूब बहुत खूब। तो अच्छा लगा आपसे बात करके प्रेम देवी जी, और
0: हाँ
1: यूं ही ओम जी का साथ आप निभाती रहें और आपका साथ ओम जी निभाते रहें,
0: हाँ
1: और आप दोनों का जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, और आप दोनों की विद्या जो है वो दिनों दिन निखरती जाए।
0: धन्यवाद सर।
1: जी, जो तो ओम भाई,
0: जी सर
1: आप से भी हम चाहेंगे कि आप कार्यक्रम के अंत में हमारे सभी साथियों को, सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने मन में उठ रहे विचारों को किस प्रकार सबके सामने रखना चाहेंगे?
0: मेन जो बात आती है कि बस शिक्षा,
1: जी
0: शिक्षा की बहुत कमी है, हर परिवार में शिक्षा की महती आवश्यकता है,
1: जी
0: शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए,
1: जी
0: मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा के बगैर कुछ हो नहीं सकता सर, न तो समाज का भला हो सकता है न राष्ट्र का भला हो सकता है सर,
1: ठीक बात है।
0: और इस शिक्षा के कमी के कारण हम साथियों को, दृष्टिबाधितों को समस्या आती है लाइफ पार्टनर चुनने में, चाहे आगे बढ़ने में, इसलिए शिक्षा का प्रसार अधिक से अधिक हो ये मैं चाहूंगा सर।
1: बहुत बढ़िया ओम भाई, तो
0: जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी और प्रेम देवी जी, आप दोनों को आज के हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय देने के लिए, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और श्रोताओं, तो आज का हमराही कार्यक्रम आप सबको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा 9414151415 पर, और ईमेल कर सकते हैं info@radiomadhuban.in पर। इसके अलावा आप चाहें तो हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर लें, गूगल प्ले स्टोर से रेडियो मधुबन के ही नाम से है। रेडियो मधुबन आप जानते हैं इंटरनेट पर लगभग 140 देशों में सुना जाता है। इसके अलावा हमारा ये कम्युनिटी रेडियो है जो कि यहाँ आबू रोड और माउंट आबू, यहाँ पर आसपास में सब जगह सुना जाता है, और दिव्यांग साथियों को इस रेडियो मधुबन के माध्यम से जो मंच मिल रहा है वो आप सबके सहयोग से आगे भी मिलता रहेगा। और आप में से कोई भी साथी अगर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, यदि आप दिव्यांग हैं, आप विवाहित हैं और आपकी कहानी भी थोड़ी दिलचस्प है और आप चाहते हैं कि आप अपनी भावनाओं को सबके साथ व्यक्त करना चाहें, तो इस कार्यक्रम में हमेशा आपका स्वागत है। तो श्रोताओं, मिलते हैं अगले रविवार फिर किसी और हमराही के साथ। दीजिए इजाजत आपके दोस्त संदीप त्रिवेदी को। नमस्कार।
2: नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ भूमि त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कर।
1: मैं हूँ वर्षा उसगांवकर और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: मैं गायक कलाकार हाकम खान ढोलक पे साथ दे रहे हैं, मदन खान करताल पे संगीतकार, शौकत खान मौनसिया। ये करताल लकड़ी की बनी हुई होती है, शीशम की लकड़ी की, चार खुली लकड़ी होती है और हाथों के अंदर ये खुले अंगूठे और अंगुलियों के सहयोग से ये बजाया जाता है। शौकत खान है राजस्थान, इन्होंने करताल के माध्यम से अपना कुछ नाम कमाया है। हर स्टेज पे इनका कार्यक्रम होता है। हकीम लोक संगीत संस्थान केसुमला के अंदर ये बच्चों को संगीत की करताल में सिखलाई देता है, खुद गाता है। इस संगीत संस्थान में हमारे कलाकारों करताल, ढोलक, कमायचा, सारंगी, मोरचंग, मुरली, अलगोजा, सहनाई ये सिखलाई दी जाती है। काफ़ी कलाकार हमारे इस संस्थान के माध्यम से संगीत को आगे बढ़ावा दे चुके हैं और विदेशों में भी काम कर रहे हैं। तो आपके सामने अभी पेश किया जा रहा है निम्बुड़ा। ये निम्बुड़ा हमारे मांगनिया लोगों का गाया हुआ है, प्रस्तुत करना जा रहा है हाकम खान।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो, ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। 6 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में गीत बजा है, जाग सजनिया जाग। तो बाबा आत्मरूपी सजनियों को जागृत करते हैं, अर्थात सावधान करते हैं, क्योंकि रचयिता बाप आए हैं नई दुनिया की रचना करने, लेकिन उन्हें पक्के योगी बच्चे चाहिए। और योग की सिद्धि क्या है? तो बाबा कहते, कर्मेंद्रिय जीत बनना, अर्थात कर्मेंद्रिया जरा भी चंचल न हो, यह है योग की सिद्धि। और ऐसी योग की सिद्धि जब होती है, तब नई दुनिया की रचना में मददगार बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों को कभी भी काम विकार के वशीभूत किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। आज की मुरली बाबा की धारणा युक्त मुरली है, जिसमें बाबा विशेष यही धारणा की बात बताते हैं कि बच्चे कर्मेंद्रिय जीत के साथ साथ विकार जीत भी बनना है, अर्थात काम विकार के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करना है। क्रोध नाम रूप में फंसना ऐसे नहीं कहा जाता है, परंतु काम के वश ही नाम रूप में फंसना होता है। इसीलिए बाबा कहे, तुम बच्चों की बहुत मीठी दृष्टि हो सर्व के प्रति, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से जरूर देखो, परंतु आत्म रूप का भाव जरूर समाया हो, दैहिक भान से परे हो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। आज की मुरली से प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है और पक्के योगी की निशानी सुनाओ। उत्तर है, सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाए। पक्के योगी की निशानी क्या? तो सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाए, यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल न हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है कि किस बात की जागृति सावधानी बाबा दिलाते हैं। तो इसलिए बाबा कहे, इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। यह नई बातें अभी सुननी है। बच्चे अब जानते हैं, नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब यह बातें सुनते हो तो समझते हो, तो यह तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं। बाबा कहे, तुम जब ये बातें सुनते हो तो अंदर में समझते हो। क्या समझते हैं? यह तो 5000 साल पहले वाली पुरानी बातें हैं, जो फिर नए सिर सुनाई जाती है। तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती है। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं। बातें वही है, किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने। इसमें ज्ञान डांस करना होता है, भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है,
बाबा कंपेयर करते, एक तरफ है भक्ति का स्थूल डांस और दूसरी ओर है बुद्धि का ज्ञान डांस। तो ज्ञान का डांस बिल्कुल सहज है, इसमें कर्मेंद्रियां बहुत चलती है। उसमें भक्ति के डांस में कर्मेंद्रियां कितनी चलती है, मेहनत करनी पड़ती है। यह तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है, बुद्धि में ज्ञान डांस अंदर में चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये नॉलेज बुद्धि में है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है, बाकी ज्ञान डांस करने में कोई तकलीफ नहीं। बच्चे कहीं फेल हो पड़ते हैं, मेहनत लगती है, और बाबा कहते कभी कभी कई बच्चे फेल भी हो पड़ते हैं। किस बात में फेल होते हैं, कहां ना कहां गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात नाम रूप में नहीं फंसना है। गिरना, फेल होना, मेहनत अनुभव करना, ये तब होता है जब नाम रूप में कहीं फंस जाते हैं। स्त्री पुरुष काम वश नाम रूप में फंसते हैं ना, क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता है। पहले पहले है यह जिसकी बड़ी संभाल करनी है। बुद्धि योग नाम रूप की ओर न जाए, इसकी बड़ी संभाल करनी है। उसके लिए बाबा सावधान करते हैं, आत्मा को जागृत करते हैं। कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा कहते अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है, इस शरीर का भान तोड़ना है। यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है, यह आत्मा को बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, कोई कोई इस बात को समझते नहीं है। कहते बाबा नाहक ऐसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो, परंतु ये गुप्त बीमारी है, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। इसलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं, जगाने का भाव है यहाँ जागृत करते हैं, अर्थात अटेंशन दिलाते हैं, बच्चे जागो। अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है, बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योत जगाते हैं, फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ ना जाए, आत्मा को अंधियारा न हो। वास्तव में यह है सब भक्ति मार्ग की बातें, आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं, ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है जहां रात दिन ज्योति जगती है। कितना खर्चा होता है, फालतू व्रत जाता है, यहां वह कुछ भी डालने का है नहीं। याद व्रत का काम करती है, याद ही व्रत का काम करती है। याद रूपी व्रत है तो मीठे मीठे बच्चे ये समझते हैं, नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं आता हूं, किसके पास? बाबा कहते मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रन के पास, भारत में ही आता हूँ, अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना, बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। गीता में अगर श्री कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते। शिव के मंदिर में कितने जाते, आज भी देखो तो शिव के मंदिर में कितने जाते हैं। बड़े ते बड़ा मंदिर सोमनाथ का था, अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं। श्री कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगम भारत भर में बने हुए हैं, भारत का कोई गांव भी ऐसा नहीं होगा जहां शिव बाबा का, महादेव का मंदिर ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं
श्री कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते, शिव को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई नहीं है, शिव बाबा जैसी प्यारी चीज और कोई नहीं है। इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं, यह तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। आज कल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है, बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रोब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है। प्रोब यानी कोई बात की जांच पड़ताल जब की जाती है और वो लिखा जाता है तो फिर उसमें समझाना भी है। जबकि निश्चय करते हो वो बेहद का बाप है तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं उनको लिखा दो, जब अच्छी तरह से समझा है, जांच पड़ताल की है तो फिर उसको साथ में अच्छी तरह से समझाओगे, नहीं तो बाहर जाने से क्या होगा, झट भूल जाएंगे। बात तो कल्याणकारी है ना। कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्मों के लिए दूर होने हैं। बच्चियां घर में भी समझाती रहे कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो जरूर रहना पड़े, मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जास्ती रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती है। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं है तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती है। हर एक अपनी जांच करे, काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता है। जांच पड़ताल स्वयं की करनी है कि काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता है। कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूं तो कोई कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होनी चाहिए। यह जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहना है। बाबा कहते बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं, जब तुम अच्छे योगी बनेंगे, कहां भी आंख नहीं डूबेगी तो फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएगी। मुख्य है यह जो सबको धोखा देती है, आंखें ही सबको धोखा देती है। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है तो अपनी जांच करते रहो, जितना याद में रहेंगे उतना कर्मेंद्रियां शांत हो जाएगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। जितना बाबा की याद में रहेंगे कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी और स्वभाव बहुत मीठा बन जाएगा, फील होगा। बाबा कहे महसूस होगा मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूं। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है। तो बाबा कहते हैं सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे, अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूं ना, बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली। उनको ये पता नहीं है कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान के रत्नों से झोली भरते हैं। तुम भी रूप बसंत हो, हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो,
हम कितना ज्ञान रत्न धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। सबसे अच्छा रत्न है कौन सा? सबसे अच्छा ज्ञान रत्न है मन मना भाव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाप में ज्ञान भरा हुआ है वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। यह है बेहद का बाप जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे वह समझे हमारा उच्च पद है। जितने खुद धारणा करेंगे और कराएंगे तो वह समझे हमारा उच्च पद है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना। ये गुलजार बच्ची है कितना मीठा समझाती है। बाबा याद करते हैं गुलजार दादी को कितना मीठा समझाती है। सबको पसंद आता है। दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती है। फिर भी बाबा कहते हैं जो समझने में अच्छा समझाती हूं तो उनको ऑलराउंड सर्विस करनी चाहिए। आप ही शौक होना चाहिए मैं सेंटर्स पर चक्कर लगाऊं। जो जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूं मेरी अच्छी खुशबू निकलती है तो शौक होना चाहिए 10-15 दिन जाकर सेंटर से चक्कर लगाकर आऊं। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे। जो करेगा सो पाएगा। ये सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्य को जीवदान देते हो ये बड़ा उत्तम से उत्तम काम है। मनुष्य को जीवदान देते हैं बाबा कहते ये बहुत उत्तम से उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विसेबल को तो बाप प्यार भी करेंगे परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वह सर्विस बिगर रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। बेचारों की बहुत दुखी जीवन है। बाबा को कितना रहम आता है। बेचारों की बहुत दुखी जीवन है तुम जीवदान देते हो तो बाबा कहे तुम बच्चों को भी ऐसे रहम दिल बनना है और उनको जीवदान देते हो। किसको? अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना। इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बहुत रहम दिल बनना है। ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है इसलिए अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है हम जाकर चक्कर लगाकर आए। प्रदर्शनी के चित्र भी है। चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाएं। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। पतित मनुष्य की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती है। ये तो 5 तत्व है उनकी क्या वंदना करेंगे। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है तो शरीर की पूजा करना हो गई भूत की पूजा। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं उनकी पूजा है सबसे उत्तम। बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्य को भी पूछते रहते हैं वह है पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं। सन्यासियों से वह जास्ती पवित्र है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं। बाप हमको ये अविनाशी ज्ञान रत्न दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा उच्च दान और कोई होता नहीं। एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो है हर एक अपने घर में लगा दे
तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस समय तुम बन रहे हो, स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं वर्षा देंगे हम, बाबा कोई सतयुग में तो वर्षा नहीं देंगे। इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे। और सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस, बाप को याद करते हो यह भी बड़ी सर्विस करते हो। याद भी एक बड़ी सर्विस है क्योंकि इसमें मनसा सर्विस होती है, तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत है परंतु वह सब है जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा यह है राजयोग जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आए हो। मूल बात है याद की। देखना है हमारा मन कहां विकार तरफ तो नहीं जाता है। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कौड़ी मिसल। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। जो करेगा वो पाएगा, बाबा कहते हैं जो करेगा सो पाएगा, बाप देखे व न देखे। अपने को चेक करना है, हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी जिसमें कोई गुण नहीं है। बिगर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अनेक मत है ना, तुमको एक मत मिलती है जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने तन मन धन से अपने और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस कर रहे हो। बाबा कहते तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो, तुम अपना काम करते हो। आखिर विजय तो पांडवों की ही होनी है, इसमें लड़ाई की बात नहीं है। तुम हो डबल नॉन वायलेंस, डबल अहिंसक। न विकार में जाते हो न गोली चलाते हो। वायलेंस से कोई भी विश्व पर बादशाही पा नहीं सकते, बाबा ने समझाया है। वह दोनों क्रिश्चियन लोग दोनों अगर आपस में मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हब किया है। भारत से कृष्ण की ही पुरी था ना, लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए यहां से, अब फिर धन वापस होता जाता है और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं, उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वह आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें है, किसमें? याद करते रहो और अपना वर्षा लो। मेहनत है याद में, इसमें तंग नहीं होना चाहिए। बाबा कहे न थकना है न तंग होना है। अच्छा, मीठे मीठे से किलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है, रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है।
सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्व गुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस न हो, अपने देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूं ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं, उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्व गुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदाया विजयी भव का वरदान देते हैं। ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। आज का स्लोगन है, मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। आज का व्यक्ति इशारा है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। जब स्मृति रहती है कि दैवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और जब स्मृति है कि फीमेल है, तो वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचती है। जब किसी भी बहन को देखते हैं और ये समझते ये देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और जब स्मृति में ये रहता है ये फीमेल है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को अपवित्रता की तरफ खींचती है। वहां रूप को देखेंगे और वहां रूहानियत को देखेंगे। बाबा कहते हैं, दैहिक दृष्टि रूप को देखेंगे और आत्मिक दृष्टि रूहानियत को देखेंगे। अच्छा, ओम।